सुप्रभात। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज और FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये राज्य केंद्र है। आज गुरुवार है। शक संवत 1948 के आषाढ़ माह की 11वीं तिथि। तदनुसार ईस्वी सन 2026 के जुलाई महीने की 2 तारीख। सुबह के 5:58 हो चुके हैं। आरंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा। हमारी इस सभा में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है।

0: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। अब हिंदी में समाचार होंगे हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाई तकाइची के साथ वार्ता करेंगे। ये वार्ता दोनों पक्षों को आपसी हित के मुद्दों की समीक्षा तथा द्विपक्षीय सहयोग मजबूत बनाने का अवसर प्रदान करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वार्ता के बाद कुछ सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए जाने की भी संभावना है।
2: पूर्वोत्तर भारत में संपर्क और विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत और जापान मिलकर काम कर रहे हैं। दोनों देश बुनियादी ढांचे, शहरी विकास, ऊर्जा, कृषि, पर्यटन और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में सहयोग कर रहे हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र जापान की स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र की परिकल्पना में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि यह दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच एक सेतु का काम करता है। 2025 से अब तक जापान और पूर्वोत्तर राज्यों के बीच कई उच्च स्तरीय दौरे हुए। इसी वर्ष फरवरी में जापान के विदेश मामलों के राज्य मंत्री इवाओ होरी ने भारत का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने मेघालय और असम के मुख्यमंत्रियों से मुलाकात की। इस वर्ष अप्रैल में मेघालय के मुख्यमंत्री जापान गए थे। इस यात्रा के दौरान एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके तहत अगले 5 वर्षों में मेघालय के 5,000 युवाओं को जापान में कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री तकाइची कल शाम भारत की 3 दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। ये भारत की उनकी पहली आधिकारिक यात्रा है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज जापान की प्रधानमंत्री सनाई तकाइची के साथ व्यापक विचार विमर्श से दोनों देशों की साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाने में सहायता मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान हिंद प्रशांत तथा अन्य क्षेत्रों में भी शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए साझा प्रयास जारी रखेंगे। सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की 2 बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसमें दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 148 AE के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग का निर्माण शामिल है। देश में पहली बार आंध्र प्रदेश के उंडवल्ली हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर उड़ान के लिए पहली निजी प्वाइंट इन स्पेस यानी पिंस व्यवस्था को मंजूरी दी गई है। इस व्यवस्था में उन्नत उपग्रह तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। इससे उन हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर के सुरक्षित संचालन में सहायता मिलेगी।

0: विभाग ने प्रभावित क्षेत्रों में बुखार का सर्वेक्षण, मलेरिया की त्वरित जांच और मरीजों के समय पर इलाज के निर्देश जारी किए हैं। श्री अमरनाथ जी तीर्थ यात्रा आज से शुरू हो रही है। तीर्थयात्रियों का पहला जत्था जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर पहुंच चुका है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और आवास सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। 57 दिनों की ये यात्रा 3 जुलाई से नुनवान, पहलगाम और बालतल मार्गों से कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू होगी। पुरुष क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला गया T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच कल बारिश के कारण रद्द हो गया। 5 मैचों की श्रृंखला में दोनों टीम 0-0 से बराबरी पर हैं। बारिश के कारण इंग्लैंड अपनी पारी शुरू नहीं कर सका। श्रृंखला का दूसरा मैच शनिवार को मैनचेस्टर में खेला जाएगा। और डूरंड कप फुटबॉल का 135वां संस्करण 25 जुलाई से कोलकाता में शुरू होगा। ये प्रतियोगिता 23 अगस्त तक चलेगी। मैच रांची, इम्फाल, शिलांग और गुवाहाटी में खेले जाएंगे। ये पहला मौका है जब डूरंड कप के मैच झारखंड की राजधानी रांची में भी रखे गए हैं। इसके अलावा फीफा फुटबॉल विश्व कप में इंग्लैंड ने DR कांगो को 2-1 से हराकर अंतिम 16 में जगह बना ली है। अटलांटा में खेले गए मुकाबले में कप्तान हैरी केन ने मैच के अंतिम 15 मिनट में 2 गोल दागकर इंग्लैंड को रोमांचक जीत दिलाई। अंतिम 16 में इंग्लैंड का मुकाबला 6 जुलाई को सह मेजबान मैक्सिको से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आइए सुने खेती किसानी। आज की खेती किसानी में हम जानकारी लेंगे पशुओं में टीकाकरण के बारे में। जानकारी देंगी अनीता तिर्की।
2: संक्रामक एवं छूत के रोग से बचाव हेतु टीका लगाना अति आवश्यक है। स्वस्थ पशुओं में टीका लगा लेने से पशु के अंदर 15 से 20 दिनों में एक प्रभावी इम्यूनिटी आ जाती है, जिससे पशु में उस रोग के होने की संभावना नहीं रहती है। और यदि किसी कारणवश उस रोग का आक्रमण हो भी जाता है तो रोग बहुत हल्के रूप में होगा, जिससे आसानी से ठीक किया जा सकता है अथवा स्वतः ठीक हो जाता है। पशुओं में संक्रामक रोग जैसे गलाघोटू, लंगड़ा बुखार, खुरहा चपका, टीटनस, TB, रिंडरपेस्ट वह रोग है जो बैक्टीरिया, वायरस या प्रोटोजुआ से उत्पन्न होता है। यह रोग जब स्वस्थ पशु अथवा किसी अन्य रोगी पशु के संपर्क में आता है तब उसे छूत के कारण रोग का जीवाणु संक्रमण हो जाता है और पशु संक्रामक रोग से ग्रसित हो जाता है। छूत के कारण जीवाणु संक्रमक पशु शरीर में त्वचा के द्वारा, श्वास नली के द्वारा या प्लासेंटा के द्वारा अथवा भोजन द्वारा, आँख के द्वारा उसके शरीर में प्रवेश कर जाता है। पशुओं को यह जरूरी है कि उसका रेगुलर टीकाकरण किया जाए। टीका द्वारा प्रदान की गई सुरक्षा शक्ति समय के साथ पशु शरीर में घटता चला जाता है, जिससे रोग लगने की संभावना बन जाती है। अतः रेगुलर टीका लगा लेने से पशु शरीर में पुनः रोग से लड़ने की सुरक्षा शक्ति बन जाती है और पशु रोग से ग्रसित नहीं हो पाता है। पशुओं में जैसे गाय भैंस के लिए FMD, HSBQ और एंथ्रेक्स का टीका उपलब्ध है, उसी तरह भेड़ और बकरी के लिए FMD, HSBQ, PPR इत्यादि का टीका उपलब्ध है। सूकरों के लिए FMD और स्वाइन फीवर का टीका उपलब्ध है। इसी तरह कुत्तों के लिए हेपेटाइटिस, रेबीज इत्यादि का टीका उपलब्ध है, जिसे अवश्य ही लगवा लेना चाहिए। FMD या खुरहा चपका रोग पशुओं का जूठा चारा, पानी, नाद या बर्तन में खाने से लग सकता है। रोगग्रस्त पशु के सीधे संपर्क में आने से या रोगग्रस्त पशु के आसपास संक्रमित वायु के सेवन करने से यह रोग लग सकता है। इस रोग में पशु को तेज बुखार आता है, करीब 104 से 106 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। पशु खाना पीना बंद कर देता है, जुगाली करना बंद कर देता है, मुंह से लार बहते नजर आने लग जाते हैं, साथ ही साथ मुंह से चपचप की आवाज़ भी आने लगती है। मुंह के अंदर और खुरों के बीच में छाले हो जाते हैं।

0: स्वस्थ पशुओं को प्रत्येक 6 माह के अंतराल पर पहला टीकाकरण वर्षा ऋतु से पहले और दूसरा बसंत ऋतु से पहले इस रोग का टीका अवश्य लगा लें। इस रोग का टीका रक्षा FMD टीका या FMD टीका के नाम से उपलब्ध है। बड़े पशु गाय भैंस बैल को 3 ml या छोटे पशु भेड़ बकरी सुअर को 1 ml गर्दन की त्वचा के नीचे दिया जाता है। लंगड़ा बुखार इस रोग से गाय भैंस भेड़ बकरी और अन्य पागुर करने वाले पशु मुख्य रूप से ग्रसित हो जाते हैं। यह रोग भी छूत लगने से होता है। इसका जीवाणु रोगी पशु के दूषित और संक्रमित आहार द्वारा एवं शरीर पर खुले घाव द्वारा शरीर में प्रवेश कर बीमारी पैदा करता है। इस रोग में पशु जो रोगी है वो लंगड़ाकर चलने लगता है। पीछे पुट्ठों पर अथवा अगले पैर के ऊपरी भाग से कंधे तक के भाग में गर्म कड़ा और दर्दनाक सूजन हो जाता है, दर्द युक्त होता है, जिसे दबाने पर चरचर की आवाज के साथ बालू जैसा अनुभव होगा। यह इस रोग का मुख्य पहचान है। अगर सूजन बड़ा या फैला हुआ हो तो चीरा लगाकर गंदा झाग युक्त खून को बाहर निकाल लिया जाता है और एंटीसेप्टिक घोल से पट्टी कर दी जाती है और पेंसिलिन इंजेक्शन दिया जाता है पशुओं को। इसे बचाव के लिए स्वस्थ पशु को BQ टीका बड़े पशु को 3 ml और छोटे पशु को 1 ml की त्वचा जो गर्दन है उसकी त्वचा के नीचे प्रतिवर्ष दिया जाता है मई जून के माह में और पशु को रोगी होने से बचाया जाता है।
1: आज की खेती किसानी में हम जानकारी ले रहे थे पशुओं में टीकाकरण के बारे में। जानकारी दे रही थी अनिता तिर्की। और अब इसी के साथ आज की खेती किसानी संपन्न हुई। आकाशवाणी के रांची केंद्र से आइए सुने चिंतन। संकलन और वाचन है दिनेश कुमार लाल का।

0: बात उस समय की है जब सभ्यता पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुई थी। एक गांव में परंपरा थी कि हर व्यक्ति अंधकार से मुक्ति के लिए हर रोज अंधेरे को टोकरियों में भरकर गांव के बाहर फेंक आया करता था। संयोग से एक दिन उस गांव में किसी घर के एक युवक की शादी के बाद दुल्हन आई। गांव की रवायत के अनुसार घर के बड़े बुजुर्ग ने उस नवविवाहित दुल्हन को भी टोकरी में अंधेरे को भरकर गांव के बाहर फेंक आने का आदेश दिया। दुल्हन काफी हैरत में पड़ गई और सोचने लगी कि भला अंधेरे को टोकरी में भरकर कैसे बाहर फेंका जा सकता है। अकस्मात उसके दिमाग में बिजली की गति से एक विचार कौंधा। वो घर के बाहर आई, बिना देरी किए मिट्टी का एक दिया बना लाई। उसने तत्क्षण ही कपड़े की बाती में थोड़ा सा तेल डालकर दिए को जला दिया। अब अंधेरा छट चुका था। गांव का हर व्यक्ति इस बात से हैरान था कि आखिर अंधेरे को इस प्रकार दूर कैसे किया जा सकता है। घर की बहू ने गांव के लोगों की आंखें खोल दी थीं। इसके बाद से उस गांव में फिर कभी अंधेरा नहीं रहा, क्योंकि लोगों ने रोशनी के लिए दीप जलाना सीख लिया था। उस गांव में अंधकार दूर करने की अज्ञानता की कहानी हमारी अपनी कहानी है। सभ्यता के तेजी से विकास के बावजूद हम अपनी आत्मा में बसे अंधेरों से मुक्ति पाने में असफल रहे हैं। रोशनी जलाकर बाहर फैले अंधेरे को दूर कर हम आश्वस्त हो जाते हैं कि हमारे अंदर का अंधकार खत्म हो गया है और उजाला फैल चुका है। लेकिन दुर्भाग्यवश हम अपनी आत्मा में ही नहीं झांक पाते हैं, जो झूठ, फरेब, बेईमानी, धोखा, मिथ्या, आनंद, अहंकार, छल प्रपंच और अन्य बेशुमार अमानवीय प्रवृत्तियों के तिमिर में डूबी हुई है। करुणा, दया, सहानुभूति, प्रेम, धर्म, चरित्र और नैतिकता का सर्वथा अभाव है। आत्मा तो है, पर मानवीय अनुभूतियों और संवेदनाओं से आप्लावित नहीं है। आज महत्वपूर्ण प्रश्न रोशनी की तलाश का नहीं है, बल्कि अति रोशनी की चकाचौंध में बंद हुए अपने प्रज्ञान चक्षु को खोलने का है, ताकि आत्मज्ञान, आत्मसंस्कार और आत्मउत्थान के दीप की बाती की लौ शाश्वत रूप से प्रज्वलित रहे।
1: अभी हम सुन रहे थे चिंतन, वाचन और संकलन था दिनेश कुमार लाल का। भक्ति, श्रद्धा और आत्मिक शांति के प्रातः वंदन कार्यक्रम आराधना में आपका स्वागत है। आइए सबसे पहले सुने ये देश गान।

अनूप चिरोटा के स्वर में अभी हम सुन रहे थे ये देशभक्ति गीत। और दोस्तों कहते हैं ना, जहाँ श्रद्धा होती है वहाँ विश्वास जन्म लेता है, और जहाँ विश्वास होता है वहाँ मन को सच्ची शांति मिलती है। तो आइए अपने मन को ईश्वर के चरणों में समर्पित करें और भक्ति रस से सराबोर इन मधुर रचनाओं का आनंद लें।

आकाशवाणी के रांची केंद्र से हम सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। आज हम सुन रहे हैं पंडित नरेंद्र शर्मा के लिखे भजनों को लता मंगेशकर की आवाज में। संगीत दिया है हृदयनाथ मंगेशकर ने।

और साथियों, ईश्वर से प्रार्थना है कि आपके जीवन में सुख, शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि बनी रहे। और इन्हीं कामनाओं के साथ आज की आराधना संपन्न हुई।

लक्ष्मण को वन जाने की सहर्ष अनुमति देते हुए माता सुमित्रा ने कहा, हे पुत्र, वन में तुम्हें सभी सुख प्राप्त होंगे, क्योंकि तुम्हारे साथ पिता माता सरीखे श्री राम और सीता का निवास होगा। तुम वही करना जिससे श्री रामचंद्र वन में किसी प्रकार का क्लेश न पावें, यही मेरा उपदेश है। श्री राम, लक्ष्मण तथा सीता वहां पहुंचे जहां राजा दशरथ मूर्छित प्राय अवस्था में पड़े थे। श्री राम पधारे हैं इस मधुर वचन के साथ मंत्री सुमंत्र ने राजा को उठाकर बिठाया। दो दो पुत्रों के साथ सीता को वन जाने के लिए तैयार देखकर वो अत्यंत व्याकुल हो गए। अकुलाहट तथा स्नेहवश वे बार बार पुत्रों को हृदय से लगाते हैं। उनकी वाणी मौन है क्योंकि मर्मस्थल पर आघात लगने का दुख दारुण है। श्री राम बोले, हे तात, प्रेम के कारण कर्तव्य में चूक जाने से यश जाता रहेगा। मुझे आशीर्वाद और विदा दीजिए। राजा दशरथ ने ये सुनकर बांह पकड़ श्री राम को अपने पास बिठा लिया। बोले, हे तात, मुनि लोग कहते हैं कि श्री राम चराचर के स्वामी हैं। वेद वाणी है कि कर्मों के अनुसार ईश्वर विचार कर फल देता है, किंतु आज तो ठीक इसके विपरीत हो रहा है। अपराध कोई करे और उसका दंड किसी और को भुगतना पड़े, भगवान, ये तेरी कैसी लीला है।

अभी हम सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आइए जानकारी लेते हैं आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। अब से थोड़ी देर बाद यानी 6:55 पर हम सुनेंगे संस्कृत में समाचार, 7:00 हिंदी में समाचार और 7:05 पर स्वास्थ्य चर्चा। आज की स्वास्थ्य चर्चा में हम एक भेंट वार्ता सुनेंगे, स्वस्थ जीवन शैली, स्वस्थ मानसिक स्वास्थ्य। भेंट वार्ताकार हैं डॉक्टर सुरजीत प्रसाद और भेंटकर्ता संजीव कुमार लाल। 7:15 पर फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुबह

7:45 पर खुला आकाश, इसमें आज हम सुनेंगे गायत्री सिंह से प्रभु शरण की गई बातचीत महिला सशक्तिकरण के बारे में। 8:00 समाचार प्रभात, 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज और 8:30 पर प्रादेशिक समाचार होंगे। 8:45 पर लोक गीत के कार्यक्रम लोक रंग में आज हम सुनेंगे खोरठा गीत, कलाकार हैं सुकुमार और उनके साथी। फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसरंजन दिन के 9:00, 9:30 पर शास्त्रीय संगीत में आज हम सुनेंगे पंडित मोर मुकुट केडिया से सितार पर राग अहीर भैरव में आलाप और जोड़ के बाद दो गते, दोनों ही गते तीन ताल में निबद्ध होंगी।

10 बजे विज्ञान जगत। आज हम इसमें सुनेंगे चर्चा, एसी के उपयोग में बरतें सावधानी, भेंट वार्ता तकनीकी विकास से मीडिया का बदलता स्वरूप। भेंट वार्ताकार हैं अजय कुकरेती, भेंट करता प्रभु शरण। जीवन परिचय में आज हम सुनेंगे आइजैक न्यूटन के बारे में और खोज और आविष्कार में कॉम्पैक्ट डिस्क के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। कार्यक्रम में वाचन और सहयोग दिया है बसंत कुमार ने, प्रस्तुति है प्रभु शरण की। 10:30 पर जोहार रांची और दिन के 11:30 पर आपकी पसंद। दिन के 12 बहनों का कार्यक्रम गृहलक्ष्मी। आज हम सुनेंगे चर्चा, परिवार को एक सूत्र में बांधती महिलाएं। भेंट वार्ता, पारिवारिक और सामाजिक अपेक्षाओं के साथ सामंजस्य बिठाती स्त्री। जानकारी होगी महिलाओं में आयरन की कमी के बारे में। कार्यक्रम की प्रस्तुति है गौरव कुमार पांडे की।

0: 12:30 पर फिल्म संगीत, दिन के 1 बजे हिंदी में समाचार और 1:05 पर अंग्रेजी में समाचार होंगे। 1:10 पर प्रादेशिक समाचार प्रसारित किए जाएंगे। 1:20 पर उपशास्त्रीय संगीत में अनुरंजनी में हम सुनेंगे सिद्धेश्वरी देवी से राग मिश्र खमाज में ठुमरी। सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाएंगे फाल्गुनी पाठक के गाए पॉप गाने। दिन के 2 बजे मिड डे न्यूज, 2:15 पर दोपहर के समाचार होंगे और 2:30 पर फौजी भाइयों के लिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम जय भारती। 2:55 पर प्रादेशिक समाचार, 3 बजे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग और 3:30 पर रांची मेलोडीज। शाम 4 बजे प्रादेशिक मुख्य समाचार होंगे और 4:02 पर विज्ञान जगत का पुनः प्रसारण होगा। कार्यक्रम संबंधी जानकारी अभी हम ले रहे थे। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है, कुछ ही देर में आप संस्कृत में समाचार सुनेंगे।
1: वाचिका ऋचा झा। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य नवदिल्ल्यां सूर्य समकक्षया सानेताकारी शीत्यनया सह वार्षिक शिखर सम्मेलन स्तरीयां वार्तां करिष्यति। शिखर सम्मेलनमिदं उभाभ्यां पक्षाभ्यां द्वैपाक्षिक सहयोगं समीक्षितुं सुदृढीकर्तुं सहैव पारस्परिक हिताय क्षेत्रीय वैश्विक विषयेषु विचाराणां आदान प्रदानं कर्तुं अवसरं प्रदास्यति। द्वयोः प्रधानमन्त्रिणोः मध्ये संवादानन्तरं नैकेषां सन्धिपत्राणाम् आदानप्रदानं भविष्यति। जापानस्य प्रधानमन्त्री भारतस्य त्रिदिवसीय यात्रायै ह्यः सायं नवदिल्ल्यां सम्प्राप्ता। प्रधानमन्त्री ताकाइची इत्येतस्याः इयं भारतस्य प्रथमा आधिकारिक यात्रा वर्तते। विदेशमन्त्रालयेनोक्तं यत् इयं यात्रा भारत जापानयोः मध्ये विशेष रणनीतिक वैश्विक सहमतिम् अग्रे वर्धनदिशि महत्वपूर्णा वर्तते। सामाजिक संचारपटले एकस्मिन् सन्देशे श्रीमोदिना लिखितं यत् असौ जापानस्य प्रधानमन्त्रिणा सह व्यापक चर्चायाः आशां करोति, यया भारत जापानयोः विशेष रणनीतिक वैश्विक सहमतिम् इतोऽपि गहनं भविष्यति। दिल्ल्यां वसन्तकुञ्ज क्षेत्रस्य नेल्सन मण्डेला मार्गेण सह द्वारका द्रुतमार्गं संयोजयन् दिल्ली नगरे 48.1 AE राष्ट्रिय राजमार्गस्य कृते 6-मार्गीय सुरंगस्य निर्माणाय ह्यः प्रशासनेन अनुमतिः प्रदत्ता। राष्ट्रिय राजधान्यां वार्ताहरान् सम्बोधयन् सूचना प्रसारण मन्त्री अश्विनी वैष्णवः अवदत् यत् उत्तरप्रदेशे राष्ट्रिय राजमार्गस्य 34 इत्यस्य 17.7 किलोमीटर मितस्य सुदीर्घस्य कानपुर कबराई खण्डस्य 4-मार्गीय अभिगमन नियन्त्रित मार्गस्य निर्माणमपि प्रशासनेन अनुमोदितम् अस्ति, यत्र संरचनाः 6 मार्गाणि यावत् सुलभतया विस्तारयितुं परिकल्पिताः सन्ति।
2: पहला प्रोजेक्ट 6-लेन द्वारका टनल दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। 8 किलोमीटर की ये टनल एक तरीके से कम्प्लीट ईयर एक नया कॉरिडोर बन जाएगा। ये रिज है, इस रिज को बिना डिस्टर्ब किए सारा काम करना है। इस रिज को, रिज हमारे दिल्ली की एक तरीके से लंग्स ऑफ दिल्ली है, इसलिए उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना इसके नीचे से ही टनल लेके जाने का है, ये प्रपोजल है।
1: विकसित भारत जी राम जी अधिनियमस्य 25.2 अंतर्गतं वर्धितानि पारिश्रमिक मूल्यानि ह्यः आरभ्य समग्र देशे कार्यान्वितानि। ग्रामीण विकास मन्त्रालयेन प्रसारितायाः अधिसूचनायाः अनुसारं सर्वेषु राज्येषु

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाईची के साथ वार्ता करेंगे। ये वार्ता दोनों पक्षों को आपसी हित के मुद्दों की समीक्षा तथा द्विपक्षीय सहयोग मजबूत बनाने का अवसर प्रदान करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वार्ता के बाद कुछ सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए जाने की भी संभावना है।
1: नवंबर 2024 में टोक्यो में आयोजित पहले आर्थिक सुरक्षा संवाद के दौरान भारत और जापान ने रणनीतिक सहयोग के लिए 5 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की थी। इनमें सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, फार्मास्यूटिकल्स, स्वच्छ ऊर्जा और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी शामिल है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के दौरान जापान के प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी। भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी के एजेंडे को आगे बढ़ाने का प्रमुख मंच बना हुआ है। वर्ष 2025 में आयोजित वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान जापान भारत मानव संसाधन आदान प्रदान एवं सहयोग कार्य योजना शुरू की गई। इसके तहत अगले 5 वर्षों में दोनों देशों के बीच 5,00,000 लोगों के दो तरफा आदान प्रदान का लक्ष्य रखा गया है। इसमें भारत से जापान जाने वाले 50,000 कुशल और अर्ध कुशल कर्मी भी शामिल है। दोनों देशों के बीच विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और अन्य वरिष्ठ स्तरों पर भी नियमित रूप से बैठकें और उच्च स्तरीय आदान प्रदान होते रहते हैं। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री तकाईची भारत की 3 दिन की यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंची। ये भारत की उनकी पहली आधिकारिक यात्रा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज जापान के प्रधानमंत्री के साथ व्यापक विचार विमर्श से दोनों देशों की साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाने में सहायता मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत और जापान हिंद प्रशांत तथा अन्य क्षेत्रों में भी शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए साझा प्रयास जारी रखेंगे। भारत और मलेशिया ने कल नई दिल्ली में आपसी सैन्य सहयोग की समीक्षा की। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बैठक में दोनों पक्षों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और मुक्त आवाजाही को लेकर प्रतिबद्धता व्यक्त की। 12वीं उप समिति की बैठक में दोनों देशों के बीच मौजूदा रक्षा पहलू, सैन्य संपर्क, द्विपक्षीय अभ्यास, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण, समुद्री तथा अन्य उभरते क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा हुई। देश में पहली बार आंध्र प्रदेश के उंडवल्ली हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर उड़ान के लिए पहली निजी प्वाइंट इन स्पेस यानी पिन से व्यवस्था को मंजूरी दी गई है। इस व्यवस्था में उन्नत उपग्रह तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। इससे उन हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर के सुरक्षित संचालन में मदद मिलेगी जहां लैंडिंग के लिए पारंपरिक व्यवस्था नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्यव्यापी विशेष भूमि मापन अभियान डीजी रोवर की शुरुआत की है। ये अभियान 15 अगस्त तक चलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल सहारनपुर में इस अभियान की शुरुआत की। अभियान में हर तहसील में भूमि सीमांकन और मापन से जुड़े मामलों का समाधान नई तकनीक से किया जाएगा। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण

सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। 57 दिनों की यह यात्रा 3 जुलाई से नुनवान, पहलगाम और बालतल मार्गों से कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू होगी। पुरुष क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला गया T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच कल बारिश के कारण रद्द हो गया। 5 मैचों की श्रृंखला में दोनों टीम 0-0 से बराबरी पर हैं। डूरंड कप फुटबॉल का 135वां संस्करण 25 जुलाई से कोलकाता में शुरू होगा। ये प्रतियोगिता 23 अगस्त तक चलेगी। मैच रांची, इम्फाल, शिलांग और गुवाहाटी में खेले जाएंगे। फीफा फुटबॉल विश्व कप में इंग्लैंड ने कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य को 2-1 से हराकर अंतिम 16 में जगह पक्की कर ली है। अटलांटा में खेले गए मुकाबले में कप्तान हैरी केन ने मैच के अंतिम 15 मिनट में 2 गोल दागकर इंग्लैंड को रोमांचक जीत दिलाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आइए सुनिए स्वास्थ्य चर्चा। इस कार्यक्रम में आज हम सुनेंगे ये भेंट वार्ता, स्वस्थ जीवन शैली, स्वस्थ मानसिक स्वास्थ्य। भेंट वार्ताकार हैं डॉक्टर सुरजीत प्रसाद और इनसे हमारे भेंट करवा रहे हैं संजीव कुमार लाल।
1: हर व्यक्ति स्वस्थ दिखना चाहता है, लेकिन स्वस्थ होने के लिए हमें मानसिक रूप से मजबूत होना पड़ेगा। आजकल हर जगह तनाव का वातावरण व्याप्त है। मानसिक तनाव हमें क्यों हो जा रहा है और एक बढ़िया स्वस्थ जीवन शैली हम किस प्रकार जिए, इसी विषय पर बात करेंगे। बातचीत करने के लिए आज आमंत्रित हैं केंद्रीय मनोचिकित्सक संस्थान रांची के सब प्राध्यापक डॉक्टर सुरजीत प्रसाद। डॉक्टर साहब स्वागत है।
2: नमस्ते सर।
1: डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम ये जानने की कोशिश करें कि आजकल हर जगह तनाव का वातावरण क्यों है, इसके पीछे कारण आप क्या मानते हैं?
2: आजकल हम लोग ये देख रहे हैं हर कोई किसी न किसी तरह से तनाव से ग्रसित है। इसका कारण अनेक हैं, बहुत सारे कारण हैं, बट जो मुख्य कारण है उसमें आप कह सकते हैं कि हमारी जीवन शैली। जो हमारी जीवन शैली है वो आजकल बहुत फास्ट हो गई है। इंडस्ट्रियलाइजेशन एक बहुत बड़ा कारण है। फिर और कारण में से जैसे लोगों को कुछ न कुछ इच्छाएं रहती है वो पूरी करने के लिए, तो वो इच्छा को पाने के लिए वो उनके पीछे भागते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे यंग पीपल, यंग लोगों को करियर चाहिए, करियर में बनाना है, करियर बनाना है तो करियर बनाने के लिए फिर वो पढ़ाई बहुत कर रहे हैं, बहुत तरह का कंपटीशन दे रहे हैं, बट हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो कम हैं, एम्प्लॉयमेंट कम है, तो उसके कारण भी उनमें तनाव आता है। अभी हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग जॉइंट फैमिली से दूर जा रहे हैं, एकल फैमिली की ओर जा रहे हैं। उसमें हमें एक सपोर्ट सिस्टम मिलता था, अगर कुछ परिवार में है तो सब लोग मिल बैठ के उसको सॉल्व करने की कोशिश करते थे। एकल फैमिली में ये चीज़ें लैकिंग है, तो हमें एक सपोर्ट जो चाहिए स्ट्रेस के समय वो मिल नहीं पा रहा है, वो एक कारण हो रहा है। खान पान भी हमारा बदला है, अब हम लोग फास्ट फूड उनकी तरफ ज़्यादा अग्रसर हो रहे हैं। ये जो खाने के प्रकार हैं ये तुरंत बन जाते हैं, टेस्टी लगते हैं, जीव को बहुत अच्छे लगते हैं, बट ये शरीर को और दिमाग को दोनों को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। बहुत बार ये भी देखा गया है कि पहले लोग बहुत मेहनत करते थे, जैसे गांव में हमारी आबादी 70% लगभग गांव में रहती हैं, तो उनकी एक दिनचर्या है जिसमें फिजिकल वर्क बहुत ही इन्वॉल्व है, और जो वो खाना खाते हैं वो बहुत शुद्ध खाना खाते हैं, खेतों में उपजा हुआ खाना, कम कीटनाशक का उपयोग करके खाद करके जो उपजा है खाना वो खाते हैं। और उसके उलट जो शहर में है ठीक इसके उल्टा, वो हमें फास्ट फूड की ओर अग्रसर हो गए हैं, तो खाने की शैली भी हमारी ख़राब हो गई है। एक जो रूटीन लाइफ होता है जिसमें हम लोग अच्छा खाना, अच्छा सोना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, और एक्सरसाइज भी बहुत अभी कम हो गए हैं। अगर हम अपनी दिनचर्या ऐसे बनाएं जिसमें एक्सरसाइज हम लोग रेगुलर कर पाएँ कुछ देर के लिए, ज़्यादा नहीं 20 से 30 मिनट, तो हमारे शरीर के साथ साथ मन भी बहुत स्वस्थ रहेगा।
1: तनाव से हम घिर जाते हैं तो बहुत सारी बीमारियां हमारे अंदर प्रवेश कर जाती है, अवसाद से हम घिर जाते हैं, डिप्रेशन जिसे कहते हैं उसके हम शिकार हो जाते हैं, तो कौन कौन सी बीमारियाँ ऐसे होने लग जाती हैं? मानसिक तनाव से गिरते हैं तो रक्तचाप बढ़ जाता है, डायबिटिक के हम शिकार हो जाते हैं, और उसकी गतिविधियां सीमित हो जाती है, उसे हर कामों में मन नहीं लगता है, और परिवार और दोस्त उससे अलग होने लग जाते हैं
2: जी।
1: तो ऐसे में कौन कौन सी बीमारियां उसके अंदर प्रवेश करती है?
2: अगर मानसिक बीमारी के बारे में बोला जाए कि सबसे कॉमन कारण क्या है तो वह स्ट्रेस ही है। तो स्ट्रेस के कारण जो कॉमन बीमारियाँ हैं जैसे कि आपने बताया डिप्रेशन, अवसाद, एंग्जाइटी,

0: फिर उसके अलावा सर दर्द, ये बहुत ही कॉमन है। आपको कंप्लेन मिलेगा कि मेरा सर भारी रहता है या सर दर्द करता है, जिसे कॉमन भाषा में हम लोग माइग्रेन भी कहते हैं, वो भी एक तरह की सर दर्द की बीमारी, वो भी बहुत कॉमन होती है। ब्लड प्रेशर बढ़ जाना, डायबिटीज़, जो भी मतलब नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ है वो उनकी समस्या बढ़ जाती है। उसके अलावा जो स्पेसिफिक साइकेट्रिक डिसऑर्डर है, जैसे कि बाइपोलर डिसऑर्डर, स्किजोफ्रेनिया, ओसीडी, ये सारे स्ट्रेस के कारण हो सकते हैं। तो हर तरह की मानसिक रोग स्ट्रेस के कारण हो सकते हैं। और एक बहुत कॉमन मैं जो लक्षण है उसके बारे में बताना चाहूँगा कि बहुत बार हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं कि हमें परेशानी हो रही है, और डॉक्टर हमारे हमें एग्जामिन करते हैं, टेस्ट कराते हैं, उसके बाद बोलते हैं कि नहीं, आप में कुछ नहीं, सब नॉर्मल है। तो इसे हम लोग कहते हैं मेडिकली अनएक्सप्लेन सिम्टम्स। ये बहुत बड़ा रीज़न है स्ट्रेस के कारण, ये बहुत कॉमन है। उसमें क्या होता है कि लोग तो फिजिशियंस के पास जाते हैं, बट इसका एक्चुअल इलाज किसी मनोचिकित्सक के पास ही होता है। कि बहुत लोगों में वो लोग डॉक्टर के पास जाते हैं कि ये समस्या हो रही है, एक हाथ में दर्द हो रहा है, डॉक्टर उनका एग्जामिन करते हैं, टेस्ट करते हैं, कुछ नहीं निकलता है, तो उसको हम लोग मेडिकली अनएक्सप्लेन सिम्टम्स कहते हैं।
1: तो समस्या कहाँ दिखती है?
0: समस्या स्ट्रेस माइंड में है जी। क्योंकि माइंड ही हमारे पूरे बॉडी की हर गतिविधि को कंट्रोल करता है, संचालित करता है, तो प्रॉब्लम यहीं पे रहता है।
1: रफ्तार की जिंदगी हो गई है, हर व्यक्ति बड़े बड़े सपने बुनने लग गया है और चाहता है कि सारी चीज़ तुरंत उसके पास आ जाए, और ऐसे में तनाव हो जाता है। कहते हैं कि जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे कोई भी लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा। तो बिना मेहनत के चाहते हैं सारी चीज़ें उन तक पहुंच जाए, सारी सुख सुविधा उन तक पहुंच जाए, और जब इस तरह की चीज़ें उन तक नहीं पहुंचती हैं तो अवसाद के शिकार हो जाते हैं, पहली बात। दूसरी बात, हम एक दूसरे को देखकर भी चाहते हैं कि उससे हम आगे निकल जाएं। एक भावना मन में घिर जाती है कि उससे हम आगे क्यों नहीं निकल रहे हैं, या फलाना व्यक्ति हमसे आगे क्यों जा रहा है, हम भी इस रेस में आगे बढ़ें, तो वो भी एक तनाव का कारण बन जाता है
0: जी। ये आजकल की तो हमारी लाइफस्टाइल हो गई है, ये हर जगह व्याप्त है, मतलब पर्सनल लाइफ में भी, इवन हमारे प्रोफेशनल लाइफ में भी ये चीज़ें होती है। सब लोगों की अलग अलग शक्तियाँ होती है, जैसे पांच उंगली बराबर नहीं है, वैसे ही सबकी कैपेबिलिटीज़ अलग अलग है। तो अगर हम उसको पहचाने और उसी के अनुसार, जैसा आपने कहा कि शॉर्टकट नहीं, मेहनत करें और एक निरंतर उस पथ पे अग्रसर रहें, तो सफलता भी हमें मिलेगी। लेकिन किसी चीज़ का शॉर्टकट नहीं होता है, और एक निश्चित दूरी तय करने के बाद ही वो हमें मिलती है। खुद को समझने की एक आवश्यकता है।
1: कैसे अपने आप को एक सही राह पर लाया जाए, एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाया जाए कि हम स्वस्थ रहें, और जब हम स्वस्थ रहेंगे तो घर परिवार भी स्वस्थ रहेगा।
0: जैसा कि मैंने पहले बताया कि हमारा बॉडी की ऑलमोस्ट सारे फंक्शंस माइंड से ही कंट्रोल होता है। तो अगर माइंड हमारा ठीक रहेगा, हमारा मानसिक स्वास्थ्य ठीक रहेगा, तो शारीरिक स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। और मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो जो चीज़ें हम शारीरिक स्वास्थ्य के लिए करते हैं, वही सब चीज़ें हमें मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी ज़रूरत है। जैसे कि अच्छा खाना, पौष्टिक आहार का लेना, कभी कभार आप फास्ट फूड, ये सब एक्सेप्टेबल है, बट रेगुलर वो रहना नहीं। दूसरा, नियमित व्यायाम करना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। नियमित हम 20 से 30 मिनट, ऐसा नहीं बहुत हैवी एक्सरसाइज, बट नॉर्मल एक्सरसाइज, वॉकिंग हो गया, माइल्ड जॉगिंग हो गया, ये सब करेंगे तो भी हमारे लिए सफिशिएंट है। और तीसरा, नींद, नींद बहुत ही ज़रूरी है। तो नींद मतलब कम से कम आप कितनी भी आपकी भाग दौड़ की ज़िंदगी हो, 6 से 8 घंटे की नींद बहुत ही आवश्यक है मानसिक स्वास्थ्य के लिए। इन चीज़ों का प्रभाव ये रहता है कि हमें सब पता है, हमें पता है कि पौष्टिक आहार से न्यूट्रिशन मिलता है, न्यूट्रिशन से बॉडी और माइंड ठीक रहता है। दूसरा जो है एक्सरसाइज, एक्सरसाइज से या योगा हो गया, वॉकिंग हो गया, इससे शरीर में कुछ कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो हमारे मानसिक स्वास्थ्य को बहुत ही अच्छा रखते हैं, वो स्ट्रेस बस्टर्स का काम करते हैं। और तीसरा, स्लीप, जैसा मैंने बताया कि नींद, अगर हम नींद परफेक्ट लेंगे तो हमारे हार्मोन्स फिर बैलेंस रहेंगे। स्ट्रेस सभी के लाइफ में आती है
1: जी। आजकल हर लोगों में दूरियां बढ़ गई हैं, परिवार भी सीमित दायरे में समा गया है, और सभी लोग सोशल मीडिया के सहारे एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। आपस में जो एक बातचीत होती थी वो कहीं ना कहीं खो गया है, दोस्तों से दूरियां बढ़ गई हैं, क्योंकि दोस्त ही ऐसा व्यक्ति होता है जो आपकी सारे समस्याओं को हर लेता है
0: जी।
1: तो इसमें परिवार का, दोस्त का, समाज का कितना बड़ा रोल हो जाता है?
0: ज्वाइंट फैमिली से हम लोग एकल फैमिली की तरफ आ गए हैं, उसी तरह भागदौड़ की जिंदगी में हमारे दोस्त छूटते गए हैं, वैसे दोस्त जिनसे हम कुछ एक्सप्रेस कर सकें। जैसे अगर हमें स्ट्रेस होता है और अब वो हम अगर किसी से एक्सप्रेस

0: कर लें, उनके व्यूज़ ले लें, तो बहुत हद तक वो कम जाता है। काउंसलिंग में बहुत बार ऐसा ही होता है कि लोग सिर्फ अपने आप को एक्सप्रेस कर लेते हैं, उनके जो स्ट्रेस है उससे उनकी बहुत सारी समस्याएं हल हो जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग जो फेसबुक या सोशल मीडिया पे जो हम लोग आपस में बात करते हैं उससे अच्छा सामने बैठ के करें। अगर सामने नहीं बैठ सकते हैं फ़ोन का इस्तेमाल करें, फ़ोन पे हम लोग बात करें, जो भी स्ट्रेस है उसे आप कहें, उसको खुद से खुद में रखने पे आपको स्ट्रेस आपकी बढ़ेगी ही। बीइंग अ मेल, हमारे सोसाइटी में हमारा ये रहता है कि मैं मेल हूँ तो मैं इस तरह की कैसे बात कर सकता हूँ, मैं अपना मेरी कोई कमजोरी है, मुझे स्ट्रेस हो गया, मैं अपनी पत्नी को बताऊँगा तो ये पौरुष पे ये एक चोट ना लग जाए। तो उसमें वैसा कुछ नहीं है, आप पत्नी आपकी सबसे बड़ी हमराज होती है। अगर आप एकल फैमिली में हैं, आप पत्नी और बच्चे ये, तो आप पत्नी से वो चीज़ शेयर करें। अपने अंदर चीज़ों को दबाने से वो चीज़ें और बढ़ती ही हैं, आप पत्नी से डिस्कस करें। नहीं है तो कोई ख़ास दोस्त जिन पे आपको भरोसा है या कोई फैमिली मेम्बर, उनसे आप डिस्कस करें। कुछ ना कुछ समाधान इतने ही डिस्कशन से निकल जाता है और हमारा स्ट्रेस लेवल भी कम हो जाता है और हमारा जो तनाव का कारण है उसका भी निराकरण हो सकता है। तो बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो फिक्र आती है, जो टेंशन है, उसे आप शेयर करें और एक्सरसाइज रेगुलर करें, अच्छी नींद लें, स्वास्थ्य पौष्टिक खाना खाएं, इससे आप एकदम फिट एंड फाइन रहेंगे मेंटली भी और फिजिकली भी।
1: यस, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुरजीत प्रसाद, सब प्राध्यापक केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थान रांची, आज आप इस कार्यक्रम में, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और मित्रों, आज का कार्यक्रम यहीं तक, अगले दिन एक नई जानकारी के साथ पुनः उपस्थित होंगे, तब तक के लिए हमें आगे दीजिए, नमस्कार।
2: स्वस्थ जीवन शैली, स्वस्थ मानसिक स्वास्थ्य, इस विषय पर हमें जानकारी दे रहे थे डॉक्टर सुरजीत प्रसाद और इनसे हमारी मुलाकात करवा रहे थे संजीव कुमार लाल। और अब आज की स्वास्थ्य चर्चा संपन्न हुई। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है, कुछ ही देर में आप सुनेंगे फिल्म संगीत का हमारा कार्यक्रम सुबह सुरीली।
3: एक विषाणु है जिसका संक्रमण HIV संक्रमित रक्त के उपयोग, संक्रमित नीडल या सीरिंज के उपयोग, संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कंडोम के यौन संबंध बनाने या संक्रमित गर्भवती माँ से उसके नवजात शिशु को हो सकता है। HIV/AIDS की जानकारी के लिए ना को टोल फ्री नंबर 1-0907 पर संपर्क करें या ना को एड्स ऐप डाउनलोड करें। झारखंड राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
2: दोस्तों, हर नई सुबह अपने साथ नई उम्मीदें, नए सपने और नई ऊर्जा लेकर आती है। कहते हैं ना कि हर सुबह एक नया अवसर है अपने जीवन को बेहतर बनाने का। तो अपने मन में विश्वास जगाइए और अपने चेहरे पर मुस्कान लाइए और स्वागत कीजिए इस खूबसूरत सुबह का इस सुरीले गाने के साथ।

कार्यक्रम सुबह सुरीली का ये पहला नगमा हमने लिया था फिल्म आंचल से। आवाज थी लता मंगेशकर की, बोल मजरू सुल्तानपुरी के, और संगीत दिया था राहुल देव बर्मन ने। आइए सुने मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म तीन देवियां का ये गाना, मजरू सुल्तानपुरी के बोल और सचिन देव बर्मन का संगीत।

लता मंगेशकर की आवाज़ में अभी हम सुन रहे थे फिल्म गंगा जमुना का ये गाना। शकील बदाविनी के बोल थे और नौशाद का संगीत। आइए सुने ओपेरा हाउस का ये गाना लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ में। मजरू सुल्तानपुरी के बोल हैं, चित्रगुप्त का संगीत।

हम दीवाने हो जाएगा। आइए सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म अनुराग का ये गाना, आनंद बख्शी के बोल हैं और सचिन देव बर्मन का संगीत।

और आइए अब सुनते हैं फिल्म आपकी कसम का ये गाना लता मंगेशकर की आवाज में, आनंद बख्शी के बोल और राहुल देव बर्मन का संगीत।

लता मंगेशकर के गाए इस गाने के साथ ही अब आज की सुबह सुरीली संपन्न हुई। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है।

0: आइए सुनिए खुला आकाश। खुला आकाश में आज हम सुनेंगे एक भेंट वार्ता, महिला सशक्तिकरण। भेंट वार्ताकार हैं गायत्री सिंह और इनसे बातचीत कर रहे हैं प्रभु शरण।
1: आज हम अपने कार्यक्रम में जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो है महिला सशक्तिकरण। और इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ आकाशवाणी के स्टूडियो में मौजूद हैं गायत्री सिंह, जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं, फिनेंशियल एनालिस्ट हैं, लीगल एक्सपर्ट हैं। वैसे तो इनका और भी कई क्षेत्रों में अध्ययन है जहाँ ये पढ़ती लिखती रहती हैं और इसके बारे में काफ़ी कुछ रखती हैं जो कि वो आप लोगों को बता सके, लेकिन आज का विषय है महिला सशक्तिकरण। नमस्कार गायत्री जी।
2: नमस्कार श्रोताओं, आपको भी मेरा नमस्कार जोहार।
1: सबसे पहले तो इस विषय पर ही बात कर लें कि महिला सशक्तिकरण है क्या और क्यों जरूरी है।
2: महिला सशक्तिकरण मेरे दृष्टि में एक महिला को इतना सशक्त बनाना है कि वे आत्मनिर्भर बन जाएं, उनको सामाजिक और आर्थिक स्थिति उनकी इतनी सुधार देनी है कि वे अपने जीवन से जुड़े हुए निर्णय खुद बिना किसी दबाव के फ्री होकर ले सकें। इसके लिए हमें ज़रूरी है उनको शिक्षित करना, उनको आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाना, इक्वल अपॉर्चुनिटीज देना, जैसे वो पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर समाज में चल सकें और अपनी सारी इच्छाओं को पूरा कर सकें।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। और चूंकि हम इस विषय पर बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा आपके बारे में भी जानना चाहेंगे हमारे श्रोता जरूर, कि क्या आप ऐसी कोई संस्था से जुड़ी हैं या फिर इस क्षेत्र में आप कुछ काम कर रही हैं महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में।
2: महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में जसोवा है, झारखंड आईएएस ऑफिसर्स वाइव्स एसोसिएशन, तो उसमें भी हम लोग अपना योगदान देते हैं। हमारी संस्था काफी जाके समाज सेवी कार्य करती है, तो उससे मैं जुड़ी थी लास्ट ईयर। काफी समाज सेवा करने का मौका लगा।
1: बिल्कुल,
2: महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए।
1: जैसे अगर हम थोड़ा स्पेसिफिक बात करें कि महिलाओं से जुड़े क्षेत्र में कुछ एक्टिविटीज आप बता सकती हैं जो आप सीधे तौर पे टेकअप करती हैं।
2: मैं जैसे यहाँ पे कई अनाथालय हैं, जैसे प्रेम आश्रय है, वहाँ पे मैं गई हूँ और मैंने वहाँ पे स्थिति के बारे में पता भी लगाया महिलाओं के बारे में। तो हम लोग वहाँ पे अपने भी स्तर पे कोशिश करते हैं कि महिलाओं को जागरूक करें, उनके बीच में अवेयरनेस बढ़ाएं कि शिक्षा कितनी इम्पोर्टेंट है, कितनी महत्वपूर्ण है, और शिक्षा के साथ साथ आपको वोकेशनल ट्रेनिंग, जैसे आपको रोजगार मिल सके। और फिर हम लोग अपने स्तर पे भी उनको आर्थिक रूप से हम उनकी मदद करते हैं।
1: बिल्कुल।
2: और गवर्नमेंट से भी जुड़े हुए कई संस्थान हैं, हमें पता है गवर्नमेंट कर रही है, तो कहीं कहीं हमें अपने भी इंडिविजुअल स्तर पे जाके थोड़ी मदद तो करनी ही चाहिए। तो यहाँ पे ऑर्फनेजेस पे मैं काफी गई हूँ।
1: बिल्कुल, चूंकि भारत एक ऐसा देश है, अगर हम थोड़ा सा इतिहास में जाते हैं तो अगर थोड़ा सा पहले चले जाएं वैदिक काल में, तो जहां तक जानकारी मुझे है कि उस समय महिलाओं की स्थिति काफी अच्छी थी अपने देश में, लेकिन धीरे धीरे कालांतर में महिलाओं की स्थिति थोड़ी सी समाज में जो होनी चाहिए थी वो गिरती गई। और इसीलिए मैं समझता हूँ कि महिला सशक्तिकरण, जो आज हम वुमेन्स एम्पावरमेंट की बात करते हैं, वो बहुत जरूरी हो गया है। तो आप क्या कारण मानती हैं कि ये जो स्थिति आई, एक बहुत अच्छी स्थिति से धीरे धीरे समाज में ऐसे परिवर्तन हुए कि हम आज महिला सशक्तिकरण या वीमेन्स एम्पावरमेंट की बात कर रहे, तो ये क्यों हुआ?
2: हमारा जैसे मिडिवल एज में अगर आप जाएं तो इन्वेडर्स आए, उसके बाद पूरा मुगल एरा चला, फिर अंग्रेज भी आए, पर ज्यादा हम लोगों ने देखा कि महिलाओं की स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी। तो अंग्रेजों के बाद फिर एजुकेशन इंट्रोड्यूस हुआ, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट स्टार्ट हुए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन रॉय, उन्होंने देखा कि क्या हम लोग को कितनी परेशानी हो रही है, तो सती उन्होंने अबॉलिश करने की करी, जो बाद में हुई भी उनके कार्यों के कारण। तो धीरे धीरे सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स आए, अच्छा जागरूकता फैली। और एक कारण हम लोग का है कि हम लोग की जो पुरुष प्रधान समाज है उसके मारे हमारी जो महिलाओं को बहुत ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ती है। बच्चा जैसे ही पैदा होता है आप देखते हैं, महिला अगर वो स्त्री है तो उसको अलग ढंग से ब्रिंग अप करा जाता है, अगर वो पुरुष है, लड़का है, तो उसको अलग तरीके से। तो बचपन से ही हम लोग की सोच जो है ऐसी है कि पुरुष को ज्यादा मिलेगी, स्त्री को कम मिलेगी। तो सोच बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी रूढ़ीवादी सोच मैं कहूंगी। और भी है कि हम लोग महिलाओं की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, वे शिक्षित नहीं है, अपनी राइट्स के बारे में जानती नहीं है। तो शिक्षा अगर हम फैलाएंगे, जैसे हम लोग आर्टिकल 14 है राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 15 है फुल अपॉर्चुनिटी मिलेगा एम्प्लॉयमेंट में मिलेगा आपको, एंड आर्टिकल 16 ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है, उनको ठीक तरीके से अगर से इम्प्लीमेंट करा जाएगा तो महिलाओं की स्थिति में बहुत सुधार आएगा। पर जागरूकता अवेयरनेस बहुत जरूरी है फैलाना सोसाइटी में, उसमें महिलाओं को नहीं पुरुषों को भी शिक्षित करना पड़ेगा कि देखिए 50% महिलाएं हमारी हैं पॉपुलेशन भारत में, तो 50% अगर पीछे रहेगा तो हमारा देश आगे कैसे बढ़ेगा। अगर 50% ही लोग पिछड़े हुए हैं, कुछ कर ही नहीं रहे हैं, आर्थिक अपना योगदान नहीं दे पा रहे हैं, कि नेशन की बिल्डिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है कि महिलाएं अपना योगदान दें, तो उसके लिए उनको शिक्षा आर्थिक स्थिति सुधारिए, अवेयरनेस बहुत इम्पोर्टेंट है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, और इसमें आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट इसमें रेज किया कि महिला सशक्तिकरण के लिए जरूरी नहीं है कि सिर्फ महिलाओं के सोच में बदलाव आए या महिलाएं इनिशिएटिव लें इसमें आगे आने के लिए, पुरुषों की सोच में भी एक बदलाव की आवश्यकता है, वो उस माइंडसेट से निकलें, ये जो पुरुष प्रधान वाला जो माइंडसेट है उससे निकलना होगा, अपने घर से आपको शुरुआत करनी होगी। अच्छा, अगर हम बात कर रहे हैं महिला सशक्तिकरण की, इसके कुछ लक्षित उद्देश्य हैं कि परिणाम आने चाहिए, तो वो जो अपेक्षित परिणाम है वो नहीं आ रहा है अभी तक। प्रयास बहुत किए जा रहे हैं सरकार के स्तर पर, आप जैसे सोशल एक्टिविस्ट हैं, तो इस तरह से कई संस्थाएं हैं जो इस क्षेत्र में काम कर रही हैं, बावजूद इसके ये जो परिवर्तन जितना अपेक्षित है उतना क्यों नहीं आ रहा है, क्या क्या हिंड्रेंसेज है, कौन कौन सी चुनौतियां हैं हमारे सामने?
2: सबसे पहले तो अगर हम गाँव के क्षेत्र में जाएं तो वहाँ पे जो लड़की है बालिका है उसको स्कूल भेजेंगे 5वीं तक, तो उसके बाद कहेंगे कि इसकी तो शादी होनी है, पढ़ाई का फायदा नहीं है, ज्यादा पढ़ लिख लेगी तो घर पे ही बैठ जाएगी, शादी नहीं होगी, तो उसको शिक्षा के लिए प्रेरित ही नहीं करते हैं। आपकी मानसिक स्थिति जो है शिक्षा से ही सुधार आता है, तो लड़के को और लड़की को दोनों ही बराबरी की शिक्षा देने की जरूरत है। और अपॉर्चुनिटी, ये अपॉर्चुनिटी मिलती नहीं है, लड़की को घर में बैठाते देते हैं और लड़के को कहते हैं कि तुम जाके आगे पढ़ाई करो, तो जब अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही तो उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार कैसे आएगा, ना वो पढ़ी लिखी है ना आर्थिक रूप से स्वतंत्र है, तो जितना भी गवर्नमेंट पॉलिसीज आएंगी वो उतनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं होंगी, क्योंकि वो ऊपर से आ रही है, नीचे से आपको खुद सुधार लाना होगा, खुद सोच में सुधार लाना है, आर्थिक स्थिति आपकी सुधरेगी तब आप अपने राइट्स के लिए लड़ाई करेंगे। आप अगर विदेश में जाएं, अमेरिका में तो वेमेन मूवमेंट्स हुए थे, वहां पे उन्होंने अपने राइट्स के लिए लड़ाई करी, तो वेमेन मूवमेंट एक यहाँ पे भी भारत में भी चलना होगा, जहाँ पे गांव से लेके शहर से लेके पूरा का पूरा वहां पे औरतों को पुरुषों के साथ मिलकर एक मूवमेंट चलाना होगा, जिसमें उनको कहना है कि इनकी स्थिति में सुधार आना चाहिए। वायलेंस अगेंस्ट वेमेन आपने देखा है, तो महिलाएं बहुत डरती हैं बाहर पढ़ाई करने के लिए भी जाने के लिए, तो सुरक्षित एनवायरमेंट चाहिए उनको, स्कूल के स्तर पे भी चाहिए, उनको कॉलेज के स्तर पे भी चाहिए, तो आगे जहां काम कर रही हैं वहां पर भी चाहिए।
1: बिल्कुल, मैं यही प्रश्न आपसे मेरा अगला होता कि वर्क प्लेस पे भी जहां पर काम होता है उस वर्क प्लेस पे भी देखा जाता है कि महिलाएं उतना खुलकर या फिर बहुत सारी चीजें उनके साथ ऐसा होती है जो वो छिपा जाती हैं, तो वहां पर जो हैरेसमेंट होता है महिलाओं का उसके बारे में आप क्या कहेंगे, और क्या इसका कोई निदान है, कुछ सरकारी कुछ प्रावधान है तो उसके बारे में बताएं।
2: मुझे लगता है कि एक सुरक्षित एनवायरनमेंट करना चाहिए, जो हम लोग का एक लॉ भी है जो सेक्सुअल हैरेसमेंट जो प्रिवेंट करता है वर्क प्लेस में, ये 2013 में आया है, इसको पॉश एक्ट भी कहते हैं, जहां पे अगर किसी महिला के वर्क प्लेस पे उसका उत्पीड़न होता है, सेक्सुअल उत्पीड़न होता है, तो वो जाके वहां पे कंप्लेन कर सकती है, एक कंप्लेन

0: बेटी को बैठाना होगा और उसको पूरा का पूरा मौका देना पड़ेगा अपना पक्ष रखने के लिए और एक्शन लिया जाए, तो ये जागरूकता होनी चाहिए ना इसके बारे में। तो मेन तो मुझे लगता है कि वर्क प्लेस में सारी महिलाओं को जागरूकता भी देनी चाहिए।
1: और आपने जैसा कि बताया कि ये सरकारी प्रावधान है ऐसे जो कि प्रिवेंट करता है, या
0: हाँ
1: किसी भी तरह महिलाओं के अगेंस्ट कोई हरासमेंट है तो उसके रोकता है। तो उस संबंध में हर इंस्टीट्यूट में उस तरह के जो समितियां बनती हैं महिलाओं के लिए ताकि उनका हरासमेंट ना हो, या फिर जहां महिलाएं काम करती हैं उनको अगर कुछ कंप्लेन करना हो तो इस तरह की समिति रहे, और ये
0: हाँ
1: बहुत जरूरी
0: और
1: है।
0: अगर ऐसा कुछ होता है तो महिलाओं को चुप नहीं रहना चाहिए, अगर उनके साथ कुछ परेशानी हो रही तो आगे बढ़ के करना चाहिए, वो उनकी गलती नहीं है, तो महिला को खुद लड़ाई करनी पड़ेगी, वो पुरुष आपकी नहीं हेल्प कर पाएगा, आपको खुद आना होगा आगे।
1: अब बिल्कुल, और इस तरह की चीजें आजकल मतलब प्रायः मीडिया में देखने को मिल जाती हैं, या क्या कुछ ऐसे लोग होते हैं और एक खास वर्ग है जो कि बहुत चीजों का विरोध करता है कि महिलाओं का ड्रेस ऐसा हो, उनका वैसा हो, ये चीजें पुरुषों के बारे में तो बात नहीं होती। इस
0: बिल्कुल,
1: संबंध में आपकी क्या टिप्पणी होगी?
0: महिला सशक्तिकरण का तो इससे ही पता चल रहा है कि अगर महिला सशक्त होती तो क्या हम इस पे डिस्कशन करते, इस टॉपिक पे। तो पुरुष को सशक्त करना कभी हम लोग डिस्कशन करते हैं, तो मेरी इसी से बात उठती है कि महिला सशक्तिकरण की क्या आवश्यकता है, बहुत ज्यादा आवश्यकता है क्योंकि वो बहुत पिछड़ी हुई है, उनको जरूरत है आगे आने की, महिलाओं को पूरा खुद करना पड़ेगा मेरा ये है, और पुरुषों को महिलाओं का साथ देना पड़ेगा इसमें, तभी ये पॉसिबल है।
1: बिल्कुल, और जैसा कि आपने शुरू में ही कहा कि इसके लिए शिक्षा बहुत जरूरी है, और हर स्तर पे सबसे पहले तो आपको अपने घर से हमें शुरुआत करनी होगी कि जब बच्चे घर में पलते बढ़ते हैं उसी समय उनको ये एक माइंडसेट बनाना होता है कि भाई लड़की हो या लड़का दोनों समान अच्छे स्कूल में जाएंगे, दोनों एक तरह के स्कूल में जाएंगे और दोनों की शिक्षा दीक्षा एक समान होगी ताकि आगे चल के दोनों ही एक अच्छे नागरिक बन सकें।
0: बिल्कुल, मैं आपसे सहमत हूँ और इसके साथ मैं और भी जोड़ना चाहूंगी, लड़की जा रही है अगर किचन में तो लड़के को भी सीखना चाहिए रोटी बनाना, क्योंकि आज के समाज में हम लोग देख रहे हैं कि महिला और पुरुष दोनों ही काम करने निकल पड़ रहे हैं, थोड़ा सा बदलाव आया है पढ़ाई के मारे, पुरुषों को भी पूरी उनकी मदद करनी चाहिए, डिविजन ऑफ लेबर होना चाहिए, वो भी कमा रही हैं, तो पहले बात समझ में आती थी कि भाई किचन संभाल रही है पर आज तो बाहर जाके कमा रही है पैसा, तो उनको भी मौका मिलना चाहिए, उनका ही काम नहीं है कि पूरा घर संभालें
1: बिल्कुल,
0: बाहर और अंदर, तो ये पूरा डिविजन ऑफ लेबर होना चाहिए।
1: तो श्रोताओं आपने देखा कि महिला सशक्तिकरण के बाद में जिस तरह से गायत्री सिंह जी ने बताया, और इनकी बातें इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं क्योंकि इस तरह के कार्य ये करती हैं और समाज में अलग अलग जगहों पर जाकर इन्होंने देखा है, समाज को समझा है, और उन्होंने अपने अनुभव से ये विचार हमारे सामने साझा किए।
0: मैं
1: कार्य
0: एक
1: दी
0: लास्ट में बोलना चाहूंगी कि
1: जी
0: कितनी विडंबना है, यहाँ पे भारतवर्ष में देवी की पूजा करी जाती है और आज हम उसी देवी के बारे में बात कर रहे हैं, कि
1: बिल्कुल,
0: सोचने की बात है, मैं माताओं को सोचने के लिए छोड़ रही हूँ, उसका ट्रीटमेंट अच्छा होना
1: आपने
0: चाहिए।
1: बिल्कुल सही कहा कि जो शक्ति की स्रोत है देवी, तो खुद सशक्त तो वो है ही, लेकिन आज जरूरत है, समाज में इसकी आवश्यकता आन पड़ी है कि हम अपने सोच में बदलाव लाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू।
2: खुला आकाश में हम सुन रहे थे ये भेंट वार्ता महिला सशक्तिकरण। इसके अंतर्गत हम सुन रहे थे गायत्री सिंह से प्रभुशरण की गई बातचीत, और अब आज का खुला आकाश संपन्न हुआ।

साथियों, हम बताना चाहेंगे कि भारत में 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक वन महोत्सव मनाया जाता है। ये एक महान पारंपरिक भारतीय उत्सव है जो वृक्षारोपण के माध्यम से धरती माता का सम्मान और प्रेम करने, प्रकृति की सुंदरता के प्रति जागरूकता पैदा करने और कम करें, पुनः उपयोग करें और पुनर्चक्रण करें की अवधारणा को बढ़ावा देने वाला, वातावरण को विकसित करने के द्वारा भारतीय संस्कृति और विरासत को दर्शाता है। वन और महोत्सव शब्द संस्कृत भाषा से लिए गए हैं। वन, जिन्हें वाना भी लिखा जा सकता है, इसका अर्थ होता है जंगल, और महोत्सव यानी महान उत्सव, ये दोनों मिलकर एक त्यौहार का संयोजन करते हैं। इसलिए वन महोत्सव का शाब्दिक अर्थ एक महान वन उत्सव है जो वृक्षारोपण के केंद्रीय विषय के साथ दुनिया भर में भारतीय समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला एक आयोजन है। कुल मिलाकर वन

महोत्सव वृक्षों के लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों में अधिक सक्रिय होने के लिए प्रोत्साहित करता है और ये एक महत्वपूर्ण अवसर है अधिक वृक्षारोपण करके हम जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने में मदद कर सकते हैं। तो आइए अधिक से अधिक वृक्षारोपण करें और लोगों को वन के बारे में जागरूक करें।

0: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। अब समाचार प्रभात होंगे हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाची के साथ आज नई दिल्ली में वार्षिक शिखर वार्ता करेंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ब्याज दर 8.25% रखने की घोषणा की। केंद्र सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर नए यूजर नेम फीचर को लेकर मेटा को नोटिस जारी किया, 3 दिन के भीतर स्पष्टीकरण मांगा। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण रोकने के लिए एक स्थायी शीतकालीन प्रदूषण मास्टर प्लान की अधिसूचना जारी की। फीफा फुटबॉल विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को 3-2 से हराया और पुरुष क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच पहला T20 मैच बारिश के कारण रद्द। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाची के साथ वार्षिक शिखर वार्ता करेंगे। ये वार्ता दोनों पक्षों को आपसी हित के मुद्दों की समीक्षा तथा द्विपक्षीय सहयोग मजबूत बनाने का अवसर प्रदान करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वार्ता के बाद कुछ सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए जाने की भी संभावना है।
2: नवंबर 2024 में टोक्यो में आयोजित पहले आर्थिक सुरक्षा संवाद के दौरान भारत और जापान ने रणनीतिक सहयोग के लिए 5 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की थी। इनमें सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, फार्मास्यूटिकल्स, स्वच्छ ऊर्जा और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी शामिल है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के दौरान जापान के प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी। भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी के एजेंडे को आगे बढ़ाने का प्रमुख मंच बना हुआ है। वर्ष 2025 में आयोजित वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान जापान भारत मानव संसाधन आदान प्रदान एवं सहयोग कार्य योजना शुरू की गई। इसके तहत अगले 5 वर्षों में दोनों देशों के बीच 5,00,000 लोगों के दो तरफा आदान प्रदान का लक्ष्य रखा गया है। इसमें भारत से जापान जाने वाले 50,000 कुशल और अर्ध कुशल कर्मी भी शामिल हैं। दोनों देशों के बीच विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और अन्य वरिष्ठ स्तरों पर भी नियमित रूप से बैठकें और उच्च स्तरीय आदान प्रदान होते रहते हैं। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री तकाई जी भारत की 3 दिन की यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंची। ये भारत की उनकी पहली आधिकारिक यात्रा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज जापान के प्रधानमंत्री के साथ व्यापक विचार विमर्श से दोनों देशों की साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाने में सहायता मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत और जापान हिंद प्रशांत तथा अन्य क्षेत्रों में भी शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए साझा प्रयास जारी रखेंगे। भारत और मलेशिया ने कल नई दिल्ली में आपसी सैन्य सहयोग की समीक्षा की। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बैठक में दोनों पक्षों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और मुक्त आवाजाही को लेकर प्रतिबद्धता दोहराई। 12वीं उपसमिति की बैठक में दोनों देशों के बीच मौजूदा रक्षा पहलू, सैन्य संपर्क, द्विपक्षीय अभ्यास, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण, समुद्री तथा अन्य उभरते क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा हुई। केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफओ योजना 2026 को अधिसूचित कर दिया है। ये योजना 29 जून से प्रभावी हो गई है। नई योजना 1952 की कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम का स्थान लेगी। इस योजना का उद्देश्य डिजिटल अनुपालन को मजबूत करना, प्रशासनिक दक्षता में सुधार करना, खातों के स्थानांतरण को आसान बढ़ाना और भविष्य निधि ढांचे को नए श्रम कानून के अनुरूप बनाना है। नई योजना में अनिवार्य ईपीएफ अंशदान कर्मचारी और दोनों के वेतन का 12% बना रहेगा। केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित प्रतिष्ठानों पर मौजूदा

0: मदद मिलेगी जहां लैंडिंग के लिए पारंपरिक व्यवस्था नहीं है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर की शुरुआत करने के मामले में मेटा को नोटिस जारी किया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार सरकार ने विस्तृत जानकारी 3 दिन के भीतर उपलब्ध कराने को कहा है। एक रिपोर्ट।
1: सूत्रों के अनुसार मंत्रालय ने मेटा को यह भी निर्देश दिया है कि इस मामले पर परामर्श पूरा होने तक यूजर नेम फीचर शुरू न किया जाए। मंत्रालय ने व्हाट्सएप द्वारा की गई एक सार्वजनिक घोषणा पर संज्ञान लिया है। इस घोषणा में व्हाट्सएप ने भारत सहित वैश्विक स्तर पर चरणबद्ध तरीके से अपने यूजर नेम फीचर को लागू करने की बात कही थी। व्हाट्सएप ने बताया कि एक बार ये फीचर सक्रिय हो जाने पर पहली बार संपर्क करने वाले व्यक्ति को प्राप्तकर्ता का फोन नंबर दिखाई नहीं देगा और एक वैकल्पिक यूजर नेम को अतिरिक्त नियंत्रण के रूप में लगाया जा सकता है। ऐसी आशंकाएं हैं कि इस फीचर से ऑनलाइन धोखाधड़ी, डिजिटल अरेस्ट और साइबर धोखाधड़ी की घटनाएं बढ़ सकती हैं। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
0: ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एकीकृत रक्षा स्टाफ के प्रमुख रहे एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने कल नए वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ का कार्यभार संभाल लिया है। उन्होंने अवकाश प्राप्त एयर मार्शल नागेश कपूर का स्थान लिया है। श्री नागेश कपूर 4 दशक से वायुसेना में हैं। उनके पास 3,500 घंटे से अधिक का उड़ान अनुभव है। उधर लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन ने थलसेना उप प्रमुख का पदभार संभाल लिया है। सरकार ने विदेश सचिव विक्रम मिश्री का कार्यकाल 14 जुलाई 2027 तक के लिए बढ़ा दिया है। श्री मिश्री 1989 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एक स्थायी शीतकालीन प्रदूषण मास्टर प्लान अधिसूचित किया है। यह हर साल 1 नवंबर से 28 फरवरी तक लागू रहेगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस अधिसूचना में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के संशोधित दिशा निर्देश और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश शामिल हैं। एक रिपोर्ट।
2: नई व्यवस्था के अंतर्गत केवल वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र वाले वाहनों को ही पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और एलपीजी पंपों से ईंधन मिलेगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली के बाहर पंजीकृत BS6 से निचले स्तर के सभी मोटर वाहनों के राजधानी में प्रवेश और संचालन पर रोक रहेगी। वहीं सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहन, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, पुलिस वाहन और पर्यावरण विभाग द्वारा विशेष रूप से छूट प्राप्त श्रेणियों के वाहनों को इस प्रतिबंध से बाहर रखा गया है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि सर्दियों के दौरान अधिकृत पार्किंग स्थलों पर शुल्क दोगुना किया जाएगा। उन्होंने बताया कि निर्माण गतिविधियों, धूल प्रदूषण और खुले में कचरा या पत्तियां जलाने पर भी कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्यव्यापी विशेष भूमि मापन अभियान डीजी रोवर की शुरुआत की है। यह अभियान 15 अगस्त तक चलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल सहारनपुर में इस अभियान की शुरुआत की। झारखंड सरकार ने पूर्वी सिंहभूम जिले में मलेरिया से 4 लोगों की मृत्यु के बाद राज्य में स्वास्थ्य अलर्ट जारी किया है। सरकार ने रक्त संक्रमण से फैलने वाली बीमारियों की रोकथाम के लिए सभी उपायुक्तों को तत्काल कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। इधर स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कल दिल्ली में डेंगू की तैयारियों पर एक समीक्षा बैठक की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि राज्य और नगर निकाय डेंगू के मामलों में संभावित वृद्धि से निपटने के लिए तैयार हैं। जयपुर में 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन आज राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कारों के वितरण के लिए समाप्त होगा। ये पुरस्कार केंद्र और राज्य सरकारों तथा अन्य संगठनों द्वारा ई गवर्नेंस संबंधी उत्कृष्ट पहलों के लिए प्रदान किए जाते हैं। केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज सुबह जम्मू से श्री अमरनाथ जी यात्रा के पहले जत्थे को रवाना किया। कश्मीर घाटी के बालतल और पहलगाम दोनों आधार शिविरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु बम बम भोले के नारे लगाते हुए एकत्रित हुए। 57 दिन की ये वार्षिक तीर्थयात्रा कल से कश्मीर के दोनों मार्गों पर आधिकारिक रूप से शुरू हो रही है और 28 अगस्त तक चलेगी। ये यात्रा अनंतनाग जिले के नुनवान पहलगाम मार्ग और गांदरबल जिले के बालतल से होकर गुजरती है। तीर्थयात्रियों को केवल जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर ही यात्रा करनी होगी। मुगल रोड और धार रोड जैसे वैकल्पिक मार्गों पर तीर्थयात्रा का आवागमन वर्जित है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से पंजीकरण जारी है और यात्रा से पहले लगभग 4 लाख तीर्थयात्रियों ने पंजीकरण करा लिया है। खेलों में फीफा विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को अतिरिक्त समय में 3-2 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। यूरी

0: स्टीवेंस ने 125वें मिनट में पेनल्टी से गोल दागकर बेल्जियम को 3-2 की रोमांचक जीत दिलाई। राउंड ऑफ 32 के मैच में सह मेजबान अमरीका ने आज सुबह बोस्निया और हर्जेगोविना को नॉकआउट राउंड में 2-0 से हराकर अपनी पहली जीत दर्ज की। इस जीत के साथ ही अमरीका ने राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। अब अमरीका का मुकाबला बेल्जियम से होगा। वहीं एक अन्य मैच में कल इंग्लैंड ने कांगो को 2-1 से हरा दिया। अब 6 जुलाई को राउंड ऑफ 16 में इंग्लैंड का मुकाबला मैक्सिको से होगा। पुरुष क्रिकेट में भारत इंग्लैंड के बीच टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच कल बारिश के कारण रद्द हो गया। 5 मैचों की श्रृंखला में दोनों टीमें 0-0 से बराबरी पर हैं। बारिश के कारण इंग्लैंड अपनी पारी शुरू नहीं कर सका। श्रृंखला का दूसरा टी20 मैच शनिवार को मैनचेस्टर में खेला जाएगा। वहीं ड्यूरेंट कप फुटबॉल का 135वां संस्करण 25 जुलाई से कोलकाता में शुरू होगा। ये प्रतियोगिता 23 अगस्त तक चलेगी। मैच रांची, इम्फाल, शिलांग और गुवाहाटी में खेले जाएंगे। 2 क्वार्टर फाइनल, 1 सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले कोलकाता में होंगे। ये पहला मौका है जब ड्यूरेंट कप के मैच झारखंड की राजधानी रांची में भी रखे गए हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने सामाजिक न्याय के अग्रदूत डॉ सोनूलाल पटेल की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि डॉ सोनूलाल ने असमानता और अन्याय के खिलाफ संघर्ष का सशक्त संदेश दिया। केंद्र सरकार ने असम में हाल ही में बाढ़ से निपटने के लिए पूरे सहयोग का आश्वासन दिया है। केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कल गुवाहाटी में राज्य सरकार के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में सबसे ज्यादा प्रभावित धेमाजी जिले सहित पूरे राज्य में बाढ़ से हुए आरंभिक नुकसान का जायजा लिया। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 दिन में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान पहुंचने की संभावना है। कर्नाटक के तटीय भाग, गुजरात, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में अगले 2 दिन में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सुबह बारिश के साथ हुई। शहर के कई हिस्सों में बारिश हुई, इससे दिल्लीवासियों को भीषण गर्मी से राहत मिली। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: धन्यवाद फरहत। कमर्शियल गैस, एटीएफ राहत, पेट्रोल, डीजल और एलपीजी पर इंतजार, जुलाई के पहले सप्ताह ही जेब पर पड़ेगा अच्छा असर, राजस्थान पत्रिका की खबर है। प्रदूषण हो या ना हो, 1 नवंबर से वर्क फ्रॉम होम, दिल्ली में ग्रैब की पाबंदियां 4 महीने तक स्वतः लागू रहेंगी, हिंदुस्तान सहित सभी अखबारों की आज सुर्खी बनी है। मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी का कार्यकाल बढ़ा, उत्तर प्रदेश सरकार ने 15 जुलाई तक बढ़ाई समय सीमा, वीर अर्जुन की खबर है। दोहा में मध्यस्थों के जरिए अमरीका और ईरान में बातचीत, देश बंधु की सुर्खी है। भारत पहुंची जापान की पीएम, रणनीतिक संबंधों पर जोर, पीएम मोदी के साथ शिखर वार्ता आज, दैनिक जागरण के विदेश पन्ने की खबर है। आयात के दम पर जीएसटी संग्रह 14% बढ़ा, वृद्धि की रफ्तार 13 माह में सबसे तेज, चुनौतियों के बावजूद विदेशी उत्पादों के बम्पर आयात में जून में भरी सरकार की झोली, अमर उजाला के कारोबार पन्ने की ये खबर ध्यान खींचती है। आज और कल भी कभी भी एनसीआर में दस्तक दे सकता है मानसून, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में प्रवेश के बाद अगली मंजिल एनसीआर, हरियाणा और पंजाब, दैनिक जागरण ने यह खबर सचित्र दी है। अमर उजाला लिखता है उत्तराखंड में भारी बारिश से केदारनाथ हेली सेवा स्थगित, उड़ाने डायवर्ट, चारधाम यात्रा में कुछ ही दिनों में अंतर दिखने का समाचार दैनिक भास्कर ने आंकड़ों सहित प्रकाशित किया है। 20 दिन में बदली तस्वीर दर्शनार्थियों की दौड़ में, केदारनाथ से आगे निकला बद्रीनाथ, छोटे शहरों में ऑनलाइन खरीदारी का क्रेज, कंपनियां बढ़ा रही हैं निवेश, नवभारत टाइम्स की सुर्खी है। वीर अर्जुन ने ग्राम सभा पर अपना संपादकीय प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है गांव की लोकतांत्रिक आत्मा क्या कागजों पर सिमट रही है, ग्राम सभाएं, लेख में कहा गया है कि ग्राम सभा को विकास कार्यों के सोशल ऑडिट का वास्तविक अधिकार मिलना चाहिए। जब लोगों को दिखेगा कि उनके द्वारा किए गए ऑडिट से भ्रष्टाचार पर रोक लग रही है तो उनकी भागीदारी स्वतः बढ़ेगी।
0: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के साथ आज नई दिल्ली में वार्ता करेंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ब्याज दर 8.25% रखने की घोषणा की। केंद्र सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर नए यूजर नेम फीचर को लेकर मेटा को नोटिस जारी किया, 3 दिन के भीतर स्पष्टीकरण मांगा। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण रोकने के लिए एक स्थायी शीतकालीन प्रदूषण मास्टर प्लान की अधिसूचना जारी की।

0: First T20 international between India and England abandoned due to rain. For details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and News on AIR app. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम करकट्टा। पहले मुख्य समाचार। पूर्वी सिंहभूम जिले में मलेरिया से मौत के बाद राज्य सरकार ने स्वास्थ्य अलर्ट किया जारी। सभी उपायुक्तों को वेक्टर जनित रोगों की रोकथाम के लिए कार्रवाई के निर्देश। झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रवींद्रनाथ महतो ने कहा, राज्य में शिक्षण संस्थानों का बुनियादी ढांचा किया जा रहा मजबूत, बच्चों को स्वास्थ्य रक्षा का दिया संदेश। जमशेदपुर में चाकूबाजी कांड में फरार मुख्य आरोपी पर 2 लाख रुपए का इनाम घोषित, मृतक की पत्नी को मिलेगी नौकरी। राज्य के कई हिस्सों में आज तेज हवाओं के साथ भारी बारिश और वज्रपात का पूर्वानुमान। 8 जुलाई तक के लिए येलो अलर्ट जारी। और रांची पहली बार डोरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट की करेगा मेजबानी। 26 जुलाई से 16 अगस्त तक बिरसा मुंडा स्टेडियम में होंगे मुकाबले। और अब समाचार विस्तार से। पूर्वी सिंहभूम जिले में मलेरिया से 4 लोगों की मौत के बाद झारखंड सरकार ने राज्यभर में स्वास्थ्य अलर्ट जारी करते हुए सभी उपायुक्तों को वेक्टर जनित रोगों की रोकथाम के लिए तत्काल व्यापक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने प्रभावित क्षेत्रों में बुखार सर्वेक्षण, मलेरिया की त्वरित जांच, समय पर उपचार तथा गंभीर मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराने के निर्देश दिए हैं। अधिक प्रभावित गांवों में स्वास्थ्य कर्मियों को आरडीटी किट और मलेरिया रोधी दवाएं उपलब्ध कराने के साथ कीटनाशक छिड़काव और फॉगिंग अभियान तेज करने को कहा गया है। झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रवींद्रनाथ महतो ने कहा है कि राज्य में शिक्षण संस्थानों का बुनियादी ढांचा मजबूत करने के साथ ही आधुनिक ढंग से पढ़ाई की व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने कल जामताड़ा जिले के नाला प्रखंड अंतर्गत भंडार बेड़ा उच्च विद्यालय की चहरदीवारी और अतिरिक्त वर्ग कक्ष निर्माण का शिलान्यास किया। श्री महतो ने छात्र छात्राओं से अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए जंक और फास्ट फूड से परहेज करने की हिदायत दी।
2: कि जो लोग जंक फूड या फास्ट फूड का इस्तेमाल करते हैं वे कोई भी मेडिकल टेस्ट में सफल नहीं हो पाते, क्योंकि उस फूड को कंजम्पशन करने के बाद शरीर में कुछ कुछ ऐसा बीमारी आ जाता है जो आपको आगे का रास्ता को बाधित। इसलिए हमारे यहाँ का जो ट्रेडिशनल फूड है, चीजों का इस्तेमाल करने से हमारा सेहत के लिए भी अच्छा है।
1: दुमका के सांसद नलिन सोरेन की अध्यक्षता में जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट फंड से संचालित योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल समेत अन्य बुनियादी सुविधाओं पर चर्चा की गई। सांसद ने योजनाओं के समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन पर जोर देते हुए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। मौके पर मौजूद विधायक वसंत सोरेन ने कहा कि आगे भी कई कार्य योजनाओं पर कार्य होगा।
3: ये सारे फंड किस तरीके से किन किन चीजों में लगाए जा रहे हैं और वो इनकी जानकारी लेनी आवश्यकता थी, आवश्यक थी कि सही उपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है। देखिए, सुंदर दुमका था भी है भी और आगे के दिनों में और सुंदर बनाने का प्रयास है। काफी सारी योजनाएं अभी दुमका में चल रही हैं और आगे भी कई योजनाओं पे काम होना है।
1: झारखंड उच्च न्यायालय ने खूंटी जिले में वर्ष 2013 में पुलिस मुखबिरों की हत्या के मामले में पूर्व विधायक पॉलो सुरीन और नक्सली नेता जेठा कच्छप को बरी कर दिया है। साक्ष्यों और पक्षकारों की दलीलों के आधार पर दोनों की आपराधिक अपील स्वीकार कर ली गई। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट ने जुलाई महीने के लिए नया उड़ान शेड्यूल जारी किया है, जिसके तहत राजधानी से दिल्ली, मुंबई, बंगलुरु, कोलकाता, हैदराबाद, चेन्नई, पुणे, अहमदाबाद, पटना और भुवनेश्वर सहित 10 शहरों के लिए नियमित विमान सेवाएं उपलब्ध रहेंगी। नए शेड्यूल के अनुसार रांची से प्रतिदिन 23 नियमित उड़ानों का संचालन होगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। सीआईडी एसपी एहतशाम वकारिब को जमशेदपुर का एसएसपी बनाया गया है। वहीं मनोज स्वर्गियारी सरायकेला जिले के नए पुलिस अधीक्षक नियुक्त किए गए। गृह विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। पूर्वी सिंहभूम जिले के बिष्टुपुर थाना क्षेत्र में चाकूबाजी की घटना के मुख्य आरोपी विश्वनाथ मंडल उर्फ बोदरा की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने प्रयास तेज कर दिए हैं। पुलिस ने उस पर 2 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की है। साथ ही स्पष्ट किया है कि सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम और पता पूरी तरह गोपनीय रखा जाएगा। राज्य सरकार के निर्देश पर सरायकेला खरसावां के उपायुक्त नीतीश कुमार सिंह और कोल्हान डीआईजी अनुरंजन किस्पुट्टा ने हिमांशु हत्याकांड के पीड़ित परिवार से मुलाकात की। अधिकारियों ने परिजनों की मांगे सुनी और मामले में त्वरित कार्रवाई का भरोसा दिया। उपायुक्त नीतीश कुमार सिंह ने कहा कि मृतक की पत्नी को तत्काल राहत देते हुए आउटसोर्सिंग के माध्यम से रोजगार का ऑफर लेटर सौंप दिया गया है।
4: जो मूल बात यही थी, जो भी लोग इन्वॉल्व है उन पर कार्रवाई करने का था और सबको अरेस्टिंग मिलिट्री करने का रिक्वेस्ट था, जिस बार वो लगातार तत्पर है और इसमें यथाशीघ्र उनको अरेस्टिंग करने का प्रयास किया जा रहा है। और दूसरा था जो दिवंगत की वाइफ है उनके इम्प्लॉयमेंट से संबंधित मामला था, तो जिसमें तत्काल तौर पर हम लोगों ने आउटसोर्सिंग से इनको इम्प्लॉयमेंट का एक ऑफर लेटर दे भी दिया है और बाकी इनकी जो डिमांड है उसको हम लोग यथावत स्टेट को पूरा।
1: दुमका जिले के काठीकुंड थाना क्षेत्र के बूढ़ी डंगाल गांव में वज्रपात से 2 सगी बहनों की मौत हो गई। तेज बारिश के बीच वज्रपात की चपेट में आने से 2 की मौत हो गई जबकि 1 घायल हो गई। राज्य में मॉनसून मौजूदा स्थिति चिंताजनक है। झारखंड औसतन 54% वर्षा की कमी झेल रहा है। ऐसे में सुखाड़ की संभावना को देखते हुए कृषि विभाग ने भी तैयारी कर ली है। कृषि निदेशक विद्यानंद शर्मा पंकज ने कहा कि राहत के लिए बीज और अन्य सहायता उपलब्ध कराने की तैयारी का निर्देश दिया है।
5: अगर बारिश कम हो तो अपलाइन में हम लोग जो मिलेट्स हैं उसका प्रोडक्शन करें, हॉर्टिकल्चर में जो है क्रॉप प्रोडक्शन है उसको बढ़ावा दें। इसके लिए हम लोगों ने सीड्स का रेट भी फाइनल कर लिया है, कंपनी के साथ ऑर्डर भी दे दिया है कि अगर इस तरह की सिचुएशन आए तो किसानों को तुरंत बीज जो है उपलब्ध हो और वो खेती कर सके। केंद्र सरकार भी इस मामले में पूरी सेंसिटिव है और डीसी भी लगातार हो रही है केंद्र सरकार के साथ।
1: मौसम विभाग ने राज्य के कई हिस्सों में आज तेज हवाओं के साथ भारी बारिश और वज्रपात का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। विभाग ने 8 जुलाई तक के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। रांची पहली बार डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा। टूर्नामेंट के मुकाबले 26 जुलाई से 16 अगस्त तक बिरसा मुंडा स्टेडियम में खेले जाएंगे। रांची में लीग चरण के मुकाबलों के साथ एक क्वार्टर फाइनल भी खेला जाएगा। डूरंड कप फुटबॉल का 135वां संस्करण 25 जुलाई से कोलकाता में शुरू होकर 23 अगस्त तक चलेगा। अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित प्रमुख अखबारों ने पारा शिक्षकों के मामले में झारखंड हाईकोर्ट के फैसले की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, सरकार सख्त, व्हाट्सएप के यूजर नेम फीचर पर रोक, केंद्र ने जवाब मांगा। हिंदुस्तान के शब्द हैं, राज्य में वज्रपात से 5 की मौत, आज से भारी बारिश का अलर्ट। दैनिक जागरण ने लिखा है, ब्रेन मलेरिया को लेकर सभी डीसी को किया गया सतर्क। प्रभात खबर की सुर्खी है, हाई कोर्ट का आदेश, नियमित नियुक्ति से पहले संविदा पर दी गई सेवा भी पेंशन योग्य। और अब अंत में मुख्य समाचार। पूर्वी सिंहभूम जिले में मलेरिया से मौत के बाद राज्य सरकार ने स्वास्थ्य अलर्ट किया जारी। सभी उपायुक्तों को वेक्टर जनित रोगों की रोकथाम के लिए कार्रवाई के निर्देश। झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रवींद्रनाथ महतो ने कहा, राज्य में शिक्षण संस्थानों का बुनियादी ढांचा किया जा रहा मजबूत, बच्चों को स्वास्थ्य रक्षा का दिया संदेश। जमशेदपुर में चाकूबाजी कांड में फरार मुख्य आरोपी पर 2 लाख रुपए का इनाम घोषित, मृतक की पत्नी को मिलेगी नौकरी। राज्य के कई हिस्सों में आज तेज हवाओं के साथ भारी बारिश और वज्रपात का पूर्वानुमान, 8 जुलाई तक के लिए येलो अलर्ट जारी। और रांची पहली बार डोरंट कप फुटबॉल टूर्नामेंट की करेगा मेजबानी। 26 जुलाई से 16 अगस्त तक बिरसा मुंडा स्टेडियम में होंगे मुकाबले। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज़ और FM 100.5 मेगा हर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आज मैं आपके साथ ऋतुश्री

श्रोताओं, हम आपको बताना चाहेंगे आज रात 10:30 पर शास्त्रीय संगीत में आप सुनेंगे गिटार पर राग मिश्र गारा धुन और गिटार पर राग बागेश्वरी में आलाप और गत मध्य लय की रचना झपताल में और द्रुत लय की रचना तीन ताल में निबद्ध होगी। कलाकार होंगे पंडित विश्वमोहन भट्ट।

9:30 में आप सुनेंगे शास्त्रीय संगीत में पंडित मोर मुकुट केडिया को। इनसे हम सुनेंगे सितार पर राग अहिर भैरव में आलाप और जोड़ के पार दो गते, दोनों ही गते तीन ताल में निपत होंगी। इनके साथ तबले पर संगत करेंगे श्रीजीत चैटर्जी।

लोक रंग। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाएंगे खोटा गीत। कलाकार हैं सुकुमार और उनके साथी। तो लीजिए सुनिए ये पहला गीत।

लोकगीत के कार्यक्रम लोकरंग में आज हम सुन रहे थे खोरठा गीत। कलाकार थे सुकुमार और उनके साथी। और अब इसी के साथ हमारा आज का लोकगीत का ये कार्यक्रम लोकरंग संपन्न हुआ।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
4: जी,
3: ये KYC अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
4: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर KYC अपडेट करवाना चाहिए।
3: पर ये होगा कैसे?
4: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या ATM या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी BC के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
3: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
4: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर KYC अपडेट करवा सकते हैं।
3: बस
4: बस
3: समझ गया।
4: अपना KYC अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
5: RBI कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: और आइए अब सुने फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसरंजन। रसरंजन में सबसे पहले सुनते हैं कुमार सानू की आवाज़ में फिल्म 1942 अ लव स्टोरी का ये गाना। बोलो को लिखा है जावेद अख्तर ने, धुन तैयार की है राहुल देव परमन ने।

मैं जानती हूं वो अभिनय नहीं था, वो तुम्हारा प्यार था मेरे लिए। कितनी आसानी से कह डाली तुमने अपनी मन की बात, और मैं तो तुम्हारा नाम भी नहीं जानती।

आयु सुनी शान और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में फिल्म दिल चाहता है का ये गाना बोलो को लिखा है जावेद अख्तर ने, धुन तैयार की है शंकर एहसान लॉय ने।

फिल्म संगीत के कार्यक्रम रसरंजन में आइए अब सुनें शान की आवाज में फिल्म सांवरिया का ये गाना। समीर अंजान के बोल हैं और मोंटी शर्मा की का संगीत।

केके और अलका याग्निक की आवाज़ में अभी हम सुन रहे थे फिल्म मैं हूं ना का ये गाना। जावेद अख्तर के बोल थे और उन बोलों को सुर में पिरोया था अनु मलिक ने। आइए सुने अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज़ में फिल्म ताल का ये गाना। आनंद बख्शी के बोल हैं और एआर रहमान का संगीत।

हमारा ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र से और FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। आइए सुनिए शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम में आज हम सुनेंगे पंडित मोरमुकिट केडिया से सितार पर राग अहीर भैरव में आला पर जोड़ के बाद दो गते, दोनों ही गते तीन ताल में निबद्ध हैं। इनके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं श्रीजीत चैटर्जी।

शास्त्रीय संगीत में अभी हम सुन रहे थे पंडित मोर मुकुट केडिया से सितार पर राग अहीर भैरव में आलाप और जोड़ के बाद दो गतें, दोनों गतें तीन ताल में निबद्ध थीं। इनके साथ तबले पर संगत कर रहे थे श्रीजीत चटर्जी। अब आज का हमारा शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आइए सुने विज्ञान जगत। वाचन और सहयोग है बसंत कुमार का, प्रस्तुति है प्रभु शरण की।

नमस्कार, विज्ञान जगत कार्यक्रम के साथ एक बार फिर से उपस्थित है हम। मैं हूं बसंत और आप सभी का स्वागत है विज्ञान जगत कार्यक्रम में। तो हर बार की तरह फिर से हम नई जानकारी और तथ्यों को लेकर उपस्थित हो चुके हैं। तो चलिए सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि आज के कार्यक्रम में हम आपसे किन किन विषयों पर बात करने वाले हैं और क्या जानकारी देने वाले हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले आज हम चर्चा करेंगे एसी के उपयोग में हमें सावधानी क्यों बरतनी चाहिए इसके बारे में। इसके बाद बारी होगी भेंटवार्ता की, जिसमें आज हम तकनीकी विकास से मीडिया का बदलता स्वरूप पर बात करेंगे। इसके बाद बारी होगी वैज्ञानिकों के बारे में बातचीत करने की, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं वैज्ञानिक सर आइजक न्यूटन के बारे में। इसके बाद बारी होती है खोज और आविष्कार की, जिसमें आज हम आपको जानकारी देंगे कॉम्पैक्ट डिस्क यानी सीडी के बारे में। तो ये हमने आपको बता दिया कि आज के कार्यक्रम में हम आपसे किन किन विषयों पर बात करने वाले हैं और क्या जानकारी देने वाले हैं इसके बारे में। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं एसी के उपयोग के बारे में और इसकी सावधानी के बारे में। आज के समय में एयर कंडीशनर अर्थात एसी केवल एक सुविधा नहीं बल्कि कई स्थानों पर आवश्यकता बन चुकी है। ये हमें भीषण गर्मी से राहत देने का काम तो करता ही है, कार्य क्षमता बढ़ाने और आरामदायक वातावरण भी बनाने का काम करता है। लेकिन यदि इसका उपयोग सावधानी पूर्वक न किया जाए तो ये स्वास्थ्य, बिजली, सुरक्षा और पर्यावरण तीनों के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। सबसे पहले अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो बहुत अधिक कम तापमान पर एसी चलाना उचित नहीं माना जाता। विशेषज्ञ सामान्यतया लगभग 24 से 26 डिग्री सेल्सियस तापमान रखने की सलाह देते हैं। इससे बिजली की बचत भी होती है और शरीर पर अनावश्यक प्रभाव भी नहीं पड़ता। बाहर की तेज गर्मी से सीधे अत्यधिक ठंडे कमरे में आने या एसी वाले कमरे से तुरंत धूप में जाने से सर्दी जुकाम शरीर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है एसी की नियमित सफाई। एसी के फिल्टर और वेंट समय समय पर साफ करने चाहिए। गंदे फिल्टर धूल, बैक्टीरिया और एलर्जी पैदा करने का काम करते हैं, जिससे सांस संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। और बिजली की सुरक्षा की बात करें तो एसी को हमेशा अच्छी गुणवत्ता के वायरिंग सिस्टम की जरूरत पड़ती है। उचित अर्थिंग के साथ इसको लगवाना काफी आवश्यक माना जाता है। खराब तार, ढीले प्लग या ओवरलोड बिजली कनेक्शन आग लगने का कारण बन सकते हैं, इसलिए समय समय पर इसकी जांच करवाते रहनी चाहिए। जब आवश्यक ना हो तो एसी बंद कर देनी चाहिए। यदि संभव हो तो टाइमर या ऊर्जा बचत मोड पर इसका उपयोग करना फायदेमंद हो सकता है। बच्चों को एसी के रिमोट या बिजली के स्विच के साथ खेलने देने की जो आदत है उसे रोकना बहुत आवश्यक है। एसी की मरम्मत खुद से करने का कुछ लोग प्रयास करते हैं जो कि काफी घातक सिद्ध हो सकता है। किसी भी खराबी की स्थिति में प्रशिक्षित तकनीशियन की ही सहायता से एसी को ठीक करवाना चाहिए। कोशिश करें कि एसी का उपयोग जो है वो कम करें। हाँ, लेकिन अगर एसी का इस्तेमाल करते हैं तो सावधानी आवश्यक है। हमने एसी के बारे में बातचीत कर ली, अब आगे बढ़ते हैं और भेंटवार्ता की बात करते हैं। भेंटवार्ता में आज हम तकनीकी विकास से बदलते मीडिया के स्वरूप के बारे में बातचीत करेंगे।

0: स्टूडियो में आमंत्रित किया है रांची के बहुत ही अनुभवी सक्रिय लोकप्रिय पत्रकार अजय कुकरेती जी को। अजय जी नमस्कार।
1: नमस्कार सर।
0: वैसे तो अजय जी मुख्य रूप से खेल संपादन से जुड़े हैं और स्पोर्ट्स पर इनकी विशेष पकड़ है, लेकिन आज मीडिया के बारे में इनसे बात करें। हमारे श्रोता ये जरूर जानना चाहेंगे कि मीडिया क्या है। एक मीडिया एक ऐसा टर्म है जो कभी कभी एक कंफ्यूजन भी क्रिएट करता है कि मीडिया किसे कहते हैं, तो मीडिया है क्या?
1: जी बिल्कुल आपने सही बात कही है सर कि मीडिया क्या है। मीडिया अगर शब्द पर जाए तो मीडिया का अर्थ हुआ माध्यम। माध्यम इसका कि हमें कहीं पहुंचना है, अपनी बात को कहीं पहुंचानी है तो हम मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। तो आज हम जिस संदर्भ में यहाँ पर बैठे हैं, जिस संदर्भ में हमने बात करनी है, उस संदर्भ में अगर हम मीडिया की बात करते हैं तो वह संचार से संबंधित है और संचार के माध्यम से ही उसका तात्पर्य यहाँ पर है। और इस संचार के संबंध में सूचनाओं का संप्रेषण जो है वही यहाँ पर संदर्भ है हमारा
0: मुख्य रूप से। मतलब अगर हम ये समझें कि जिसे हम पत्रकारिता कहें, या अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचाने का जो जरिया है, आज हम उसी की बात करेंगे।
1: तो जैसे मैंने कहा कि मीडिया जो है संचार का एक माध्यम है, तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम अगर संचार की बात करते हैं, संप्रेषण की बात करते हैं, तो पहले हम कुछ चीज़ों को जमा करते हैं, उसको फिर खंगालते हैं, उसको एक अच्छा सा जामा पहनाते हैं और उसको एक प्रेजेंटेबल तरीके से प्रेषित करते हैं। किसे प्रेषित करते हैं? उसको प्रेषित करते हैं जिसको उसकी आवश्यकता होती है या जिसको उस चीज़ में रुचि होती है। तो यहीं से जो है मीडिया का संदर्भ आता है।
0: अगर हम भारत की बात कर लें तो भारत में मीडिया की वैसे तो जिस तरह से आपने परिभाषित कहा, ये बहुत पहले से चला रहा है और मैं समझता हूँ कि जब से मानव विकास करने लगा किसी न किसी रूप में सूचनाओं का आदान प्रदान होता रहा है। लेकिन आधुनिक मीडिया की अगर बात कर लें या ऐसे, तो मीडिया का इतिहास भारत में कहाँ से आप मानते हैं कि शुरू हुआ?
1: देखिए ऐसे तो मीडिया तो बहुत पहले से था, जैसे भी आपने ही कह दिया। हम अगर भारत में मीडिया समाचारों के संदर्भ में बात करते हैं तो 19वीं सदी में, और मेरे अनुसार भारत में जो मीडिया आगे बढ़ा, मीडिया की जो शुरुआत हुई, वो राष्ट्रवाद उसका मुख्य कारण रहा। उसके साथ साथ सामाजिक सरोकार, मतलब बहुत सारी कुरीतियाँ थी भारत में जिनके बारे में लोग अज्ञानी थे, उनको पता नहीं था, तो उनको जागृत करने के लिए इसका सहारा लिया गया। लेकिन हम बात यहाँ विकास के संदर्भ में करें तो वो तो एक शुरुआत की बात हो गई, और उसके बाद सामाजिक कुरीतियों के प्रति जागरूक करने के लिए, और फिर स्वतंत्रता संग्राम से लेकर जिसको हम राष्ट्रवाद के रूप में हम कह सकते हैं, मुख्य रूप से वहाँ शुरुआत उसके उसी वजह से हुई है अपने हमारे देश में।
0: जी आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर आधुनिक मीडिया की बात कर लें तो जिस तरह से जो हमारा स्वतंत्रता संग्राम लड़ा गया, और उस समय बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी, बावजूद इसके सूचनाओं को इस छोर से अलग, जो भारत एक बड़ा देश है और पूरब से पश्चिम या उत्तर से दक्षिण तक बात पहुंचानी हो, तो मीडिया की शुरुआत हम वहां से मान सकते हैं कि हमारे संचार का जो संप्रेषण था वो वहां से आधुनिक काल में शुरू मान सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि मीडिया की ये पहुंच थी, उस समय मीडिया की पहुंच थोड़ी धीमी भी थी, टेक्नोलॉजी का इसमें प्रादुर्भाव हुआ और टेक्नोलॉजी के प्रादुर्भाव के मीडिया का स्वरूप बहुत तेजी से बदलने लगा। तो अगर हम प्रिंट मीडिया की ही बात कर लें तो प्रिंट मीडिया में टेक्नोलॉजी का उसकी विकास यात्रा कैसे परिभाषित करेंगे?
1: आपने एक बहुत सही बात कही है कि उस समय रीच की बात, मतलब मीडिया की रीच की बात, जिसको हमने टेक्नोलॉजी से जोड़ा है। लेकिन उस समय ऐसा क्या था, अंग्रेजों की हुकूमत थी और अपनी बात को पहुंचाना था, तो उस समय के संदर्भ में अगर बात करें तो वो भी बहुत बड़ा सशक्त और बहुत कारगर माध्यम था उस समय, और उस समय के हिसाब से वो कम नहीं था उस परिदृश्य में, उस समय के परिदृश्य, क्योंकि उस समय बाकी चीजें तो थी नहीं, न रेडियो था, न टीवी था, न अन्य कोई माध्यम नहीं था, एक ही माध्यम था जो कि प्रिंट, जिसको हम कैसे उसी के माध्यम से हम पहुंचते थे। तो जैसा आपने ये बात कही कि तकनीक तो किसी भी चीज को आगे लेकर के जाती है, तो मीडिया इसमें कैसे अछूता रहता। तो तकनीक जब मीडिया में आई और इसका जो प्रभाव मीडिया में पड़ा, इसने प्रिंट मीडिया, फिलहाल तो हमें संदर्भ तो हमारा प्रिंट मीडिया और दौर भी प्रिंट मीडिया का ही था, तो सबसे ज्यादा प्रभाव प्रिंट मीडिया में तकनीक का पड़ा। दो तरह से मेरे अनुसार पड़ा होगा, एक तो छपाई, हम जानते हैं कि 712 ईस्वी में चीन में पहले छपाई शुरू हुई थी, उसके बाद जर्मनी में आया, उसके बाद छपाई का स्वरूप बदला। स्वरूप इस तरह से बदला कि प्रिंटिंग की जो टेक्नोलॉजी थी, पहले ब्लॉक प्रिंटिंग होती थी, उसके बाद ऑफसेट प्रिंटिंग आई, आज तो डिजिटल का जमाना आ गया, आज तो बहुत ही चेंज हो गया। आज तो ऐसा है कि अखबार अगर आप एक शहर में निकालते हैं तो दूसरे शहर में उसको प्रिंट भी कर सकते हैं, पहले तो ऐसा था नहीं। आप तो इस हिसाब से सबसे बड़ा क्या असर आया, रीच का, पहुंच का। एक तो छपाई, अगर हम अब से 10 साल या 15 साल पुराना ही अखबार आज भी देखें तो जो जिस स्वरूप में आज नजर आता है वो अखबार,

0: वो 10 साल पहले बिल्कुल ही अलग था,
1: बिल्कुल
0: कलर प्रिंटिंग उसके बाद आया। तो ये जो है दो तरह से, मेरे हिसाब से दो तरह से बदलाव बड़ा आया, एक तो छपाई में आया और दूसरा है कि प्रिंट मीडिया की पत्रकारिता में आया।
1: इससे मीडिया कर्मियों को भी बहुत सुविधा हुई होगी, क्योंकि जैसा आपने कहा कि पहले ब्लॉक प्रिंटिंग होता था, तो एक एक शब्द एक एक अक्षर को उस
0: जी
1: हिसाब से मतलब पूरे
0: चुन
1: मैनेज
0: करके
1: चुन
0: बना
1: चुन कर
0: करके,
1: मैनेज करना बनाना बहुत ही मुश्किल भरा काम था, और बहुत कंसंट्रेट करके बहुत प्रिसीजन के साथ वो काम करना पड़ता था। और जैसा कि आपने बताया कि अभी का स्वरूप देखेंगे तो बिल्कुल ही, अगर आप एक कोई भी पेज उठाकर देख लें अखबार के पत्र पत्रिकाओं के, तो 15 साल में ही इतना परिवर्तन हो चुका है कि वो साफ नजर
0: नजर
1: आता
0: आ
1: है।
0: रहा है।
1: तो आपने सही कहा कि टेक्नोलॉजी का फायदा तो स्वाभाविक तौर से हर क्षेत्र को प्रभावित किया टेक्नोलॉजी ने, मीडिया अछूता कैसे रहता। यही बात अगर हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के संदर्भ में आपसे बात करें कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में टेक्नोलॉजी ने किस तरह लोगों का जीवन परिवर्तित किया।
0: जी, मैं कहना चाहूँगा कि जब हमने बात की आज़ादी के समय की, आज़ादी के पहले की बात की मीडिया की, तो प्रिंट मीडिया ही था। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक की बात करते हैं तो हम सीधा जो बेसिक तौर पे आते हैं दो चीज़ पे, रेडियो और टेलीविज़न।
1: बिल्कुल
0: तो ये तो आज़ादी के पहले था नहीं। इसे हालांकि रेडियो का पहला प्रसारण मुंबई में 1923 में हो गया था, ऑल इंडिया रेडियो 1936 में संभवतः
1: जी
0: आ गया
1: जी
0: था।
1: जी जी
0: टेलीविज़न की बात करें तो 60s पहुँच गया, 1959 में आ गया। तो ये बहुत एक लंबा पीरियड था उसका आने का। तो अगर हम तकनीक से जोड़ते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जोड़ते हैं, तो हम बात करते हैं ब्रॉडकास्ट मीडिया की, जैसे कि रेडियो और टीवी। हालांकि उसके बाद और आयाम उसमें जुड़ गए हैं, लेकिन बेसिक रूप से तो यही दो उसमें
1: जी
0: थे,
1: जी
0: उस समय थे। तो ये जब इनका प्रवेश हुआ, तो सबसे बड़ा जो परिवर्तन आया वो आया रीच का, और ज़्यादा विस्तारित रीच उसका हो गया। इसके अलावा जो आया सबसे बड़ा परिवर्तन, वो आया इंटरनेट। जब इंटरनेट का प्रवेश हुआ तो स्वरूप ही बदल गया। इंटरनेट आया तो प्रिंट मीडिया चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो भी है, उसका स्वरूप ही बदल गया। तकनीक का प्रभाव जो है जितना प्रिंट पर पड़ा, उतना ही मेरे अनुसार जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी पड़ा। आज के दौर की बात को हम अलग रखते हैं, ये तो एक बिल्कुल दूसरा ही फेज आ गया। तो
1: बिल्कुल, अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात जब हम करते हैं तो सबसे पहला बदलाव तो रेडियो ही लाया, क्योंकि और रेडियो में भी देखिए टेक्नोलॉजी में कितना परिवर्तन आया। पहले बड़ा वो बल्ब उसमें होता था, बल्ब के साथ रेडियो आता था, वो जब हम लोग ऑन करते थे थोड़ा समय लगता था, थोड़ा समय चाहिए, उसके बाद फिर ट्रांजिस्टर आया। तो ये सारे बदलाव आपने बताया कि हाँ रेडियो और टीवी, ये दो बदलाव इलेक्ट्रॉनिक्स में मुख्य थे। अगर बिल्कुल आधुनिक काल की बात करें, अभी की बात कर लें, जैसा कि आपने बताया भाई कि इंटरनेट के बाद प्रिंट
0: क्रांति
1: और
0: आ गई।
1: इलेक्ट्रॉनिक दोनों में ही क्रांति आ गई। तो अभी तक हम लोग क्या बात करते थे कि मीडिया में मीडिया कर्मी होते थे, वो अपनी बात या लोगों की राय लोगों तक पहुंचाते थे। अब जो मीडिया आया है इंटरनेट के बाद, जैसे सोशल मीडिया है, ब्लॉग लिख सकते हैं आप, अपना वेबसाइट शुरू कर सकते हैं, कई तरह के मतलब आपके पास प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं, इसमें आप क्या कहेंगे, इसका लाभ और इसके क्या कुछ नुकसान भी हो सकते हैं?
0: जी, मुझे लगता है कि मेरा एक एक एग्जाम्पल उदाहरण में अगर इसमें दूं, तो बहुत सारी चीज़ मेरे ख्याल से साबित हो सकती है। मुझे याद है, जैसे हम दूरदर्शन की ही बात करें या आपकी बात करें, तो जैसे कोई लाइव प्रोग्राम अगर करना होता था रांची में, तो मुझे याद है कि ओबी वैन चल करके आती थी, उतना लंबा सफ़र करके रांची तक पहुंचती थी, और तब सैटेलाइट के माध्यम से हम लाइव दिखाते थे। आज क्या है, आज एक 15 साल का बच्चा है, वो फेसबुक लाइव ऑन करता है और अपना बर्थडे दिखा देता है सारी दुनिया को। तो इससे बड़ा क्रांति, इससे बड़ी बड़ा परिवर्तन और क्या हो सकता है कि एक फेसबुक और एक दो जो भी प्लेटफॉर्म आया है, हमारा मोबाइल आ गया, हमारा मोबाइल किसी चीज़ को लाइव बता देता है कहीं पर। तो इससे बड़ा और परिवर्तन और क्या हो सकता है। तो अकल्पनीय सी चीज़ थी उस दौर में, अगर मैं जाकर सोचता हूँ, जब हम देखते थे उतनी बड़ी गाड़ी चल करके 2 दिन सफ़र करके आई है और एक प्रोग्राम चल रहा है, उसको लाइव दिखाया जा रहा है। पहले क्या था, पहले एक सेटअप चाहिए होता था, एक टीम चाहिए होती थी,
1: बिल्कुल
0: एक
1: बिल्कुल
0: टीम से खूब सारा पैसा लगता था। आज आपके पास क्या चाहिए, मोबाइल, एक बड़ा सा अच्छा सा कैमरे की भी आप जरूरत नहीं रही।
1: वो मोबाइल में ही
0: अब
1: प्रवेश
0: मोबाइल से ही
1: सब
0: आप
1: कुछ है।
0: मोबाइल से अब मोबाइल जर्नलिज्म आ गया। किसी ने सोचा भी होगा क्या कभी कि हम और आप भी पत्रकार बन सकते हैं, या हम तो हैं ही, लेकिन कोई कोई साधारण सा नागरिक भी जो है वो बिल्कुल वैसे ही काम कर सकता है, उसी तरह से अपनी सूचना को संप्रेषित कर सकता है, और उसकी रीच भी दुनिया के हर कोने में, जहां तक इंटरनेट है वहां तक उसकी रीच है। तो ये तो अकल्पनीय सा विकास हुआ है।
1: बिल्कुल, टेक्नोलॉजी के प्रयोग ने कहां से कहां ला दिया मीडिया को, और हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति तक सूचनाओं के संप्रेषण से और इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से पहुंच सकता है। लेकिन इसके साथ आपको नहीं लगता कि थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ गई है? क्योंकि जब आप पत्रकारिता करते हैं या आप पढ़कर एक जर्नलिज्म कर कार्य करते हैं, तो वहां पर आप जानते हैं कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर हर हाथ में ये अस्त्र मिल जाए कि आप जो चाहें आप सूचना आप लोगों तक पहुंचा सकते हैं, तो इसके साथ कुछ ना कुछ रिस्क फैक्टर तो जरूर है। और क्या आपको नहीं लगता है कि इसके साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी समझनी चाहिए हम सभी लोगों को?
0: जी बिल्कुल, हर चीज के साथ, हर चीज के तो दो पहलू होते हैं, सिक्के के दो पहलू होते हैं, हम लोग जानते हैं। उसी तरह से कोई भी चीज, दुनिया संसार का कोई भी चीज है, उसमें अच्छाइयां होंगी तो कहीं ना कहीं उसमें बुराइयां भी होगी। तो उसमें करना क्या है, एक बैलेंस का निर्माण करना। अभी इसमें क्या हुआ, जो मैंने अभी आप बताया यूट्यूब और फेसबुक, इसमें ऐसा हो गया है कि ये कमाई का जरिया बन गया है। मतलब कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना पेज है, उनका चैनल है,
1: बिल्कुल,
0: उसके माध्यम से कर रहे हैं और उनके फॉलोअर्स हुए और उनके व्यूअर्स हुए, तो वो हजारों में ही नहीं लाखों में कमाई कर रहे हैं वो। और हम देखते हैं ऐसे कितने कितने सारे, जैसे मतलब ये झारखंड की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में, पूरे भारत में ऐसे ऐसे कई लोग ऐसे होंगे जो कि एक संपादक से ज्यादा सैलरी जो है वो कुछ भी नहीं है, ना उसके पास डिग्री है जर्नलिज्म की, ना पढ़ाई है, ना अनुभव है। उसने उठाया मोबाइल, उसने निकाला फेसबुक और उसने यूट्यूब में चैनल बनाया, कुछ ऐसी ऐसी चीजें डाली और वो हो गया। उस तरह से बहुत सारे न्यूज से रिलेटेड भी वो तो चल रहे हैं। जैसे आपने कहा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हर काम में है, आती ही है। तो अब इसमें ऐसा क्या हो गया, इसमें इसका जो दुष्प्रभाव अगर हम कहें तो क्या क्या संभावित है। एक तो है सूचनाओं की बाढ़ आ गई है, इतना ज्यादा ओवरबर्डन हो गया व्यक्ति, यहाँ से आ रहा है, वहां से आ रहा है, व्हाट्सएप से आ रहा है, हर चीज हर जगह से आ रहा है, तो उसको सतर्क रहना पड़ेगा, उसके लिए खुद को करना पड़ेगा, खुद की सावधानी, उसे क्या ले क्या नहीं ले। एक तो इसमें सबसे पहले शुचिता की बात आती है, नैतिकता की बात आती है, जो कर रहा है, जिन्होंने ये शुरू किया है, जिनका चैनल है, जो समाचार डालते हैं, जो सूचना संप्रेषित करते हैं, माध्यम उनका कोई भी हो, उनका माध्यम व्हाट्सएप हो, उनका माध्यम फेसबुक हो, उनका माध्यम यूट्यूब हो, या फिर वो किसी और संचार माध्यम से जुड़े हों, ये तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि उनका ऐसा कुछ एजुकेशन उसमें नहीं होता है, अनुभव भी नहीं होता है, आज तो सिर्फ उठाना है और शुरू कर देना है। तो एक तो उनकी तरफ से है कि उनको इसमें देखना चाहिए, ये नैतिकता तो उनमें होनी चाहिए जो कि ये कर रहे हैं। दूसरा है जो कि ग्रहण कर रहे हैं, जो प्राप्त कर रहे हैं उस सूचना को, जो कि उसमें, अब ऐसा है कि हिंदुस्तान की अगर बात करें तो जिसको हम कहते हैं कि इतना हम इस्तेमाल करते हैं इन चीज़ों को, तो एक मोबाइल की अगर बात करते हैं तो 24 घंटे में औसतन 7 घंटे और 18 मिनट एक हिंदुस्तानी मोबाइल के सामने रहता है। टीवी में भी उसका स्क्रीन टाइम है जो काफ़ी ज़्यादा है। तो अब उसको, उसके लिए क्या है, उसके लिए है कि उसको सेलेक्टिव रहना चाहिए। सूचना की अधिकता है तो छान करके उसको सूचना लेना चाहिए। विश्वसनीयता की कमी हुई है तो यहाँ पर भी उसको सावधानी होना चाहिए। तीसरा है कि ये समय बहुत ज़्यादा लेता है, हमको दूसरे काम भी करने हैं, इसमें बह नहीं जाना चाहिए। फिर उसके अलावा है कि महंगा भी है, एक अखबार तो आपको 5 रुपये का आता है, लेकिन अगर आप डाटा के माध्यम से इसे यूज़ करते हैं उससे थोड़ा महंगा भी पड़ता है। इससे एडिक्ट नहीं होना चाहिए, ये बहुत बड़ी समस्या है कि इसका एडिक्शन हो गया मीडिया का, हम लोग मतलब इस मीडिया का एडिक्शन हो गया है, इतना ज़्यादा इसमें समय करते हैं। और कहना चाहूँगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट है जिस पर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, वह है स्वास्थ्य से संबंधित, आपकी आँखों, आपके मस्तिष्क, आपकी नींद, सारी चीज़ों को भी प्रभावित करता है। और एक और है जिस पर भी ध्यान बहुत कम जाता है, डिजिटल मीडिया जैसे है, डिजिटल मीडिया का जो उपयोग है, प्रयोग है, वो किसी न किसी तरह से एक खतरा है निजता पर हमले, तो इन सब चीजों के प्रति सावधान होने की आवश्यकता।
1: बिल्कुल, ये बात आपने बहुत ही अच्छी बताई कि मीडिया तो है, कमाने का माध्यम भी बन गया है, आप रोजगार के रूप में इसे बहुत लोग ले रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही आपने जो इसके इनके लिमिटेशंस जो आपने बताए, जो कहाँ कहाँ ये नुकसान हमें कर सकता है, तो ये दोनों दोतरफा आपने बताया कि मीडिया की बाढ़ आ गई है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी भी होनी चाहिए कि किस तरह की सूचना, किस तरह का इंफॉर्मेशन हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं। सिर्फ पॉपुलर होने के लिए और कमाई का जरिया बन गया है तो ऐसी खबरें दिखाएं जिसे ज्यादा से ज्यादा लोग देख सकें, तो उससे बचना है। और आपने जो सबसे महत्वपूर्ण बात बताई, वो जो इन्फॉर्मेशन ग्रहण करता है, जो रिसीवर है इन्फॉर्मेशन का, उनकी भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि आप बचें। आपने तमाम बातें आपने गिनवाई कि स्क्रीन टाइम, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर आपका स्वास्थ्य पॉइंट ऑफ व्यू से, सब कुछ आपने बता दिया और ये भी बताया कि इसका एडिक्ट नहीं होना है, हमें कहीं ना कहीं से फिल्टर करके देखना है। मीडिया के बारे में, इसके टेक्नोलॉजी के बारे में, किस तरह से टेक्नोलॉजी ने मीडिया को ट्रांसफॉर्म किया, बदला और किस तरह से इसकी गति तेज हुई, बहुत सारे फायदे हैं लेकिन इससे बहुत सारे नुकसान भी है जिसे हमें बच के रहना है। तो अजय जी आप स्टूडियो में आए और हमारे श्रोताओं को बहुत अच्छी जानकारी दी और उनको अलर्ट भी किया इस मामले में, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।

तो अभी हम सुन रहे थे भेंटवार्ता, तकनीकी विकास से मीडिया का बदलता स्वरूप, और इस विषय पर जानकारी दे रहे थे अजय कुकृति, और उनसे बात कर रहे थे प्रभु शरण। अब बारी है वैज्ञानिकों के बारे में बातचीत करने की, और आज हम बात करने वाले हैं वैज्ञानिक सर आइजक न्यूटन के बारे में। न्यूटन का जन्म इंग्लैंड में लिंकनशायर इलाके के छोटे से गांव में उस समय जन्म हुआ था जब महान वैज्ञानिक गैलीलियो का देहांत हुआ था। जन्म के समय न्यूटन बेहद कमजोर थे और उनका वजन भी सामान्य से काफी कम था, इसलिए उनके बचने की उम्मीद भी बेहद कम थी। लेकिन विषम परिस्थितियों में भी न्यूटन जीवित रह गए। न्यूटन के पिता किसान थे और उनका भी नाम आइजक न्यूटन ही था। उनकी मृत्यु न्यूटन के जन्म के कुछ महीने पहले ही हो गई थी। जब न्यूटन 2 साल के हुए तब उनकी माँ ने पुनर्विवाह कर लिया और न्यूटन को नानी के यहाँ भेज दिया। वहीं पर रहकर न्यूटन ने अपनी प्राथमिक शिक्षा हासिल की। माता पिता का प्यार न मिलने की वजह से न्यूटन का बचपन एकांत में बीता। तुनक मिजाजी और अंतर्मुखी के तौर पर लोग उन्हें जानते थे। स्कूली पढ़ाई पूरी करने के बाद न्यूटन ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में प्रवेश पाने के लिए तैयारी की। न्यूटन को जून 1661 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के ट्रिनिटी कॉलेज में दाखिला मिल गया। न्यूटन जब ट्रिनिटी कॉलेज पहुंचे तो उन्हें फीस चुकाने के लिए अमीर छात्रों के लिए भोजन परोसने और उनके कमरों की साफ सफाई करने का काम भी करना पड़ा। एक बार न्यूटन ने विज्ञान विषय छोड़ने का फैसला कर लिया था। हालांकि बाद में गणित के प्रोफेसर आइजक बैरो के प्रोत्साहन से न्यूटन को ये आभास हुआ कि उन्हें विज्ञान के ही क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहिए। कॉलेज की लाइब्रेरी से न्यूटन ने गणित और विज्ञान के आधारभूत पुस्तकों का अध्ययन करना शुरू किया, जिससे इस दिशा में उनकी रुचि बढ़ती चली गई। उन्होंने एरिस्टोटल शिक्षा पद्धति के विपरीत आधुनिक विचारों वाले दार्शनिकों एवं वैज्ञानिकों जैसे रेने देकर्ते, गैलीलियो टाइको ब्राहे, कैपलर और कॉपरनिकस की कृतियों के अध्ययन को ज्यादा तरजीह दी। बगैर किसी विशेष प्रदर्शन के न्यूटन ने 1665 में बीए की उपाधि हासिल कर ली। उस समय किसी को इसका एहसास भी नहीं हुआ होगा कि न्यूटन आधुनिक विज्ञान के विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान देने वाले महान वैज्ञानिक बन जाएंगे। हालांकि बीए की उपाधि प्राप्त करने के कुछ महीने पहले ही आइजक बैरो के मार्गदर्शन में न्यूटन ने गणना की एक गणितीय विधि कैलकुलस की नींव रख दी थी और बाइनोमियल थ्योरम की आधारभूत व्याख्या भी प्रस्तुत कर दी थी। 1665 में इंग्लैंड में फ्लैग महामारी का तीव्र प्रकोप फैल गया। हजारों की संख्या में लोग मरने लगे। महामारी से बचाव के उद्देश्य से कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी को कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया। लिहाजा न्यूटन अपनी माँ के लिंकनशायर स्थित फार्म हाउस पर रहने के लिए चले गए। अगले 2 साल तक न्यूटन घर पर ही रहे। न्यूटन ने होम क्वारंटाइन के दौरान कई महत्वपूर्ण खोजें की, जिसने विज्ञान की दशा और दिशा दोनों बदल कर रख दी। 2 साल के क्वारंटाइन में न्यूटन ने अपने नोटबुक में लिखे विषयों पर गंभीर अध्ययन किया। कैलकुलस, गुरुत्वाकर्षण और प्रकाश से संबंधित अनेक प्रयोग और खोज किए। पेड़ से सेब गिरते देखकर गुरुत्वाकर्षण का विचार सूझने का मशहूर किस्सा उसी दौरान का है। न्यूटन इस परिणाम पर पहुंचे थे कि जो बल सेब को धरती की ओर खींचता है, वही बल चंद्रमा को पृथ्वी की ओर, पृथ्वी को सूर्य की ओर खींचता है। कैपलर के ग्रह गति के नियमों के आधार पर आखिरकार न्यूटन इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि केवल पृथ्वी ही नहीं बल्कि प्रत्येक ग्रह और ब्रह्मांड का प्रत्येक कण प्रत्येक दूसरे कण को अपनी तरफ आकर्षित करता रहता है। 2 कणों के बीच काम करने वाला आकर्षण बल उन कणों के द्रव्यमान के गुणनफल यानी कि समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत क्रमानुपाती होता है। कणों के बीच काम करने वाले पारस्परिक आकर्षण को गुरुत्वाकर्षण तथा उससे उत्पन्न बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। न्यूटन द्वारा प्रस्तावित इस नियम को न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम कहा जाता है और जिसे पूरी दुनिया के लोग जानते हैं, मानते हैं। महामारी के समाप्त होने के बाद अप्रैल 1667 में न्यूटन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी वापस लौट आए। न्यूटन को उनकी अतुलनीय प्रतिभा की बदौलत ट्रिनिटी कॉलेज का फेलो चुना गया। 1668 में न्यूटन ने एमए की उपाधि प्राप्त की। 1669 में न्यूटन को आइजक बैरो के स्थान पर गणित के ल्यूकेसियन प्रोफेसर के पद पर नियुक्त किया गया। प्रोफेसर का पद पाकर न्यूटन का भविष्य काफी सुरक्षित हो गया। अब वे तन मन से गणित और विज्ञान का अध्ययन करने लगे थे। न्यूटन का मानना था कि प्रकाश सरल रेखा में गति करता है और कण ही सरल रेखा में गति कर सकता है। सन 1693 में लंदन में बस जाने के बाद न्यूटन को खूब मान सम्मान और धन संपत्ति भी मिली। 1705 में इंग्लैंड की महारानी ने न्यूटन को नाइटहुड की उपाधि प्रदान की। न्यूटन ऐसे पहले वैज्ञानिक थे जिन्हें ये उपाधि दी।

गई थी। लगभग 85 वर्ष की उम्र में 20 मार्च 1727 को न्यूटन ने प्रकृति के रहस्यों को उजागर करने के बाद इस संसार से विदा ले लिया। न्यूटन ने इसके अलावा ऐसी बहुत सी खोजें की हैं जिसके कारण आज दुनिया भर के तमाम वैज्ञानिक उनके बताए हुए रास्ते पर चलते हुए काम करते हैं और विज्ञान के क्षेत्र में नई नई खोज कर पाते हैं। अब आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं खोज और आविष्कार में आज सीडी यानी कॉम्पैक्ट डिस्क के बारे में। बात करें कि सीडी और डीवीडीज के जमाने की, तो हम सभी ने कभी ना कभी सीडी का इस्तेमाल किया है डाटा को स्टोर करने के लिए। सीडी का पूरा फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट डिस्क, और वही डीवीडी का अगर बात करें तो डीवीडी का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वीडियो डिस्क। ये दोनों डिस्क होती हैं और इनका काम भी एक ही जैसा होता है, काम है डाटा स्टोर करना। लेकिन इनमें डाटा किसी पेन ड्राइव की तरह स्टोर नहीं होता, इनमें डाटा राइट किया जाता है। तो इनमें सिर्फ एक बार डाटा स्टोर होने के बाद में वो सिर्फ रीड किया जा सकता है, उसे डिलीट नहीं किया जा सकता। सीडी का आविष्कार अमेरिका के रहने वाले जेम्स टे रसेल ने किया था। जेम्स ने दुनिया का पहला ऐसा सिस्टम बनाया था जिसमें ऑप्टिकल ट्रांसपेरेंट फॉइल पर डाटा को डिजिटल रूप में सेव किया जाता था। जेम्स ने 1966 में अपने आविष्कार को पेटेंट कराने के लिए अप्लाई किया था और उन्हें 1970 में अपना पेटेंट हासिल हो गया। फिलिप्स कंपनी ने जेम्स के पेटेंट का लाइसेंस ले लिया उनसे और 17 अगस्त 1982 में व्यावसायिक रूप से सीडी बनने लगी और दुनिया का सबसे पहला सीडी ऑडियो प्लेयर CDP-101 सोनी कंपनी ने 1982 में लॉन्च किया, जिसकी कीमत उस समय लगभग $900 थी और वही एक कॉम्पैक्ट डिस्क की कीमत उस समय लगभग $30 थी। अगर आज के समय के हिसाब से इसे रुपए में बदल कर देखा जाए तो एक सीडी प्लेयर की कीमत उस समय लगभग 57,647 रुपए होती थी, और एक सीडी की कीमत की बात की जाए तो लगभग एक सीडी की जो कीमत थी वो 2,000 रुपए हुआ करती थी। धीरे धीरे सीडी बनाने वाली अलग अलग कंपनियां खुलती चली गईं और सीडी की कीमत की जो दर थी उसमें कमी आने लगी। सीडी की टेक्नोलॉजी अमेरिका में 1983 में आई और अमेरिका में ये टेक्नोलॉजी सबसे ज्यादा पॉपुलर भी हुई थी। लेकिन आज के इस टेक्नोलॉजी वाले युग में हर समय कुछ ना कुछ नया क्रिएट हो रहा है। अब जमाना पेन ड्राइव का आ गया है और सीडी को लोग धीरे धीरे भूलने लगे हैं, लेकिन आज भी बहुत सारी जगहों पर सीडीज और डीवीडीज का इस्तेमाल लगातार होता रहा है। हालांकि तकनीक के क्षेत्र में हमेशा परिवर्तन आते रहता है, बदलाव होते रहते हैं, तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में शायद हमें पेन ड्राइव से भी अच्छी कोई चीज मिल जाए जिसका इस्तेमाल हम अपने डाटा को, अपने फिल्मों को, अपने फोटोज को स्टोर करने में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज हमने ढेर सारी बातें, ढेर सारी जानकारियां आपके साथ साझा कर ली। तो आज के लिए बस इतना ही, और अब हमारी स्टूडियो की जो घड़ी है वो आपसे विदा लेने का इशारा कर रही है। लेकिन जाने से पहले हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि नए नए आविष्कारों की तरफ हमें आगे बढ़ते हुए अपने वर्तमान को भी ठीक रखना है और विकास को भी जारी रखना है। इसलिए आप अगर जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो मेहनत और कोशिश हमेशा करते रहें, सफलता जरूर मिलेगी। तो इन्हीं सारी बातों के साथ अब आपसे लेते हैं विदा। अगली कड़ी में हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बसंत को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

अभी हम सुन रहे थे विज्ञान जगत, हम सुन रहे थे चर्चा एसी के उपयोग में बरतें सावधानी, भेंटवार्ता तकनीकी विकास से मीडिया का बदलता स्वरूप। भेंटवार्ताकार थे अजय कुकरेती और इनसे हमारी मुलाकात करवा रहे थे प्रभु शरण। जीवन परिचय में आइजैक न्यूटन के बारे में हम जाने, खोज और आविष्कार में कॉम्पैक्ट डिस्क के विषय में हम जानकारी लिए। वाचन और सहयोग था बसंत कुमार का, कार्यक्रम की प्रस्तुति प्रभु शरण की।

मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्स और एफएम 110.5 मेगाहर्ट्स पर आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम जोहार रांची।

0: कार्यक्रम जोहार रांची में आप सभी श्रोताओं का स्वागत करती है आपकी दोस्त रचना और मेरे साथ हैं
1: ऋतुश्री। जोहार साथियों, नमस्कार रचना
0: जी। आपको भी नमस्कार और हमारे सभी श्रोताओं को भी नमस्कार, जोहार। तो दीदी कैसे हैं आप?
1: बिल्कुल ठीक हूँ रचना, तुम कैसी हो?
0: मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अभी हम देख रहे हैं कि मौसम का उतार चढ़ाव तो लगा ही हुआ है।
1: हाँ, और इस वजह से परेशानी है स्वास्थ्य संबंधी।
0: तो कार्यक्रम में हम आगे बातें करेंगे इसके बारे में भी, और बहुत सारी और भी बातें करेंगे, जानकारी भी साझा करेंगे। लेकिन सुनते हैं पहले ये गीत।

0: रचना बहुत अच्छा गाना तुमने सुनवाया। देखो रचना, कहते हैं ना कि रिश्ता चाहे कोई भी हो, सभी रिश्तों का सूत्रधार एक ही होता है, वो होता है प्रेम।
1: जहाँ प्रेम होगा वहीं भाव उत्पन्न होंगे, और जिस रिश्ते में भाव का समावेश हो वो रिश्ता कभी नहीं टूटता। इसीलिए हमें आपस में प्रेम से रहना चाहिए। ये जीवन छोटा है, उसे हमें नफरत ईर्ष्या करके नहीं बिताना चाहिए।
0: बिल्कुल, और आपस में रिश्तों को प्रेम से सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हम कुछ बातों से सहज सहन कर लेते हैं ना, तो अपना गुस्सा पी जाते हैं और छोटी छोटी बातों में अपना आपा नहीं खोते हैं, तो रिश्ते में मधुरता बनी रहेगी। इसलिए कहते हैं ना कि रिश्तों को संभालने के लिए आपस में प्रेम होना बहुत
1: जरूरी है।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: इस संदेश के बाद फिर से स्वागत है हमारे श्रोताओं का कार्यक्रम जोहार रांची में।
4: और रचना, आप बातें करते हैं मौसम की।
3: बिल्कुल, मौसम की बात करना जरूरी है क्योंकि मौसम ऐसा ही हो रहा है आजकल, कब बारिश हो जाए पता नहीं चलती।
4: हाँ बिल्कुल, और अगर बारिश नहीं हुई तो गर्मी तो बेहिसाब हो जाती है
3: और उमस भी बहुत है। तो ऐसा बताया गया है कि मानसून ने झारखंड में अभी प्रवेश तो कर लिया है और अगले 2 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट होने की संभावना है, यानी कि हमें गर्मी से थोड़ी राहत मिलने की संभावना है। और इसके बाद अगले 3 दिनों तक 4, 5 और 6 जुलाई को अधिकतम तापमान में कोई बदलाव की संभावना नहीं है।
4: हाँ, और इन राज्यों में जैसे मध्यम दर्जे की वर्षा होने की संभावना है। बता दें 2 और 3 जुलाई को रांची समेत राज्य के अधिकांश हिस्सों में मेघ गर्जन के साथ आकाशीय बिजली के गिरने और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने के को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। लातेहार, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम में भारी वर्षा होने की संभावना है। पूरे राज्य में यह स्थिति 7 जुलाई तक बनी रहेगी।
3: अगर हम पिछले 24 घंटे के मौसम की बात करें तो राज्य में कहीं कहीं हल्की और मध्यम दर्जे की वर्षा हुई है, जबकि कहीं कहीं अत्यधिक वर्षा भी हुई है। और सबसे अधिक वर्षा हुई है 84.8 मिलीमीटर पश्चिमी सिंहभूम के बारा घोड़ा में। ये बारिश जो है वो इतनी मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है। और सबसे अधिकतम तापमान 36.6 डिग्री सेल्सियस डाल्टनगंज का, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 20.5 डिग्री सेल्सियस लातेहार में रिकॉर्ड किया गया। और रांची का अधिकतम तापमान 28.4 डिग्री और न्यूनतम 22.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
4: हाँ, और फिलहाल अभी रांची का मौसम इसी तरह का रहने का अनुमान जताया जा रहा है।
3: यानी कि मौसम, अगर बारिश होगी अगले 2-3 दिनों में तो मौसम हम कह सकते हैं कि मस्ताना रहेगा।

0: इस खूबसूरत से गीत के बाद अब आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में, और अब वक्त है इतिहास में झांकने का।
1: हाँ, तो चलो इतिहास के पन्ने पलटते हैं और जानते हैं कि आज का दिन क्यों है खास, जो इतिहास के में हमेशा के लिए दर्ज हो गया
0: दर्ज
1: है।
0: हो गए। तो आज ही के दिन सन 1757 में पलासी की लड़ाई में हार के बाद बंगाल के अंतिम नवाब सिराजुद्दौला की हत्या हुई थी।
1: और 1940 में 2 जुलाई को ब्रिटिश सरकार ने सुभाष चंद्र बोस को विद्रोह भड़काने के आरोप में कोलकाता में गिरफ्तार कर लिया था। और 1940 में हिटलर ने ब्रिटेन पर हमले का आदेश देते हुए ऑपरेशन सी लायन की शुरुआत की थी।
0: और 2 जुलाई 1962 में सैम वाल्टन ने अरंकनसास के रोजर्स में अपना पहला वॉलमार्ट स्टोर खोला था, और 1979 में एक महिला का सम्मान करने के लिए पहला अमेरिकी सिक्का सुसान बी एंथनी डॉलर जारी किया गया।
1: और ये भी बता दी रचना कि 1993 में आज ही के दिन आंध्र प्रदेश के जस्टिस जरिए ओएनजीसी को कॉरपोरेशन में बदला गया था। और 1983 में स्वदेशी निर्मित परमाणु बिजली केंद्र की पहली इकाई ने मद्रास के निकट कल्पक्कम में काम करना शुरू कर दिया था।
0: और अगर 2002 की बात करें तो आज ही के दिन स्टीव फॉसेट गुब्बारे के जरिए दुनिया का भ्रमण करने वाले पहले व्यक्ति बने, और 2 जुलाई 2002 को ही हेपेटाइटिस सी की जांच को पूरे भारत में अनिवार्य किया गया।
1: और 2 जुलाई 2004 में छत्रपति शिवाजी टर्मिनस स्टेशन को एनएमए के विश्व धरोहर समिति द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया यूनेस्को के द्वारा।

0: बात कर रहे हम इतिहास
1: की, और रचना जानती हो इतिहास में कई ऐसे गुमनाम क्रांतिकारी हैं जिनके बारे में हम जानते कम जानते हैं या नहीं जानते हैं।
0: हाँ, क्योंकि उनका इतिहास में बहुत ज्यादा उल्लेख नहीं है, लेकिन उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं।
1: तो उन्हीं में से एक है असित रंजन भट्टाचार्य,
0: जिनका निधन आज ही के दिन यानी 2 जुलाई 1934 को हुआ था। वे भारत के महान क्रांतिकारियों में से एक थे और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम क्रांतिकारियों के बलिदान से भरा है, जिनमें उन्होंने चिंगारी मतलब उनकी चिंगारी से युगों को उन्होंने रोशन किया है।
1: हाँ, और ये खुद को अज्ञात रखने के पीछे ये जो असित भट्टाचार्य थे इनकी मंशा ये थी कि ब्रिटिश पुलिस से दूर रह के अपने क्रांतिकारी गतिविधियों को चलाएं और इनके परिवार पर दबाव नहीं आए, इसी कारण इतिहास में इनके बारे में बहुत कम बातें वर्णित हैं।
0: असित भट्टाचार्य प्रारंभ से ही क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़े हुए थे और क्रांति दल के सदस्य भी थे। 31 मार्च 1933 को हबीबगंज में एक डकैती हुई जिसमें असित भट्टाचार्य ने महत्वपूर्ण रूप से भाग लिया। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और हत्या तथा डकैती के आरोप में मौत की सजा सुनाई गई
1: और 2 जुलाई 1934 को सिलहट जेल में इस महान सपूत को फांसी पर लटका दिया गया। और जानती हो रचना, उस समय उनकी उम्र केवल 19 वर्ष थी और भारत माता के चरणों में ये अपने शीश का बलिदान देने वाले महान असित भट्टाचार्य भारत माता के उन लाडले सपूतों में से एक हैं जिन पर हर देशवासी को आज गर्व है।

0: अब इतिहास में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उनकी जिनका आज जन्म हुआ था। तो कालिंदी चरण पाणिग्रीह का जन्म 2 जुलाई 1901 को हुआ था। वे ओडिशा के एक प्रमुख भारतीय साहित्यकार, कवि और लेखक थे। वे आधुनिक ओडिशा साहित्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाने जाते हैं
1: और इन्हें साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा वर्ष 1971 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था।
0: और 2 जुलाई 1941 को मराठी और हिंदी फिल्मों की अभिनेत्री आशा लता बावगांवकर का जन्म हुआ था। उन्होंने कई फिल्मों में अपने शानदार अभिनय से बड़े पर्दे पर अमित छाप छोड़ी थी।
1: और ये भी बता दे रखना कि दूरदर्शन पर उन्होंने अपने कई सीरियलों से घर घर में पहचान बनाई थी। उन्हें बासु चैटर्जी की फिल्म अपने पराये के लिए फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए नॉमिनेट किया गया। फिल्म अंकुश, अपने पराये, आहिस्ता आहिस्ता, शौकीन, वो सात दिन, नमक हलाल और यादों की कसम में आशा लता ने बेहतरीन काम किया। आशा लता अभिनय के अलावा मराठी नाट्य संगीत की गायिका भी थी।
0: और ये भी बता दें कि 2 जुलाई 1954 को भारत के प्रसिद्ध पार्श्व गायकों में से एक मोहम्मद अजीज का भी जन्म आज ही के दिन हुआ था। उन्होंने हिंदी फिल्मों के साथ साथ बंगाली और उड़िया में भी गाने गाए हैं।
1: हाँ, मोहम्मद अजीज ने अलग अलग भाषाओं में लगभग 20,000 से अधिक गाने गाए। मोहम्मद अजीज ने लता मंगेशकर, आशा भोसले, कविता कृष्णमूर्ति जैसी मशहूर गायिकाओं के साथ युगल गीतों से अपनी आवाज दी।
0: और मोहम्मद अजीज ने हर सफल कंपोजर के लिए भी गीत गाए हैं। अजीज ने अंबर, मर्द, बंजारन, आदमी खिलौना है, लव 86, पापी देवता, पत्थर के इंसान, बीवी हो तो ऐसी, बरसात की रात जैसी कई फिल्मों में गीत गाए हैं।
1: हाँ, और पार्श्व गायक मोहम्मद अजीज ने अमिताभ बच्चन की फिल्म मर्द के टाइटल सॉन्ग मैं हूँ मर्द टांगेवाला से रातों रात हिंदी प्लेबैक सिंगिंग के सुपरस्टार बन गए थे। बाद में मोहम्मद अजीज ने कई फिल्मों के लिए हिट गाने गाए, जैसे लाल दुपट्टा मलमल का में मैसे मीना सेना साकी से सैकड़ों हिट गाने उन्होंने गाए हैं।
0: तो आज उनके जन्मदिन पर हम आपको सुनवाते हैं उनका गाया हुआ एक खूबसूरत सा गीत।

0: कार्यक्रम में अब आगे बात करते हैं हम वन महोत्सव सप्ताह की, जो कि 1 से 7 जुलाई तक मनाया जाता है।
1: हाँ, और रचना धरती की हरियाली, जीवन की खुशहाली और प्रकृति की अनमोल सौगात को समर्पित है वन महोत्सव सप्ताह। हर वर्ष जुलाई के प्रथम सप्ताह में ये मनाया जाता है, ये तो तुम बताई थी। और ये उत्सव जो है ना, ये हमें पेड़ों के अधिक से अधिक वृक्ष लगाने के लिए हमें प्रेरित करता है। और
0: पेड़ केवल हमें शुद्ध हवा ही नहीं देते, बल्कि वर्षा के संतुलन, मिट्टी के संरक्षण, वन्य जीवों के आश्रय और पर्यावरण की रक्षा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आज जब जलवायु परिवर्तन और बढ़ते प्रदूषण जैसी चुनौतियां हमारे सामने

0: है तब एक एक पौधा लगाना भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक अमूल्य उपहार है।
1: बिल्कुल सही। और कहते हैं कि वन महोत्सव की शुरुआत वर्ष 1950 में हुई थी और इसका उद्देश्य जन जन को वृक्षारोपण के प्रति जागरूक करना और प्रकृति के साथ हमारे संबंधों को और मजबूत बनाना था।
0: और ये भी बता दें कि इस अभियान के चलते हम इस वर्ष तो एक पेड़ माँ के नाम और आम बहार आपके द्वार जैसे कई विशेष अभियान भी इसके तहत चलाए गए थे, जिसके तहत भारी संख्या में फलदार और छायादार पौधे बांटे भी गए और लगाए भी गए।
1: हाँ, और रचना हमें ये संकल्प लेना चाहिए कि कम से कम एक पौधा अवश्य लगाएं, उसकी देखभाल करें और दूसरों को भी इस नेक कार्य के लिए प्रेरित
0: करें। बिल्कुल।
1: और ये हमें याद रखना होगा कि आज लगाया गया एक पौधा आने वाले कल की स्वच्छ हवा, ठंडी छांव और सुरक्षित पर्यावरण की नींव है।
0: ग्लोबल वार्मिंग और गर्मी से बचने के लिए भी लोगों को अधिक से अधिक पौधे लगाने तथा उनकी देखभाल करने के लिए प्रेरित होना चाहिए। आप अपने घर के आसपास या किसी सार्वजनिक स्थान पर भी फलदार या छायादार पेड़ लगाकर इस उत्सव का हिस्सा बन सकते हैं।
1: हाँ बिल्कुल। और ये है नरचना कि चलो इस संदेश के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं एक मधुर सा गीत।

0: अभी हमने वन महोत्सव की बात की कि पेड़ लगाना ज़रूरी है, हरियाली होगी इसी से, और इसी के चलते हम अब आगे भी बढ़ते हैं कार्यक्रम में।
1: हाँ बिल्कुल। और देखो रचना, प्रकृति के निकट जाने का सबको बहुत मन करता है और वहां जाकर हमें बहुत सुकून भी मिलता है।
0: सही बात है, शांति मिलती है आपको, और ये आजकल के जीवन में हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है।
1: बिल्कुल। तो पर्यटन प्रेमियों के लिए के एक छिपा गहना जो है ना, वो है दार्जिलिंग का मिरिक।
0: बिल्कुल, शांत वातावरण, सुंदर झील व चाय बागान और हिमालय की बर्फीली चोटियां हर किसी का मन मोह लेती हैं। तो
1: हाँ
0: ये है बंगाल में दार्जिलिंग जिले की हरी भरी वादियों में बसा मिरिक। पूरी दुनिया में दार्जिलिंग जो है वो दार्जिलिंग की चाय, वहाँ की टॉय ट्रेन और पहाड़ों की ख्याति है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में मिरिक ने भी पर्यटन मानचित्र पर अपना जो है वो अलग पहचान बनाई है।
1: हाँ यहाँ का शांत वातावरण, सुंदर झील और चाय बागानों से घिरा ये जगह देश विदेश के हजारों पर्यटकों को अपनी ओर खींच रहा है। यही कारण है कि दार्जिलिंग आने वाले काफी पर्यटक मिरिक भी जा रहे हैं। और मिरिक समुद्र तल से लगभग 1495 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ के मुख्य आकर्षण सुमेंदु झील है, इसे मिरिक झील भी कहते हैं। ये लगभग 1.25 किलोमीटर लंबी मानव निर्मित झील है। इसके एक तरफ देवदार के घने जंगल हैं तो दूसरी तरफ खूबसूरत से बगीचे हैं।
0: और झील के बीच से में 80 फीट लंबी इंद्रेणी पुल भी है। ये पर्यटकों के लिए फोटो स्पॉट का एक प्रमुख केंद्र है। आप यहाँ पर बोटिंग के अलावा घोड़े की सवारी और झील के किनारे भी टहल सकते हैं, और साफ मौसम में कंचनजंगा की बर्फीली चोटियों का प्रतिबिंब झील में दिखाई देता है। और जब ये झील में दिखाई देता होगा तो वाकई वो जो दृश्य है बहुत खूबसूरत होता होगा।
1: हाँ, और यहाँ के टिंगलिंग व्यू पॉइंट से हिमालय की चोटी और भारत नेपाल सीमा का नजारा हर किसी का मन मोह लेता है रचना। और मिरिक में चाय के साथ ही संतरे की खेती भी बड़े पैमाने पर होती है। यहाँ संतरे के काफी बाग हैं, पर्यटक संतरा बागान भी जाते हैं। संतरे से लदी डालियों को देखकर वो प्रकृति के करीब से महसूस करते हैं।
0: और अगर समय मिलने पर जो है आप मिरिक से 20 किलोमीटर की दूरी पर मकई बाड़ी चाय बागान भी जा सकते हैं। यहाँ विश्व प्रसिद्ध दार्जिलिंग चाय की चुस्की लेने के साथ साथ ही चाय पत्ती तैयार किए जाने की प्रक्रिया भी आप देख सकते हैं।
1: हाँ, और इसे देखने से हमें एक नया अनुभव मिलता है और जंगल से गुजरना भी एक बहुत ही मनोरम अनुभव देता है। मिरिक पहुंचना बहुत आसान है। निकटतम हवाई अड्डा बागडोगरा है। यहाँ से मिरिक मात्र 50 किलोमीटर दूर है। वहाँ से टैक्सी या प्रीपेड कैब द्वारा करीब 2 घंटे में मिरिक पहुंचा जा सकता है। निकटतम रेलवे स्टेशन न्यू जलपाईगुड़ी और सिलीगुड़ी जंक्शन है। यहाँ से भी मिरिक की दूरी करीब 50 किलोमीटर ही है। इसके अलावा सड़क मार्ग से दार्जिलिंग से मिरिक की दूरी 49 किलोमीटर है। करीब 2 घंटे का सफर है। सिलीगुड़ी से भी 1.5 घंटे में यहाँ पहुंचा जा सकता है। और यात्रा के दौरान चाय बागानों और पाइन जंगलों से होकर गुजरना बेहद मनोरम अनुभव देता है। और यहाँ जब हम घूमने जाते हैं तो हमें एक अलग तरह का अनुभव होता है।
0: हाँ, तो अगर आप भी घूमना चाहते हैं तो आप एक बार यहाँ पे ज़रूर जा सकते हैं। दार्जिलिंग तो आप जाते ही हैं, दार्जिलिंग के साथ साथ आप मिरिक का प्लान भी कर सकते हैं।
1: बिल्कुल।
0: और यहाँ की जो है वो वादियों, बर्फीली चोटियों का, सुंदर झील का, चाय बागान का आप आनंद ले सकते हैं।

0: रचना, अब हम
1: जी
0: बातें करते हैं। इन दिनों तुम देखोगी बहुत सारे लोग जो है ना वो स्किन, त्वचा संबंधी रोगों से, स्किन एलर्जी बोलो, उससे बहुत परेशान से
1: परेशान रहते
0: हैं।
1: हैं, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इतनी तेज धूप होती है और उमस होती है,
0: हाँ,
1: इसके चलते जो है वो संक्रमण की समस्या
0: बढ़
1: बढ़
0: जाती
1: जाती
0: है।
1: है।
0: तो इस दौरान हमें थोड़ी सी सतर्कता जो हम अगर बरतेंगे ना, तो ये स्किन एलर्जी से हम बचे रहेंगे।
1: बिल्कुल सही है। अभी जैसे हम बोल रहे हैं कि मानसून की दस्तक हो चुकी है, तापमान में बार बार उतार चढ़ाव हो रहे हैं, बारिश, पसीना और फिर शरीर पर लंबे समय तक भीगे हुए कपड़े के रहने से स्किन संक्रमण होने की आशंका काफ़ी बढ़ जाती है। नमी और पसीने के चलते शरीर से लेकर सिर की त्वचा या स्कैल्प में चिपचिपापन, जलन और बालों में रूसी, रैशेस, खुजली महसूस होने जैसे परेशानी जो है वो बढ़ जाती है।
0: हाँ, और इस वजह से हमें सफाई और त्वचा की सही ढंग से देखभाल करना बहुत ज़रूरी है। तो देखो, सबसे पहले तो हमें खान पान का ध्यान रखना होगा। स्वस्थ त्वचा के लिए भोजन में एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर खाद्य पदार्थ का हमें उपयोग करना होगा। जैसे संतरे, बादाम और बेरी जैसे फलों में ये हमें
1: मिल
0: आसानी से
1: जाएंगे,
0: मिल जाते हैं।
1: बिल्कुल। दही, छाछ, लस्सी का सेवन करना चाहिए, ये प्रोबायोटिक्स से भरपूर होते हैं और प्रोबायोटिक्स आंत के स्वास्थ्य को संतुलित रखते हैं। ये सूजन और एक्जिमा, मुहासे संबंधी समस्याओं को भी कम करते हैं।
0: हाँ, और अगर हमें बाहर का खाना खा रहे हैं तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि तले हुए खाद्य पदार्थ हमें नहीं लेने चाहिए। ये रोम छिद्रों को बंद कर सकते हैं, और अच्छी तरह से पके हुए स्वच्छ भोजन का ही हमें चुनाव करना चाहिए। और हाइड्रेशन सही रखना
1: हाँ, ये
0: चाहिए,
1: जरूरी है
0: इलेक्ट्रोलाइट्स
1: सबसे।
0: की कमी नहीं
1: नहीं
0: होनी
1: नहीं
0: चाहिए।
1: विटामिन सी और बीटा कैरोटीन युक्त खाद्य पदार्थ का हमें सेवन करना चाहिए, इससे त्वचा जो है वो स्वस्थ रखने में हमें मदद मिलेगी। और ये भी जानना ज़रूरी है कि कमर, पैर, बगल के हिस्से जो अक्सर गीले रह जाते हैं, नहाने के बाद इन्हें अच्छी तरह सुखाना हमें चाहिए।
0: हाँ बिल्कुल। और देखो, उमस भरे मौसम में घमौरिया एक आम समस्या है। ये त्वचा के छोटे छोटे छिद्रों में गंदगी के जमा होने से होती है। यदि ये अधिक लाल है, वह बहुत खुजली होती है, तो तुरंत हमें चिकित्सकीय परामर्श लेना
1: लेने
0: चाहिए।
1: चाहिए, और इस समय हमें ढीले ढाले सूती कपड़ों का प्रयोग करना
0: हाँ
1: चाहिए। ये त्वचा के रोम छिद्रों को बंद होने से रोकते हैं और ये हवादार होते हैं, जिससे कि पसीना आसानी से सूख जाता है। तो इस मौसम में हमें ये सब समस्याएं झेलनी पड़ती हैं, तो आप इन सब चीज़ों का ख्याल ज़रूर रखें। तो देखिए, कार्यक्रम में समय हो चुका है हमें आपसे विदा लेने का। बातें करते करते हम कार्यक्रम के
0: हाँ
1: अंतिम क्षण में पहुंच चुके हैं, तो हम आपसे लेते हैं विदा। रचना,
0: और ऋतुश्री को दें इजाजत।
1: इजाजत,
0: जोहार,
1: नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: सेना।
1: इस संदेश के बाद आप सबका स्वागत है कार्यक्रम आपकी पसंद में। आपकी पसंद में आपको पहला गीत हम सुनवा रहे हैं, सलामे इश्क फिल्म का। इस गीत को गाया है शिल्पा, शंकर महादेवन और लॉय मेंडोसा ने। गीत के बोल लिखे हैं समीर ने और संगीत दिया है शंकर रहशान लॉय ने। सुनना चाहा है कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबिहा निवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय, प्रांजल राय, भटिंडा रोड डब्वाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग और मोहित नारंग।

अगले गीत के लिए फरमाइश आई है छत्तीसगढ़ भाटापारी दंतरेगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, जावेंद्र कुमार वर्मा, छत्रपति संभाजीनगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और श्रीमती शीतल राजेश, ये सब सुनना चाहते हैं आजा नचले फिल्म का ये गीत। आवाज़ें हैं सोनू निगम और श्रेया घोषाल की, पीयूष मिश्रा के बोल हैं, सलीम सुलेमान का संगीत है।

आपकी पसंद में अब अगला गीत आपको सुनवाते हैं स्टूडेंट ऑफ द ईयर फिल्म से। गायक कलाकार हैं शेखर रवजियानी, सलीम मर्चेंट और नीति मोहन। गीतकार हैं अनविता दत्त और संगीतकार हैं विशाल शेखर। सुनना चाहते हैं गोंदा टाउन काके रोड रांची से रमेश प्रसाद जायसवाल, भीम सिंह, सिद्धि जायसवाल, अनुप्रिया भगत। कोल सिटी बरकाखाना से अफसाल ताज, सहीन सुल्ताना, सोनू तस्नीम, मोहम्मद अफसाल इब्राहिमी। आप हैं महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारनी ठाकुर, सूरज ठाकुर, सुजला ठाकुर, ज्योति ठाकुर और रियांश ठाकुर।

अगला गीत सुनना चाहे गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयनंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज प्रमोद, रोहित मोहित, ग्राम बड़बुड़ुआ पथरिया से नरेन नेताम, कुसुम नेताम, प्रोनिका प्रोनामिका, उत्कर्ष नेताम, आप है बड़ा बाबू सुपाईसाई से देवेंद्र ताती, राकेश ताती, कुमारी निशा, प्रकाश ताती, ललित प्रधान और देवेन, चक्रधरपुर ग्राम गेलिया लोहर से कोमल बेसरा, बसंती, अनु बनमाली, सिद्ध कुमारी और पूजा, बाबा बैजनाथ धाम से मनोज केशरी, पूजा केशरी, महादेव केशरी, श्रद्धानंद केशरी, प्रतीक प्रज्ञा, आप हैं आशा रेडियो श्रोता संघ मेहरनगर उमेरखंड महाराष्ट्र से अभिजीत गणवानकर राही, श्रीमती सरिता गणवानकर, सिद्धांत गणवानकर, प्रिंस एकांश गणवानकर, आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से शैलेश गणवानकर, वैशाली गणवानकर, श्वेता सुमित गणवानकर और कुमारी ध्वनि गणवानकर, ये सब सुनना चाहते हैं कृष्णी फिल्म का ये गीत। आवाजें हैं अलीशा चिनाय और जुबीन गर्ग की, समीर अंजान के बोल हैं, राजेश रोशन का संगीत है।

0: गृहलक्ष्मी सुनने वाली हमारी सभी श्रोता बहनों को निधि का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है बहनों आप सबका हमारे कार्यक्रम में, और आज मेरे साथ है लता।
1: तो बहनों स्वीकार कीजिए मेरा भी प्यार भरा नमस्कार। मैं हूँ आपकी सखी लता, और आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगी, प्रसन्न होंगी, और हम एक बार हमेशा की तरह हाजिर हैं आपके अपने कार्यक्रम को लेकर। तो सुनिए हमारे साथ गृहलक्ष्मी।
0: हाँ, और हमारी जो बहनें हैं लता, वो इंतज़ार तो करती ही होंगी हमारे प्रोग्राम की, हमारे कार्यक्रम की। और कारण ये भी है कि वो व्यस्त बहुत रहती हैं, और इसका एक और कारण है कि वो पूरे घर की देखभाल करती हैं, है ना, और सभी लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के अलावा एक बहुत जो महत्वपूर्ण कर्तव्य है वो हमारी बहनें निभाती हैं, और वो है रिश्तों में सामंजस्य बनाए रखना। क्यों, तुम्हें नहीं लगता?
1: बिल्कुल निधि, बिल्कुल लगता है, क्योंकि महिलाएं ही होती हैं बहनों जो सभी की भावनाओं का सम्मान करते हुए सबको जोड़ कर रखती हैं। हमारी बहनें जीवन के सभी उतार चढ़ाव के दौरान अपना धीरज जो है वो हमेशा बनाए रखती हैं।
0: हाँ लता, और परिवार में कई मतभेद या मनमुटाव तो होते ही रहते हैं, है ना, हर परिवार में ये होता है, लेकिन अंत में हम देखते हैं कि परिवार की जो स्त्रियाँ होती हैं उनकी ही समझदारी काम आती है। और स्त्रियों में वो गुण होता है कि रिश्तों को ऊपर रखती हैं, और रिश्तों को ऊपर रखते हुए बहुत सारी बातों को स्वीकार कर लेती हैं, बहुत सारी बातों को नजरअंदाज भी कर देती हैं, तो इसे हम उनका त्याग भी कह सकते हैं।
1: हाँ निधि, आमतौर पर वे अहंकार को अपने ऊपर हावी नहीं होने देती। पुरानी बातों को भुला देना, लोगों को क्षमा कर देना और रिश्तों को बांध कर रखना, एक सूत्र में पूरे परिवार को बांधकर चलाना, ये तमाम जो विशेषताएं हैं वो हम महिलाओं की हैं।
0: सही कहा लता, और महिलाएं विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य रखती हैं। यही कारण है कि जीवन के सभी उतार चढ़ाव से गुजरते हुए भी रिश्तों को जोड़कर वो रख पाती हैं।
1: और सिर्फ अपने जीवन में ही नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ी में भी वे इस संस्कार की जो है वो नींव डालती हैं।
0: बिल्कुल सही कहा।
1: हाँ,
0: और आज का जो आधुनिक युग है लता, तो उसमें ये जो रिश्तों को संभालने वाली बात है ना, ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण हो गई है, क्योंकि हमारी जो महिलाएं हैं वो दोहरी भूमिका में आ गई हैं, है ना, घर भी उन्हें देखना होता है, घर में भी उनकी भूमिका होती है, और बाहर की भी जिम्मेदारी वो निभाती हैं, तो उनके ऊपर जिम्मेदारी और भी आ गई है, लेकिन इसके बावजूद भी वो रिश्तों को निभाने का जो कर्तव्य है ना, वो हमेशा उसे निभाने के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं।
1: बिल्कुल, और ऐसे में अगर वे रिश्तों को भी सहेज कर रखती हैं तो ये वाकई सराहनीय बात होती है। घर परिवार में ऐसे अनेक अवसर आते हैं जैसे शादी ब्याह उत्सव वगैरह, तो इन सभी जो सभी चीज़ों के लिए, इन सब के लिए उन्हें व्यस्त रहने के बावजूद समय निकालना पड़ता है, जो हम महिलाओं के लिए बहुत बड़ी चुनौती होती
0: है। और सभी उनसे आशाएं रखते हैं लता, तो सभी की आशाओं को वे पूरा भी कर लेती हैं, सबसे आश्चर्य की बात है। और अपने बच्चों को, खासकर जो बेटियां होती हैं परिवार में, उन्हें भी यही शिक्षा देती हैं ताकि वे भी इस परंपरा को कायम रख सकें। तो तुमने देखा होगा कि अगर लड़कियां जिस तरह के परिवार से आती हैं, तो उन्हें रिश्ते संभालने का जो तजुर्बा होता है वो बचपन से ही वो देखती आती हैं, अपनी माओं को देखती हैं, है ना, तो इसका श्रेय माताओं को जाता है।
1: सच, अगर स्त्रियों में इतना धैर्य और त्याग न हो तो रिश्ते बिखरने लगेंगे, है ना।
0: बिल्कुल,
1: हम स्त्रियों के इस योगदान के बिना इन संस्कारों की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं।
0: हाँ, बिल्कुल सही बात बताई तुमने। और लता, अब बहनों को इंतजार होगा मनोरंजन का, है ना।
1: हाँ बिल्कुल, बातें तो होती रहेंगी।
0: बिल्कुल,
1: तो चलो बहनों के साथ सुनते हैं खूबसूरत सा गीत।

0: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
1: आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: तो बहनों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम गृहलक्ष्मी में। और अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और जहां हमें लेकर के जाएंगी निधि।
4: तो बहनों, प्रस्तुत है भेंट वार्ता। आज का विषय है पारिवारिक और सामाजिक अपेक्षाओं के साथ सामंजस्य बैठाती स्त्री। और आज की हमारी मेहमान है प्रीति सिन्हा, इनसे बातें कर रही है लता। तो आइए सुनते हैं ये भेंट वार्ता।
3: भारतीय समाज में स्त्री परिवार और समाज की महत्वपूर्ण आधारशिला मानी जाती है। वह बेटी, बहन, पत्नी, माँ और पेशेवर के रूप में अनेक भूमिकाएं निभाती हैं। इन भूमिकाओं के साथ साथ उस पर परिवार और समाज की अनेक अपेक्षाएं भी जुड़ी होती हैं। एक ओर वह अपने सपनों और आकांक्षाओं को पूरा करना चाहती है तो दूसरी ओर पारिवारिक दायित्वों और सामाजिक मान्यताओं के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास करती है। पारिवारिक और सामाजिक अपेक्षाओं के साथ सामंजस्य बिठाती स्त्री विषय पर आज हम बात करने जा रहे हैं। और इसके लिए आज हमारे बीच है आज की हमारी खास मेहमान प्रीति सिन्हा जी, जो एक समाज सेविका है और समाज सेविका के साथ साथ एक प्रशिक्षिका भी है। महिलाओं को सशक्त बना रही हैं, बच्चों को भी हुनर सिखा रही हैं।

0: कई संगठनों से जुड़ी हैं। प्रीति जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद लता जी, आप मुझे इस प्रोग्राम के लिए आमंत्रित की, इसके लिए बहुत बहुत बहुत शुक्रिया। और सभी बहनों को जो आज सुन रही हैं इस प्रोग्राम को, उन्हें मेरा नमस्कार, जोहार। मैं रांची में रहती हूँ और मैं कोशिश करती हूँ कि सोशल वर्क बहुत ज्यादा करूँ और इससे मुझे काफी संतुष्टि मिलती है।
0: बहुत खूब प्रीति जी, जैसा कि आज हम अपने कार्यक्रम में इन्हीं मुद्दों को लेकर के, इन्हीं विषयों पर आज हम बात करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि पारिवारिक और सामाजिक अपेक्षाएं स्त्री के जीवन को किस प्रकार प्रभावित करती है।
1: बहुत ही अच्छा सवाल लता जी, क्योंकि ये सारी चीजें तो बहुत ज्यादा होती हैं। तो पारिवारिक और सामाजिक अपेक्षाएं स्त्री के जीवन का बहुत प्रभावित करती हैं। परिवार और समाज अक्सर उनसे घर की जिम्मेदारियां निभाने, परंपराओं को पालन करने और दूसरों की अपेक्षाओं को पूरा करने की बहुत ज्यादा उम्मीद करते हैं। इससे उनका अपने शिक्षा, करियर, स्वतंत्रता पर प्रभाव भी पड़ता है। यानी कि अगर स्त्री पढ़ी लिखी है, किसी भी क्षेत्र में वो पूरा संपूर्ण अपने कोर्स को की हुई है, तो कभी कभी क्या होता है कि इतने सारे पारिवारिक का सामाजिक अपेक्षाएं उन्हें निभानी पड़ती है कि उन्हें मुश्किल होती है, पर इन सब से वो लड़के फिर भी आगे बढ़ती हैं और वो अपने जीवन में अधिक से अधिक आत्मनिर्भर बन जाती हैं।
0: बहुत खूब मैम, बहुत खूब जवाब। मैम, स्त्री के लिए परिवार और करियर के बीच संतुलन बनाना क्यों चुनौतीपूर्ण होता है?
1: बहुत ही ज्यादा चुनौतीपूर्ण है ये एक स्त्री के लिए। तो मुझे लगता है कि ये बहुत मुश्किल होता है संतुलन बनाना, और इसे संतुलन बनाकर चलना एक स्त्री के लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। मैं खुद भी जब काम के लिए निकली थी तो मेरे दो बच्चे छोटे थे, तो उन्हें संभालना, घर भी देखना, तो हर एक स्त्री को मेरे ख्याल से ये करना चाहिए कि अगर आप काम कर रही हैं तो ये नहीं सोचना है कि बस मैं बाहर ही काम कर रही हूँ। आपको परिवार को भी देखना है, घर को भी देखना है, बच्चे को देखना है और अपने करियर को भी आगे बढ़ाना है। नहीं तो फिर क्या होगा कि आप करियर खुद का तो बना लेंगे पर आपके बच्चे, पति सब इग्नोर होंगे, घर में जितने फैमिली मेंबर हैं वो इग्नोर होंगे, तो फिर वो पसंद नहीं करेंगे कि आप काम करो। तो इससे अच्छा है कि स्त्री को हर चीज निभाते हुए करे, तो वो क्या होता है, एक संतुलन बनाए रखता है और उन्हें फिर मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा नहीं रोका जाता है। बट अगर आप एक तरफा काम करेंगे केवल कि मैं तो जो हूं सो हूं, तो फिर यहाँ पे मुश्किल आती है।
0: बिल्कुल सही, दोनों तरफ सामंजस्य बिठा कर चलना ही हम महिलाओं की जो है वो भूमिका है। अगला सवाल इसी से जुड़ा है मैम, कि बदलते समाज में महिलाओं की भूमिका में क्या परिवर्तन आए हैं?
1: काफी परिवर्तन आए हैं आज के समय में। तो मुझे लग रहा है कि मैं जब से मतलब देख रही हूँ अपने लाइफ को, जो मैंने स्ट्रगल करके आगे बढ़ाया, और अभी के समय में तो काफी बदलाव आया है, बहुत परिवर्तन आया है। आज महिलाएं हर क्षेत्र में सक्रिय भागीदारी बन गई हैं, हर एक काम को स्त्री निभा रही हैं और अब पारिवारिक दृष्टिकोण से भी बढ़ावा मिल रहा है। पहले क्या था कि नहीं, स्त्री है तो बस वो चूल्हा चौका तक ही रह जाती थी, बच्चों को संभालिए और घर को देखिए, उन्हें परमिशन नहीं मिलता था, ज्यादा काम के लिए मिलता ही नहीं था। लेकिन अब क्या है ना, अब तो हर एक क्षेत्र में देखिए ना, स्त्री कहाँ पीछे है, पायलट बन रही है, ट्रेन चला रही है, कुछ नहीं तो घर में ट्यूशन पढ़ाकर भी आत्मनिर्भर बन रही है। और कितना ही अच्छी बातें अब तो हो गई है, आप एक कहते हैं ना क्लाउड किचन, तो घर में खाना बनाइए, घर के जैसा खाना खाने को ना बहुत लोग ये डिमांड होता है। खास करके बाहर शहरों में उन्हें मन मुताबिक खाना नहीं मिलता है, तो अभी क्या कर रही हैं महिलाएं, मैंने काफी महिलाओं को देखा है कि वो घर में सिंपल खाना बनाती हैं। आज कोई भी महिला ये काम कर सकती है, अगर वो गांव की हैं, कहीं भी हैं, तो आप अपना छोटे से किचन में, मैं नहीं बोलती कि बड़ा सा आपको रेंट पे लेना है, क्योंकि ये बहुत संघर्षपूर्ण होता है कि कहीं भी आप रेंट दो उसको पूरा करो तो फिर कुछ बचता नहीं, बचता है। तो इससे अच्छा है कि आप घर पे ही क्यों ना हम लोग एकदम शुद्ध खाना बनावे और उन्हें दे और वो पसंद करते हैं।

0: जैसा कि कभी कभी हमें खुद जरूरत पड़ती है
1: बिल्कुल
0: उस समय लगता है कि कोई तो मुझे घर का खाना दे।
1: हाँ
0: तो इसीलिए मैं मेन खाना पे इसलिए फोकस की कि स्त्री के पास कुछ हो ना हो हाथ का हुनर तो बहुत ज्यादा है
1: हाँ
0: और ये नित्य दिन का कार्य है। तो लता जी मेरे को लगता है कि हर एक स्त्री को, मैं कहीं भी अगर कुछ जाती हूँ और
1: हाँ
0: बोलती हूँ तो एक लाइन में ये अवश्य कहती हूँ कि हर एक स्त्री को आत्मनिर्भर बनना बहुत आवश्यक है, ताकि आपको कभी किसी के अंदर में आप रहो लेकिन प्रति की बात मानो, बट आप कुछ कार्य करके पैसे भी अर्निंग करो, तो
1: हाँ
0: ये और प्लस हो जाता है ना, बहुत अच्छा होता है।
1: बिल्कुल, बहुत खूब मैम, बहुत खूब आपने जवाब दिया। मैम, परिवार और समाज स्त्री के प्रति समानता का व्यवहार कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं?
0: हाँ, यहाँ पे तो कहावत है ना कि हमारी दुनिया काफी बदल गई, अब तो लड़कियों को काफी छूट मिल गया, पर मेरे दृष्टिकोण में अभी भी लड़कियां अगर काम करती, महिलाएं काम करती हैं, तो पुरुष के नजर में कभी कभी ऐसा होता है कि अरे ये क्या कर लेंगी, ऐसी बातें नहीं है। एक स्त्री क्या नहीं कर सकती है, हर काम तो स्त्री कर रही है। तो मेरे ख्याल से लड़के लड़की को बराबर का अवसर अभी और देना होगा, क्योंकि अभी भी समाज में लड़कियों को उसी नजर से देखा जाता है। लैंगिक भेदभाव हटाना होगा, ये बहुत जरूरी है, और उन्हें एक चीज से बहुत हटाना होगा लड़कियों को, आप प्रोटेक्शन रखिए, आप लड़की हैं तो हमें अपनी हिफाजत करनी है। एक डर हमेशा रहता है, इस डर अगर हट जाए ना हमारे भारत से, तो शायद लड़कियां स्वतंत्र होकर और भी काम कर सकती हैं। होता क्या है, रात में आजकल लेट नाइट तक होती है ड्यूटी, तो वो
1: बिल्कुल
0: सब के लिए हम अभिभावक जैसे होते हैं। मैं खुद अपनी बेटी के लिए बहुत चिंतित रहती थी कि नहीं नहीं उसे टाइम से आना है, तो मैं उसे इग्नोर नहीं कर सकती थी, यानी कि पूरा ध्यान देती थी कि उसे टाइम पे जाना है। और आजकल तो काफी सारे रूल बन गए हैं, मोबाइल नंबर है, काफी कुछ है, अगर आप कैब में बैठते हैं सुन ही रहे हैं, एक से एक कांड हो रहा है। तो
1: बिल्कुल
0: इसमें और अगर सुधार हो जाए ना, तो हमारी बच्चियां बहुत निर्भीक होकर काम करेंगी। तो ये लैंगिक वाला जो है ना, ये इसे समाज को और भी दूर करना होगा, इस खौफ से हटाना होगा।
1: वाह, बहुत खूबसूरत जवाब मैम। मैम, आधुनिक समय में स्त्री के सामने कौन सी नई चुनौतियां और अवसर हैं?
0: देखिए, चुनौतियां तो हर क्षेत्र में हैं, हर कार्यस्थल पर प्रतिस्पर्धा, सुरक्षा और परिवार करियर का संतुलन, इतनी सारी बातें होती हैं एक स्त्री के लिए। वहीं पुरुष को कोई इतना नहीं पूछता है, वो काम कर रहा है, मतलब कि वाह क्या बात है, वो तो चलिए एक शुरू से ये भी चला है कि पुरुष प्रधान, वो काम काम करेंगे, कमा के देंगे स्त्री को और स्त्री घर पे खाना बनाएंगी। बट अब तो वो समय गया, वो तो नहीं है। और मुझे इसमें बिल्कुल बुरा नहीं लगता है कि ऐसा होना चाहिए, हर एक स्त्री को मौका मिलना चाहिए, तो वो अच्छा से बिल्कुल काम करके दिखाएंगी। बस साथ की जरूरत है, एक परिवार को, पति को हमेशा साथ देना चाहिए, तो इसमें काफी आगे बढ़ेंगी महिलाएं।
1: वाह वाह, बहुत खूबसूरत जवाब मैम कि हमें अवसर मिले, हमें साथ मिले तो हम क्या नहीं कर सकती।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: जी मैम, एक आदर्श समाज में स्त्री की भूमिका और उनके अधिकारों के बारे में आपके अपने क्या विचार हैं?
0: ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण होती है कि परिवार आर्थिक और समाज में विकास के समान रूप से योगदान देती है सभी को, महिलाओं का जो समान अधिकार, समान सुरक्षा, ये सब जो सारी बातें हैं, स्वतंत्रता बिल्कुल मिलनी चाहिए। आप खुद देखिए ना, मुझे नहीं लगता कि कोई स्त्री गलत क्यों करेंगी, वो तो वो जो अर्न कर रही हैं, तो एक आदर समाज में जब वो काम करती हैं तो वो तो घर की भलाई सोच के ही कर रही है ना, कि
1: बिल्कुल
0: अर्न जब करेंगी तो वो बच्चे और आगे अच्छा पढ़ाई करेंगे। तो अब वो समय नहीं रहा कि एक पुरुष प्रधान से घर चलेगा, अब दोनों को साथ लेके कमाई करना होगा, क्योंकि आजकल की पढ़ाई काफी महंगी हो गई है और बच्चों का लिविंग स्टैंडर्ड भी बढ़ गया है, तो हमें उसे पूरा करने के लिए तो महिलाओं को भी निकलना पड़ेगा। और उस जो अर्न करती हैं, जो आर्थिक मदद देती हैं, ये तो काफी सपोर्ट हो गया ना एक परिवार के लिए।
1: जी
0: तो मेरे मेरे पास भी काफी महिलाएं हैं जो आती हैं और आज वो सीख रही हैं और करती भी हैं। बट मुझे दुख उस समय होता है जब कोई कोई स्त्री बताती है कि मुझे ये फ्रीडम नहीं दिया जाता है, मुझे मेरे पति रोक देते हैं, तो मेरे घर के लोग रोकते हैं कि आपको ये नहीं करना है। तो कभी कभी कोई लेडीज ऐसा भी होता है कि वो ना बता के मेरे पास काम कर भी लेती है, और मैं कोई गलत काम तो करती नहीं हूँ। तो इसमें थोड़ा सा मुझे लगता है कि चाहे वो मदर इन लॉ हो, सास हो, ससुर हो, या हस्बैंड हो, बच्चे हो, सभी को एक स्त्री का थोड़ा सपोर्ट तो जरूर करना चाहिए।
1: जी बिल्कुल मैम, आप एक कामकाजी महिलाएं हैं, जैसे कि आपने कहा, आपने आगे शुरू से ही हमेशा एक कामकाजी के रूप में अपना योगदान दिया समाज में।
0: बिल्कुल।
1: मैम समाज सेवी भी हैं आप, परिवार और समाज में कैसे सामंजस्य स्थापित आपने किया, अपने बारे में हमारी बहनों को बताएं।
0: जरूर, मैं जरूर बताना चाहूंगी। और आज मुझे हो गए 34-35 साल से मैं इस कार्यक्रम को कर रही हूँ, यानी कि सभी को शिक्षित कर रही हूँ। बट मैं थोड़ा लाइन अलग चुना मैंने, सभी ने पढ़ाई का चुना, तो मुझे लगा कि ये तो काफी टेंशन तो होता ही है पढ़ाई में,
1: बिल्कुल
0: तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि क्यों ना मैं, चूंकि खुद जब छोटी थी, छोटे से कॉलेज तक गई, तो किस्मत है मेरी कि मैं चंद्रपुरा बोकारो से हूँ, और वहां मुझे एक क्लब मिला था जिसका नाम था बैसाखी। और ये मुझे बहुत गर्व होती है बताने में कि मुझे वहाँ हर एक चीज सीखने को मिला, जैसे म्यूजिक, पेंटिंग, डांस, ड्रिल, स्काउट गाइड, एवरीथिंग, वोकल, क्लासिकल, मैंने बहुत कुछ मिला। तो मैं जब रांची आई तो मेरे पति पूछे कि तुम्हें कुछ और करना है, तो बस मैंने इतना ही बोला था कि मुझे इस टाइप का थोड़ा क्लास खोलना है, मुझे आगे और भी शिक्षित होना है इस लाइन में। तो
1: बिल्कुल
0: कुछ क्लासेस मैंने किए, मैंने बहुत मेहनत किया, काफी मेहनत होती है, ऐसा
1: बिल्कुल
0: नहीं मैं बोलूंगी कि एक स्त्री बस काम ठान ले और कर ले, ऐसा नहीं है। मेरे पूरे ससुराल वाले थे, दो छोटे बच्चे थे मेरे, बट मैं इस मामले में थोड़ी लकी हूँ, किस्मत वाली हूँ कि मेरे परिवार वाले काफी सपोर्ट किए, पति तो काफी सपोर्ट किए। फिर मेरे जेठ जेठानी का मैं जरूर नाम लेना चाहूंगी कि वो बैंक में कार्यरत थे, और उन्हें बहुत उम्मीद थी मेरे से कि ये कुछ करेगी, तो वो चाहते थे बैंक में, बट मुझे शायद इस लाइन में इंटरेस्ट था काफी। तो और सासू माँ की मैं बहुत नाम लेना चाहूंगी, और एक नाम मैं और जरूर लूंगी अपनी माँ का,
1: बिल्कुल
0: पापा और माँ तो क्या बोले, वो नींव होते हैं, पर मेरी माँ जो है, सो हम 5 बहनें थी, 2 भाई, तो वो हमें, आप सोच लीजिए कि उस समय इतना पैसा नहीं हुआ करता था, मेरे पापा
1: बिल्कुल
0: एक अर्न करने वाले, इतने बड़े फैमिली और घर के और भी मेंबर आते थे, तो वो कुछ पैसे बचा के मुझे गाना वाना सिखाती थी। तो ये मेरे लिए बहुत फक्र की बात है, और मेरी माँ का कहना था कि बेटा अपने पाँव पे खड़े होना, कभी ऐसा नहीं करो कि तुम कुछ नहीं अर्न करो, हम लोग तो जो कर लिए सो कर लिए, बट तुम लोग इतनी शिक्षित बन जाओ कि जरूर अपने पाँव पे खड़े होना, तो एक गर्व की बात होती है। तो मैं माँ का जरूर बहुत आशीर्वाद है मेरे सर पे। और मैं बीच में थोड़ा विराम ले ली थी, भैया मेरे जो जेठ हैं वो कार्यरत थे आपको SBI बैंक में, ऑफिसर के पोस्ट पे थे, जेठानी थी घर पे, तो इन लोग ने मुझे काफी सपोर्ट किया और बोले नहीं तुम काम करो। हाँ, फिर मैं छोटे बच्चों के साथ घर पे छोड़ती थी, या 5 ईयर्स मैंने पहले स्कूल में पढ़ाया, पर देखा कि नहीं बहुत ज्यादा वर्कलोड बढ़ रहा है, फिर मेरा विचार आया कि नहीं क्यों ना मैं 2 स्टूडेंट ही सही क्लास खोलूं, पेंटिंग का और वोकल का। क्योंकि मैं एक बात और भी बता दूं, जितनी भी मेरी बहनें सुन रही हैं, बिना पूंजी के भी आप काम कर सकती हैं, तो मेरे पास उसमें बहुत पूंजी नहीं था, बस गुण था। तो मैं सभी 2-4 बच्चों को बोली कि अपने अपने कॉपी लाओ, पेंसिल लाओ, कलर लाओ, तो मैं अपने हाथों से उन्हें बना बना के सिखाने लगी। वोकल क्लासिकल भी मेरा कुछ नहीं लगा, क्योंकि मेरे पास हारमोनियम पहले से था, मैं उसमें क्लासिकल उन लोग को शास्त्रीय संगीत सिखाने लगी। यहां से मेरा जो है ना कारवां चल निकला। उस
1: बहुत
0: समय
1: खूब
0: इतने क्लासेस भी नहीं होते थे, बट आज के लोगों में एक चीज ये भी बता दूं लता जी, कि अभी पेशेंस कम है, अभी के लोग खोलते हैं और चाहते हैं कि बस 100-200 बच्चे हो जाए, स्टूडेंट आ जाए, तो ये थोड़ा मुश्किल होती है। मैंने काफी पेशेंस रखा, वो दो चार अपने ड्राइंग रूम से शुरू करते करते मेरे पास कब 70 बच्चे हो गए। फिर मैं बड़ी जगह ली, स्कूल लिया मैंने, फिर
1: वाह
0: मुझे काफी जगहों से बुलाया जाता था। मैं बता दूं कि मुझे पहला अवार्ड मिला था सफल महिला का। मैं 7 दिन यहाँ क्लास चलाती हूँ, मैं कहीं जॉब नहीं करती, मुझे रांची से बहुत अच्छे अच्छे स्कूल से ऑफर आए, पर मैंने नहीं किया कि ये काम मुझे एक पहचान देगी। और रियली मैं अभी कहीं ऑफिस या कहीं भी करती तो शायद इतने नाम नहीं होते आज जो मुझे समाज में इतने सम्मान मिल रहे हैं,
1: हाँ
0: तो और इतने लोग जान रहे हैं। कहते हैं ना, एक छोटी सी जगह से आके क्या कर लोगी।
1: हाँ
0: तो जब मैंने काम शुरू किया था तो कमेंट्स भी मिलते हैं, ऐसा नहीं मैं बोलूंगी, मुझे मिले थे। आज मेरे स्टूडेंट्स काफी जगहों पे हैं और वो मुझे भूलते नहीं है,
1: जी
0: याद करते हैं, आते हैं, मिलते हैं, क्योंकि लाइफ में ना काफी स्ट्रगल आते हैं, उनसे हारना नहीं है।
1: बिल्कुल प्रीति जी, आपकी तमाम बातें सुनकर हमें भी, हमारी बहनों को बहुत खुशी हो रही है। हम चाहेंगे कि आप चलते चलते हमारी बहनों से कहें, कुछ संदेश दें।
0: मैं बस इतना संदेश जरूर देना चाहूंगी, या जितनी भी लोग सुन रही हैं, आप छोटा हो बड़ा हो कोई भी काम करो, छोटे से बड़े काम में कभी शर्म नहीं होनी चाहिए। मैंने भी हर तरह का काम किया, मुझे कभी शर्म नहीं हुई, क्यों शर्म होगी, मैं मेहनत करके पैसा कमा रही हूँ। तो
1: बिल्कुल
0: आपसे विनती है मेरी सभी बहनों से कि जरूर काम करें, कुछ भी करें, आप सिलाई कढ़ाई खाना बनावे, आप ट्यूशन पढ़ा लें, कुछ नहीं है तो 4 बच्चों को ट्यूशन ही पढ़ा लें, कुछ भी
1: जी
0: करें। तो मेरा तो संदेश यही है लता जी।
1: प्रीति मैम, आज आप हमारे कार्यक्रम में जुड़ी और आपने इतना महत्वपूर्ण अपना समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: बहनों, अभी आप सुन रही थी भेंट वार्ता, पारिवारिक और सामाजिक अपेक्षाओं के साथ सामंजस्य बैठाती स्त्री। भेंट वार्ताकार थी प्रीति सिन्हा और इनसे बातें कर रही थी लता। और अब फिर से एक बार मनोरंजन की दुनिया में कदम रखते हैं, तो सुनते हैं ये गीत

0: मैनो आज का सफर बस इतना ही, क्योंकि घड़ी की सुइयों ने हमें इशारा किया है कि अब लेना होगा आपसे विदा। लेकिन चलते चलते आपको बता दें कि आज की हमारी कार्यक्रम की प्रस्तुति गौरव पांडे की थी। तो अपनी सखी लता
1: और निधि को दे विदा।
0: नमस्कार।
2: गृह लक्ष्मी।
1: अभी आप सुन रहे थे महिलाओं को संबोधित हमारा कार्यक्रम गृह लक्ष्मी। ये कार्यक्रम आप सुन रहे थे आकाशवाणी के रांची केंद्र से। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे फिल्म संगीत।
3: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: संगठनों स्वयं ही घट पड़े। भारतीय सेना।
1: संदेश के बाद आप सबका स्वागत है कार्यक्रम फिल्म संगीत में। सबसे पहला गीत आइए सुनते हैं आतिफ असलम की आवाज में, फिल्म है किस्मत कनेक्शन। आतिफ असलम और अलका याग्निक की आवाजों में ये गीत सुनते हैं। सईद कादरी के बोल हैं, प्रीतम का संगीत है।

अमिताभ भट्टाचार्य के लिखे गीत को संगीत से सजाया है प्रीतम ने। फिल्म का नाम है एजेंट विनोद और आवाजें हैं अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल की।

श्रेया घोषाल की आवाज में आइए सुनते हैं इश्कजादे फिल्म का ये गीत। गीत के बोल लिखे हैं कौशल मुनीर ने और तर्ज बनाई है अमित त्रिवेदी ने।

जावेद अख्तर के लिखे इस गीत को सुरबत किया है शंकर एहसान लॉय ने। फिल्म है वेकअप सिद और आवाज़ है शंकर महादेवन की।

कार्यक्रम का आखिरी गीत आइए आपको सुनवाते हैं हंसी तो फंसी फिल्म से। गायक कलाकार हैं चिन्मय श्रीपदा और शेखर रवजियानी। शब्द रचना है अमिताभ भट्टाचार्य की और धुन तैयार की है विशाल शेखर ने।

इसी गीत के साथ ही फिल्म संगीत अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। एक बजने को है, थोड़ी ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से पहले हिंदी और फिर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय नई दिल्ली में जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के साथ वार्ता कर रहे हैं। वार्ता के बाद कुछ सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए जाने की भी संभावना है। आज सुबह प्रधानमंत्री तकाइची का राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में औपचारिक स्वागत किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उपस्थित थे। जापान की प्रधानमंत्री कल शाम 3 दिन के भारत दौरे पर नई दिल्ली पहुंचे। प्रधानमंत्री तकाइची का यह भारत का पहला आधिकारिक दौरा है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दौरा भारत और जापान के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज जापान के प्रधानमंत्री तकाइची के साथ व्यापक विचार विमर्श से दोनों देशों की साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाने में सहायता मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत और जापान हिंद प्रशांत तथा अन्य क्षेत्रों में भी शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए साझा प्रयास जारी रखेंगे। भारत ने अपने संकल्प को दोहराते हुए कहा है कि आतंकवाद को किसी भी परिस्थिति में उचित नहीं ठहराया जा सकता है। भारत ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मानदंडों की कड़ी आलोचना करते हुए एक मजबूत और एकजुट वैश्विक कार्रवाई का आह्वान किया। संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक आतंकवाद विरोधी रणनीति की 9वीं समीक्षा में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने ये बात कही।
1: इंडिया हैज बीन अ विक्टिम ऑफ क्रॉस बॉर्डर
2: से सीमा पार आतंकवाद को झेल रहा है। हमने इसकी भारी कीमत चुकाई है। इसी अनुभव के चलते भारत ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाई है। आतंकवाद के सभी रूपों और तरीकों की निंदा की जानी चाहिए। भारत ने आतंकवाद के लिए फंडिंग को रोकने पर वैश्विक ध्यान केंद्रित करने की दिशा में काम किया है। भारत का मानना है कि आतंकवाद विरोधी प्रयासों को राजनीति से प्रेरित बयानों से कमजोर नहीं किया जाना चाहिए।
0: केंद्र सरकार ने असम में बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए पूरे सहयोग का आश्वासन दिया है। कृषि और विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कल गुवाहाटी में राज्य सरकार के साथ समीक्षा बैठक की। श्री चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार असम और अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ के हालात को लेकर बेहद गंभीर है। असम के मुख्य सचिव रवि कोटा ने बताया कि बाढ़ से 13 जिलों के करीब 72,000 लोग प्रभावित हुए हैं। बंगलुरु दक्षिण तालुक में एक चट्टान के गिरने से 7 प्रवासी श्रमिकों की मौत हो गई। दुर्घटना उस समय हुई जब मतपटना गांव स्थित कावेरी क्रशर पत्थर खदान में एक विशाल चट्टान नीचे खदान जहां और खदान के मालिकों की तलाश जारी है। मृतकों में बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तरी कर्नाटक के निवासी थे। कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डॉ जी परमेश्वर ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए खदान मालिकों के खिलाफ उचित कार्रवाई का निर्देश दिया है। दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने आईएसआई प्रायोजित अंतर्राज्यीय आतंकी और हथियार नेटवर्क पर कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी आईएसआई हैंडलर शहजाद भट्टी और उसके साथियों के निर्देश पर राष्ट्रीय राजधानी में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। यूक्रेन के कीव में रूस के ड्रोन और मिसाइल हमले में 13 लोग मारे गए और कई लोग घायल हो गए। स्थानीय समाचार एजेंसियों ने बताया कि आज शहर के कई हिस्सों में विस्फोटों की आवाजें सुनी गईं। ये हमले इस सप्ताह की शुरुआत में यूक्रेन द्वारा मॉस्को पर किए गए ड्रोन हमलों के बाद हुए हैं। आज जम्मू में भगवती नगर आधार शिविर से कड़ी सुरक्षा के बीच उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए 4,822 तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को रवाना किया। इस पवित्र यात्रा में शामिल होने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से तीर्थयात्री जम्मू पहुंच रहे हैं। दक्षिण पश्चिम मॉनसून आज दिल्ली के सभी इलाकों सहित गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के ज्यादातर हिस्सों तथा राजस्थान के कुछ इलाकों में आगे बढ़ गया है। राजधानी में बारिश से गर्मी और उमस भरे मौसम से काफी राहत मिली है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन में मॉनसून के उत्तर भारत के कई और इलाकों में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के सत्र में सेंसेक्स 412 अंक की बढ़त के साथ 77,355 के उच्चतम स्तर और निफ्टी 119 अंक बढ़कर 24,124 पर आ गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Prime Minister Narendra Modi is holding annual summit-level talks with his Japanese counterpart Sanae Takeuchi in New Delhi. The summit is an opportunity for both sides to review and strengthen the full spectrum of bilateral cooperation, as well as exchange views on regional and global issues of mutual interest. Several MOUs are expected to be exchanged following the talks between the two leaders. Earlier, Prime Minister Takeuchi was accorded a ceremonial welcome at the forecourt of Rashtrapati Bhavan today. Prime Minister Modi was also present on the occasion. The Japanese Prime Minister arrived in New Delhi last evening on a three-day visit to India. This is the first official visit of Prime Minister Takeuchi to India. The External Affairs Ministry said the visit marks an important step in taking forward the special strategic and global partnership between India and Japan. India has reiterated its firm stand that terrorism cannot be justified under any circumstances and called for united global action to eliminate the menace. Addressing the UN General Assembly during the adoption of the 9th review of the United Nations Global Counterterrorism Strategy, India's permanent representative to the UN, P. Harish, said a terrorist is a terrorist and emphasized that the counterterrorism efforts should not be weakened by false equivalences or politicized narratives.
1: India has been a victim of cross-border terrorism for decades. Our people have paid a terrible price, and this experience has shaped India's zero-tolerance approach. Irrespective of any grievance, political cause, or strategic calculation, terrorism in all its forms and manifestations must be condemned unequivocally. India has worked to strengthen the global focus on terror financing. We have supported capacity building, South-South cooperation, and strengthening of multilateral frameworks. India believes that counter-terrorism should not be hollowed out by false equivalences or politicized narratives.

0: activity in the national capital on instructions of ISI handler Shahzad Bhatti and his associates. During the operation, 2 foreign-made pistols, 9 live cartridges and 5 mobile phones were recovered. Jammu and Kashmir Lieutenant Governor Manoj Sinha flagged off the first batch of pilgrims of the annual Sri Amarnath Yatra from the Bhagwati Nagar base camp in Jammu this morning. The 57-day annual pilgrimage officially commences across the twin tracks of Kashmir tomorrow and is scheduled to conclude on the 28th of next month. In Ukraine, 30 people were killed and dozens injured after Russian drones and missiles hit residential buildings in Kiev as part of a broader wave of Russian overnight attacks. Local media reported that several explosions were heard across parts of the city overnight into Thursday. Air raid sirens sounded across the city and many residents took shelter in metro stations. Russia's drone and missile attacks come after Ukrainian drones targeted Moscow earlier this week. The southwest monsoon has further advanced today into entire Delhi, some more parts of Gujarat, remaining parts of Uttar Pradesh, most parts of Madhya Pradesh, Haryana, Punjab and some parts of Rajasthan. Refreshing showers in the national capital provided much relief from hot and humid weather. According to IMD, monsoon is expected to advance further into several parts of North India during the next 2 to 3 days. Benchmark domestic equity indices were trading around 0.5% up in afternoon trade today. The Sensex jumped 412 points at 77,335, while the Nifty added 119 points to 24,124 when reports last came in. In the FIFA World Cup, Belgium staged a stunning comeback to beat Senegal 3-2 after extra time in the round of 32 and qualify for the round of 16. Youri Tielemans scored a 125th-minute penalty to seal a dramatic 3-2 victory and extend Belgium's unbeaten run to 17 matches. And with that, we end this news bulletin.
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने एसआईआर के तहत स्वयं गणना प्रपत्र भरकर और हस्ताक्षर कर बीएलओ को सौंपा। सभी पात्र नागरिकों से की सहभागिता की अपील। केंद्र सरकार ने ईपीएफओ योजना 2026 को किया अधिसूचित। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ब्याज दर 8.25% रखने की घोषणा की। राज्यसभा सांसद प्रदीप कुमार वर्मा ने चांडिल मुरी रेलखंड की विद्युतीकरण परियोजना को अधिसूचित किए जाने को बताया ऐतिहासिक कदम। प्रधानमंत्री और रेल मंत्री का जताया आभार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज झारखंड कैबिनेट की अहम बैठक। लिए जाएंगे कई महत्वपूर्ण फैसले। और एनटीपीसी और सीएमपीडीआई के बीच कोयला एवं खनिज परियोजनाओं के विकास और संचालन के लिए हुआ एमओयू। और अब समाचार विस्तार से। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने आज रांची स्थित लोक भवन में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत स्वयं गणना प्रपत्र भरकर और हस्ताक्षर कर उसे संबंधित बीएलओ को सौंपा। इस अवसर पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार, रांची के जिला निर्वाचन पदाधिकारी मंजुनाथ भजंत्री तथा अन्य निर्वाचन अधिकारी उपस्थित रहे। राज्यपाल ने सभी पात्र भारतीय नागरिकों से बीएलओ द्वारा दिए जाने वाले गणना प्रपत्र को समय पर भरकर हस्ताक्षर सहित जमा करने की अपील की, ताकि कोई भी पात्र मतदाता सूची से वंचित न रहे। उन्होंने अभियान से जुड़े सभी अधिकारियों और कर्मियों को सफल तथा प्रभावी क्रियान्वयन के लिए शुभकामनाएं भी दी। केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफओ योजना 2026 को अधिसूचित कर दिया है। यह योजना 29 जून से प्रभावी हो गई है। नई योजना 1952 की कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम का स्थान लेगी। इस योजना का उद्देश्य डिजिटल अनुपालन को मजबूत करना, प्रशासनिक दक्षता में सुधार करना, खातों के स्थानांतरण को आसान बनाना और भविष्य निधि ढांचे को नए श्रम कानून के अनुरूप बनाना है। नई योजना में अनिवार्य ईपीएफ अंशदान कर्मचारी और नियोक्ता दोनों के वेतन का 12% बना रहेगा। केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित प्रतिष्ठानों पर मौजूदा 10% की दर लागू रहेगी। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री और रांची के सांसद संजय सेठ ने रांची

0: लोकसभा क्षेत्र के विभिन्न ग्रामीण इलाकों में सड़कों की दुर्दशा पर चिंता जताई है। उन्होंने ग्रामीण विकास विभाग झारखंड सरकार के सचिव मनोज कुमार से मुलाकात की और विभिन्न ग्रामीण इलाकों में सड़कों की मरम्मतीकरण और निर्माण पर बातचीत की।
1: तो हालात राज्य की ठीक नहीं है, कब जानते भाई कहाँ पैसा जा रहा है, लेकिन जनता को भाई नागरिक सुविधा चाहिए ना, पानी बिजली सड़क। बिजली की क्या स्थिति है राज्य की, किसी छुपी है क्या? सिल्ली यहाँ से 40 किलोमीटर है ना, 15-16 घंटे बिजली नहीं रहती है। ट्रांसफार्मर लगाने के लिए सांसद न मंत्रियों सांसद को पैरवी करनी पड़ती है, तब एक हफ्ता 10 दिन के बाद ट्रांसफार्मर लगता है। तो चीजें बहुत डिरेल हुई है और स्थिति राज्य की डामाडोल है।
0: पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर हेमंत सरकार पर निशाना साधा है। गिरिडीह में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि जमशेदपुर में पुलिस के सामने हत्या कर देना गंभीर मामला है। श्री मरांडी ने इस घटना के दोषी पुलिसकर्मियों पर FIR की मांग की।
2: में आज कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई। पिछले दिनों जो जमशेदपुर में जो घटना पुलिस के सामने की हत्या और इसके बाद जो कार्रवाई हुई, तो मैं कह सकता हूँ कि खाना पूर्ति से अधिक कुछ भी। तो मैं समझता हूँ कि SP को हटाना कोई एक सजा नहीं, कायदे से होना तो ये चाहिए था पुलिस के ऊपर FIR होनी। अगर पुलिस के सामने अगर किसी की भी हत्या होती तो फिर उसके लिए तो पूरी तरह से पुलिस जिम्मेवार।
0: इधर आरोपों पर झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि मुख्यमंत्री ने सख्त प्रशासनिक कदम उठाए हैं। उन्होंने भाजपा पर घटना पर राजनीति करने का आरोप लगाया।
3: दो दो पुलिस कप्तान हटाए गए, थानेदार सस्पेंड हुआ, पुलिस कर्मी सस्पेंड हुए, प्रशासनिक कार्रवाई और SIT का गठन हुआ, मुख्य आरोपी पर पकड़ने के लिए इनाम घोषित की गई। इससे बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई और क्या हो सकती है? उसमें आप बंद बुलाइए, मशाल जुलूस निकालिए, ये जनता को गुमराह करने के लिए।
0: राज्यसभा सांसद प्रदीप कुमार वर्मा ने चांडिल मूरी रेलखंड के 59 किलोमीटर विद्युतीकरण परियोजना को अधिसूचित किए जाने को ऐतिहासिक कदम बताया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि यह परियोजना न केवल क्षेत्र में रेल अवसंरचना को सुदृढ़ करेगी, बल्कि यात्रियों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने के साथ क्षेत्र के औद्योगिक, व्यापारिक और आर्थिक विकास को भी नई गति प्रदान करेगी। उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री और रेल मंत्री का आभार जताया। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज प्रोजेक्ट भवन में शाम 4 बजे झारखंड कैबिनेट की बैठक होगी। मंत्रिपरिषद की बैठक में कई कल्याणकारी योजनाओं को मंजूरी मिलने की संभावना है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने जमशेदपुर के सदर अस्पताल पहुंचकर ब्रेन मलेरिया से पीड़ित बच्चों का हालचाल जाना। उन्होंने पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका, घाटशिला और मुसाबनी के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रेन मलेरिया के बढ़ते प्रकोप पर गंभीर चिंता जताई। श्री मुंडा ने जिला प्रशासन से तत्काल युद्ध स्तर पर रोकथाम, उपचार और जागरूकता अभियान चलाने की मांग की।
4: फैंसीफेरम ब्रेन मलेरिया के नाम से तो लगभग इस समय 35 इस तरह के पेशेंट यहाँ एडमिट है, उसमें से अधिकतर बच्चे हैं और बहुत सारे ऐसे बच्चे जो अस्पताल नहीं पहुँचे, इसलिए वो सारे बच्चों की मृत्यु हुई। मैं ये आग्रह करूँगा खास करके ग्राम प्रधानों से और मुखिया से, ऐसे प्रभावित लोग उनको विलम्ब किए बगैर तुरंत अस्पताल के लिए भेजे।
0: घरेलू शेयर बाजार आज 0.3% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 244 अंक की उछाल के साथ 77,166 के उच्चतम स्तर पर और निफ्टी 81 अंक बढ़कर 24,086 पर आ गया। राजधानी रांची के सराफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,34,800 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,40,000 रुपए प्रति किलो है। केंद्र सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर की शुरुआत करने के मामले में मेटा को नोटिस जारी किया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार सरकार ने विस्तृत जानकारी 3 दिन के भीतर उपलब्ध कराने को कहा है।
5: सूत्रों के अनुसार मंत्रालय ने मेटा को यह भी निर्देश दिया है कि इस मामले पर परामर्श पूरा होने तक यूजर नेम फीचर शुरू न किया जाए। मंत्रालय ने व्हाट्सएप द्वारा की गई एक सार्वजनिक घोषणा पर संज्ञान लिया है। इस घोषणा में व्हाट्सएप ने भारत सहित वैश्विक स्तर पर चरणबद्ध तरीके से अपने यूजर नेम फीचर को लागू करने की बात कही थी। व्हाट्सएप ने बताया कि एक बार ये फीचर सक्रिय हो जाने पर पहली बार संपर्क करने वाले व्यक्ति को प्राप्तकर्ता का फोन नंबर दिखाई नहीं देगा। ऐसी आशंकाएं हैं कि इस फीचर से साइबर धोखाधड़ी की घटनाएं बढ़ सकती हैं। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
0: एनटीपीसी माइनिंग लिमिटेड और सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड सीएमपीडीआई ने कोयला एवं खनिज परियोजना के विकास और संचालन के लिए 3 वर्षीय तकनीकी सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के तहत अन्वेषण, खान संचालन, परियोजना प्रबंधन, पर्यावरण प्रबंधन, प्रयोगशाला परीक्षण तथा क्षमता निर्माण सहित खनन मूल्य श्रृंखला के विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग किया जाएगा। मौसम विभाग ने आज राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। चतरा, पूर्वी सिंहभूम, गढ़वा, हजारीबाग, पलामू, सरायकेला खरसावां और पश्चिमी सिंहभूम जिलों के कुछ भागों में अगले 1 से 3 घंटों में तेज हवा चलने, बादल गर्जन तथा वज्रपात के साथ वर्षा की संभावना है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने एसआईआर के तहत स्वयं गणना प्रपत्र भरकर और हस्ताक्षर कर बीएलओ को सौंपा। सभी पात्र नागरिकों से की सहभागिता की अपील। केंद्र सरकार ने ईपीएफओ योजना 2026 को किया अधिसूचित। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ब्याज दर 8.25% रखने की घोषणा की। राज्यसभा सांसद प्रदीप कुमार वर्मा ने चांडिल मोरी रेलखंड की विद्युतीकरण परियोजना को अधिसूचित किए जाने को बताया ऐतिहासिक कदम। प्रधानमंत्री और रेल मंत्री का जताया आभार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज झारखंड कैबिनेट की अहम बैठक। लिए जाएंगे कई महत्वपूर्ण फैसले। और एनटीपीसी और सीएमपीडीआई के बीच कोयला एवं खनिज परियोजनाओं के विकास और संचालन के लिए हुआ एमओयू। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। आइए मनोरंजनी के अंतर्गत उपशास्त्रीय संगीत में सिद्धेश्वरी देवी से सुनते हैं मिश्र खमाज में ठुमरी। बोल हैं जाओ वहीं तुम श्याम।

उपशास्त्रीय संगीत में अभी आप सुन रहे थे श्रीमती सिद्धेश्वरी देवी से मिश्र खमाज में ठुमरी, बोल थे जाओ वहीं तुम श्याम। ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है, सुगम संगीत में आइए अब सुनते हैं फाल्गुनी पाठक के गाए कुछ गीत।

यदि माँ एचआईवी से संक्रमित हो तो नवजात शिशु को एचआईवी का संक्रमण हो सकता है। इसलिए गर्भावस्था के पहले 3 माह के अंदर माँ की एचआईवी जांच अपने निकटतम सरकारी अस्पताल में अवश्य कराएं, ताकि शिशु को एचआईवी के संक्रमण से बचाया जा सके। जांच जितनी जल्दी, सुरक्षा उतनी पक्की। अधिक जानकारी के लिए नाको टोल फ्री नंबर 1-0-9-7 पर संपर्क करें या नाको एड्स ऐप डाउनलोड करें। झारखंड राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।

सुगम संगीत अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। इस समय 2 बजने को है। थोड़ी ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से मिड डे न्यूज और दोपहर समाचार प्रसारित होंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: and qualify for the round of 16. Co-hosts US registered their first win in the knockout round after 2002. This morning, they defeated Bosnia-Herzegovina 2-0 in the round of 32 to advance into the round of 16, where they will take on Belgium. Benchmark domestic equity indices were trading around 0.5% up in the afternoon session today. The Sensex rose 402 points at 77,325, while the Nifty advanced 129 points to 24,135 when reports last came in. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi holds annual summit-level talks with his Japanese counterpart Sanae Takaichi in New Delhi. Both countries signed several agreements, including in economic and energy security, pharmaceuticals and AI. Prime Minister Modi says India-Japan bilateral relationship has stood the test of time. India's proposal for comprehensive convention on international terrorism gains renewed support at UN General Assembly. Sri Amarnath Ji Yatra begins with first batch of pilgrims leaving Bhagwati Nagar base camp in Jammu. Southwest monsoon covers entire Delhi, advances further across parts of northern and western states. In the FIFA World Cup, United States registers first knockout stage win since 2002, defeating Bosnia-Herzegovina 2-0. Belgium also enter round of 16 in extra time victory over Senegal. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के बीच वार्षिक शिखर सम्मेलन स्तर की बातचीत, दोनों देशों के बीच आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा, फार्मास्यूटिकल्स और एआई सहित कई समझौते हुए। श्री मोदी ने कहा भारत जापान के द्विपक्षीय संबंध समय की कसौटी पर खरे उतरे। संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन को लेकर भारत के प्रस्ताव को एक बार फिर से समर्थन मिला। जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे के रवाना होने के साथ ही श्री अमरनाथ जी यात्रा शुरू। दक्षिण पश्चिम मॉनसून की दिल्ली में दस्तक, उत्तरी तथा पश्चिमी राज्यों के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ा। फीफा विश्व कप में अमेरिका ने बोस्निया और हर्जेगोविना को नॉकआउट राउंड में 2-0 से हराकर 2002 के बाद पहली जीत दर्ज की। बेल्जियम ने सेनेगल को हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। भारत और जापान ने आर्थिक तथा ऊर्जा सुरक्षा, फार्मास्यूटिकल्स, रक्षा तथा एआई सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के साथ वार्षिक शिखर सम्मेलन स्तर की वार्ता की। सम्मेलन में दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा की। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज के समय में सामूहिक विश्वास सबसे बड़ी संपत्ति है और भारत जापान की द्विपक्षीय साझेदारी समय की कसौटी पर खरी उतरी है। श्री मोदी ने कहा कि इस परिकल्पना को साकार करने के लिए भारत और जापान ने एआई के क्षेत्र में एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जापान की सटीक प्रौद्योगिकी और भारत की सॉफ्टवेयर क्षमताओं का संगम वैश्विक एआई विकास को नई गति और शक्ति प्रदान करेगा।
2: प्रधानमंत्री ताकाइची और मेरा विश्वास है कि टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप हमारे सहयोग का सबसे मजबूत स्तंभ बनेगी। इसी विजन को साकार करने के लिए आज एआई के क्षेत्र में हमने ज्वाइंट स्टेटमेंट भी जारी किया है। भारतीय एआई इकोसिस्टम के कई प्रमुख संस्थानों में भी आज अपने जापानीज पार्टनर के साथ एग्रीमेंट्स किए हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि भारत जापान जैव गैस पहल के माध्यम से भारत में 1000 जैव गैस और जैविक उर्वरक संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इससे भारत के गांवों में स्थिरता, समृद्धि और ग्रामीण आजीविका को नई शक्ति मिलेगी।
2: भारत और जापान दोनों इकोनॉमिक सिक्योरिटी और एनर्जी सिक्योरिटी का महत्व अच्छी तरह समझते हैं। इसी दिशा में आज हमने इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए एक ज्वाइंट रोडमैप तैयार किया है। इसके माध्यम से हम सेमीकंडक्टर, क्वांटम और एडवांस मटेरियल जैसे स्ट्रेटेजिक क्षेत्रों में सप्लाई चेन रेजिलियंस को मजबूत करेंगे।

0: एनर्जी सिक्योरिटी के क्षेत्र में भी इंडिया जापान इनिशिएटिव बायोगैस और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर प्लांट्स लगाने में सहायता मिलेगी।
1: इससे पहले आज प्रधानमंत्री तकाईटी का राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में औपचारिक स्वागत किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उपस्थित थे। जापान की प्रधानमंत्री कल शाम 3 दिन के भारत दौरे पर नई दिल्ली पहुंचे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह दौरा भारत और जापान के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन के लिए भारत के लंबे समय से चले आ रहे प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिर से समर्थन मिला है। 140 सदस्यों द्वारा अपनाई गई संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक आतंकरोधी रणनीति की 9वीं समीक्षा में सदस्य देशों से आग्रह किया गया है कि वे भारत द्वारा 3 दशक पहले प्रस्तावित सम्मेलन को अंतिम रूप देने के लिए हर संभव प्रयास करें। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि सर्वमान्य कानूनी ढांचे का अभाव वैश्विक आतंकरोधी प्रयासों को कमजोर करता है। उन्होंने आतंकवाद से निपटने में दोहरे मापदंड न अपनाने पर बल देते हुए अपराधियों, वित्त पोषकों और प्रायोजकों को जवाबदेह ठहराने का आह्वान किया।
2: India has been a victim of cross-border terrorism for decades.
3: भारत दशकों से सीमा पार आतंकवाद को झेल रहा है। हमने इसकी भारी कीमत चुकाई है। इसी अनुभव के चलते भारत ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाई है। आतंकवाद के सभी रूपों और तरीकों की निंदा की जानी चाहिए। भारत ने आतंकवाद के लिए फंडिंग को रोकने पर वैश्विक ध्यान केंद्रित करने की दिशा में काम किया है। भारत का मानना है कि आतंकवाद विरोधी प्रयासों को राजनीति से प्रेरित बयानों से कमजोर नहीं किया जाना चाहिए।
1: अमेरिका, इसराइल और अर्जेंटीना ने प्रस्ताव के विरुद्ध मतदान किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। आज जम्मू में भगवती नगर आधार शिविर से कड़ी सुरक्षा के बीच उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए 4,822 तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को रवाना किया। इस पवित्र यात्रा में शामिल होने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से तीर्थयात्री जम्मू पहुंच रहे हैं। 4,822 श्रद्धालुओं का पहला जत्था, जिसमें बालटाल रूट के लिए 2,312 और पहलगाम रास्ते के लिए 2,510 लोग शामिल थे, 147 गाड़ियों के काफिले में रवाना हुए। ग्रामीण विकास, कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण, विकसित भारत जयरामजी अधिनियम 2025 देश में रोजगार सुनिश्चित करने, ग्रामीण आजीविका को मजबूत करने और गांवों के विकास में तेजी लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। श्री चौहान ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ आज तिरुपति जिले के मुक्कावड़ीपल्ले गांव में विकसित भारत जयरामजी अधिनियम 2025 का शुभारंभ किया। सभा को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी गरीब मजदूर बेरोजगार न रहे और सभी को रोजगार मिले।
4: मनरेगा में केवल 100 दिन रोजगार मिलता था, विकसित भारत जीरा और रोजगार देने की बात प्रधानमंत्री ऐसे नहीं कह रहे हैं। पहले साल ही विकसित भारत जयरामजी योजना में केंद्र ने जो अपना पैसा दिया है वो है 95,600 करोड़ रुपया और राज्यों का 40% शेयर मिलेगा, तो एक साल में ही खर्च होंगे 1,51,282 करोड़ रुपया।
1: श्री चौहान ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आंध्र प्रदेश के लिए 70,000 से अधिक आवासों की मंजूरी दी। उन्होंने ग्रामीण संपर्क और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से 422 करोड़ रुपए की स्वीकृत राशि से 146 ग्रामीण सड़कों और 19 पुलों के निर्माण के लिए स्वीकृति पत्र भी सौंपे। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी एक से दूसरी तकनीक की जगह नहीं ले रहा है, बल्कि इससे टिकाऊ औद्योगिक इकोसिस्टम का निर्माण हो रहा है। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी विकसित भारत के लिए देश को इलेक्ट्रिक मोबिलिटी हब बनाने पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ तथा संतुलित विकास के साथ जीवन को सुगम बनाने के

0: प्रयास कर रही है। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत मॉनसून के मौसम में 21 लाख पौधे लगाए जाएंगे। जिले में विभिन्न स्थानों पर बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया जाएगा। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने आज रांची के लोकभवन में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के अंतर्गत जनगणना प्रपत्र भरकर संबंधित मुख्य चुनाव अधिकारी रवि कुमार और जिला चुनाव अधिकारी मंजूनाथ भजंत्री को सौंपा। उपराज्यपाल ने देश के सभी योग्य पात्रों को जनगणना प्रपत्र सही समय पर भरने की अपील की। बंगलुरु दक्षिण तालुक में एक चट्टान के गिरने से 7 प्रवासी श्रमिकों की मौत हो गई। दुर्घटना उस समय हुई जब मदपटना गांव स्थित कावेरी क्रशर पत्थर खदान में एक विशाल चट्टान नीचे खदान में गिर गया जहां मजदूर काम कर रहे थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और खदान के मालिकों की तलाश जारी है। मृतकों में बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तरी कर्नाटक के निवासी थे। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डॉ जी परमेश्वर ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए खदान मालिकों के खिलाफ उचित कार्रवाई का निर्देश दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने आईएसआई प्रायोजित अंतर्राज्यीय आतंकी और हथियार नेटवर्क पर कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी आईएसआई हैंडलर शहजाद भट्टी और उसके साथियों के निर्देश पर राष्ट्रीय राजधानी में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @XHIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। दक्षिण पश्चिम मॉनसून आज दिल्ली के सभी इलाकों सहित राजस्थान, गुजरात और उत्तर प्रदेश के कुछ और हिस्सों में तथा मध्य प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के ज्यादातर भागों में पहुंच गया है। राजधानी दिल्ली में बारिश से गर्मी और उमस भरे मौसम से काफी राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 से 3 दिन में मॉनसून के उत्तर भारत के कई और इलाकों में आगे बढ़ने की उम्मीद है। वहीं पश्चिमी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों के लिए तेज बारिश की आशंका को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश में मॉनसून के आगमन से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है और राज्य के लगभग सभी हिस्सों में बारिश हुई है।
1: दक्षिण पश्चिम मानसून मंगलवार से ही आधिकारिक तौर पर प्रदेश में दाखिल हो चुका है और ट्रफ लाइन आजमगढ़, बरेली और अयोध्या जिलों से होकर गुजर रही है। राज्य के कई हिस्सों में पिछले 24 घंटों में मध्यम से भारी बारिश दर्ज की गई, जिससे लोगों को लंबे वक्त से पड़ रही भीषण गर्मी से राहत मिली। सुल्तानपुर, मुजफ्फरनगर, बदायूं, सहारनपुर और संभल में बहुत भारी बारिश हुई, जिससे कुछ क्षेत्रों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। हालांकि दिन के तापमान में भी गिरावट आई। ये बारिश किसानों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है, जो धान की बुआई में देरी के कारण बेसब्री से मॉनसून का इंतजार कर रहे थे। मौसम विभाग ने आज कई जिलों में भारी बारिश का पूर्वानुमान लगाया है और कहा है कि राज्य भर में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए मौसम के हालात बेहतर बने हुए हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: महाराष्ट्र में आज लगातार 2रे दिन भी मूसलाधार बारिश जारी रही।
2: मुंबई में लगातार हो रही तेज बारिश के कारण निचले इलाकों में जलभराव हो गया है, यातायात धीमी पड़ गई है और उपनगरीय रेल सेवाएं कुछ मार्गों पर प्रभावित हो रही है। लगातार बारिश के चलते पवई लेक पूरी तरह भर चुका है। मुंबई विश्वविद्यालय ने पालघर जिला तथा पनवेल महानगर पालिका क्षेत्र के महाविद्यालयों में आज होने वाली परीक्षाएं रद्द कर दी है। मौसम विभाग ने उत्तर महाराष्ट्र तथा दक्षिण महाराष्ट्र गोवा तट पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी है। मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी गई है। निवेदिता, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: कनाडा के अधिकतर क्षेत्रों में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। वहीं कुछ क्षेत्रों में बारिश और बाढ़ की समस्या बनी हुई है। ओंटारियो, क्यूबेक, प्रेरीज और नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज के कुछ हिस्सों के लिए गर्मी की चेतावनी जारी की गई है। अधिकारियों ने लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी पीने, बाहरी गतिविधियों से बचने और वरिष्ठ नागरिकों तथा बच्चों का ध्यान रखने की सलाह दी है। यूक्रेन के कीव में रूस के ड्रोन और मिसाइल हमले में 13 लोग मारे गए और कई लोग घायल हो गए। स्थानीय समाचार एजेंसियों ने बताया कि आज शहर के कई हिस्सों में विस्फोटों की आवाजें सुनी गईं। ये हमले सप्ताह की शुरुआत में यूक्रेन द्वारा मॉस्को पर किए गए ड्रोन हमलों के बाद हुए हैं। फीफा विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में

0: में बेल्जियम ने सेनेगल को अतिरिक्त समय में 3-2 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। यूरी टेलेमंस ने 125वें मिनट में पेनल्टी से गोल दागकर बेल्जियम को 3-2 की रोमांचक जीत दिलाई। राउंड ऑफ 32 के मैच में सह मेजबान अमरीका ने आज सुबह बोस्निया और हर्जेगोविना को नॉकआउट राउंड में 2-0 से हराकर 2002 के बाद पहली जीत दर्ज की। अब अमरीका का मुकाबला बेल्जियम से होगा। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के सत्र में सेंसेक्स 402 अंक के साथ 77,325 के उच्चतम स्तर पर और निफ्टी 129 अंक बढ़कर 24,135 पर आ गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के बीच वार्षिक शिखर सम्मेलन स्तर की बातचीत। दोनों देशों के बीच आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा, फार्मास्यूटिकल्स और एआई सहित कई समझौते हुए। श्री मोदी ने कहा, भारत जापान के द्विपक्षीय संबंध समय की कसौटी पर खरे उतरे। संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन को लेकर भारत के प्रस्ताव को एक बार फिर से समर्थन मिला। जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे के रवाना होने के साथ ही श्री अमरनाथ जी यात्रा शुरू। दक्षिण पश्चिम मॉनसून की दिल्ली में दस्तक, उत्तरी तथा पश्चिमी राज्यों के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 540.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है फाजी भाइयों के लिए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम जय भारती। लेकिन उससे पहले ये संदेश।
2: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह है।

0: Tiesenä!
1: संदेश के बाद अब फौजी भाइयों के लिए कराए हैं हम फिल्म संगीत। तो पहला गीत हम सुनवा रहे हैं द लेजेंड ऑफ भगत सिंह फिल्म से, आवाज़ें हैं एआर रहमान और सुखविंदर सिंह की। समीर ने इस गीत को लिखा है, एआर रहमान ने संगीतबद्ध किया है।

अगला गीत अब फौजी भाइयों को सुनवाते हैं शान फिल्म से। आवाज़ें हैं मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार, आशा भोसले और उषा मंगेशकर की। आनंद बख्शी के बोल को संगीत से सजाया है आर डी बर्मन ने।

कार्यक्रम का अगला गीत, आइए अब आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ों में, फिल्म है नसीब। गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

कार्यक्रम का आखिरी गीत अब आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार की आवाज में। अनजान ने इस गीत को लिखा है, राजेश रोशन ने संगीत से सजाया है और फिल्म है याराना।

0: इसी गीत के साथ ही फौजी भाइयों के लिए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम जय भारती अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। 2:55 हुए हैं, आइए सुनते हैं प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं तृप्ति कुमारी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है आज। इस बैठक में राज्य की नई औद्योगिक और टेक्सटाइल नीति पर बड़ा फैसला होने की संभावना है, जिससे युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। इसके अलावा राज्य के विकास और जनहित से जुड़े कई अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर भी मुहर लग सकती है। करणी सेना के नेता हिमांशु सिंह हत्याकांड के विरोध में भारतीय जनता पार्टी आज शाम जमशेदपुर में मशाल जुलूस निकालेगी। भाजपा ने राज्य की कानून व्यवस्था के खिलाफ कल जमशेदपुर बंद का भी आह्वान किया है। इस बीच पुलिस ने मुख्य फरार आरोपी पर 2,00,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी के राजू 5 दिवसीय दौरे पर रांची पहुंच गए हैं। इस दौरान उनका मुख्य फोकस विशेष गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान पर रहेगा। किसी भी पात्र मतदाता का नाम न छूटे, इसके लिए कांग्रेस ने राज्य भर में 23,000 बूथ लेवल एजेंट तैनात किए हैं। सरायकेला खरसावां जिले के नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक मनोज स्वर्गियारी ने कार्यभार संभाल लिया है। पदभार लेते ही उन्होंने आदित्यपुर थाना का औचक निरीक्षण किया। नए एसपी ने कहा कि जिले में अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी।
2: प्रीवियस एसपी है, उन लोगों ने अच्छा काम करके पिछले क्या क्या कार्रवाई हम लोग कर सकते हैं, उसके बारे में शादी करके पहले हम लोग कोशिश करेंगे कि ड्रग्स में हम लोग हमेशा जीरो टॉलरेंस रहेगा और पुराना क्रिमिनल्स पहले हम लोग को वेरीफाई किया जाएगा। एंटी क्राइम चेकिंग में दिन में 2 बार हम लोग लगाने का शुरू करेंगे और उसमें अगर कोई क्रिमिनल इसमें घूम रहा है तो उसको भी हम लोग नजर करेंगे।
1: गौरतलब है कि कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर वर्तमान एसपी निधि द्विवेदी के स्थान पर मनोज स्वर्गियारी को जिले की कमान सौंपी गई है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। पाकुड़ में साल 2013 में नक्सली मुठभेड़ में शहीद हुए तत्कालीन एसपी अमरजीत बलिहार और 5 जवानों की पुण्यतिथि पर आज उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। पुलिस अधीक्षक अनुदीप सिंह समेत वरिष्ठ अधिकारियों ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर शहादत को नमन किया। इस मौके पर शहीद जवानों के परिजनों को भी सम्मानित किया गया। राज्य सरकार के आदेश पर जिले के सभी 6 प्रखंडों में ड्राइविंग लाइसेंस कैंप लगाए जा रहे हैं। इसी क्रम में आज जामताड़ा प्रखंड

0: कार्यालय में विशेष कैंप का आयोजन किया गया, जहां आवेदकों की भारी भीड़ उमड़ी। जिला परिवहन पदाधिकारी मुकेश कुमार ने बताया कि दस्तावेजों की जांच के बाद पात्र आवेदकों को मौके पर ही लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए जा रहे हैं।
1: उपायुक्त महोदय के मार्गदर्शन में ये प्रखंड स्तरीय ड्राइविंग लाइसेंस का कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इसमें आवश्यक दस्तावेज है, निवास प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, आधार नंबर, इन सभी दस्तावेजों को लेकर प्रज्ञा केंद्र में आवेदन करेंगे। आवेदन करने के उपरांत ऑनलाइन फी पेमेंट करके स्लॉट बुक करेंगे, यहाँ इस कैंप में टेस्ट के लिए आएंगे। अग्रेतर कार्रवाई करते हुए उनको लर्निंग लाइसेंस दिया जाएगा।
0: हजारीबाग नगर निगम को चालू वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में कुल 6,09,00,000 रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ। इस अवधि में 649 नए हाउस होल्ड का पंजीकरण भी किया गया है। राजस्व संग्रह में वार्ड संख्या 12 पहले और वार्ड संख्या 5 दूसरे स्थान पर रहा। निगम प्रशासन ने समय पर टैक्स भुगतान करने वाले नागरिकों का आभार व्यक्त किया है। राज्य में 10 जुलाई तक अच्छी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार कल बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र बनने से राज्य के अधिकांश हिस्सों में अगले 10 दिनों तक अच्छी वर्षा होगी, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। हालांकि प्रशांत महासागर में अल नीनो के प्रभाव के कारण पूरे जुलाई महीने में सामान्य से कम बारिश का अनुमान है, जिससे किसानों की चिंता बढ़ सकती है। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। मीडियम वेव 540.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर प्रस्तुत है एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओ, मैं विमलेश, उमंग कार्यक्रम में आपका स्वागत करती हूं।
3: और मैं अजीत। आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुंदर विचार, जिसे हमें भेजा है गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी ने।
2: लिखते हैं, मित्रता एवं रिश्तेदारी परस्पर सम्मान पर टिकी होती है।
3: बहुत सुंदर विचार आपने भेजा है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू और सुजाता साहू जी का।
2: गांव ढाणी कुतुबपुर जिला हांसी हरियाणा से रामधारी अवनी प्रियांशी रियांशी ओजस अनाया गुरदीप और बेबी किरत अवाना ने लिखा है,
3: कार्यक्रम उमंग के प्रस्तुतकर्ता विमलेश जी और अजीत जी को सप्रेम नमस्कार। कार्यक्रम उमंग के तहत 3 जून 2026 को प्रस्तुत गोबी शीत मरुस्थल की भौगोलिक सांस्कृतिक एवं सामाजिक जानकारी हमारे लिए अत्यंत ज्ञानवर्धक रही। साथ ही प्रेरणादायी कहानी दोस्त की पहचान ने सच्ची मित्रता के गुणों को समझने की महत्वपूर्ण सीख हमें दी। ऐसे रोचक शिक्षाप्रद एवं प्रेरणादायक कार्यक्रमों की भविष्य में भी आपसे अपेक्षा है। आपके उत्कृष्ट प्रयास के लिए हृदय से धन्यवाद।
2: बड़ा बम चौक खंडवा से ममता मार्कंडेय और संजय मार्कंडेय जी लिखते हैं,
3: आदरणीय अजीत जी व विमलेश जी को सादर नमस्कार। समावेशी शिक्षा पर प्रोफेसर भारती जी द्वारा दी गई ज्ञानवर्धक जानकारी महत्वपूर्ण थी। साथ ही गुजरे सप्ताह शीत मरुस्थल पर बेहद शानदार जानकारी दी गई। ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारी को हमारे बच्चों ने छुट्टियों में बड़े ध्यान और लगन से सुना और वे इस पर अमल भी कर रहे हैं, इसलिए हम उमंग कार्यक्रम की पूरी टीम का हृदय से शुक्रिया अदा करते हैं।
2: हम भी आपका हृदय से शुक्रिया अदा करते हैं संदेश भेजने के लिए।
3: अगला संदेश हमें मिला है नर्मदा नगर मध्य प्रदेश से सूरज वर्मा ऋषभ कनक

0: और भावना वर्मा जी का।
1: ग्राम बंगला माटिया बालोद से शिव कुमार अंगारे।
0: आप सभी श्रोताओं को हमारी ओर से आभार खूबसूरत संदेशों को भेजने के लिए। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में। श्रोताओं, कल हमने चर्चा की थी बहुमूल्य खनिज सोने के बारे में,
1: और अब चलते हैं आगे और चर्चा करते हैं एक और खनिज के बारे में। तो अजीत जी, जरा उस खनिज का नाम तो बताइए।
0: जी विमलेश जी, वो तो बताऊंगा, लेकिन इस बार कुछ हिंट के साथ।
1: तो दीजिए हिंट।
0: हिंट है, ये खनिज सोने से भी अधिक मूल्यवान माना जाता है। इसकी चमक अत्यंत आकर्षक है
1: जी।
0: इसे तराशा जाता है। और हाँ, ये कांच काटने के काम भी आता है।
1: जी जी जी, मैं समझ गई, ये कहीं हीरा तो नहीं?
0: बिल्कुल सही जवाब। जी हाँ श्रोताओ, ये हीरा है। ये खनिज पृथ्वी पर पाए जाने वाले किसी भी प्राकृतिक पदार्थ से अधिक कठोर है। हीरे के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन प्रश्न ये है कि कितने लोग ये जानते हैं कि ये बनता कैसे है। तो आइए देते हैं इस रोचक चर्चा को विस्तार।
1: श्रोताओं, हीरे का निर्माण होता है पृथ्वी की गहराइयों में। अगर आप पूछें कि कितनी गहराइयों में, तो हम आपको बता दें कि पृथ्वी की सतह से लगभग 150 किलोमीटर नीचे पृथ्वी की परत मेंटल में बनता है।
0: आपको हम ये भी बता दें कि कोयला और हीरा दोनों ही मुख्य रूप से कार्बन से बने होते हैं
1: जी।
0: लेकिन हीरा बनने की प्रक्रिया बिल्कुल अलग है।
1: श्रोताओं, जैसा कि अभी हमने सुना था कि पृथ्वी की सतह से लगभग 150 किलोमीटर से भी अधिक गहराई में बनता है, आइए जानते हैं क्या होता है उन गहराइयों में।
0: श्रोताओं, पृथ्वी की गहराइयों में लगभग तापमान 1000 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक होता है, और वहाँ का दबाव वायुमंडलीय दबाव से हजारों गुना अधिक होता है।
1: इन अत्यधिक दबाव वाली परिस्थितियों में कार्बन के परमाणु एक विशेष क्रिस्टलीय संरचना में व्यवस्थित हो जाते हैं, जिसके कारण हीरा बनता है। इस प्रक्रिया में लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं। लेकिन अजीत जी, श्रोताओं की ओर से एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। अभी हमने जाना कि हीरे पृथ्वी की सतह से 150 से भी अधिक गहराई में बनते हैं। इतनी गहराई तक उत्खनन तो असंभव है, तो फिर हीरे तक हम कैसे पहुँचे?
0: सचमुच ये बहुत ही सुंदर प्रश्न है विमलेश जी। यदि हीरे इतनी गहराई में ही बने रहते तो हम उन्हें कभी देख ही नहीं पाते। होता ये है कि ज्वालामुखीय विस्फोटों के कारण मैग्मा यानी धरती के अंदर की पिघली चट्टानें तीव्र गति से ऊपर उठती हैं, और वे साथ साथ हीरों को भी पृथ्वी की सतह के बहुत करीब ले आती हैं,
1: और फिर हम उन्हें उत्खनन द्वारा निकाल लेते हैं। श्रोताओं, वैज्ञानिक दृष्टि से हीरा शुद्ध कार्बन है। आपको बता दें कि हीरा और आपके घर में पाई जाने वाली पेंसिल की नोक ग्रेफाइट दोनों ही कार्बन से बने हैं। अंतर केवल परमाणुओं की व्यवस्था का है।
0: पता है श्रोताओं, हीरे को यदि अत्यधिक ताप पर ऑक्सीजन में जलाया जाए तो अंत में कार्बन डाइऑक्साइड गैस में वो बदल सकता है। श्रोताओं, एक बात और आपको बता दें, आजकल आभूषणों और उद्योग में इस्तेमाल होने वाले हीरे प्रयोगशालाओं में ही बनाए जाते हैं।
1: लेकिन एक खास बात यह है कि कृत्रिम रूप में हीरों को बनाने के लिए एक छोटा प्राकृतिक हीरा इस्तेमाल किया जाता है, जिसे डायमंड सीड कहा जाता है। इस सीड के द्वारा प्राकृतिक प्रक्रिया की नकल करके हीरा बनाया जाता है। एक बात जरूर है कि प्राकृतिक रूप से हीरा बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं, लेकिन कृत्रिम रूप में इसे बनाने में बहुत कम समय लगता है।
0: लेकिन इसे बनाने की विधा या फॉर्मूला हमें प्रकृति से ही मिलता है, तो हम याद रख सकते हैं कि पृथ्वी की गहराइयों में अत्यधिक ताप और दबाव के कारण जो कार्बन के क्रिस्टल बनते हैं उन्हें हम हीरा कहते हैं।
1: तो श्रोताओं, आप कह सकते हैं कि आपके हाथ में चमकता हुआ हीरा वास्तव में पृथ्वी की गहराइयों में लाखों करोड़ों वर्ष पहले बना हुआ एक अद्भुत प्राकृतिक चमत्कार है।
0: जी, तो श्रोताओं ये थी जानकारी हीरे की। अब सुनिए आज का प्रश्न। आज की ही जानकारी से प्रश्न है, डायमंड सीड किसे कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: डायमंड सीड किसे कहते हैं?
0: आप हमारे प्रश्नों के उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर भेज सकते हैं, और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो सुनते हैं आज का पहला शैक्षिक कार्यक्रम। शीर्षक है न्याय।
1: ये कार्यक्रम कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है, जिसके द्वारा पशु पक्षियों के प्रति दया और प्रेम भाव रखने का संदेश दिया गया है।
2: चलो मित्र सिद्धार्थ, उद्यान की ओर चलते हैं, सरोवर के पास। कैसी शांति है, पक्षी नीड़ों की ओर लौट रहे हैं। वहां देखो उस पेड़ पर, कैसे वो चिड़िया अपने बच्चे को दाना खिला रही है, अति सुंदर। और तनिक उधर देखो उद्यान के बाहर, कैसे एक बछड़ा अपनी माँ की ओर दौड़ा चला जा रहा है। और गाय अपने बछड़े

0: विश्व को अहिंसा और शांति का पाठ पढ़ाया। प्रारंभ में उनका जीवन राजसी सुख सुविधाओं से भरपूर था। आइए एक बार फिर से चलते हैं उस उद्यान की ओर, जहां दोनों मित्र वार्तालाप कर रहे हैं।
1: युवराज, तनिक ऊपर देखो, कितने सुंदर पक्षी हैं।
2: ये राजहंस हैं। ऐसा लगता है मानो हवा में तैर रहे हैं, और इतनी ही सुंदरता से वे पानी में भी तैर सकते हैं।
1: ओह, देखो, एक राजहंस नीचे की ओर गिर रहा है। हाँ, लगता है उसे तीर लगा है।
2: प्यारे पक्षी, सब ठीक हो जाएगा, घबराओ नहीं। मैं हूं ना, न जाने किस निर्दयी ने इसे घायल कर दिया। भला इसका क्या दोष है?
3: दोष ये है कि ये सुंदर है, प्यारा है, सबको पसंद आता है।
2: क्या सुंदर होना और सबका प्यारा होना कोई दोष है? प्यारे हंस, मैं तुम्हारा ये तीर निकाल देता हूं, फिक्र मत करो। ये निकाल दिया, अब तुम मेरी गोद में थोड़ी देर विश्राम कर लो। मित्र, कोई भी व्यक्ति जिसके पास हृदय है, इन निर्दोष पक्षियों को मार ही नहीं सकता। तुम जरा दौड़कर राजवैद्य से इसके लिए कोई औषधि तो ले आओ।
3: हाँ मित्र, अभी जाता हूँ।
0: युवराज सिद्धार्थ ने हंस को विश्राम करने के लिए पास के ही एक कुंज में लिटा दिया और वसु के आने की प्रतीक्षा करने लगे। इतने में उनके चचेरे भाई देवदत्त आ पहुँचे। वे इधर उधर देख रहे थे, मानो कुछ खोज रहे हों।
4: कुमार सिद्धार्थ, अभी मैंने एक उड़ते हुए हंस को तीर मारकर नीचे गिराया था। मैंने अपनी आंखों से उसे गिरते हुए देखा था। वो इधर ही कहीं आया है। तीर धनुष पर मेरा लक्ष्य अब भली भांति सद गया है। ये बात मैं कल गुरुजी को बताऊंगा तो वो कितने प्रसन्न होंगे। तुम गुरुजी के सामने मेरी गवाही दोगे ना?
2: अवश्य दूंगा देवदत्त, और वो भी प्रमाण के साथ, क्योंकि इसका प्रमाण वो हंस है जिसे तुमने मारा है।
4: हाँ, तो हंस तुम्हारे पास है, लाओ उसे मुझे दे दो।
2: क्यों दे दो?
4: ये तो बड़ा ही विचित्र प्रश्न है भाई। इसलिए दे दो क्योंकि मैंने उसे मारा है।
2: लेकिन मैंने इसे बचाया है।
4: तुम राजकुमार हो इसलिए मुझे धमकी देना चाहते हो? मैं भी देखता हूँ कैसे नहीं दोगे। इसका निर्णय तो अब राज दरबार में ही होगा।
0: तो साथियों, दूसरे दिन दरबार लगा हुआ था।
5: महाराज की जय हो,
6: महाराज की जय हो,
7: महाराज की जय हो।
0: प्रतिहारी ने सभी प्रकरणों की जानकारी दी और बताया कि आज कुमार देवदत्त भी एक प्रकरण न्याय के लिए प्रस्तुत करना चाहते हैं। राजकुमार सिद्धार्थ भी उपस्थित थे।
8: कुमार देवदत्त को प्रस्तुत किया जाए।
4: महाराज को प्रणाम करता हूँ। महाराज, मेरा कहना है कि राजकुमार सिद्धार्थ ने मेरा हंस ले लिया है, जिसे मैंने मारा था। वो मुझे मेरा हंस नहीं दे रहे, मुझे न्याय चाहिए।
8: राजकुमार सिद्धार्थ, क्या ये वही हंस है जो आपकी गोद में है?
2: महाराज को प्रणाम करता हूँ। जी महाराज, ये वही हंस है। मेरा कहना है कि कुमार देवदत्त ने इस हंस को मारा है, लेकिन मैंने इसे बचाया है। अतएव मैं ये हंस इन्हें नहीं दे सकता।
8: लेकिन सिद्धार्थ, देवदत्त ने इस हंस का आखेट किया है।

0: अनुसार आखेट वीर का अधिकार है। वीर आखेट को छोड़ नहीं सकता।
1: जी महाराज, लेकिन नियम तो ये भी कहता है कि वीर शरणागत को भी नहीं छोड़ सकता। हमारी शाक्य राजवंश की परंपरा और शास्त्रों का नियम तो ये भी कहता है कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है।
2: पर महाराज, मैंने पहले इस हंस को मारा है, इसलिए ये मेरा है।
1: जी, पहले मारा था, तभी तो वो मेरी शरण में आया है। बिना मारे वो मेरी शरण में कैसे आता?
0: महामंत्री, समस्या जटिल हो गई है। क्या आप कोई मार्ग सुझा सकते हैं?
3: जी महाराज, आपकी आज्ञा हो तो मैं अभी तुरंत दूध का दूध और पानी का पानी कर सकता हूँ। अब तो निर्णय ये हंस ही करेगा।
0: निर्णय ये हंस ही करेगा? भला वो कैसे आज्ञा है?
3: महाराज, मेरा आग्रह है कि हंस को यहाँ इस आसन पर बैठाया जाए।
4: हंस को आसन पर बैठा दिया गया। हंस भयभीत था, लेकिन सिद्धार्थ उसे सांत्वना दे रहे थे। सभा स्तंभित थी, सभी फुसफुसा रहे थे।
5: पता नहीं ये हंस कैसे बताएगा?
6: गद्दी पर बैठ कर सिद्धार्थ से मिलना चाहिए।
5: सिद्धार्थ ने बताया होगा कैसे।
6: देवदत्त तो बारे में उनका है।
3: कुमार देवदत्त, आप कहते हैं कि इस पर आपका अधिकार है। आसन के पास आइए और हंस को अपने पास बुलाइए।
7: ओ प्रिय हंस, मेरे पास आओ, आ जाओ, आओ मेरे पास, आ जाओ।
4: देवदत्त जितनी बार हंस को बुलाते, वो उतनी ही बार भय के मारे आसन से चिपक जाता। देवदत्त ने बहुत प्रयास किया, लेकिन बात नहीं बनी।
3: अब मैं राजकुमार सिद्धार्थ को सामने बुलाना चाहूंगा और कहूंगा कि वे भी हंस को अपने पास बुलाएं।
8: प्यारे राजहंस, मेरे प्रिय मित्र, डरो मत, तुम्हें कोई हानि नहीं होगी, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। मेरे पास आ जाओ, अपने मित्र के पास आ जाओ, आ जाओ, घबराओ मत।
4: फिर क्या था, पलक भी नहीं झपकी थी। हंस ने अपने पंख फैलाए और उड़ता हुआ सिद्धार्थ की गोद में ऐसे आ चिपका जैसे एक बालक अपनी माँ की गोद में चिपक जाता है।
0: स्वयं इस पक्षी ने अपना निर्णय बता दिया है। हमने सुना था कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। आज साक्षात देख भी लिया। मैं हर्ष के साथ घोषित करता हूँ कि ये हंस युवराज सिद्धार्थ का ही है।
9: महाराज जय हो,
10: महाराज जय हो,
11: महाराज जय हो।
12: अभी आप सुन रहे थे कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वीणा के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम न्याय। साथियों, इस कार्यक्रम में आपने दो शब्द सुने। पहला शब्द था नीड और दूसरा शब्द था आखेट। तो इसका अर्थ आपको बता देते हैं। नीड शब्द का अर्थ है घोंसला और आखेट शब्द का अर्थ होता है शिकार। अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को, पशु पक्षियों का ख्याल रखने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, सोचिए और इसकी सूची बनाइए। अभी आपने सुना कार्यक्रम न्याय।

0: तो सुनिए अपने छोटे बच्चों के मन की बात। निष्ठा, गुणवत्ता पूर्ण प्रारंभिक बाल शिक्षा, जिससे मिलेगा बचपन को महत्वपूर्ण आयाम। बाल्यावस्था में 6 वर्ष तक के छोटे बच्चों का शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्तर पर तीव्र सकारात्मक विकास होता है। जी हाँ, अब महकेंगे आंगनबाड़ी और प्री स्कूल, क्योंकि गुणवत्तापूर्ण बाल शिक्षा से, निष्ठा से खिलेंगे ये नन्हे फूल।
1: और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम, शीर्षक है हमारा आदित्य।
2: ये कार्यक्रम कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है, जिसमें भारत के सौर मिशन की विस्तार से जानकारी दी गई है।
3: 5, 4, 3, 2, 1, 0।
4: दिन था 2 सितंबर 2023, स्थान इसरो का सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, समय भारतीय समय अनुसार ठीक 11:50। जब अंतरिक्ष यान आदित्य L1 की गगनभेदी गर्जना से आकाश गूंज उठा, लाखों करोड़ों लोगों ने सारी दुनिया में इस दृश्य को टेलीविजन पर देखा।
5: श्रीहरिकोटा से आदित्य L1 इसरो के पहले सौर मिशन को लॉन्च कर दिया गया।
4: रेडियो पर समाचार प्रसारित हुए और दूसरे दिन के सभी अखबारों ने इसे अपने मुख पृष्ठ पर प्रमुखता से छापा। शीर्षक था आदित्य L1 का सफल प्रक्षेपण। अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत विश्व की चौथी महाशक्ति बना। आज कक्षा में बड़े उत्साह का वातावरण है, क्योंकि विद्यालय के विशेष निमंत्रण पर आज जाने माने स्पेस जर्नलिस्ट श्री विनीत चरण जी आने वाले हैं, जो सौर यान आदित्य के बारे में बातचीत करेंगे।
6: क्या तुम्हें पता है कि श्री विनीत चरण जी आने वाले हैं?
7: क्या वो चंद्रयान के बारे में बात करेंगे?
6: मुझे लगता है वो आदित्य यान के बारे में बात करेंगे।
7: चलो देखते हैं वो किस यान के बारे में बात करेंगे।
8: हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब?
9: हम अच्छे हैं।
8: तो बच्चों, शुरू करते हैं बातचीत। आप तैयार हैं?
9: जी हम तैयार हैं।
8: तो आज हम बातचीत करने जा रहे हैं भारत के सौर यान आदित्य

0: एल्वन के बारे में।
1: बच्चों शांत हो जाओ, आप बारी बारी सर से सवाल पूछ सकते हैं।
2: सर इसका नाम आदित्य क्यों पड़ा?
0: बहुत अच्छा सवाल। देखो आदित्य एक संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ है सूरज यानी सूर्य। अच्छा चलो बताओ सूर्य के लिए और कौन कौन से शब्द हैं?
2: सर टीचर ने बताया था कि सूर्य को रवि और भास्कर भी कहते हैं।
0: बहुत अच्छे। चलो अब मेरी ओर से एक खास सवाल। अच्छा तो अब ये बताओ कि क्या तुमने किसी वैज्ञानिक का नाम सुना है जिनके नाम में भास्कर शब्द जुड़ा है?
3: जी सर, उनका नाम है भास्कराचार्य।
0: अरे वाह, तुम्हारा क्या नाम है बेटी?
3: जी मेरा नाम श्रुति है।
0: शाबाश श्रुति। तुम्हें बता दूं कि भास्कराचार्य प्राचीन भारत के महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। हाँ तो अब हम सबसे पहले बात करेंगे सूर्य की। क्या आप जानते हैं कि सूर्य क्या है? मेरा मतलब है कि सूर्य ग्रह है या तारा है?
4: सूर्य ग्रह है या तारा?
0: अरे सोचो सोचो, जो जवाब देगा या प्रश्न पूछेगा वो सबसे पहले अपना नाम बताएगा।
2: सर मेरा नाम सुमित है, सूर्य एक ग्रह है।
0: सुमित तुमसे जरा सी भूल हो गई, सूर्य असल में एक तारा है।
2: अच्छा सर।
5: सर मेरा नाम सोहम है, मेरा प्रश्न यह है कि सूर्य इतनी गर्मी कैसे देता है? क्या वहाँ आग जलती है?
3: और अगर जलती है तो वहाँ आग किसने लगाई होगी?
0: बच्चों दरअसल सूर्य में गर्मी आग जलने से नहीं होती। सूर्य ऐसी गैसों से बना है जो बहुत गर्म होती हैं, जैसे हीलियम और हाइड्रोजन।
5: हीलियम और हाइड्रोजन सर?
0: हाँ, सूर्य मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम नाम की गैसों का एक विशाल गोला है।
5: विशाल गैसों का गोला? अब समझ आया कि सूर्य इतना गर्म कैसे होता है।
0: शाबाश, समझ गए ना?
2: जी सर।
3: सर जिस तरह से चंद्रमा पर जाया जा सकता है, क्या उसी प्रकार सूर्य पर भी जाया जा सकता है?
0: बहुत अच्छा प्रश्न किया है। देखो सूर्य का तापमान इतना अधिक है कि वहाँ चंद्रमा की तरह नहीं जाया जा सकता। हाँ एक निश्चित दूरी से सूर्य का अध्ययन किया जा सकता है, इसलिए तो हमारे देश ने सूर्य के बारे में अध्ययन करने के लिए आदित्य एल्वन को अंतरिक्ष में भेजा।
5: सर आदित्य अंतरिक्ष यान के बारे में हमें विस्तार से बताइए ना।
0: जरूर बच्चों, देखो आदित्य एल्वन चंद्रयान की तरह ही एक यान है जिसका कार्य है सूर्य के बारे में जानकारी जुटाना।
2: जी जी सर।
0: जैसे ये किस समय कैसा होता है, इसका तापमान स्थिर रहता है या घटता बढ़ता है, और इसका क्या प्रभाव हमारी पृथ्वी या सौर मंडल के अन्य ग्रहों पर पड़ता है।
3: सर हमने आपके लेख में ही पढ़ा है कि आदित्य यान ने सूर्य के कई फोटोज पृथ्वी पर भेजे हैं।
0: हाँ सही कहा, आदित्य यान का मुख्य उद्देश्य सूर्य की बाहरी परतों का अध्ययन करना है। इन तस्वीरों से हमें तूफानों और अंतरिक्ष के मौसम की बेहतर जानकारी मिलेगी, जिससे भविष्य में संचार और उपग्रह सेवाओं को सुरक्षित रखने में हमें बड़ी मदद मिलेगी।
5: सर मेरा नाम दिवाकर है।
0: भाई वाह, दिवाकर का मतलब भी तो सूर्य ही होता है ना?
2: जी सर।
0: जी दिवाकर आपका प्रश्न क्या है?
5: सर मेरा प्रश्न है, यदि सूर्य इतना गर्म है तो आदित्य यान उसके पास जाकर तस्वीरें कैसे भेज रहा है? क्या वो जल नहीं जाएगा?
0: अरे भला जलेगा कैसे, आदित्य यान सूर्य से एक सुरक्षित दूरी पर है, करोड़ों किलोमीटर दूर, समझे?
3: जी सर। सर आदित्य यान का पूरा नाम आदित्य एल्वन क्यों है? एल्वन का क्या मतलब है?
0: देखो बेटी एल्वन का मतलब है लैग्रेंज पॉइंट। ये बिंदु अंतरिक्ष का एक विशिष्ट स्थान होता है जो सूर्य और पृथ्वी के केंद्रों को जोड़ने वाली रेखा पर होता है। इस स्थान से सूर्य को लगातार बिना किसी रुकावट के देखा जा सकता है, और ये देखा गया है के अंतरिक्ष

0: चांद लगभग स्थिर रहता है। लैग्रेंज बिंदु 1 से 5 तक होते हैं।
1: सर, एक बार जब सूर्य ग्रहण लगा था तो हमें विशेष प्रकार की किट दी गई थी और कहा गया था कि इसी किट के द्वारा सूर्य को देखें। ऐसा क्यों?
0: बेटा सोहम, सिर्फ सूर्य ग्रहण के समय ही नहीं, सूर्य को कभी भी प्रत्यक्ष आंखों से देखना हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। लेकिन आदित्य यान ने जो तस्वीरें हमें भेजी हैं, उन्हें देखकर हमें पता चलता है कि सचमुच कितना अद्भुत है हमारा सूर्य।
2: सर, आपकी बातें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं भी बड़े होकर अंतरिक्ष वैज्ञानिक बनूंगी, चंद्रमा और दूर दूर के तारों के बारे में पढ़ूंगी और अंतरिक्ष यान भी भेजूंगी।
0: शाबाश बच्चों, शाबाश। खूब पढ़ो, खूब पढ़ो और देश का नाम हमेशा रोशन करो।
3: तो साथियों, अभी आपने सुनी जानकारी L1 यानी आदित्य यान के बारे में। कैसी लगी जरूर बताइएगा और ये भी पता लगाइए कि और कौन कौन से यान अंतरिक्ष में भारत द्वारा भेजे गए हैं।
4: हमारा आदित्य, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के बाद हमारा आज का उमंग कार्यक्रम समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
5: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
4: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
6: अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं रांची मेलोडीज़।

रांची मेलोडीज में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। आज की रांची मेलोडीज में हम आपको सुनाएंगे पार्श्व गायक मोहम्मद अजीज के गाए कुछ गीत। आज उनका जन्मदिन है। मोहम्मद अजीज का जन्म 2 जुलाई 1954 को पश्चिम बंगाल के कोलकाता में हुआ था। बचपन से ही उन्हें संगीत के प्रति काफ़ी लगाव था और वे दिग्गज गायक मोहम्मद रफ़ी को अपना गुरु और प्रेरणा मानते थे। उन्होंने अपने पेशेवर गायन करियर की शुरुआत एक बंगाली फिल्म ज्योति से की थी। 1985 में उन्हें अमिताभ बच्चन की फिल्म मर्द में गाने का मौका मिला और उस फिल्म का टाइटल सॉन्ग इतना सुपरहिट हुआ कि वे रातों रात बॉलीवुड के चहेते गायक बन गए। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। तो आइए सुनते हैं मर्द फिल्म का ये गीत।

टांगे वाला मैं हूँ मर्द टांगे वाला, हे मर्द टांगे वाला मैं हूँ मर्द टांगे वाला, मुझे दुश्मन क्या मारेगा मेरे दोस्त है ऊपर वाला, मर्द टांगे वाला वो मर्द टांगे वाला, मुझे दुश्मन क्या मारेगा मेरे दोस्त है।

अरे क्यों भाई बादल क्यों भाई मोदी, मैं सच कहता हूँ मर्द टांगे वाला मैं हूँ, मर्द टांगे वाला। मुझे दुश्मन क्या मारेगा मेरे दोस्त ऊपर वाला, मर्द टांगे वाला मैं हूँ, मर्द टांगे वाला। मुझे दुश्मन क्या मारेगा मेरे दोस्त ऊपर वाला।

क्यों भाई बादल क्यों भाई मोदी, मैं सच कहता हूँ मर्द टांगे वाला, मैं हूँ मर्द टांगे वाला। मुझे दुश्मन क्या मारेगा, मेरा दोस्त है ऊपर वाला। मर्द टांगे वाला मैं हूँ मर्द टांगे वाला, मुझे दुश्मन क्या मारेगा मेरा

बचपन से ही संगीत में खास रुचि रखने वाले मोहम्मद अजीज ने कोलकाता में ही संगीत गायन की शिक्षा ली। मोहम्मद अजीज बचपन में सामाजिक और पारिवारिक समारोह में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे और अपनी गायन कला का प्रदर्शन करते थे। रेस्टोरेंट में गाने वाले मोहम्मद अजीज को बतौर गायक पहला मौका मिला 1984 में बनी बंगाली फिल्म ज्योति से। इस फिल्म के निर्माता की मुलाकात मोहम्मद अजीज से रेस्टोरेंट में ही हुई थी और इस फिल्म में गाने के बाद मोहम्मद अजीज संगीत की दुनिया में नाम कमाने के लिए मुंबई चले गए।

फिल्म मर्द के बाद लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की नज़र मोहम्मद अजीज़ पर गई और उन्होंने 1986 में मोहम्मद अजीज़ को फिल्म आग और शोला में अपने संगीत पर गाने का मौका दिया। उसके बाद मोहम्मद अजीज़ लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की पहली पसंद बन गए और उन्होंने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी के साथ 30 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया।

मोहम्मद अजीज की आवाज़ मोहम्मद रफ़ी से भी मिलती थी और वे उन्हें अपना गुरु भी मानते थे। और मोहम्मद अजीज़ जो है वो ऊंचे सुरों यानी हाई नोट्स के गीतों को भी आसानी से गाते थे। उन्होंने अपने करियर के दौरान मोहम्मद अजीज़ ने बॉलीवुड अभिनेताओं जैसे दिलीप कुमार, शम्मी कपूर, धर्मेंद्र, जितेंद्र, अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना, विनोद खन्ना, शत्रुघ्न सिन्हा, शशि कपूर, ऋषि कपूर, मिथुन चक्रवर्ती आदि के लिए गीत गाए हैं।

संगीत की दुनिया में मोहम्मद रफी के उत्तराधिकारी माने जाने वाले गायक मोहम्मद अजीज हिंदी सिनेमा के उन गायकों में से एक हैं जिन्होंने अपनी आवाज से तमाम सितारों के करियर को ऊंचाइयां दी। उन्होंने अपने करियर में बहुत सारे गायिकाओं के साथ भी गीत गाए, निर्देशकों के साथ भी उन्होंने काम किया, जैसे कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, बप्पी लहरी। उन्होंने लता मंगेशकर, आशा भोसले, अनुराधा पौडवाल, कविता कृष्णमूर्ति जैसे दिग्गज गायिकाओं के साथ कई सुपरहिट गीत भी गाए। 80-90 के दशक में अपनी मखमली आवाज से हर दिल पर राज करने वाले मशहूर पार्श्व गायक मोहम्मद अजीज के गाए अनगिनत सदाबहार गाने आज भी हमारे दिलों में जिंदा हैं। 27 नवंबर 2018 को मुंबई में दिल का दौरा पड़ने के कारण उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन उनकी जादुई आवाज़ आज भी संगीत प्रेमियों के दिलों में जिंदा है।

0: रांची मेलोडीज अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है, 4 बजे है। आइए सुनते हैं प्रादेशिक मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं तृप्ति कुमारी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज अपने आवासीय कार्यालय में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत स्वयं एन्यूमरेशन प्रपत्र भरा। इस अवसर पर विधायक कल्पना सोरेन ने भी अपना प्रपत्र जमा किया। मुख्यमंत्री ने राज्य के सभी पात्र मतदाताओं से समय पर इस प्रक्रिया को पूरा करने और लोकतंत्र को मजबूत बनाने की अपील की है। जमशेदपुर शहर में बढ़ती आपराधिक घटनाओं, हिमांशु सिंह हत्याकांड और अवैध नशे के कारोबार के खिलाफ भाजपा समेत एनडीए दलों ने कल जमशेदपुर बंद का आह्वान किया है। बंद की पूर्व संध्या पर आज पूरे शहर में मशाल जुलूस निकाला जाएगा। भाजपा प्रवक्ता अभय सिंह और विधायक पूर्णिमा साहू ने जनता से बंद का समर्थन करने की अपील की है। सारंडा जंगल में नक्सलियों की धमक खत्म होने के बाद झारखंड पुलिस ने वहां तैनात जवानों के रोटेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आईजी अभियान नरेंद्र सिंह ने बताया कि मॉनसून के दौरान जवानों को बरसाती बीमारियों और ब्रेन मलेरिया से बचाने के लिए ये कदम उठाया गया है। पलामू में आज से प्रखंड स्तरीय ड्राइविंग लाइसेंस कैंप की शुरुआत की गई है। पहले दिन लेस्लीगंज पंचायत सचिवालय में आयोजित कैंप का उद्घाटन उपायुक्त दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने किया। उपायुक्त ने मौके पर 10 लाभुकों के बीच ऑन स्पॉट लर्निंग लाइसेंस का वितरण किया। राज्य में 10 जुलाई तक अच्छी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार कल बंगाल खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र बनने से राज्य के अधिकांश हिस्सों में अगले 10 दिनों तक अच्छी वर्षा होगी, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। गुमला में जिला स्तरीय सुब्रत मुखर्जी फुटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। संत इग्नेशियस उच्च विद्यालय के जुबली स्टेडियम में आयोजित इस प्रतियोगिता का उद्घाटन मुख्य अतिथि उप विकास आयुक्त अनिमेश रंजन ने किया। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम विज्ञान जगत। वाचन एवं सहयोग बसंत कुमार का है और कार्यक्रम की प्रस्तुति है प्रभु शरण की।

नमस्कार, विज्ञान जगत कार्यक्रम के साथ एक बार फिर से उपस्थित है हम। मैं हूं बसंत और आप सभी का स्वागत है विज्ञान जगत कार्यक्रम में। तो हर बार की तरह फिर से हम नई जानकारी और तथ्यों को लेकर उपस्थित हो चुके हैं। तो चलिए सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि आज के कार्यक्रम में हम आपसे किन किन विषयों पर बात करने वाले हैं और क्या जानकारी देने वाले हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले आज हम चर्चा करेंगे एसी के उपयोग में हमें सावधानी क्यों बरतनी चाहिए इसके बारे में। इसके बाद बारी होगी भेंटवार्ता की, जिसमें आज हम तकनीकी विकास से मीडिया का बदलता स्वरूप पर बात करेंगे।

0: इसके बाद बारी होगी वैज्ञानिकों के बारे में बातचीत करने की, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं वैज्ञानिक सर आइजक न्यूटन के बारे में। इसके बाद बारी होती है खोज और आविष्कार की, जिसमें आज हम आपको जानकारी देंगे कॉम्पैक्ट डिस्क यानी सीडी के बारे में। तो ये हमने आपको बता दिया कि आज के कार्यक्रम में हम आपसे किन किन विषयों पर बात करने वाले हैं और क्या जानकारी देने वाले हैं इसके बारे में। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं एसी के उपयोग के बारे में और इसकी सावधानी के बारे में। आज के समय में एयर कंडीशनर अर्थात एसी केवल एक सुविधा नहीं बल्कि कई स्थानों पर आवश्यकता बन चुकी है। ये हमें भीषण गर्मी से राहत देने का काम तो करता ही है, कार्य क्षमता बढ़ाने और आरामदायक वातावरण भी बनाने का काम करता है। लेकिन यदि इसका उपयोग सावधानी पूर्वक न किया जाए तो ये स्वास्थ्य, बिजली, सुरक्षा और पर्यावरण तीनों के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। सबसे पहले अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो बहुत अधिक कम तापमान पर एसी चलाना उचित नहीं माना जाता। विशेषज्ञ सामान्यतया लगभग 24 से 26 डिग्री सेल्सियस तापमान रखने की सलाह देते हैं। इससे बिजली की बचत भी होती है और शरीर पर अनावश्यक प्रभाव भी नहीं पड़ता। बाहर की तेज गर्मी से सीधे अत्यधिक ठंडे कमरे में आने या एसी वाले कमरे से तुरंत धूप में जाने से सर्दी जुकाम शरीर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है एसी की नियमित सफाई। एसी के फिल्टर और वेंट समय समय पर साफ करने चाहिए। गंदे फिल्टर धूल, बैक्टीरिया और एलर्जी पैदा करने का काम करते हैं, जिससे सांस संबंधी समस्याएं हो सकती। और बिजली की सुरक्षा की बात करें तो एसी को हमेशा अच्छी गुणवत्ता के वायरिंग सिस्टम की जरूरत पड़ती है। उचित अर्थिंग के साथ इसको लगवाना काफी आवश्यक माना जाता है। खराब तार, ढीले प्लग या ओवरलोड बिजली कनेक्शन आग लगने का कारण बन सकते हैं, इसलिए समय समय पर इसकी जांच करवाते रहनी चाहिए। जब आवश्यक न हो तो एसी बंद कर देनी चाहिए। यदि संभव हो तो टाइमर या ऊर्जा बचत मोड पर इसका उपयोग करना फायदेमंद हो सकता है। बच्चों को एसी के रिमोट या बिजली के स्विच के साथ खेलने देने की जो आदत है उसे रोकना बहुत आवश्यक है। एसी की मरम्मत खुद से करने का कुछ लोग प्रयास करते हैं जो कि काफी घातक सिद्ध हो सकता है। किसी भी खराबी की स्थिति में प्रशिक्षित तकनीशियन की ही सहायता से एसी को ठीक करवाना चाहिए। कोशिश करें कि एसी का उपयोग जो है वो कम करें। हाँ, लेकिन अगर एसी का इस्तेमाल करते हैं तो सावधानी आवश्यक है। हमने एसी के बारे में बातचीत कर ली, अब आगे बढ़ते हैं और भेंटवार्ता की बात करते हैं। भेंटवार्ता में आज हम तकनीकी विकास से बदलते मीडिया के स्वरूप के बारे में बातचीत करेंगे। भेंटवार्ताकार के रूप में आज हमारे स्टूडियो में हैं अजय कुकरेती और उनसे बात कर रहे हैं प्रभु शरण।
1: समय के साथ मानवता ने बहुत विकास किया और इस विकास यात्रा में मीडिया और टेक्नोलॉजी, इन दोनों का सहयोग काफी रहा और इनकी भूमिका बहुत अहम रही। तो आज हम इसी विषय पर बात करेंगे कि मीडिया की क्या भूमिका रही, मीडिया है क्या, इसका इतिहास कहाँ से शुरू हुआ और टेक्नोलॉजी के उपयोग से जैसे जैसे टेक्नोलॉजी अच्छी होती गई मीडिया का स्वरूप भी बदलता गया और ये किस तरह प्रभावित हुआ। इन तमाम बातों की जानकारी के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है रांची के बहुत ही अनुभवी, सक्रिय, लोकप्रिय पत्रकार अजय कुकरेती जी को। अजय जी नमस्कार।
2: नमस्कार सर।
1: वैसे तो अजय जी मुख्य रूप से खेल संपादन से जुड़े हैं और स्पोर्ट्स पर इनकी विशेष पकड़ है, लेकिन आज मीडिया के बारे में इनसे बात करें। हमारे श्रोता ये जरूर जानना चाहेंगे कि मीडिया क्या है। एक मीडिया एक ऐसा टर्म है जो कभी कभी एक कंफ्यूजन भी क्रिएट करता है कि मीडिया किसे कहते हैं, तो मीडिया है क्या।
2: जी बिल्कुल, आपने सही बात कही है सर कि मीडिया क्या है। मीडिया अगर शब्द पर जाए तो मीडिया का अर्थ हुआ माध्यम। माध्यम इसका कि हमें कहीं पहुंचना है, अपनी बात को कहीं पहुंचानी है तो हम मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। तो आज हम जिस संदर्भ में यहाँ पर बैठे हैं, जिस संदर्भ में हमने बात करनी है, उस संदर्भ में अगर हम मीडिया की बात करते हैं तो वह संचार से संबंधित है और संचार के माध्यम से ही उसका तात्पर्य यहाँ पर है। और इस संचार के संबंध में सूचनाओं का संप्रेषण जो है वही यहाँ पर संदर्भ है हमारा
1: मुख्य रूप से। मतलब अगर हम ये समझें कि जिसे हम पत्रकारिता कहें, या अपनी बातों को दूसरे तक पहुँचाने का जो जरिया है, आज हम उसी की बात करेंगे।
2: तो जैसे मैंने कहा कि मीडिया जो है संचार का एक माध्यम है, तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम अगर संचार की बात करते हैं, संप्रेषण की बात करते हैं, तो पहले हम कुछ चीजों को जमा करते हैं, उसको फिर खंगालते हैं, उसको एक अच्छा सा जामा पहनाते हैं और उसको एक प्रेजेंटेबल तरीके से प्रेषित करते हैं। किसे प्रेषित करते हैं, उसको

0: वाद उसका मुख्य कारण रहा। उसके साथ साथ सामाजिक सरोकार, मतलब बहुत सारी कुरीतियाँ थी भारत में जिनके बारे में लोग अज्ञानी थे, उनको पता नहीं था, तो उनको जागृत करने के लिए इसका सहारा लिया गया। लेकिन हम बात यहाँ विकास के संदर्भ में करें तो वो तो एक शुरुआत की बात हो गई, और उसके बाद सामाजिक कुरीतियों के प्रति जागरूक करने के लिए, और फिर स्वतंत्रता संग्राम से लेकर जिसको हम राष्ट्रवाद के रूप में हम कह सकते हैं, मुख्य रूप से वहाँ शुरुआत उसके उसी वजह से हुई है अपने हमारे देश में।
1: जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर आधुनिक मीडिया की बात कर लें तो जिस तरह से जो हमारा स्वतंत्रता संग्राम लड़ा गया, और उस समय बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी, बावजूद इसके सूचनाओं को इस छोर से अलग, जो भारत एक बड़ा देश है और पूरब से पश्चिम या उत्तर से दक्षिण तक बात पहुँचानी हो, तो मीडिया की शुरुआत हम वहाँ से मान सकते हैं कि हमारे संचार का जो संप्रेषण था वो वहाँ से आधुनिक काल में शुरू मान सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि मीडिया की ये पहुंच थी, उस समय मीडिया की पहुंच थोड़ी धीमी भी थी, टेक्नोलॉजी का इसमें प्रादुर्भाव हुआ, और टेक्नोलॉजी के प्रादुर्भाव के मीडिया का स्वरूप बहुत तेजी से बदलने लगा। तो अगर हम प्रिंट मीडिया की ही बात कर लें तो प्रिंट मीडिया में टेक्नोलॉजी का उसकी विकास यात्रा कैसे परिभाषित करेंगे?
0: आपने एक बहुत सही बात कही है कि उस समय रीच की बात, मतलब मीडिया की रीच की बात, जिसको हमने टेक्नोलॉजी से जोड़ा है, लेकिन उस समय ऐसा क्या था, अंग्रेजों की हुकूमत थी और अपनी बात को पहुंचाना था, तो उस समय के संदर्भ में अगर बात करें तो वो भी बहुत बड़ा सशक्त और बहुत कारगर माध्यम था उस समय, और उस समय के हिसाब से वो कम नहीं था उस परिदृश्य में, उस समय के परिदृश्य, क्योंकि उस समय बाकी चीजें तो थी नहीं, ना रेडियो था, ना टीवी था, ना अन्य कोई माध्यम नहीं था, एक ही माध्यम था जो कि प्रिंट, जिसको हम कहते हैं, उसी के माध्यम से हम पहुंचते थे। तो जैसा आपने ये बात कही कि तकनीक, तो तकनीक तो किसी भी चीज को आगे लेकर के जाती है, तो मीडिया इसमें कैसे अछूता रहता। तो तकनीक जब मीडिया में आई और इसका जो प्रभाव मीडिया में पड़ा, इसने प्रिंट मीडिया, फिलहाल तो हम संदर्भ तो हमारा प्रिंट मीडिया और दौर भी प्रिंट मीडिया का ही था, तो सबसे ज़्यादा प्रभाव प्रिंट मीडिया में तकनीक का पड़ा, दो तरह से मेरे अनुसार पड़ा होगा। एक तो छपाई, हम जानते हैं कि 712 ईस्वी में चीन में पहले छपाई शुरू हुई थी, उसके बाद जर्मनी में आया, उसके बाद छपाई का स्वरूप बदला, स्वरूप इस तरह से बदला कि प्रिंटिंग की जो टेक्नोलॉजी थी, पहले ब्लॉक प्रिंटिंग होती थी, उसके बाद ऑफसेट प्रिंटिंग आई, आज तो डिजिटल का जमाना आ गया, आज तो बहुत ही चेंज हो गया, आज तो ऐसा है कि अखबार अगर आप एक शहर में निकालते हैं तो दूसरे शहर में उसको प्रिंट भी कर सकते हैं, पहले तो ऐसा था नहीं। आप तो इस हिसाब से सबसे बड़ा क्या असर आया, रीच का, पहुंच का। एक तो छपाई, अगर हम अब से 10 साल या 15 साल पुराना ही अखबार आज भी देखें तो जो जिस स्वरूप में आज नज़र आता है वो अखबार, वो 10 साल पहले बिल्कुल ही अलग था, कलर प्रिंटिंग उसके बाद आया। तो ये जो है दो तरह से, मेरे हिसाब से दो तरह से बदलाव बड़ा आया, एक तो छपाई में आया और दूसरा है कि प्रिंट मीडिया की पत्रकारिता में आया।
1: इससे मीडिया कर्मियों को भी बहुत सुविधा हुई होगी, क्योंकि जैसा आपने कहा कि पहले ब्लॉक प्रिंटिंग होता था, तो एक एक शब्द एक एक अक्षर को उस हिसाब से, मतलब पूरे मैनेज
0: चुन करके
1: मैनेज करना, बनाना बहुत ही मुश्किल भरा काम था, और बहुत कंसंट्रेट करके बहुत प्रिसीजन के साथ वो काम करना पड़ता था। और जैसा कि आपने बताया कि अभी का स्वरूप देखेंगे तो बिल्कुल ही, अगर आप एक कोई भी पेज उठाकर देख लें अखबार के, पत्र पत्रिकाओं के, तो 15 साल में ही इतना परिवर्तन हो चुका है कि वो साफ नजर आ रहा है। तो आपने सही कहा कि टेक्नोलॉजी का फायदा तो स्वाभाविक तौर से हर क्षेत्र को प्रभावित किया टेक्नोलॉजी ने, मीडिया अछूता कैसे रहता। यही बात अगर हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के संदर्भ में आपसे बात करें कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में टेक्नोलॉजी ने किस तरह लोगों का जीवन परिवर्तित किया।
0: जी, मैं कहना चाहूंगा कि जब हमने बात की आजादी के समय की, आजादी के पहले की बात की मीडिया की, तो प्रिंट मीडिया ही था। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक की बात करते हैं तो हम सीधा बेसिक तौर पे आते हैं दो चीज पे, रेडियो और टेलीविजन।
1: बिल्कुल,
0: तो ये तो आजादी के पहले था नहीं, इसे हालांकि रेडियो का पहला प्रसारण मुंबई में 1923 में हो गया था, ऑल इंडिया रेडियो 1936 में संभवतः आ गया था। टेलीविजन की बात करें तो 60s पहुंच गया, 1959 में आ गया, तो ये बहुत एक लंबा पीरियड था उसका आने का। तो अगर हम तकनीक से जोड़ते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जोड़ते हैं, तो हम बात करते हैं ब्रॉडकास्ट मीडिया की, जैसे कि रेडियो और टीवी, हालांकि उसके बाद और आयाम उसमें जुड़ गए हैं, लेकिन बेसिक रूप से तो यही दो उसमें
1: जी
0: थे,
1: जी।
0: उस समय थे। तो ये जब इनका प्रवेश हुआ तो सबसे बड़ा जो परिवर्तन आया वो आया रीच का, और ज्यादा विस्तारित रीच उसका हो गया। इसके अलावा जो आया सबसे बड़ा परिवर्तन वो आया इंटरनेट, जब इंटरनेट का प्रवेश हुआ तो स्वरूप ही बदल गया। इंटरनेट आया तो प्रिंट मीडिया चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो भी है, उसका स्वरूप ही बदल गया। तकनीक का प्रभाव जो है,

0: जितना प्रिंट पर पढ़ा उतना ही मेरे अनुसार जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी पढ़ा। आज के दौर की बात को हम अलग रखते हैं, ये तो एक बिल्कुल दूसरा ही फेज आ गया। तो
1: बिल्कुल, अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात जब हम करते हैं तो सबसे पहला बदलाव तो रेडियो ही लाया, क्योंकि और रेडियो में भी देखिए टेक्नोलॉजी में कितना परिवर्तन है। पहले बड़ा वो बल्ब उसमें होता था, बल्ब के साथ रेडियो आता था, वो जब हम लोग ऑन करते थे थोड़ा समय लगता था, थोड़ा समय चाहिए, उसके बाद फिर ट्रांजिस्टर आया। तो ये सारे बदलाव आपने बताया कि हाँ रेडियो और टीवी, ये दो बदलाव इलेक्ट्रॉनिक्स में मुख्य थे। अगर बिल्कुल आधुनिक काल की बात करें, अभी की बात कर लें, जैसा कि आपने बताया भाई कि इंटरनेट के बाद प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक दोनों में ही क्रांति आ गई, तो अभी तक हम लोग क्या बात करते थे कि मीडिया में मीडिया कर्मी होते थे, वो अपनी बात या लोगों की राय लोगों तक पहुंचाते थे। अब जो मीडिया आया है इंटरनेट के बाद, जैसे सोशल मीडिया है, ब्लॉग लिख सकते हैं आप, अपना वेबसाइट शुरू कर सकते हैं, कई तरह के मतलब आपके पास प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं, इसमें आप क्या कहेंगे, इसका लाभ और इसके क्या कुछ नुकसान भी हो सकते हैं?
0: मुझे लगता है कि मेरा एक एग्जाम्पल उदाहरण में अगर इसमें दूं तो बहुत सारी चीज़ मेरे ख्याल से साबित हो सकती है। मुझे याद है जैसे हम दूरदर्शन की ही बात करें या आपकी बात करें, तो जैसे कोई लाइव प्रोग्राम अगर करना होता था रांची में, तो मुझे याद है कि ओबी वैन चल करके आती थी, उतना लंबा सफ़र करके रांची तक पहुँचती थी और तब सैटेलाइट के माध्यम से हम लाइव दिखाते थे। आज क्या है, आज एक 15 साल का बच्चा है वो फेसबुक लाइव ऑन करता है और अपना बर्थडे दिखा देता है सारी दुनिया को। तो इससे बड़ा क्रांति, इससे बड़ी बड़ा परिवर्तन और क्या हो सकता है कि एक फेसबुक और एक दो जो भी प्लेटफॉर्म आया है, हमारा मोबाइल आ गया, हमारा मोबाइल किसी चीज़ को लाइव बता देता है कहीं पर, तो इससे बड़ा और परिवर्तन और क्या हो सकता है। तो अकल्पनीय सी चीज़ थी उस दौर में, अगर मैं जाकर सोचता हूँ, जब हम देखते थे उतनी बड़ी गाड़ी चल करके 2 दिन सफ़र करके आई है और एक प्रोग्राम चल रहा है उसको लाइव दिखाया जा रहा है। पहले क्या था, पहले एक सेटअप चाहिए होता था, एक टीम चाहिए होती थी,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: एक टीम से खूब सारा पैसा लगता था। आज आपके पास क्या चाहिए, मोबाइल, एक बड़ा सा अच्छा सा कैमरे की भी आप जरूरत नहीं रही,
1: वो मोबाइल में ही
0: अब मोबाइल से ही, अब मोबाइल जर्नलिज्म आ गया। किसी ने सोचा भी होगा क्या कभी कि हम और आप भी पत्रकार बन सकते हैं, या हम तो हैं ही, लेकिन कोई कोई साधारण सा नागरिक भी जो है वो बिल्कुल वैसे ही काम कर सकता है, उसी तरह से अपनी सूचना को संप्रेषित कर सकता है और उसकी रीच भी दुनिया के हर कोने में, जहां तक इंटरनेट है वहां तक उसकी रीच है। तो ये तो अकल्पनीय सा विकास हुआ है।
1: बिल्कुल, टेक्नोलॉजी के प्रयोग ने कहां से कहां ला दिया मीडिया को, और हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति तक सूचनाओं के संप्रेषण से और इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से पहुंच सकता है। लेकिन इसके साथ आपको नहीं लगता कि थोड़ी रिस्पांसिबिलिटी भी बढ़ गई है, क्योंकि जब आप पत्रकारिता करते हैं या आप पढ़कर एक जर्नलिज्म कर कार्य करते हैं, तो वहां पर आप जानते हैं कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर हर हाथ में ये अस्त्र मिल जाए कि आप जो चाहें आप सूचना आप लोगों तक पहुंचा सकते हैं, तो इसके साथ कुछ ना कुछ रिस्क फैक्टर तो जरूर है। और क्या आपको नहीं लगता है कि इसके साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी समझनी चाहिए हम सभी लोगों को?
0: जी बिल्कुल, हर चीज के साथ, हर चीज के तो दो पहलू होते हैं, सिक्के के दो पहलू होते हैं, हम लोग जानते हैं। उसी तरह से कोई भी चीज, दुनिया संसार का कोई भी चीज है, उसमें अच्छाइयां होंगी तो कहीं ना कहीं उसमें बुराइयां भी होगी, तो उसमें करना क्या है, एक बैलेंस का निर्माण करना। अभी इसमें क्या हुई, जो मैंने अभी आप बताया यूट्यूब और फेसबुक, इसमें ऐसा हो गया है कि ये कमाई का जरिया बन गया है। मतलब कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना पेज है, उनका चैनल है, उसके माध्यम से कर रहे हैं और उनके फॉलोअर्स हुए और उनके व्यूअर्स हुए, तो वो हजारों में ही नहीं लाखों में कमाई कर रहे हैं वो। और हम देखते हैं ऐसे कितने कितने सारे, जैसे मतलब ये झारखंड की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में, पूरे भारत में ऐसे ऐसे कई लोग ऐसे होंगे जो कि एक संपादक से ज्यादा सैलरी जो है वो कुछ भी नहीं है, ना उसके पास डिग्री है जर्नलिज्म की, ना पढ़ाई है, ना अनुभव है। उसने उठाया मोबाइल, उसने निकाला फेसबुक और उसने यूट्यूब में चैनल बनाया, कुछ ऐसी ऐसी चीजें डाली और वो हो गया। उस तरह से बहुत सारे न्यूज से रिलेटेड भी वो चल रहे हैं। जैसे आपने कहा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हर काम में है, आती ही है। तो अब इसमें ऐसा क्या हो गया, इसमें इसका जो दुष्प्रभाव अगर हम कहें तो क्या क्या संभावित है। एक तो है सूचनाओं की बाढ़ आ गई है, इतना ज्यादा ओवरबर्डन हो गया, व्यक्ति यहाँ से आ रहा है, वहां से आ रहा है, व्हाट्सएप से आ रहा है, हर चीज हर जगह से आ रहा है, तो उसको सतर्क रहना पड़ेगा, उसके लिए खुद को करना पड़ेगा, खुद की सावधानियों से क्या ले क्या नहीं ले। एक तो इसमें सबसे पहले शुचिता की बात आती है, नैतिकता की बात आती है, जो कर रहा है, जिन्होंने ये शुरू किया है, जिनका चैनल है, जो समाचार डालते हैं, जो सूचना संप्रेषित करते हैं, माध्यम उनका कोई भी हो, उनका माध्यम व्हाट्सएप हो, उनका माध्यम फेसबुक हो, उनका माध्यम यूट्यूब हो, या फिर वो किसी और संचार माध्यम से जुड़े हुए, ये तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जैसा कि मैंने पहले कहा कि उनका ऐसा कुछ एजुकेशन उसमें नहीं होता है, अनुभव भी नहीं होता है, आज तो सिर्फ उठाना है और शुरू कर देना है। तो एक तो उनकी तरफ से है कि उनको इसमें देखना चाहिए, ये नैतिकता तो उनमें होनी चाहिए जो कि ये कर रहे हैं। दूसरा है जो कि ग्रहण कर रहे हैं, जो प्राप्त कर रहे हैं उस सूचना को जो कि उसमें। अब ऐसा है कि हिंदुस्तान की अगर बात करें तो जिसको हम कहते हैं कि इतना हम इस्तेमाल करते हैं इन चीज़ों को, तो एक मोबाइल की अगर बात करते हैं तो 24 घंटे में औसतन 7 घंटे और 18 मिनट एक हिंदुस्तानी मोबाइल के सामने रहता है। टीवी में भी उसका स्क्रीन टाइम है जो काफ़ी ज़्यादा है। तो अब उसको उसके लिए क्या है, उसके लिए है कि उसको सेलेक्टिव रहना चाहिए। सूचना की अधिकता है तो छान करके उसको सूचना लेना चाहिए। विश्वसनीयता की कमी हुई है तो यहाँ पर भी उसको सावधानी होना चाहिए। तीसरा है कि ये समय बहुत ज़्यादा लेता है, हमको दूसरे काम भी करने हैं, इसमें बह नहीं जाना चाहिए। फिर उसके अलावा है कि महंगा भी है, एक अखबार तो आपको 5 रुपये का आता है, लेकिन अगर आप डाटा के माध्यम से इसे यूज़ करते हैं उससे थोड़ा महंगा भी पड़ता है। इससे एडिक्ट नहीं होना चाहिए, ये बहुत बड़ी समस्या है कि इसका एडिक्शन हो गया मीडिया का, हम लोग मतलब इस मीडिया का एडिक्शन हो गया है, इतना ज़्यादा इसमें समय करते हैं। और कहना चाहूँगा एक बहुत इंपॉर्टेंट है जिस पर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, वह स्वास्थ्य से संबंधित, आपकी आँखों, आपके मस्तिष्क, आपकी नींद, सारी चीज़ों को भी प्रभावित करता है। और एक और है जिस पर भी ध्यान बहुत कम जाता है, डिजिटल मीडिया जैसे है। डिजिटल मीडिया का जो उपयोग है, प्रयोग है, वो किसी न किसी तरह से एक खतरा है निजता पर हमले, तो इन सब चीज़ों के प्रति सावधान होने की आवश्यकता।
1: बिल्कुल, ये बात आपने बहुत ही अच्छी बताई कि मीडिया तो है, कमाने का माध्यम भी बन गया है, आप रोजगार के रूप में इसे बहुत लोग ले रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही आपने जो इसके इनके लिमिटेशंस जो आपने बताया, जो कहाँ कहाँ ये नुकसान हमें कर सकता है, तो ये दोनों दो तरफा आपने बताया कि मीडिया की बाढ़ आ गई है तो रिस्पांसिबिलिटी उनकी भी होनी चाहिए कि किस तरह की सूचना, किस तरह का इंफॉर्मेशन हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं। सिर्फ पॉपुलर होने के लिए और कमाई का जरिया बन गया है तो ऐसी खबरें दिखाएं जिसे ज्यादा से ज्यादा लोग देख सकें, तो उससे बचना है। और आपने जो सबसे महत्वपूर्ण बात बताई वो जो इन्फॉर्मेशन ग्रहण करता है, जो रिसीवर है इन्फॉर्मेशन का, उनकी भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि आप बचें। आपने तमाम बातें आपने गिनवाई कि स्क्रीन टाइम, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर आपका स्वास्थ्य पॉइंट ऑफ व्यू से, सब कुछ आपने बता दिया। और ये भी बताया कि इसका एडिक्ट नहीं होना है, हमें कहीं ना कहीं से फिल्टर करके देखना है। मीडिया के बारे में, इसके टेक्नोलॉजी के बारे में, किस तरह से टेक्नोलॉजी ने मीडिया को ट्रांसफॉर्म किया, बदला, और किस तरह से इसकी गति तेज हुई, बहुत सारे फायदे हैं लेकिन इससे बहुत सारे नुकसान भी हैं जिसे हमें बच के रहना है। तो अजय जी, आप स्टूडियो में आए और हमारे श्रोताओं को बहुत अच्छी जानकारी दी और उनको अलर्ट भी किया इस मामले में, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: तो अभी हम सुन रहे थे भेंटवार्ता, तकनीकी विकास से मीडिया का बदलता स्वरूप, और इस विषय पर जानकारी दे रहे थे अजय कुकृति और उनसे बात कर रहे थे प्रभु शरण। अब बारी है वैज्ञानिकों के बारे में बातचीत करने की, और आज हम बात करने वाले हैं वैज्ञानिक सर आइज़क न्यूटन के बारे में। न्यूटन का जन्म इंग्लैंड में लिंकनशायर इलाके के छोटे से गांव में उस समय जन्म हुआ था जब महान वैज्ञानिक गैलीलियो का देहांत हुआ था। जन्म के समय न्यूटन बेहद कमजोर थे और उनका वजन भी सामान्य से काफी कम था, इसलिए उनके बचने की उम्मीद भी बेहद कम थी, लेकिन विषम परिस्थितियों में भी न्यूटन जीवित रह गए। न्यूटन के पिता किसान थे और उनका भी नाम आइज़क न्यूटन ही था। उनकी मृत्यु न्यूटन के जन्म के कुछ महीने पहले ही हो गई थी। जब न्यूटन 2 साल के हुए तब उनकी मां ने पुनर्विवाह कर लिया और न्यूटन को नानी के यहाँ भेज दिया। वहीं पर रहकर न्यूटन ने अपनी प्राथमिक शिक्षा हासिल की। माता पिता का प्यार न मिलने की वजह से न्यूटन का बचपन एकांत में बीता। तुनक मिजाजी और अंतर्मुखी के तौर पर लोग उन्हें जानते थे। स्कूली पढ़ाई पूरी करने के बाद न्यूटन ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में प्रवेश पाने के लिए तैयारी की। न्यूटन को जून 1661 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के ट्रिनिटी कॉलेज में दाखिला मिल गया। न्यूटन जब ट्रिनिटी कॉलेज पहुंचे तो उन्हें फीस चुकाने के लिए अमीर छात्रों के लिए भोजन परोसने और उनके कमरों की साफ सफाई करने का काम भी करना पड़ा। एक बार न्यूटन ने विज्ञान विषय छोड़ने का फैसला कर लिया था। हालांकि बाद में गणित के प्रोफेसर आइज़क बैरो के प्रोत्साहन से न्यूटन को ये आभास हुआ कि उन्हें विज्ञान के ही क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहिए। कॉलेज की लाइब्रेरी से न्यूटन ने गणित और विज्ञान के आधारभूत पुस्तकों का अध्ययन करना शुरू किया, जिससे इस दिशा में उनकी रुचि बढ़ती चली गई। उन्होंने एरिस्टोटल शिक्षा पद्धति के विपरीत आधुनिक विचारों वाले दार्शनिकों एवं वैज्ञानिकों जैसे रेने देकर्ते, गैलीलियो टाइको ब्राहे, कैपलर और कॉपरनिकस की कृतियों के अध्ययन को ज्यादा

तरजीह दी। बगैर किसी विशेष प्रदर्शन के न्यूटन ने 1665 में बीए की उपाधि हासिल कर ली। उस समय किसी को इसका एहसास भी नहीं हुआ होगा कि न्यूटन आधुनिक विज्ञान के विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान देने वाले महान वैज्ञानिक बन जाएंगे। हालांकि बीए की उपाधि प्राप्त करने के कुछ महीने पहले ही आइजक बैरो के मार्गदर्शन में न्यूटन ने गणना की एक गणितीय विधि कैलकुलस की नींव रख दी थी और बाइनोमियल थ्योरम की आधारभूत व्याख्या भी प्रस्तुत कर दी थी। 1665 में इंग्लैंड में फ्लैग महामारी का तीव्र प्रकोप फैल गया। हजारों की संख्या में लोग मरने लगे। महामारी से बचाव के उद्देश्य से कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी को कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया। लिहाजा न्यूटन अपनी माँ के लिंकनशायर स्थित फार्म हाउस पर रहने के लिए चले गए। अगले 2 साल तक न्यूटन घर पर ही रहे। न्यूटन ने होम क्वारंटाइन के दौरान कई महत्वपूर्ण खोजें की जिसने विज्ञान की दशा और दिशा दोनों बदल कर रख दी। 2 साल के क्वारंटाइन में न्यूटन ने अपने नोटबुक में लिखे विषयों पर गंभीर अध्ययन किया। कैलकुलस, गुरुत्वाकर्षण और प्रकाश से संबंधित अनेक प्रयोग और खोज की। पेड़ से सेब गिरते देखकर गुरुत्वाकर्षण का विचार सूझने का मशहूर किस्सा उसी दौरान का है। न्यूटन इस परिणाम पर पहुंचे थे कि जो बल सेब को धरती की ओर खींचता है वही बल चंद्रमा को पृथ्वी की ओर, पृथ्वी को सूर्य की ओर खींचता है। कैप्लर के ग्रह गति के नियमों के आधार पर आखिरकार न्यूटन इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि केवल पृथ्वी ही नहीं बल्कि प्रत्येक ग्रह और ब्रह्मांड का प्रत्येक कण प्रत्येक दूसरे कण को अपनी तरफ आकर्षित करता रहता है। 2 कणों के बीच काम करने वाला आकर्षण बल उन कणों के द्रव्यमान के गुणनफल यानी कि समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत क्रमानुपाती होता है। कणों के बीच काम करने वाले पारस्परिक आकर्षण को गुरुत्वाकर्षण तथा उससे उत्पन्न बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। न्यूटन द्वारा प्रस्तावित इस नियम को न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम कहा जाता है और जिसे पूरी दुनिया के लोग जानते हैं मानते हैं। महामारी के समाप्त होने के बाद अप्रैल 1667 में न्यूटन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी वापस लौट आए। न्यूटन को उनकी अतुलनीय प्रतिभा की बदौलत ट्रिनिटी कॉलेज का फेलो चुना गया। 1667 में न्यूटन ने एमए की उपाधि प्राप्त की। 1669 में न्यूटन को आइजक बैरो के स्थान पर गणित के ल्यूकेसियन प्रोफेसर के पद पर नियुक्त किया गया। प्रोफेसर का पद पाकर न्यूटन का भविष्य काफी सुरक्षित हो गया। अब वे तन मन से गणित और विज्ञान का अध्ययन करने लगे थे। न्यूटन का मानना था कि प्रकाश सरल रेखा में गति करता है और कण ही सरल रेखा में गति कर सकता है। सन 1693 में लंदन में बस जाने के बाद न्यूटन को खूब मान सम्मान और धन संपत्ति भी मिली। 1705 में इंग्लैंड की महारानी ने न्यूटन को नाइटहुड की उपाधि प्रदान की। न्यूटन ऐसे पहले वैज्ञानिक थे जिन्हें ये उपाधि दी गई थी। लगभग 85 वर्ष की उम्र में 20 मार्च 1727 को न्यूटन ने प्रकृति के रहस्यों को उजागर करने के बाद इस संसार से विदा ले लिया। न्यूटन ने इसके अलावा ऐसी बहुत सी खोजें की हैं जिसके कारण आज दुनिया भर के तमाम वैज्ञानिक उनके बताए हुए रास्ते पर चलते हुए काम करते हैं और विज्ञान के क्षेत्र में नई नई खोज कर पाते हैं। अब आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं खोज और आविष्कार में आज सीडी यानी कॉम्पैक्ट डिस्क के बारे में। बात करें कि सीडी और डीवीडीज के जमाने की तो हम सभी ने कभी ना कभी सीडी का इस्तेमाल किया है डाटा को स्टोर करने के लिए। सीडी का पूरा फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट डिस्क और वही डीवीडी का अगर बात करें तो डीवीडी का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वीडियो डिस्क। ये दोनों डिस्क होती हैं और इनका काम भी एक ही जैसा होता है। काम है डाटा स्टोर करना लेकिन इनमें डाटा किसी पेन ड्राइव की तरह स्टोर नहीं होता। इनमें डाटा राइट किया जाता है तो इनमें सिर्फ एक बार डाटा स्टोर होने के बाद में वो सिर्फ रीड किया जा सकता है उसे डिलीट नहीं किया जा सकता। सीडी का आविष्कार अमेरिका के रहने वाले जेम्स टे रसेल ने किया था। जेम्स ने दुनिया का पहला ऐसा सिस्टम बनाया था जिसमें ऑप्टिकल ट्रांसपेरेंट फॉइल पर डाटा को डिजिटल रूप में सेव किया जाता था। जेम्स ने 1966 में अपने आविष्कार को पेटेंट कराने के लिए अप्लाई किया था।

सोनी कंपनी ने 1982 में लॉन्च किया, जिसकी कीमत उस समय लगभग $900 थी, और वही एक कॉम्पैक्ट डिस्क की कीमत उस समय लगभग $30 थी। अगर आज के समय के हिसाब से इसे रुपए में बदल कर देखा जाए तो एक सीडी प्लेयर की कीमत उस समय लगभग 57,647 रुपए होती थी, और एक सीडी की कीमत की बात की जाए तो लगभग एक सीडी की जो कीमत थी वो 2

2000 रुपए हुआ करती थी। धीरे धीरे सीडी बनाने वाली अलग अलग कंपनियां खुलती चली गईं और सीडी की कीमत की जो दर थी उसमें कमी आने लगी। सीडी की टेक्नोलॉजी अमेरिका में 1983 में आई और अमेरिका में ये टेक्नोलॉजी सबसे ज्यादा पॉपुलर भी हुई थी। लेकिन आज के इस टेक्नोलॉजी वाले युग में हर समय कुछ ना कुछ नया क्रिएट हो रहा है। अब जमाना पेन ड्राइव का आ गया है और सीडी को लोग धीरे धीरे भूलने लगे हैं, लेकिन आज भी बहुत सारी जगहों पर सीडीज और डीवीडीज का इस्तेमाल लगातार होता रहा है। हालांकि तकनीक के क्षेत्र में हमेशा परिवर्तन आते रहता है, बदलाव होते रहते हैं, तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में शायद हमें पेन ड्राइव से भी अच्छी कोई चीज मिल जाए जिसका इस्तेमाल हम अपने डाटा को, अपने फिल्मों को, अपने फोटोज को स्टोर करने में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज हमने ढेर सारी बातें, ढेर सारी जानकारियां आपके साथ साझा कर ली। तो आज के लिए बस इतना ही, और अब हमारी स्टूडियो की जो घड़ी है वो आपसे विदा लेने का इशारा कर रही है। लेकिन जाने से पहले हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि नए नए आविष्कारों की तरफ हमें आगे बढ़ते हुए अपने वर्तमान को भी ठीक रखना है और विकास को भी जारी रखना है। इसलिए आप अगर जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो मेहनत और कोशिश हमेशा करते रहें, सफलता जरूर मिलेगी। तो इन्हीं सारी बातों के साथ अब आपसे लेते हैं विदा। अगली कड़ी में हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए बसंत को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे विज्ञान जगत कार्यक्रम। वाचन एवं सहयोग था बसंत कुमार का, प्रस्तुति थी प्रभु शरण की। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के रांची केंद्र से प्रसारित किया गया। मीडियम वेव के 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज तथा FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। हम आपको बताते चले, आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों के विषय में।

अभी बस थोड़ी देर बाद 4:35 पे आप सुनेंगे फिल्म संगीत कार्यक्रम सांझ सरगम, प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम के 5 बजे और 6 बजे आप सुन सकेंगे। 5:02 पर युवाणी कार्यक्रम में आज चर्चा का विषय है इतिहास में आज का दिन भारत और विश्व विशेष के संदर्भ में, रोचक तथ्य और समसामयिक विषय पर भी चर्चा होगी। सूत्रधार होंगी अंकिता और निकिता। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं गौरव कुमार पांडे। श्रमिक लोक कार्यक्रम 5:30 पर आज इस कार्यक्रम में चर्चा का विषय सोशल मीडिया का श्रमिक भाइयों के जीवन पर प्रभाव विषय पर, साइबर फ्रॉड से बचें, श्रमिकों के लिए सामूहिक बीमा योजना और विकसित भारत के सशक्त शिल्पी श्रमिक भाई। सूत्रधार हैं प्रीति कुमारी और कुमारी आरती और कार्यक्रम की प्रस्तुति है प्रशांत गौरव की। किसान वाणी कार्यक्रम 6:02 पर इस कार्यक्रम में आज की बात है लतरदार फसलों के प्रमुख रोग एवं उनका प्रबंधन विषय पर।

हमारी दुनिया कार्यक्रम आप सुन सकेंगे 6:32 पे। इस कार्यक्रम में हिंदी वार्ता झारखंड के प्रमुख व्यंजन एवं उसके पौष्टिक गुण विषय पर आप सुनेंगे। वार्ताकार हैं चंचल कुमार। कार्यक्रम की प्रस्तुति संजीव कुमार लाल की। प्रादेशिक समाचार शाम के 7 बजे आप सुन सकेंगे। जिले में आजकल 7:11 पे। आदिवासी अखड़ा कार्यक्रम हो भाषा में आप सुन सकेंगे 7:15 पर। आज इस कार्यक्रम में चर्चा का विषय है बारिश के समय सावधानियां, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता गौरव कुमार पांडे। सर्वभारती कार्यक्रम रात्रि 7:45 आप सुन सकेंगे। फिल्म संगीत कार्यक्रम रजनीगंधा रात्रि 8 बजे 8:30 पे। सुर्खियों में कार्यक्रम आप सुन सकेंगे। शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम रात्रि 10:30 पे। ये था हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रम। आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण के तहत। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। ऐसने फिल्म संगीत कार्यक्रम सांझ सरगम।

इस कार्यक्रम में सबसे पहले सुनते हैं फिल्म रोटी कपड़ा और मकान का गीत, लता मंगेशकर की आवाज में। बोल हैं वर्मा मलिक के संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। तो ऐसे सुने कार्यक्रम का पहला गीत,

फिल्म रोटी कपड़ा और मकान का गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर के स्वर में। रचना थी वर्मा मलिक की और धुन तैयार की थी लक्ष्मीकांत प्यारीलाल ने। और श्रोताओं आइए अब सुनते हैं फिल्म जूली का गीत किशोर कुमार की आवाज़ में। रचना आनंद बख्शी की है, संगीत राजेश रोशन का।

कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म गोरा और काला से, आवाजें मुकेश और लता मंगेशकर की हैं, रचना आनंद बख्शी की और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

अभी आप फिल्म गोरा और काला का गीत सुन रहे थे, लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ों में। बोल लिखे थे आनंद बख्शी ने, संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। और श्रोताओं, कार्यक्रम के आखिर में सुनते हैं फिल्म अजनबी का गीत किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। रचना आनंद बख्शी की है, संगीत राहुल देव बर्मन का।

फिल्म अजनबी का गीत अभी आप सुन रहे थे, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में। रचना थी आनंद बख्शी की, संगीत था राहुल देव बर्मन का। इसी साथ आज का सांझ सरगम कार्यक्रम बस यहीं संपन्न होता है।

0: वेव की 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ तथा एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। शाम के 5 बजने वाले हैं, आइए सुने अब तक के मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं तृप्ति कुमारी। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 देश में रोजगार सुनिश्चित करने, ग्रामीण आजीविका को मजबूत करने तथा गांवों के विकास में तेजी लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। झारखंड हाई कोर्ट ने हजारीबाग ओपन जेल की सुविधाओं और प्रबंधन से जुड़ी जनहित याचिका पर सुनवाई की है। अदालत ने राज्य सरकार को आगामी 20 जुलाई तक विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। राज्य की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने आज विभाग की ओर से प्रखंड विकास पदाधिकारियों को 25 नए वाहन सौंपे हैं। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि बीडीओ को नए वाहन मिलने से सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में विकास योजनाओं की निगरानी और क्रियान्वयन में तेजी आएगी। राज्य के विभिन्न जिलों में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान जारी है। गुमला में उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी दिलेश्वर महतो ने आज सदर क्षेत्र के कई मतदान केंद्रों का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने बीएलओ को पारदर्शिता और समयबद्धता के साथ काम करने के निर्देश दिए। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। ये पुरस्कार 5 से 18 वर्ष के बच्चों को खेल, विज्ञान, कला, संस्कृति और बहादुरी जैसे क्षेत्रों में असाधारण उपलब्धियों के लिए दिए जाते हैं। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। इच्छुक व्यक्ति राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। हजारीबाग जिले में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के करीब 600 अनुबंध कर्मियों को पिछले 5 महीनों से वेतन नहीं मिला है। पीड़ित चिकित्सकों, नर्सों और लैब असिस्टेंट ने जिला प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा है कि ट्रेजरी में पैसा होने के बावजूद वे फाइलों के चक्कर काट रहे हैं। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

मीडियम वेव के 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज तथा FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम युवा वाणी।

हेलो एंड गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पॉजिटिविटी से भरे होंगे और अपना खूब ख्याल रख रहे होंगे और अपने मन पसंदीदा कार्यक्रम का बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। तो आ जाइए अपने रेडियो के करीब, क्योंकि हम लेकर आए हैं आपका मन पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी। आज मैं हूँ आपके साथ, आपकी दोस्त अंकिता। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों, आज 2 जुलाई है और इसी दिन 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। हमारे कई श्रोता इसके बारे में सुनते तो है लेकिन इसके महत्व को विस्तार में जानते नहीं हैं। तो सबसे पहले मैं ये बताती हूँ कि यह समझौता क्यों किया गया था। 1971 के इंडिया पाकिस्तान युद्ध के बाद दोनों देशों के बीच शांति और सामान्य संबंध स्थापित करने के उद्देश्य से यह समझौता किया गया था और इसका मुख्य उद्देश्य था कि भविष्य में दोनों देश अपने मतभेदों को युद्ध के बजाय बातचीत और आपसी समझ से सुलझाने का प्रयास करेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस समझौता की सबसे महत्वपूर्ण बात यही रही है कि दोनों

देशों ने शांतिपूर्ण एक दूसरे की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करने पर सहमति जताई। साथ ही 1971 के युद्ध विराम की रेखा को लाइन ऑफ कंट्रोल का नाम दिया गया। यही कारण है कि आज भी भारत पाकिस्तान संबंधों पर चर्चा के दौरान शिमला समझौते का उल्लेख किया जाता है। और दोस्तों, आज शिमला समझौते की वर्षगांठ पर यह याद करना आवश्यक है कि शांति और विकास एक दूसरे के पूरक है। जब देशों के बीच सहयोग और विश्वास बढ़ता है तो क्षेत्रीय विकास, व्यापार और लोगों के बीच बेहतर संबंधों की संभावनाएं भी बढ़ती है। इस अवसर पर यह संदेश भी दिया जाता है कि संवाद और राजनीतिक संबंध किसी भी संघर्ष के समाधान का सबसे प्रभावी माध्यम है। दोस्तों, शिमला समझौते की वर्षगांठ हमें शांति, सहयोग और पारस्परिक सम्मान के मूल्यों को अपनाने और उन्हें आगे बढ़ाने की प्रेरणा देती है। और इसकी वर्षगांठ शांति, संवाद और अच्छे पड़ोसी संबंधों की भावना को मजबूत करने का भी संदेश देती है। तो दोस्तों, इसी के साथ आइए हम लेते एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक।

तो दोस्तों आगे बढ़ते हुए अब हम बात करेंगे वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे पर, जो प्रतिवर्ष 2 जुलाई को मनाया जाता है। तो दोस्तों अक्सर जब हम किसी रोमांचक मैच को एंजॉय करते हैं तो हमारा ध्यान प्लेयर्स पे होता है ना, लेकिन उन प्लेयर्स की सफलता, संघर्ष और उपलब्धियों की कहानी हम तक पहुँचाने का काम खेल पत्रकार करते हैं। और जब भी कोई टूर्नामेंट होता है, चाहे वो क्रिकेट हो, हॉकी हो, बैडमिंटन हो या ओलंपिक, हमें खेल जगत की हर छोटी बड़ी खबर हमें इन पत्रकारों के माध्यम से ही प्राप्त होती है। और खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, वो ये भी बताते हैं कि किसी प्लेयर ने सक्सेसफुल होने के लिए कितनी मेहनत की, कितने चैलेंजेस को फेस किया और उनकी जर्नी दूसरों के लिए कैसे इंस्पिरेशन बन सकती है। और जब आजकल की टेक्नोलॉजी ने भी खेल पत्रकारिता को काफ़ी बदल दिया है, पहले खेलों की खबरें अगले दिन न्यूज़पेपर में पढ़ने को मिलती थी, लेकिन आज मोबाइल और इंटरनेट की मदद से हर अपडेट तुरंत मिल जाती है। और साथ ही दोस्तों इसके साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी आती है, जल्दी खबर देने के साथ साथ उनकी सच्चाई और पक्षता बनाए रखना भी बहुत ज़रूरी है, यही एक अच्छे पत्रकार की पहचान होती है। और दोस्तों आज के युवाओं के लिए भी खेल पत्रकारिता का महत्व बढ़ गया है। जब युवा प्लेयर्स के संघर्ष, मेहनत और सफलता की कहानियाँ पढ़ते हैं, सुनते हैं या देखते हैं तो उन्हें भी अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरणा मिलती है, क्योंकि खेल हमें केवल जीतना ही नहीं सिखाता बल्कि डिसिप्लिन, पेशेंस, टीम वर्क जैसी भावना और कभी हार ना मानने का जज्बा भी देता है। अंत में बस इतना कहना चाहूंगी कि विश्व खेल पत्रकार दिवस हमें उन सभी खेल पत्रकारों के योगदान को याद करने का अवसर देता है, जो अपनी मेहनत, ईमानदारी और निष्पक्षता से खेल जगत की हर महत्वपूर्ण खबर हम तक पहुंचाते हैं। इस अवसर पर हम सभी खेल पत्रकारों के समर्पण और मेहनत को सम्मान दें और खेल भावना को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प जरूर से जरूर लें। और इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अब मैं बात करती हूँ इतिहास में आज से जुड़ी कुछ घटनाओं के बारे में। 2 जुलाई 1900 LZ-1 दुनिया के पहले सफल जेपेलिन यानी कि कठोर एयरशिप ने अपनी पहली उड़ान भरी। और इसी के साथ आज ही के दिन 2 जुलाई 1937 में प्रसिद्ध महिला पायलट अमीलिया ईयरहर्ट प्रशांत महासागर के ऊपर अपनी विश्व परिक्रमा उड़ान के दौरान लापता हो गई थी। और 2 जुलाई 1964 में सिविल राइट्स एक्ट ऑफ 1964 पर हस्ताक्षर किए गए, जिसने नस्ल, रंग, धर्म, लिंग और राष्ट्र मूल के आधार पर भेदभाव को गैर कानूनी बनाया। और अगर भारत से जुड़ी कुछ इतिहास की घटनाओं के बारे में बात करें तो 2 जुलाई 1897 को प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म हुआ। वे अपनी प्रसिद्ध कविता झांसी की रानी के लिए जानी जाती थी। और साथ ही आज के दिन 2004 में छत्रपति शिवाजी टर्मिनस को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल किया गया था। दोस्तों बातों का सिलसिला तो जरूर जारी रहेगा, आइए हम लेते हैं एक और छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक।

दोस्तों, आगे बढ़ते हुए हम कुछ रोचक तथ्यों पर चर्चा करते हैं जिन्हें सुनकर आपको हंसी भी आएगी और वे रोचक भी लगेंगे। सबसे पहला रोचक तथ्य है कि अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज्यादा सपने देखते हैं तो याद रखिए, जो लोग ज्यादा सोचते हैं वे ज्यादा जीवंत यानी कि विविध सपने भी देखते हैं। दूसरा अमेजिंग फैक्ट, तो सबने नोटिस किया होगा कि जब हम बोर होते हैं तो हमें समय धीरे धीरे चलता हुआ लगता है, लेकिन जब हम खुश होते हैं तो दिमाग समय को कंप्रेस कर देता है, इसलिए अच्छा वक्त जल्दी बीत जाता है। तीसरा फैक्ट स्पोर्ट्स लवर के लिए काफी रोचक होगा, खासकर जिन्हें बास्केटबॉल खेलने में दिलचस्पी है। दोस्तों, बास्केटबॉल जैसे खेलों में प्लेयर सिर्फ मसल से नहीं पेरिफेरल विजन से जीतते हैं, यानी आंखों के किनारों से देखने की ताकत उनका सबसे बड़ा वेपन होता है। चौथा फैक्ट हमारे उन दोस्तों के लिए है जिन्हें किताबें पढ़ना काफी पसंद है। रिसर्च बताती है कि रेगुलर रीडिंग से इंसान ज्यादा सहानुभूति यानी कि एम्पैथेटिक बन जाता है, यानी दूसरों के इमोशंस को बेहतर समझने लगता है। दोस्तों, दुनिया की कुछ पुरानी किताबों में टाइटल पेज नहीं होती थी क्योंकि पहले किताबों का नाम आखिरी पेज पर लिखा जाता था। और इसके साथ ही, क्या आपने कभी महसूस किया है कि पुरानी किताबों की एक अलग सी खुशबू होती है, या खुशबू

असल में कागज के धीरे धीरे टूटने से निकलने वाले केमिकल्स की वजह से होती है, और पुराने किताबों की खुशबू दिमाग को सुकून भी दे जाती है। और इसी के साथ आगे बढ़ते हुए जानते हैं कुछ करंट अफेयर्स के बारे में। तो पहला करंट अफेयर्स आपके लिए ये है कि यूपी राजीव को विक्रम साराभाई स्पेस का निदेशक नियुक्त किया गया है। दूसरा करंट अफेयर्स, भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने लॉस एंजल्स 2028 ओलंपिक के लिए सीधे क्वालिफिकेशन हासिल किया। तीसरा ये है कि महाराष्ट्र में भारत के पहले ऑफशोर एयरपोर्ट के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने की मंजूरी दे दी गई। चौथा ये है कि इंग्लैंड के कैप्टन बेन स्ट्रोक ने घोषणा की है कि वह ट्रेंट ब्रिज में न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट के पूरा होने के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लेंगे। और भारत की संरक्षणवादी प्रवीण शेख और बरखा सुमना ने 2026 का विटले अवार्ड जीता है, जिसे ग्रीन ऑस्कर के नाम से भी जाना जाता है। और आखिरी ये है कि जाने माने थिएटर डायरेक्टर, एक्ट्रेस और फिल्म मेकर विजय मेहता का निधन हो गया। वे एक्सपेरिमेंटल मराठी थिएटर की शुरुआती लोगों में से एक थी। आइए दोस्तों, हम लेते एक और छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक।

दोस्तों, युवा किसी भी समाज और राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति होती है। उनकी ऊर्जा, नई सोच और उत्साह समाज को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आज के युवा शिक्षा, विज्ञान, तकनीक, खेल, कला और सामाजिक कार्यों जैसे अनेक क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का परिचय दे रहे हैं। वे न केवल अपने भविष्य का निर्माण कर रहे हैं, बल्कि देश के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने की सबसे अधिक क्षमता युवाओं में होती है। जी हाँ दोस्तों, यदि युवा शिक्षा, अनुशासन, ईमानदारी और सामाजिक जिम्मेदारी को समझते हुए आगे बढ़ें, तो वे गरीबी, अशिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक कुरीतियों जैसी समस्याओं के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। और दोस्तों, साथ ही डिजिटल युग में युवा जागरूकता फैलाने और लोगों को सही जानकारी देने का भी काम कर सकते हैं, क्योंकि एक जागरूक युवा केवल अपने करियर के बारे में नहीं सोचता, बल्कि समाज और देश के प्रति अपने कर्तव्यों को भी समझता है। मतदान करना, कानून का पालन करना, पर्यावरण की रक्षा करना, जरूरतमंदों की सहायता करना और सामाजिक संतुलन बनाए रखना हर युवा की जिम्मेदारी है। ऐसे प्रयास समाज को अधिक मजबूत और प्रगतिशील बनाते हैं। ईमानदारी और सामाजिक जिम्मेदारियों को समझते हुए आगे बढ़ें, तो हम युवा गरीबी, अशिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक कुरीतियों जैसी समस्याओं के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, युवा वर्ग देश के विकास के लिए किसी न किसी रूप में तत्पर रहा है। आज का युवा इस बात को समझ चुका है कि यदि देश के लिए कुछ करना है, तो सबसे पहले जो कार्य वो कर रहा है, उसे पूरी निष्ठा व लगन से करे। करियर के साथ साथ हम युवाओं को समाज के बारे में भी सोचना चाहिए। समाज की मजबूत नींव हम तभी रख सकते हैं जब हम अपने व्यक्तित्व में अच्छे गुणों का समावेश करेंगे। युवाओं की सोच देश और समाज के प्रति लगातार बदल रही है। पिछले दशकों में आसानी से रोजगार मिलने के बाद अब कठिनाई सामने आने पर युवा शिक्षा में डिग्रियों के साथ ही क्वालिटी पर भी गंभीर है। और समाज के लिए कुछ करते वक्त ये ना सोचें कि हम ये काम मैं ही क्यों करूं। इस भावना को अपने भीतर से समाप्त कर युवाओं को आज अपने करियर के साथ साथ समाज के लिए भी कुछ करने का जज्बा लेकर आगे बढ़ना होगा, तभी एक बेहतर कल का निर्माण हो सकेगा। और साथ ही साथ दोस्तों, इतिहास की महत्वपूर्ण घटना हमें सिखाती है कि कठिन परिस्थितियों में भी बातचीत का रास्ता सबसे प्रभावी होता है। और साथ ही शिमला समझौते की वर्षगांठ हमें यह संदेश देती है कि शांति, संवाद और सहयोग ही किसी भी देश को बेहतर भविष्य का आधार है। इतिहास की घटनाएं केवल अतीत की यादें नहीं होती, बल्कि भविष्य के लिए सीख भी होती है। आइए इस अवसर पर हम शांति, सद्भाव और मानवता को मूल्यों को अपनाने का संकल्प लें। दोस्तों, बातें तो मुझे और भी करनी थी, लेकिन समय हो चला है आपसे विदा लेने का। तो दीजिए अपनी दोस्त अंकिता को इजाजत। नमस्कार।

यथा आज का युवाणी कार्यक्रम आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। श्रोताओं, अब प्रस्तुत है कार्यक्रम श्रमिक लोक।

0: श्रमिक साथियों नमस्कार जोहार। कार्यक्रम श्रमिक लोग के साथ एक बार फिर हम हाजिर हैं, जहां आपसे होगी ढेर सारी बातें और सुनवाएंगे आपको प्यारे से गीत। मैं हूं आरती और मेरे साथ है प्रीति। प्रीति आपको भी नमस्कार।
1: आपको भी नमस्कार आरती, और कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोता साथियों को प्रीति का नमस्कार। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करते हैं और बातें करते हैं कि सोशल मीडिया में हमारे श्रमिक साथियों के जीवन पर क्या प्रभाव डाल रही है।
0: ये तो भाई बहुत ही अहम चर्चा का विषय है प्रीति। सोशल मीडिया ने आज के श्रमिक भाइयों के जीवन को गहराई से प्रभावित किया है। यहाँ उनके लिए मनोरंजन तो है ही, साथ ही परिवार से संपर्क और नई योजनाओं की जानकारी भी मिलती है। ये भी अहम बात है ना?
1: बिल्कुल सही कहा। लेकिन कहते हैं ना, किसी भी चीज की अति खराब होती है। अगर आप इसका अत्यधिक इस्तेमाल करते हैं तो नींद में कमी, समय की बर्बादी और मानसिक तनाव जैसी समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती है।
0: ये तो बहुत पते की बात कही तुमने। और ज्यादातर, अब छोड़ो ना श्रमिक साथी की बात, हम भी अगर हमारे हाथ में भी फोन आता, बेवजह हम उसे घुमाते रहते, स्क्रॉल करते रहते हैं, और 5 मिनट से 1 घंटा में वो कैसे चला जाता पता ही नहीं
1: पता
0: चलता।
1: नहीं चलता।
0: बाद में बहुत अफसोस होता है कि अरे मेरा तो 1 घंटा निकल गया। ऐसे ही हमारे जो यंगस्टर्स है, जो युवा वर्ग है, उनके साथ यही हो रहा, बच्चों के साथ यही हो रहा। तो श्रमिक कहाँ अछूते रहेंगे, हमारे जो श्रमिक साथी हैं। तो आज ज्यादातर लोग सोशल मीडिया को पसंद करते हैं, और अगर कुछ लोग नहीं भी करते हैं तभी इस्तेमाल तो करते ही होंगे। श्रमिक साथियों के तो कई काम अब आसान हो गए हैं। घर बैठे बैठे उन्हें कहाँ काम मिल सकता है इसकी जानकारी भी हो जाती है, और साथ ही कई चीजें आप यहाँ से सीख भी सकते हैं।
1: तो अब ये तो कई पोस्ट ऐसे आते हैं जहाँ लोगों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, काम सिखाया जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं श्रमिक साथियों के लिए बहुत बेनिफिशियल है। और अगर आप उत्पादक हैं तो अपने द्वारा बनाई गई चीजों का प्रचार भी कर सकते हैं, एक पोस्ट के माध्यम से अपनी योग्यता भी दिखा सकते हैं, क्योंकि आपका पोस्ट जो है वो कोई भी देख सकता है, चाहे वो नियोक्ता हो, सहकर्मी या ग्राहक।
0: बिल्कुल, ये सही बात है, और इसलिए हम तो श्रमिक साथियों को यही कहेंगे कि इस्तेमाल करें पर संभल कर, तभी आप प्रतिष्ठा भी पा सकते हैं और आनंद भी ले सकते हैं। क्योंकि हर चीज़ों के दो पहलू होते हैं ना प्रीति, एक अच्छा और एक बुरा, तो हम क्यों ना अच्छाई की तरफ बढ़े। और सबसे बड़ी बात है कि हम और सबसे अच्छी बात ये भी है कि प्रीति की हम उसे अगर संभल कर करते हैं तो हम उसका आनंद भी ले सकते हैं। तो आनंद की बात जब आ जाती है तो तुम्हें क्या लगता है कि हम अपने श्रमिक साथियों को आनंद भी दिलवा ही देते हैं, है ना?
1: बिल्कुल, गीत सुनवाना बहुत जरूरी है। और आप सोशल मीडिया की बात करिए ना, तो सोशल मीडिया के थोड़े तो नुकसान है, लेकिन मुझे लगता है रेडियो का कोई नुकसान नहीं है दोस्तों। आप रेडियो बजाकर अपना काम कर सकते हैं, शांति से गीत सुन सकते हैं।
0: बिल्कुल,
1: मुझे तो बड़ा आनंद आता है। तो चलिए सुनते हैं ये गीत।

0: तो भाई गीत तो बहुत ही खूबसूरत है, और हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे जो श्रमिक साथी सुन रहे होंगे ना, उनकी पूरी थकान दिन भर की दूर हो गई होगी है,
1: बिल्कुल
0: इतना
1: बिल्कुल
0: अच्छा प्रीति ने हमें गीत सुनवाया। तो दोस्तों, अगर हम गीत तो सुन लिए, अगर आप भी इंटरनेट के माध्यम से पैसों का लेन देन करते हैं तो हमेशा सतर्क रहें, क्योंकि आज साइबर फ्रॉड कई लोगों के साथ हो रहा है, और अगर आप साइबर ठगों से सुरक्षित रहना चाहते हैं तो छोटी छोटी बातों का हमेशा ध्यान रखना होगा आपको।
1: बिल्कुल। बैंक यूपीआई पिन या पासवर्ड कभी किसी के साथ साझा ना करें। किसी भी अज्ञात नंबर से आए लिंक पर क्लिक ना करें, क्योंकि क्लिक करने पे पैसे जाते हैं, आते नहीं हैं। कई बार ऐसा आपको झांसा दिया जाता है कि यहाँ लिंक कीजिए तो आपके अकाउंट में इतने पैसे आ जाएंगे, पर ये बात याद रखिएगा कि लिंक पर क्लिक करने से पैसे चले जाते हैं।
0: और हम इतना ज़्यादा मोबाइल यूज़ करते हैं प्रीति, और हम बहुत सतर्क रहते हैं। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि कई बार ऐसा होता है कि कोई सैनिक बनकर आपसे बोल रहा होता है कि हमें आपका मकान चाहिए, आपकी मदद चाहिए, या बहुत बार आप कोई इसमें किसी भी साइट में जाके अपने सामान को डालते हैं तो सामान खरीदने के लिए वो बोलता है। उसमें भी बहुत तरह के फ्रॉड होते हैं, लोगों की मतलब बहुत ज़्यादा पूरी ज़िंदगी की कमाई चली जाती है। तो
1: बिल्कुल
0: ये होता है ना कि हमें ध्यान ये देना है कि जो भी नई चीज़ें हैं उस पे बिल्कुल भी भरोसा ना करें। कई बार ये भी होता है कि आज के दिन में एआई की मदद से आपके बच्चे की आवाज़ निकाल कर बोली जाती है कि भाई आपका बच्चा हमारे साथ है, आप उसे बचाने के लिए यार इतना पैसा डालिए, वो परेशानी में है। तो भाई आपको ये सोचना है कि कभी भी किसी के ऊपर भरोसा ना करें, अपने ध्यान दें कि ये आपके साथ इस तरफ से साइबर फ्रॉड हो जा रहा है। तो बैंक खाता बंद होने या केवाईसी अपडेट के नाम पर भी आने वाले जो फर्जी कॉल होते हैं ना, उससे भी सावधान रहना चाहिए।

0: के लिए कभी भी QR कोड स्कैन ना करें या पिन दर्ज ना करें। QR कोड भी हमेशा पैसे भेजने के लिए ही होता है, तो इस बात को याद रखें। और कभी भी QR कोड जो है वो आप स्कैन ना करें। कई बार होता है ना, जब प्रोडक्ट आता है हमारे पास उसमें QR कोड रहता है और कहता है कि उसको आप अगर स्कैन करते हैं तो बहुत आकर्षक इनाम जो है वो आपको मिलेगा, पर ऐसा तो होता नहीं है, बल्कि आपके पैसे जो है वो
1: चले
0: किसी और
1: जाते
0: के अकाउंट में
1: हैं।
0: चले जाते हैं।
1: हाँ, और आपने सभी अपने जो सोशल मीडिया और ईमेल खातों पर 2-स्टेप वेरिफिकेशन चालू रखें, अनजान वीडियो कॉल को अनदेखा करें या काट दें पूरी तरह से।
0: बिल्कुल। और अगर आपके साथ साइबर ठगी हो जाती है इतनी सारी सावधानियों के बावजूद भी, तो घबराएं नहीं, तुरंत 1930 यानी कि 1930 पर कॉल कर अपनी शिकायत दर्ज कराएं या राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज करें और अपने बैंक के कस्टमर केयर पर कॉल करके अपनी अकाउंट या कार्ड को तुरंत ब्लॉक करवा दें।
1: और हमेशा सतर्क रहे, है ना।
0: बिल्कुल
1: बिल्कुल, क्योंकि प्रीति होता क्या है ना कि इतने सारे केसेस आ रहे हैं, हम तो पूरी तरह से साइबर फ्रॉड को बचाने के लिए हम खुद जागरूक होते, लोगों को जागरूक करते, लोग भी जागरूक है कि नहीं, लेकिन फिर भी वो अनजाने में फंस जाते हैं। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है कि आपको सतर्क रहना है। अब वक्त है कि हम अपने साथियों को उनके लिए बताए गए जो बहुत सारी योजना है उसके बारे में जानकारी दें। तो साथियों, असंगठित क्षेत्र और निर्माण श्रमिकों के लिए सरकार द्वारा कई सामूहिक और सामाजिक बीमा योजनाएं चलाई जा रही हैं, इसकी जानकारी हमारे श्रमिक साथियों को भी होनी चाहिए।
0: हाँ साथियों, मुख्य रूप से प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना शामिल है, जो मामूली प्रीमियम में श्रमिकों को सुरक्षा प्रदान करती है।
1: बिल्कुल, बात अगर हम प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की करें तो यह योजना मुख्य रूप से 18 से 70 वर्ष के सभी श्रमिकों को मिलेगा। दुर्घटना में मृत्यु या पूर्ण विकलांगता पर 2 लाख और आंशिक विकलांगता पर 1 लाख की सहायता मिलती है।
0: प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना से 18 से 50 वर्ष की आयु वाले श्रमिकों को जो है जोड़ा जाता है, जिससे कि वो इसका लाभ उठा सकते हैं। प्रीमियम 436 रुपये प्रति वर्ष देने पड़ते हैं। किसी भी कारण से अगर श्रमिक की मृत्यु हो जाती है तो नॉमिनी को 2 लाख का जीवन कवर दिया जाता है। और आपको मैं बता दूं आरती की, हम लोग भी जुड़ चुके हैं इससे, जीवन ज्योति बीमा योजना, दुर्घटना योजना, क्योंकि आपका जब बैंक अकाउंट में जो खाता होता है ना, उससे ही ये डायरेक्ट कट जाता है। आपको कोई खास परेशानी नहीं होती है, आप सिर्फ जाकर बैंक में बोल दीजिए कि मुझे जुड़ना है।
1: 436 रुपए तो मतलब बहुत ही कम है, वो भी सालाना। तो साथ ही इससे आप जरूर जुड़ें। और असंगठित मजदूरों को जो श्रम पोर्टल पर, ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत करने पर उन्हें ऊपर दी गई सुरक्षा बीमा योजनाओं का लाभ आसानी से मिल जाता है ना। मृत्यु का या विकलांगता पर 2 लाख तक का दुर्घटना बीमा कवर इसमें शामिल है।
0: यदि कोई भी श्रमिक साथी किसी पंजीकृत कारखाने या संस्था में काम करते हैं तो आपके वेतन से 1.75% की कटौती कर चिकित्सा, बीमारी या दुर्घटना लाभ का पूरा समूह बीमा ESIC द्वारा मिलता है, जिसे हम कर्मचारी राज्य बीमा कहते हैं।
1: ये भी बहुत अच्छी चीज है, तो इसकी भी जानकारी बहुत जरूरी है आपको लेने की। अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना की भी विशेषता है, चुनिंदा स्थानों पर इसका विभाग के माध्यम से उपलब्ध है, जिसमें 5 लाख तक की राशि दी जाती है। किसी भी दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो आप इसमें ये राशि मिलती है, तो कितना अच्छा ये योजना है हमारे श्रमिक साथियों के लिए।
0: बिल्कुल साथियों, श्रमिकों को अपनी सुविधा के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी होनी चाहिए, साथ ही साथ श्रम कानूनों की भी जानकारी होनी चाहिए। तो योजनाओं की जब आपकी जानकारी आपको हो जाती है दोस्तों, तो अपने आसपास भी लोगों को जागरूक करें, फैलाएं। और जहां तक बात है श्रम कानूनों की जानकारी की, तो वो आज हम आपको देंगे।
1: हाँ, तो चलिए सुनते हैं वार्ता श्रम कानूनों की जानकारी। वार्ताकार है अभिषेक सहाय।
2: श्रमिक साथियों, श्रमिकों का हमारे देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। श्रमिकों के बिना देश का विकास संभव नहीं है। भिन्न भिन्न क्षेत्रों में श्रमिकों का महत्वपूर्ण योगदान है। श्रमिकों के माध्यम से ही हमारे देश का विकास संभव है, इसलिए इनके विकास के लिए हर तरह की सुविधा इनको प्रदान करनी चाहिए। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं कुछ श्रम कानूनों के बारे में। श्रम कानून किसी राज्य द्वारा निर्मित उन कानूनों को कहते हैं जो श्रमिक रोजगार प्रदाताओं, ट्रेड यूनियनों तथा सरकार के बीच संबंधों को परिभाषित करती है। श्रम कानून को हम श्रम संनियम के नाम से भी जानते हैं। औद्योगिक संनियम का आशय उस विधान से है जो औद्योगिक संस्थानों, उसमें कार्यरत श्रमिकों एवं उद्योगपतियों पर लागू होता है। इसे हम दो भाग में बांट

0: सकते हैं, उद्योग एवं श्रम संबंधी विधान और सामाजिक सुरक्षा संबंधी विधान। उद्योग तथा श्रम संबंधी विधान में वे सब अधिनियम आते हैं जो कारखाने तथा श्रमिकों के काम की दशाओं का रेगुलेशन करते हैं। कारखाना अधिनियम 1948, औद्योगिक संघर्ष अधिनियम 1947, भृति भुगतान अधिनियम 1936, श्रम जीवी क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 इत्यादि उद्योग तथा श्रम संबंधी विधान की श्रेणी में आते हैं। सामाजिक सुरक्षा संबंधी विधान के अंतर्गत वे समस्त अधिनियम आते हैं जो श्रमिकों के लिए विभिन्न सामाजिक लाभों, बीमारी, प्रसूति, रोजगार संबंधी आघात, प्रोविडेंट फंड, न्यूनतम मजदूरी इत्यादि की व्यवस्था करते हैं। भारत में लगभग 128 श्रम तथा औद्योगिक विधान लागू हैं। वास्तव में श्रम विधान सामाजिक विधान का ही एक अंग है। श्रमिक समाज के लिए विशिष्ट समूह होते हैं, इस कारण श्रमिकों के लिए बनाए गए विधान सामाजिक विधान की एक अलग श्रेणी में आते हैं। औद्योगिकीकरण के प्रसार, मजदूरी अर्जकों के अस्थायी वर्ग में वृद्धि, विभिन्न देशों के आर्थिक एवं सामाजिक जीवन में श्रमिकों के बढ़ते हुए महत्व तथा उनकी परिस्थिति में सुधार, श्रम संघों के विकास, श्रमिकों में अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता, संघों श्रमिकों के बीच शिक्षा के प्रसार, प्रबंधकों और नियोजकों के परमाधिकारों में ह्रास तथा कई अन्य कारणों से श्रम विधान की व्यापकता बढ़ गई है। श्रम विधानों की व्यापकता और उनके बढ़ते हुए महत्व को ध्यान में रखते हुए उन्हें एक अलग श्रेणी में रखना उपयुक्त समझा जाता है। सिद्धांत श्रम विधान में व्यक्तियों या उनके समूह को श्रमिक या उनके समूह के रूप में देखा जाता है। आधुनिक श्रम विधान के कुछ महत्वपूर्ण विषय हैं: मजदूरी की मात्रा, मजदूरी का भुगतान, मजदूरी की कसौटियां, कार्य के घंटे, विश्राम अंतराल, साप्ताहिक अवकाश, सवेतन छुट्टी, कार्य की भौतिक दशाएं, श्रम संघ, सामूहिक सौदेबाजी, हड़ताल, अस्थायी आदेश, नियोजन की शर्तें, बोनस, कर्मकार क्षतिपूर्ति, प्रसूति, हित लाभ एवं कल्याण निधि आदि हैं। श्रमिक साथियों, आइए हम जानते हैं कि श्रम कानून का उद्देश्य क्या है। औद्योगिक के प्रसार को बढ़ावा देना, मजदूरी अर्जकों के अस्थायी वर्ग में उपयुक्त वृद्धि करना, विभिन्न देशों के आर्थिक एवं सामाजिक जीवन में श्रमिकों के बढ़ते हुए महत्व तथा उनकी परिस्थिति में सुधार को देखते हुए स्थानीय परिदृश्य में लागू कराना, श्रम संघों का विकास करना, श्रमिकों में अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाना, संघों श्रमिकों के बीच शिक्षा के प्रसार को बढ़ावा देना है। साथियों, इस श्रम कानून के अंतर्गत बाल श्रम अधिनियम भी आता है। यह अधिनियम खतरनाक पेशों और प्रक्रियाओं में बच्चों के रोजगार को प्रतिबंधित करता है और अन्य क्षेत्रों में उनके रोजगार को विनियमित करता है। उच्चतम न्यायालय ने भी बाल श्रम से जुड़े कई तरह के कानून बनाए। औद्योगिक रोजगार अधिनियम, इस अधिनियम में प्रतिष्ठानों में नियुक्ताओं के लिए उनके अंतर्गत रोजगार की स्थितियों को औपचारिक रूप से परिभाषित करना और अधिप्रमाणन पदाधिकारी के पास अस्थायी आदेशों के प्रारूप को भेजना अपेक्षित बनाया गया है। यह ऐसे प्रत्येक प्रतिष्ठान पर लागू होता है जिसमें लगभग 100 अथवा इससे अधिक श्रमिकों को नियुक्त किया गया है और केंद्र सरकार ने अपने नियंत्रणाधीन प्रतिष्ठानों अथवा रेलवे प्रशासन अथवा बड़े बंदरगाह, खान अथवा तेल क्षेत्र के संबंध में उपयुक्त सरकार है। श्रमिक साथियों, अब हम जानते हैं श्रम कानून अनुपालन के अनिवार्य नियमों। श्रम कानून अनुपालन, जिनका कंपनियों को पालन करना होता है, ये रोजगार के लिए निर्धारित नियमों और शर्तों का समूह है। उद्योगों की अर्थव्यवस्था, कार्य संस्कृति समय के साथ बदली और विकसित हुई है, लेकिन श्रम कानून अनुपालन नियम आज भी 50 से 100 साल पुराने हैं। श्रम अनुपालन का महत्व भारत के में बहुत ज्यादा है। भारत में प्रत्येक प्रतिष्ठान को श्रम कानून के विभिन्न वैधानिक अनुपालन नियमों का पालन करना होगा। अनुपालन का दायरा काफी व्यापक है और इसके लिए नियुक्ताओं को किसी भी अभियोजन के मामले में विभिन्न कानूनों के तहत साक्ष्य के रूप में अनुपालित के रिकॉर्ड पेश करने की आवश्यकता होती है। इन कानूनों का पालन न करने की स्थिति में कानून द्वारा कई दंड निर्धारित हैं। श्रम कानून में श्रमिकों के अधिकारों के प्रमुख पहलू को शामिल करते हुए विभिन्न अधिनियम शामिल हैं। अधिनियमों की उपयोगिता प्रतिष्ठान के प्रकार पर निर्भर करती है और नियोक्ता और कर्मचारियों पर क्रमशः एक से अधिक कानून लागू हो सकते हैं। श्रम कानून के तहत अनुपालन अवधारणाएं काफ़ी हैं। श्रम कानून अनिवार्य रूप से अन्य बातों के साथ मातृत्व समाप्ति आदि जैसे कर्मचारी लाभों की सुरक्षा प्रदान करते हैं। श्रम कानून की संरचना में राज्य के साथ साथ केंद्र सरकार के तहत विभिन्न अधिनियम शामिल हैं। इसी के अंतर्गत भवन और अन्य निर्माण श्रमिक अधिनियम 1996 आता है। यह अधिनियम एक ठेकेदार के माध्यम से 10 या अधिक श्रमिकों को नियोजित करने वाले निर्माण स्थलों पर लागू होता है। हालांकि यह फैक्ट्री अधिनियम 1948 या खान अधिनियम 1952 के दायरे में आने वाली साइटों पर लागू नहीं होता है। अनुबंध श्रम अधिनियम 1970 यह अधिनियम उन प्रतिष्ठानों या ठेकेदारों पर लागू होता है जहां 20 या अधिक कर्मचारी 12 महीने के लिए अनुबंध मजदूर के रूप में कार्यरत हैं। यह काम के आकस्मिक प्रकृति वाले स्थानों पर लागू नहीं होता है और यदि नियोक्ता अधिनियम के तहत पंजीकृत नहीं है तो वह ठेका मजदूरों को नियुक्त नहीं कर सकता है। रोजगार राज्य बीमा अधिनियम 1948 यह अधिनियम कर्मचारियों को मातृत्व बीमारी और रोजगार चोट जैसे अन्य लाभ प्रदान करता है। यह अधिनियम रुपए तक मासिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों पर लागू होता है। अधिनियम सरकारी कारखानों को कवर करता है। शायद इसमें मौसमी फैक्ट्रियां शामिल नहीं हैं। ऐसी फैक्ट्रियों को इस अधिनियम के तहत अपना पंजीकरण कराना होगा। नियोक्ता और कर्मचारी दोनों को कर्मचारी राज्य बीमा में योगदान करना होगा। यह भी ध्यान देना चाहिए कि इस अधिनियम के तहत लाभान्वित होने वाले व्यक्ति अन्य अधिनियमों के तहत कोई लाभ प्राप्त करने के हकदार नहीं है। फैक्ट्री अधिनियम 1948 यह अधिनियम विभिन्न कारखानों में कार्यरत श्रमिकों की कार्य स्थितियों को नियंत्रित करता है। यह कारखानों के मालिकों को यह सुनिश्चित करने के लिए बाध्य करता है कि श्रमिकों का रोजगार ऐसी स्थिति में हो जो उनकी सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए अनुकूल हो। औद्योगिक रोजगार अधिनियम 1946 यह अधिनियम उन उद्योगों पर लागू होता है जिनमें 12 महीनों में 100 या अधिक कर्मचारी कार्यरत होते हैं। वेतन भुगतान अधिनियम 1936 यह अधिनियम कुछ प्रतिष्ठानों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए बिना किसी अनाधिकृत कटौती के समय पर वेतन का भुगतान सुनिश्चित करता है। वेतन का सारा भुगतान कार्य दिवस पर किया जाना चाहिए। वेतन का भुगतान चालू मुद्रा में चेक द्वारा या कर्मचारी के बैंक खाते में जमा करने के लिए किया जाना चाहिए। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि श्रमिकों का हमारे देश और हमारे जीवन में बहुत बड़ा योगदान है। श्रमिकों के बिना देश का विकास अकल्पनीय है। श्रमिक ही हमारा वो बल है जिससे प्रकृति के कण कण का विकास किया जा सकता है। पूरे विश्व में विकास का श्रेय श्रमिकों को ही जाता है, इसलिए हमें श्रमिकों की उन्नति पर हमेशा ध्यान देना चाहिए। वे हमारे देश के विकास की नींव हैं।
1: तो अभी बहुत ही अच्छा बताया अभिषेक सहाय जी ने कि श्रम कानून हमारे श्रमिक साथियों के लिए क्या है। तो प्रीति, तुम्हें क्या लगता है कि हम कानून की भी जानकारी दे दिए उनको, उनको विभिन्न योजनाओं की भी जानकारी दे दिए, तो उनका मनोरंजन करना फिर से बनता है?
2: बिल्कुल,
1: है ना?
2: बिल्कुल। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं एक और प्यारा संगीत।

0: तो भाई ये भी बड़ा प्यारा गीत था, मतलब पूरी थकान दूर हो गई। तो चलो प्रीति, हम अपने साथियों को एक और जानकारी दिए चलते हैं। विकसित भारत के जो सशक्त शिल्पी श्रमिक साथी हैं ना, भारत के निर्माण और विकास में अपना योगदान देने वाले उन सभी मेहनतकश और कर्मकारों से है जिन्हें विभिन्न सरकारी पहलों, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के माध्यम से सशक्त बनाया जा रहा है।
1: श्रम पोर्टल और साथी ऐप भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को राष्ट्रीय डाटाबेस तैयार करने के लिए ई श्रम पोर्टल शुरू किया गया है। इसके जरिए श्रमिकों को यूनिवर्सल अकाउंट नंबर
0: मिलता
1: मिलता
0: है।
1: है। साथ ही ई श्रम साथी मोबाइल ऐप के जरिए श्रमिकों को
0: घर बैठे
1: घर
0: रोज
1: बैठे, बिल्कुल सही कहा आपने, घर बैठे रोजगार के अवसर और योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराई जा रही
0: और
1: है।
0: प्रीति, ये पहले भी हमने बात किया था सोशल मीडिया की जब हम चर्चा कर रहे थे, तो है
1: हाँ
0: ना। तो
1: बिल्कुल,
0: चलो अब हम यही कहना चाहेंगे कि हमारे साथी इन सभी चीज़ों का फायदा उठाएं और खूब सुरक्षित रहें, खुश रहें, और अपनी उन्नति ही आपकी हमारी विशेष शुभकामनाएं थी। इसी के साथ अपने दोस्त आरती और
1: प्रीति को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
0: नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे श्रमिक लोक कार्यक्रम, आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। हमारा अगला कार्यक्रम बस चंद ही पलों में।

0: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। शाम के 6 बजने वाले हैं। आइए सुने अब तक के मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं तृप्ति कुमारी। दुमका सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की

धमकी मिलने के बाद कोर्ट परिसर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश को स्पीड पोस्ट से बंगला भाषा में ये धमकी भरी चिट्ठी भेजी गई थी। पुलिस अधीक्षक पीताम्बर सिंह खिरवार ने बताया कि प्रारंभिक जांच के अनुसार ये पत्र पश्चिम बंगाल के पूर्वी बर्धमान से भेजा गया है। हजारीबाग पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए बरही थाना क्षेत्र के रसोई धमना गांव से 47 बोरा डोडा बरामद किया है। पुलिस अधीक्षक को मिली गुप्त सूचना के आधार पर हुई इस छापेमारी में एक बंद कमरे से कुल 697 किलोग्राम डोडा जब्त किया गया है। धनबाद रेलवे स्टेशन परिसर में पार्किंग शुल्क के नाम पर अवैध वसूली और दुर्व्यवहार के विरोध में झारखंड ई रिक्शा संघ ने आज डीआरएम कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन किया। टोटो चालकों ने सांकेतिक चक्का जाम कर रेलवे प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। देवघर में राजकीय श्रावणी मेला के दौरान मेला क्षेत्र में घरेलू गैस सिलेंडरों के व्यावसायिक उपयोग पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। उपायुक्त सौरभ कुमार भुवानिया की अध्यक्षता में आज हुई बैठक में निर्णय लिया गया कि सभी होटलों ढाबों और दुकानों में केवल 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल सिलेंडर का ही इस्तेमाल होगा। हालांकि श्रद्धालु निजी उपयोग के लिए 5 किलो वाले छोटे सिलेंडर रख सकेंगे। लोहरदगा जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा आज सदर प्रखंड कार्यालय और बैंक ऑफ इंडिया परिसर में वरिष्ठ जन सहायता एवं सुविधा केंद्र का शुभारंभ किया गया। 90 दिवसीय विशेष कानूनी जागरूकता अभियान के तहत शुरू हुए इस केंद्र के माध्यम से बुजुर्गों को पेंशन, जमीन और बैंक संबंधी कार्यों में मदद दी गई। हजारीबाग के केबी विमेन्स कॉलेज परिसर स्थित कल्याण विभाग के आदिवासी छात्रावास में 200 से अधिक छात्राएं पेयजल और सुरक्षा की घोर किल्लत से जूझ रही हैं। छात्राओं का आरोप है कि चापानल से दूषित पानी आ रहा है और चार दीवारी छोटी होने से वे असुरक्षित महसूस कर रही हैं। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: जैविक खेती अपनाओ और खेती बाड़ी के सुरक्षित रखो।
1: किसान वाणी कार्यक्रम में किसान भाई बहन बनकर स्वागत है। संध्या बहन
0: और मनोज भाई देने से
1: जोहार।
0: जोहार। और देखो, ये कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: हाँ
0: तो बहन देखो, आज कल कार्यक्रम सबसे पहले हमारे मन जानब मौसम, उसके बाद आज कर बात में हमारे मन के जानकारी देवे डॉक्टर लाहम दौर जी, जिकी बताबे लतादार फसलों के प्रमुख रोग और उनकर प्रबंधन कर बारे में। इसके बाद कृषि विकास गीत में सुनो इग्नेश कुमार और संगी उनकर गाँव गीत, और नवम्बर के नव फसल में आज का नौ किसान है कृष्ण मुरारी। तो भाई देखो, जैसे कि बात कर ली शुरू बेरा में, हम कह ली कि मौसम के बारे में, तो देखो तो मौसम आए क्या बताओ।
1: मौसम विभाग बटले भेंटाल सूचना कर मुताबिक राजधानी रांची और आसपास कर शहर मनकर तापमान आज ई लखे रहलक। रांची अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर कर अधिकतम तापमान है 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान है 27 डिग्री सेल्सियस। डाल्टनगंज कर अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस। चाईबासा कर अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस। ओहेलखे गढ़वा कर अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहलक। कटी कटी वर्षा होवे के संभावना।

0: रहे है।
1: मतलब कहे मतलब है कि ऐसे में बरखा पानी होता है कि आवे भी या नहीं भी आवे,
0: हाँ
1: लेकिन संभावना जताल जाला कि आ सकेला है कि नहीं।
0: हाँ कटी कटी तो अलग है और आवे संभावना भी
1: तो
0: है।
1: भाई देखो हमरे मन के सतर्क रहे के, और बरखा पानी का दिन भी पहुंच जाए तो हमरे मन के खेती बाड़ी में जैम के जुड़े के और खेती बाड़ी करे के। और देखो संगे संगे हमरे मन के जैविक खेती देने ध्यान देवे के। बहुत सारा भाई बहन कहे रासायनिक खेती कर देने जाए ना, ताकि जल्दी पैदावार हो और जल्दी जल्दी बिके, है कि नहीं। लेकिन
0: हाँ
1: हमरे मन के जैविक खेती देने भी ध्यान देवे के। जैविक खेती से भी हमरे कर बढ़िया फायदा है, उपजा बढ़िया होयला और पौष्टिकता वाला होयला, है कि नहीं।
0: हाँ ये रासायनिक खाद कर प्रयोग वगैरह कर ले स्वास्थ्य ऊपर असर पड़ेला भाई। और अगर स्वास्थ्य बेस नहीं रही तो काम काज बढ़िया से नहीं हो पारी।
1: सही बात है।
0: हाँ तो
1: तो अपन जी स्वांग के बेस रखे के लिए जैविक खेती देने ध्यान देवे के, है कि नहीं।
0: ओकर से फायदा है कि माटी हो नहीं बगड़ेला, माटी कर स्वास्थ्य भी बनल रहेला और फसल भी बढ़िया होवेला, संगे संगे हमरे कर स्वास्थ्य भी बढ़िया रहेला।
1: और भाई मन देखो जे मन अगर पहले से रासायनिक खेती मन करत हैं, आज के हमारे मन के जैविक खेती देने जाए के ना, के धीरे धीरे दर के हमारे मन के जाए के ना, तो आज के छोड़ दे, हो सकल पैदावार नहीं हुई तो फिर नुकसान होने का संभावना भी है कि नहीं। तो हमारे के एखन शुरुआत दौर है, तो हमारे मन के कोशिश करे कि वगैरह से वगैरह जैविक खेती कर उपयोग करे के, है कि नहीं। तो भाई देखो अब बरखा पानी कर दिन भी है, तो हमरे मन कर किसान भाई मन बहुत सारा खेती बाड़ी करे ना, और संगे संगे देखो लतादार फसल कर भी हमरे मन खेती बाड़ी करी ला। लेकिन कभी कभी ऐसा हो ला कि रोग में लग जाला, तो कर समय मन कर जो फसल है पूरा होवे के नहीं पारे ला, है नहीं। तो भाई इकर प्रबंधन भी जरूरी है, तो इकरे बारे में हमरे के बताते हैं डॉक्टर लाहम दोजी, इनकर सिक्के बकोठिया है और अपन खुद सुन ले वो।
2: किसानों ने कार्यक्रम आप सभी का स्वागत है, नमस्कार। आज हम जानेंगे लतरदार फसलों के प्रमुख रोग और उनका प्रबंधन के बारे में। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर लाम दोरजी, कन्या वैज्ञानिक बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कांके रांची। दोरजी आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है, नमस्कार।
3: नमस्कार और जोहार।
2: लतादार फसल के बारे में अगर हम बात करते हैं तो लतादार फसल में कौन कौन से आते हैं?
3: जी, लतादार फसल की अगर हम बात करें, जिसे हम कुकुरबिट्स भी कहते हैं, इनमें अनेक प्रकार के फसलें आप खरीफ सीजन पे उगाते हैं, जैसे कि नेनुआ, तोराई, लौकी, करेला, परवल, कद्दू, खीरा और कुछ फल जैसे कि तरबूजा, खरबूजा। और ये मैं ये कहना चाहूँगा कि जो ये सब सब्जियाँ और फल है, ये किसानों की आमदनी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसी के साथ ही साथ हम जैसे कंज्यूमर्स के लिए ये काफ़ी लाभदायक है हमारे स्वास्थ्य के लिए, क्योंकि ये पोषक तत्व से भरे होते हैं। जैसे कि आप देखिए, कैलोरी इसमें केवल 15 किलो कैलोरी ही मिलेगा, उसके साथ कार्बोहाइड्रेट काफ़ी ज़्यादा मात्रा में 6.5 ग्राम तक आपको मिलेगा। डाइट्री फाइबर भी काफ़ी अच्छे मात्रा में मिलते हैं, जिसके कारण कंस्टिपेशन वालों को काफ़ी मदद मिलता है डाइजेशन में। और वाइटामिन की बात करें तो भरपूर ए सी के है इस पर। मिनरल्स की बात करें तो पोटेशियम, जो कि ब्लड प्रेशर में आपको काफ़ी लाभदायक है। उसके साथ में और एक बात जोड़ना चाहूँगा यहाँ पे, कुकुरबिटासिन करके एक कंपाउंड मिलता है, जिस जो कि आपके स्वास्थ्य के लिए काफी लाभदायक है, क्योंकि ये एंटी इंफ्लामेटरी, एंटी डायबिटिक, उसके साथ ही साथ एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी रखता है।
2: तो ये जो फसल हम कब कब लगा सकते हैं, किस कोई खास मौसम में, किस सालों पर लगा सकते हैं?
3: जी देखिए, ये फसल आप हमारे झारखंड एरिया में तो किसान भाइयों और बहनों लोग ज़ैद सीज़न में लगाते हैं, जो कि आप समर कहते हैं, फरवरी मार्च में उन लोग लगाते हैं। और अभी जो आने वाले बारिश के मौसम में, जो हम खरीफ सीज़न कहते हैं, उस जून जुलाई महीने में भी किसान भाई और बहन लोग इस फसल को, इन फसलों को लगाएंगे,
2: लगा सकते हैं। तो लहम दौरजी एक चीज़ और चीज़ बताइए कि हम लोग तो सब फसल लगाते हैं, पर बहुत सारे फसलों में रोग लग जाते
3: जी
2: हैं, ठीक है, तो इसमें से कौन कौन से रोग लगते हैं और पहचान क्या है?
3: जी देखिए, इसमें जो काफ़ी जो महत्वपूर्ण रोग हमारे झारखंड और रांची एरिया में जो देखने को मिलता है, वो है डाउनी मिल्डू, पाउडरी मिल्डू और फिजारम विल्ट, जो कि फफून से होता है। उसके साथ ही साथ बैक्टीरियल विल्ट भी काफ़ी बार हमें देखने को मिल जाता है, जो कि एक जीवाणु के कारण होता है।
2: तो पहचान कैसे करेंगे हम?
3: जी पहचान कुछ इस तरह से है, अगर आप डाउनी मिल्डू की बात करें तो शुरुआती समय पर पत्तों की ऊपरी सतह पर आपको छोटे छोटे पीले कोनिये धब्बे दिखेंगे, और पत्तों की निचली सतह पर आपको सफ़ेद फफोले जैसे छाले दिखेंगे। और कुछ समय के बाद अगर मान लीजिए हवा में काफ़ी ज़्यादा नमी है, तो उस स्थिति में जो फफोले जो मैंने बताया पत्तों की निचली सतह पर, वो बैंगनी या गुसर रंग के हो जाएंगे। और इसके कारण क्या होता है कि जो कुछ समय के बाद जो छाले हैं, जो

0: फिर चूर्ण जैसा पदार्थ निकलेंगे जो हम बैक्टीरियल ऊस कहते हैं, या फिर आप तनों को काट कर एक साफ पानी में भी डुबा कर रख सकते हैं, जहाँ से आपको दिखेगा कि वहाँ से बैक्टीरियल ऊस निकलते हुए। तो इससे इस तरह से आप इस बीमारियों को पहचान सकते हैं।
1: जैसे रोग कब लगता है, शुरुआत दौर में लगता है कि जब फल आते हैं तब लगता है?
0: जी, रोग कुछ इस प्रकार से है। रोग लगने के लिए आपका जो पर्यावरण स्थिति है वो फेवरेबल होना चाहिए इन फफूंद और जीवाणु के लिए। तो जब हवा की नमी, डाउनी मिल्ड्यू की बात करें तो जब हवा की जो नमी है वो 80% से ज़्यादा हो और लगातार बारिश जब आप हो और तापमान 20 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में हो, तो आप समझ सकते हैं कि डाउनी मिल्ड्यू ज़रूर आपको आपके फसलों में दिखेंगे। उसके साथ ही साथ अगर आप पाउडरी मिल्ड्यू की बात करें तो इतनी ज़्यादा नमी की ज़रूरत नहीं पड़ती है इसे। दिन में अगर नमी कम मतलब सूखा और शाम को थोड़ी नमी हुआ तो पाउडरी मिल्ड्यू का डिजीज़ आपको देखने को मिल जाएगा। अगर फिजारियम विल्ट की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे कि जो ये फिजारियम विल्ट है वो पौधों की जो अवशेष है, पुराने पौधों की जो अवशेष है उसमें जीवित रहते हैं, और जब पानी जो मिट्टी में जो नमी ज़्यादा हो जाती है तो उस स्थिति में आपको फिजारियम विल्ट देखने को मिल जाएगा। लेकिन जो मैंने बैक्टीरियल विल्ट की जो बात की वो एक कीटक है जिसका नाम है कुकुम्बर बीटल, उससे ही उसके माध्यम से ही ये बीमारी काफ़ी तेज़ी से आपके खेतों में फैलता है।
1: तो जितने सारे आप जो फसल के बारे में बताए तो सारे में फैल जाते हैं
0: जी? किसी में? ये डाउनी मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू और बैक्टीरियल विल्ट काफ़ी तेज़ी से फैलेगा। लेकिन जब आप फिजारियम विल्ट की बात करें तो कुछ पौधों में आपको देखने को मिलेगा जो मुरझाना जो सिम्टम मैंने आगे बताया, तो कुछ ही पौधों पर आपको देखने को मिलेगा फिजारियम विल्ट के केस में। लेकिन डाउनी मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू और बैक्टीरियल विल्ट काफ़ी तेज़ी से खेतों में फैल सकता है अगर आप सही समय पर उसका प्रबंधन ना किया जाए तो।
1: जब ये कीटाणु फैल जाते हैं तो जो हम लोग को जो फसल लेना है तो फसल की जो मात्रा है हमें काफ़ी कम मिलेगी, फसल तो कम मिलेगी।
0: जी जी, उपज काफ़ी कम हो जाएंगी जी।
1: इसका रोग जितना सारा आप मैंने बताया उसका तो प्रबंधन जरूरी है, हमको तो इसको रोकना जरूरी है। अगर नहीं रोकेंगे तो फिर फसल हमको नहीं मिलेगी।
0: बेशक,
1: तो इसका प्रबंधन हम कैसे कर सकते हैं?
0: जी, प्रबंधन कुछ इस प्रकार से है। सभी रोगों के लिए पहली बात तो आपको खेतों में साफ सफाई रखना काफ़ी आवश्यक है। उसके साथ ही साथ अगर आप डाउनी मिल्ड्यू की बात करें तो हवा का जो अच्छा संचार रखना खेतों में ज़रूरी है। इसका मतलब ये है कि जो पौधों की ऑप्टिमम डेंसिटी आप रखें। कुछ फफूंद नाशक है जैसे कि मेटालाक्सिल जो 2 ग्राम प्रति लीटर में घोलकर आप उसका छिड़काव कर सकते हैं, क्लोरोथालोनिल जो भी वो भी 2 ग्राम प्रति लीटर में घोलकर आप उसका छिड़काव कर सकते हैं। पाउडरी मिल्ड्यू के लिए कुछ फफूंद नाशक है जैसे कि माइक्लोबुटानिल, वो आप 0.4 ग्राम प्रति लीटर में घोलकर उसका छिड़काव कर सकते हैं। और 2 नई फंगिसाइड जो कि काफ़ी प्रभावशाली है पाउडरी मिल्ड्यू के अगेंस्ट में, जैसे कि क्विनोक्सीफेन एंड साइफ्लोफेनामाइड जो कि 0.25 ग्राम प्रति लीटर में घोलकर आप उसका छिड़काव कर सकते हैं, और 7 से 10 दिन के बाद आप छिड़काव दोहरा सकते हैं। इससे आपका जो रोग का जो संक्रमण है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। फिजारियम विल्ट के लिए आप क्या कर सकते हैं, प्रतिरोधी किस्में आप अपना सकते हैं और जैव नियंत्रण को आप अपना सकते हैं जैसे कि ट्राइकोडर्मा और सीरोमोनास। बैक्टीरियल विल्ट के लिए कोई ऐसा उपचार नहीं है, तो रोकथाम ही इसका सबसे अच्छा उपचार है। लेकिन आप जो कीट है जो हमने आगे मेंशन किया कुकुम्बर बीटल, उसको आप नियंत्रण में रख सकते हैं। उसके लिए आप इमिडा क्लोरप्रिट लगभग 1 ml प्रति लीटर में घोलकर छिड़काव कर सकते हैं। जब कीट का संख्या कम होगा खेतों में तो ये बैक्टीरियल विल्ट भी कम फैलेगा खेतों में जी।
1: दवा को सिर्फ छिड़काव करना है कि जड़ में भी अलग से दे सकते हैं?
0: नहीं, दवा छिड़काव करना है डाउनी मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू और बैक्टीरियल विल्ट के केस में। लेकिन फिजारियम विल्ट के केस में अगर कुछ आप दवा देते हैं जैसे कि कार्बिंडाजिम 1 ग्राम प्रति लीटर, तो उसके केस में जो जड़ के आसपास है उसमें आपको दवा को देना होगा, जिसे हम ड्रेंचिंग कहते हैं जी।
1: बहुत सारे किसान भाई मल्चिंग से खेती करते हैं, बहुत सारे ऐसे खुले खेत में करते हैं, तो दोनों में रोग सामान्य लगता है कि दोनों में अलग अलग रोग लगता है?
0: देखिए, अगर आप मल्चिंग करते हैं पौधों के अवशेष से तो उस स्थिति में बीमारी ज़्यादा आएगा आपके खेतों में, वो तय है। क्योंकि पौधों के अवशेष में जो इसका जो रेस्टिंग स्पोर्स कहते हैं वो काफ़ी लंबे समय के लिए जीवित रहते हैं। जैसे अगर मैं डाउनी मिल्ड्यू की बात करूं तो उसमें ऊ स्पोर काफ़ी समय के लिए पौधों के अवशेष में जीवित रहते हैं। पाउडरी मिल्ड्यू की बात करूं तो उस केस में क्रिस्टोथेशियम, और फ्यूजारियम की बात करूं मैं फ्यूजारियम विल्ट की, तो उस केस में क्लेमिडोस्पोर काफ़ी लंबे समय के लिए वो जीवित रहते हैं।
1: तो अंत में हमारे किसान भाई को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या सुझाव देना चाहेंगे?
0: जी, मैं सभी किसान भाइयों भाइयों और बहनों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप सही समय पर इन रोगों का पहचान करें और सही प्रबंधन करें, उसी से ही आपकी उपज अच्छी होगी और बेहतर आमदनी होगी। उसी के साथ मैं कुछ किस्में आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि आप खीरा के लिए आप स्वर्णपूर्ण, स्वर्ण अगेती, स्वर्ण शीतल, पूसा संयोग इस्तेमाल कर सकते हैं। नेनुआ के लिए

0: सा चिकनी, पूसा प्रभा, स्वर्ण प्रभा इस्तेमाल कर सकते हैं। कद्दू के लिए अर्का बहार, पूसा समर प्रोलिफिक लॉन्ग, पूसा समर प्रोलिफिक राउंड, पूसा मेघदूत, पूसा मंजरी अपना सकते हैं। करेला के लिए अर्का हरित, प्रिया, कल्याणपुर सोना, पूसा हाइब्रिड वन अपना सकते हैं। परवल के लिए स्वर्ण रेखा, स्वर्ण अलौकिक अपना सकते हैं। इससे जो रोग आज हमने चर्चा किया वो काफ़ी कम होगा और आपकी उपज भी अच्छी होगी।
1: तो किसान भाइयों, आज आपने जाना कि लतादार फसलों के प्रमुख रोग कौन से हैं और उनका प्रबंधन हम किस तरह कर सकते हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद थे डॉक्टर लाम दोरजी। दोरजी, आप हमारे स्टूडियो में आए और इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
0: नमस्कार।
1: तो किसान भाइयों, आज के लिए बस इतना ही। दूसरे दिन फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार, जोहार।
2: तो भाई, हमरे जानकारी कर ली लतरदार फसल कर प्रमुख रोग और उकर प्रबंधन कर बारे में। तो आगे बढ़ीला और सुनीला एगो कृषि गीत नागपुरी में इग्नेश कुमार और संगीमन कर गावल।

0: खूबसूरत सा गीत हमरमन सुनली इग्नेश कुमार संगीमन कर गावल गीत जे कि झारखंड के कृषि से संबंधित रहे। तो भाई देखो अब एक बाद बेरा है किसान कर और देखो आइज कर एक नवा किसान है जेकर से हमारे कर संगी कृषि जीवन भाई गोठिया हैं और किसान है कृष्णा मुरारी।
1: चलो सुना।
2: किसान भाई बहन मने आज रावण के एगो जागरूक किसान से भेंट करवावा थे। भाई राउर नाम का होलक?
3: हमार नाम कृष्ण मुरारी होलक।
2: और घर कहाँ होलक?
3: हमार घर है के टीको टोली मांडर प्रखंड में पड़े ला।
2: देखो राउर के तो देखा थे कि बड़ा बढ़िया खेती बाड़ी करे ला ही खान। भाई राउर जमीन कितना है?
3: जमीन है लगभग लगभग 2 एकड़ जैसा जमीन है।
2: राउर जमीन 2 एकड़ है तो 2 एकड़ में खान का लगा ली है?
3: 2 एकड़ में 1 एकड़ तो दुईन है।
2: हाँ।
3: और 1 एकड़ डाँड़ है और डाँड़ में लगभग 70 डिसमिल में हम लगा लिए सब्जी का खेती।
2: अच्छा 70 डिसमिल का लगा ली है?
3: 70 डिसमिल में अखन हमारे लगल है भिंडी लगल है कुछ मरचाई लगल है और टमाटर भी लगा ही नेनुआ लगा ली है खीरा लगा ही कद्दू लगा ही बस इतने सब्जी का अखन खेती कर लिए है।
2: और पटवन कर का साधन है?
3: बोरिंग करवा ली है बोरिंग से अखन चले लगल है पटवन।
2: अच्छा बोरिंग कहाँ से करवा है गाड़ी से कि हाथ वाला?
3: हाथे वाला बोरिंग है कि ट्रैक्टर वाला से करवा ली है। ज़्यादा गाढ़ा तो नहीं गलक लेकिन लगभग लगभग 60 फीट गलक है उकरे में पानी अवेलेबल हो गलक है।
2: पानी पूर जाए?
3: हाँ पानी अपन घर कर भी खर्चा निकल जाएगा और खेती भी करे हो जाए।
2: कुइया मन जो पुरना कुइया मने जो पुरखौती कुइया मने है वो सब है कि नखे?
3: पुरखौती कुइया है लेकिन पूरा गांव का आदमी वह कुइया से पानी पिया ले से ले पानी की यूज नहीं करी ले वह बोरिंग वाला पानी से अखन पटवन चले लगे।
2: अच्छा तो एखनो हर कुइया से पूरा गांव का आदमी पानी पिए?
3: हाँ एखनो हमारे गाँव से पूरा कुइया कर पानी पिए ले कभी कुइया नहीं सूखे ले हमारे कितना दिन होलक हमको खुद ही आई दिनक
2: यानी कि रौरिन यहाँ पुरखौती बसल है?
3: हाँ यहाँ हम इन पुरखौती बसल है।
2: और पढ़ल लिखल कितना है?
3: हम पढ़ लिए बीए पास कर लिए ओकर बाद छोड़ दिली
2: तो खेती बाड़ी में लाई गई
3: है। हम खेती बाड़ी में लाई गई
2: तखन और कहली कि लत्तर वाला सब्जी लगा ली है तो लत्तर वाला सब्जी कर विषय में तनि हमारे किसान भाई बहन के जानकारी कर दो कि अरे लत्तर वाला जो सब्जी हम लगा है तो कैसे कैसे लगा है और कैसे कैसे ओके लगावे चाहिए?
3: लत्तर वाला सब्जी के सबसे पहले तो ओकर में जैसे हम नेनुआ लगा लिए तो नेनुआ कर जगह जो होवेल वो कम से कम 10 फीट का डिफरेंस में होवेल और 10 फीट का डिफरेंस में एक एक ठो गाढ़ा जो रहेल एक गाढ़ा में दो दो गो तीन तीन गो नेनुआ के लगा के पड़ेल और 10 फीट में लगा ली है और उकर बाद वो सिर्फ हम गोबर कर खाद दे करके और नेनुआ कर लगा ली है और बराबर हर सुबह और शाम उकर में सिंचाई करी ले।
2: अच्छा और कद्दू भी लगा है?
3: हाँ कद्दू भी लगा लिए कद्दू कर भी वही नियम है उस वही हिसाब से के लगा लिए।
2: तो जैसे कि सबके झांक देवे के पड़े ला?
3: हाँ हाँ हाँ उकर में हम सब में झांक दिली है बांस कर भी कुछ झांक दे दिली है और कुटूस उटूस कर काट करके बढ़िया से छतरी बना दिली है लड़ के उकरे ऊपर में चढ़ा दिली है। अब फर भी फूल तो बहुत जोर से फूलल है फल भी लागे लागल है अब बुझात है कि 8-10 रोज में हमको कुछ फल भी प्राप्त हो जाए।
2: अच्छा जैसे और गोबर खाद कर बात कर ली मवेशी भी पोस हो?
3: हाँ मवेशी भी पाल लिए 4 गो मवेशी है हमारे घर में और वह मवेशी कर खाद भी देवे ले और

0: मवेशियों के खाद से खाना में विशेष करके जितना सब्जी लगा ली है सबके उपज करे लगा ली है।
1: मवेशी मन में का पोसी?
0: सिर्फ गाय है हमारे यहाँ।
1: और बैल?
0: बैल तो रखे, गाय है।
1: तो जोताई कहाँ से करी लो?
0: जोताई ट्रैक्टर से हो।
1: अच्छा, ट्रैक्टर ट्रैक्टर अपन है कि भाड़े में ला?
0: भाड़े में ला ले, गाँव में है 3-4 गो, वो है अपना बुला देवे, अपन जोत के चल जाएंगे।
1: लतर वाला सब्जी का जो खाद कर बात कर ली, गोबर खाद कर अलावा कुछ रासायनिक खाद कर भी प्रयोग करी ली का?
0: हाँ, रासायनिक खाद में थोड़ा सा DAP और यूरिया हल्का फुल्का उकर यूज कर ली है। उकर से मतलब पौधा में थोड़ा सा वृद्धि होएला, हरापन भी बहुत बढ़िया दिखेल और फल फूल भी बहुत बढ़िया लागे उकर से।
1: अच्छा, ये बताओ मुरारी भाई कि जैसे पुराना जमाना में खेती करत रहे पुराना परम्पराओं से, अब खान नया जमाना से कुछ कुछ खेती हुआ थे तो वैज्ञानिक खेती तो और कुछ वैज्ञानिक खेती मन के अपना है कि नहीं?
0: वैज्ञानिक खेती के भी कुछ बहुत तो अपनावे कर लिए, जैसे रासायनिक खाद दे थी पहले हुआ था गोबर कर खाद में खेती, अब है कि रासायनिक खाद भी दे करके हम खेती करे लगा ली। वैज्ञानिक में है कुछ नियम के हम अपना ली है, जैसे नया नया खाद आवे लागल है, दवाई कुछ छिड़काव कर दवाई भी अलग है, कीड़ा लग जाए ला पतई छेदा उदा होए लागल है, कीड़ा लग जाए ला तो कर में हम दवाई कर भी प्रयोग करी ले ताकि हम कर जो लतर रहे ला, लतर एकदम साफ सुथरा बढ़िया रहे ला, हरा भरा भी दिखे ला।
1: लतर वाला सब्जी में बीमारी कौन कौन सा लगे ला?
0: लतर वाला सब्जी में ज्यादा करके फुफुंदी नाम करके एक तो बीमारी आवे ला, होए लगा कि फूल जो रहे ला फूलवा में फुफुंदी लग जाए ला और पते छेदा करे लगल तो वह कीड़ा लग जाए, ऊपर में दवाई देवल कर बाद फफूंदी भी खत्म हो जाए और पत्ता भी साफ सुथरा हो जाए।
1: अच्छा, और कैसे जाने ला कि कौन बीमारी में कौन सा दवाई देवे के चाहिए?
0: दवाई दुकान में बीज दुकान हमारे बढ़ाम्बे में है, वहाँ जाए ले, वहाँ से हम इनके जानकारी भी प्राप्त हो जाए कि दवाई देवल से फफूंदी कर ठीक हो जाए, दवाई देवल से फूल उल ठीक ठाक से रही, फल ठीक से हो। बहुत दिन से खेती करे लागल है तो अब हम इनके खुद इतना अनुभव हो गया है कि कौन फूल उल में फफूंदी उफूंदी लागे लागल है तो ओकर में कौन सा दवाई देवल जाए।
1: हाँ हाँ,
0: कीड़ा पतई उतई में लागे लागल है ओकर में कौन सा दवाई देवल जाए, ये सब करीब करीब हम इनका अनुभव भी हो गया है और अपन से जा करके दवाई भी खरीद के लाइन करके दवाई के छिड़काव करी ले, मशीन भी रख ले है अपन मशीन में डाल करके हम अपन खुद दवाई का छिड़काव कर दे।
1: और देखो सरकार बटे से ब्लॉक बटे से कोनो सुविधा रहे उनके भेटा है लेकिन
0: हम उतना प्रयास भी नहीं कर ली है, लेकिन अगर चाहले सरकार तरफ से और ब्लॉक तरफ से सुविधा जरूर प्राप्त होगी।
1: रावरे जी इतना खेती बाड़ी करी ला तो इकर खपत कैसे कर?
0: बगल में हमारे ब्राम्बे बाजार है और उकर में 3 दिन बाजार लगे, मंगल के शनिचर के एतवार के बहुत बाहर बाहर कर व्यापारी मन आवे ना, बेचे में कोई तरह का हमें दिक्कत नहीं हुए, सुबह में 6 बजे से वहाँ बाजार लग जाए और हम सुबह 6 बजे तक वहाँ पहुँच जाए, सारा सब्जी हम इनके बिक जाए, अच्छा रेट में बिक जाए।
1: माने सारा सब्जी रहे व्यापारी मन के?
0: सारा सब्जी हम व्यापारी के दे देवे दे।
1: आखिरी में हमारे किसान भाई मन के अपन देने से कोनो कहे चाहब?
0: हम अपन किसान भाई मन से यह कहे चाहते कि अगर व्यवस्था है तो जमीन के बंजर मत रखें, ओकर में कुछ न कुछ लगाए करके और अपन खेती करें ताकि दर भी आदमी के प्राप्त हो जाए और ओकर में समझो कि एक समय भी निकल जाए और कुछ पैसा भी आ जाए, हरा भरा भी रहे और इकर से किसान के कुछ फायदा भी बहुत ज्यादा हो।
1: मुरारी भाई रौर से मिल के बहुत बढ़िया बुझा लग, रौर के जोहर करत थे
0: जोहर, जो भी सुने लागल है सब भाई बहन मन के हमारे तरफ से जोहर है।
2: तो देखो आज कर किसान रहे जे कि कृष्ण मुरारी रहे और हमरे कर संगी कृष्ण जीवन भाई गोठियाल है। सही बात है भाई कि देखो किसान कर करल बातचीत के हमरे मन के सुने चाहिए, जाने चाहिए कि काल के खेती बाड़ी करत हैं और कैसन उपजात हैं और कैसन अपने आप के संवरात हैं और खेती बाड़ी के कर के आगे बढ़ते हैं कि नहीं।
3: और भाई पुराना किसान मन के अनुभव के तो एकदम जरूर अमल में लाने के चाहिए, काले की उकर से फायदा ही भेटायल है नहीं।
2: और देखो हमरे मन बेरा बेरा से नवा नवा किसान से भेंट मुलाकात करवाते रहे हैं। भाई देखो बताते चाहिए कि अब तो हमको लगा था कि बेरा भी होवत है कि नहीं।
3: हाँ।
2: तो भाई ये कार्यक्रम को प्रायोजक रहे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार और कार्यक्रम कर प्रस्तुति रहे
3: प्रभु शरण कर।
2: तो भाई अब तनी देर बाद दूसरा कार्यक्रम।

0: एक रहो और मिलजुल के रहो।
1: एकदम फिर से सुनवाइया भाई बहन बनकर कार्यक्रम में स्वागत है। संध्या बहन
0: और मनोज भाई कर
1: जोहार।
0: जोहार। और देखो नी बहन, एखन तो मौसम भी बरखा पानी कर भी है, और देखो नी पर्व त्योहार मन भी आते जाते रहला के बाद,
1: हाँ
0: तो हमरे मन के देखो खेती बाड़ी करो, चाहे पर्व त्योहार के मनाओ, चाहे कोनो ऐसा संगठन में रहो, चाहे कुछ भी रहो, हमरे मन के आपस में एक रहे के चाहिए, है कि नहीं?
1: हाँ हाँ मतलब पड़ोसी मन से बढ़िया संबंध बनाए के रखे के
0: हाँ देखो
1: यही
0: पर्व,
1: कहत
0: सही
1: ही।
0: बात है, पड़ोसी कर संगे संगे देखो पर्व त्योहार भी, दोसर धर्म कर भी बात रहेला, दोसर जात कर भी बात रहेला, तो सबसे हमरे मन के आपस में सामंजस्य बनाए के चले के और एक रहे के, समाज में रहे के, तो समाज में सब किस्म के आदमी रहे ना, तो सबका से हमरे मन के भेंट करके रहे के है और एक दूसरे के सहयोग भी करे के है कि नहीं?
1: हाँ
0: जैसे कि पर्व त्योहार आवेला तो हमरे मन साफ सफाई कर बात हो गेलक, चाहे कोनो काम हो गेलक, तो ऐसा हमरे मन के एक बनाए के रहे के और एक कर चलते हमरे मन के समाज के संदेश भी देवे के कि एक रहो और अनेकता में विविधता भी कहना है कि नहीं?
1: काले कि सबकर खान पान रहन सहन कहब कि संस्कृति परंपरा सब अलगे रहेला। तो अगर
0: हाँ
1: हाँ
0: हाँ बोलो
1: हाँ
0: बोलो।
1: एक ठिन रहेला हमरे मन तो एक दूसरे कर पर्व त्योहार मन में सा होए कर कोनो कोनो छोट बड़ सब हर समारोह में सा होए कर हमरे के अवसर भेटायला।
0: और जाने कर सीखे कर संस्कृति
1: हाँ
0: के हमरे मन जाने कर मौका भेटायला है कि नहीं?
1: हाँ और देखो कौन में सुख रहे दुख रहे कौन में रहे सबसे पहले तो हमरे कर आसपास कर आदमी मन आवे नी तो वह मन हमरे कर सुख दुख के बांटे ना तो हमरे के सबसे अपन संबंध बेस से बढ़िया से बनाए के रखे है।
0: और देखो नहीं, आज हमरे कर जो कार्यक्रम में हमरे कर तनिष अख्तर भी गीत कर माध्यम से संदेश भी देवत हैं, चलो सुनी ले।
1: चलो सुनो।

0: ভাই দেখো, এখানে আমরা শুনলি সুভাষ কোরি আর সঙ্গী মানখান গাওয়াল গীত, যে কি ঝাড়খণ্ড কর গুণগান করলে। আর সহি বাত হ্যাঁ ভাই, হামরে কর ঝাড়খণ্ড কর মাটি, হামরে কর ঝাড়খণ্ড কর সংস্কৃতি, হামরে কর ঝাড়খণ্ড কর খেতি বাড়ি ইতনা বড়িয়া হ্যাঁ কি গোটা দুনিয়া মে পসরা কে নাম কমাতে হ্যাঁ কি নেই। তো এর বারে হামরে মনে একটু জানকারি ভি শুনে কে চাহিলা কি ঝাড়খণ্ড কর প্রমুখ ব্যঞ্জন আর ওকর পৌষ্টিক গুণ কর বারে মে, তো এর বারে মে হামরে কে বতাবে চঞ্চল কুমারী। চলো শুনিলা।
1: पान मुख्य रूप से प्राकृतिक से जुड़ा हुआ है, जो स्थानीय रूप से उपलब्ध अनाजों, जंगली सब्जियों, कंदमूल और प्राकृतिक जड़ी बूटियों पर आधारित होता है। यहाँ का भोजन सादा होने के साथ साथ अत्यधिक पौष्टिक और सुपाच्य होता है। खाना पकाने की विधियाँ सरल लेकिन सटीक, धीमी आंच पर उबलना, आग पर भूनना और तेल का कम से कम उपयोग करना यहाँ की विशेषता है। मसालों का प्रयोग सावधानी पूर्वक किया जाता है, अधिक मात्रा में नहीं, इसमें प्राकृतिक स्वाद बरकरार रहता है। तो चलिए झारखंड के प्रमुख व्यंजन और उसके पौष्टिक गुणों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले धुस्का। धुस्का झारखंड का एक प्रमुख नाश्ता है। शहरी एवं ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में इसका व्यापक रूप से सेवन किया जाता है। इसे चावल दाल के खमीरित घोल से बनाया जाता है। इसका स्वाद थोड़ा गहरा हो जाता है। आटे को तल कर पकाया जाता है, जिसमें इसकी बाहरी परत कुरकुरी और भीतरी परत नरम और हवादार हो जाती है। इसे आमतौर पर आलू की करी या मसालेदार चने के साथ परोसा जाता है, जो इसके हल्के स्वाद को संतुलित करते हैं। स्थानीय लोग के बीच व्यापक रूप से पसंद किया जाता है। इसके गुण, यह कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फाइबर का एक बेहतरीन स्रोत है। चने की दाल मांसपेशियों के निर्माण, ऊर्जा के स्तर को बनाए रखने में मदद करती है। लिट्टी चोखा झारखंड में खाए जाने वाला एक पौष्टिक व्यंजन है। लिट्टी गेहूं के गोले से बने होते हैं, जिनमें सत्तू भरा जाता है। सत्तू भुने हुए चने के आटों को मसालों और सरसों के तेल के साथ मिलाकर बनाया जाता है। इन गोलों को कोयले या गोबर के उपलों पर पकाया जाता है, जिससे इसमें धुएं का स्वाद आ जाता है। इसके साथ चोखा परोसा जाता है, जिसे उबले हुए आलू, भुने हुए बैंगन और टमाटर को मसालों के साथ मसलकर बनाया जाता है। यह व्यंजन फाइबर और प्रोटीन से भरपूर होता है, जो इसे पौष्टिक और पेट भरने वाला बनाता है। इसे अक्सर दोपहर के भोजन में खाया जाता है। इनके चटपटे स्वाद से खास बनाती है। इसके पौष्टिक गुण, सत्तू ऊर्जा का पावर हाउस है। यह शरीर को तुरंत ठंड

ठंडक और ऊर्जा देता है। इसमें उच्च फाइबर होता है जो पेट के स्वास्थ्य के लिए उत्तम है। रुगड़ा, रुगड़ा जिसे फुटका भी कहा जाता है, झारखंड में पाए जाने वाला एक दुर्लभ वन उत्पाद है। यह जमीन के नीचे उगता है, मानसून के मौसम में दिखाई देता है। यह देखने में मशरूम जैसा लगता है, लेकिन इसकी बनावट अधिक घनी होती है। स्थानीय लोग इसे वन क्षेत्रों में से इकट्ठा करते हैं, जिससे यह एक मौसमी व्यंजन बन जाता है। इसे साफ करके मसालों के साथ पकाया जाता है और एक स्वादिष्ट करी तैयार की जाती है। इसका स्वाद मिट्टी जैसा हल्का मांसाहारी होता है। रुगड़ा को अक्सर विशेष अवसरों पर चावल के साथ खाया जाता है। पिट्ठा, पिट्ठा चावल के आटे से बना एक व्यंजन है और झारखंड में इसे खूब बनाया जाता है। यह मीठे और नमकीन दोनों रूप में मिलता है। पिट्ठे में गुड़ और नारियल भरा जाता है, जबकि नमकीन पिट्ठा में दाल या मसालेदार भरवान हो सकता है। इसकी बाहरी परत नरम चावल के आटे से बनी होती, इसे आकार देकर भाप में पकाया जाता है। यह हल्का, आसानी से पचने वाला, सरल सामग्री से बना होता है। यह व्यंजन परंपरा और घर के बने खाने का प्रतीक है। इसे अक्सर बड़ी मात्रा में बनाया जाता है और परिवार के सदस्यों के बीच बांटा जाता है। इसके गुण, भाप में पके होने के कारण इसमें तेल की मात्रा नहीं होती। चावल से कार्बोहाइड्रेट और दाल से उच्च मात्रा में प्रोटीन मिलता है, जो इसे एक हल्का और संपूर्ण आहार बनाता है। स्थानीय साग, झारखंड में स्थानीय साग दैनिक भोजन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें कई प्रकार के पत्तेदार सब्जियां इस्तेमाल की जाती है, जिनमें से अधिकांश आसपास के जंगलों से लाई जाती है। ये साग पोषक तत्वों से भरपूर होती है और इन्हें सरल तरीके से पकाया जाता है। आमतौर पर इन्हें लहसुन, नमक और कम मसालों के साथ हल्का सा भूनकर इसका प्राकृतिक स्वाद बरकरार रखा जाता है। साग मुलायम होता है और इसका स्वाद हल्का लेकिन ताजा होता है। साग अक्सर चावल और दाल के साथ परोसा जाता है, जिससे ये एक संतुलित भोजन बनता है। इसे बनाना आसान है या घरों में व्यापक रूप से खाया जाता है। इसके पौष्टिक गुण, ये साग विटामिन ए, सी, आयरन और फॉलिक एसिड से भरपूर होते हैं। शरीर में खून की कमी, एनीमिया को दूर करने और मौसमी बीमारियों से बचाव में ये अत्यधिक सहायक है। अरसा रोटी विशेष अवसरों से गहराई से जुड़ी हुई है। इसे चावल के आटे, गुड़ को मिलाकर नरम गूंदा आटा गूंदा जाता है। आटे को छोटी छोटी गोल रोटियों का आकार देकर सुनहरा होने तक तला जाता है। इसकी बाहरी परत कुरकुरी हो जाती है, जबकि अंदर से यह नरम और चबाने योग्य रहती है। गुड़ के प्रयोग से इसमें एक गहरी प्राकृतिक मिठास आती है। इसे अक्सर शादियों और स्थानीय समारोहों में बनाया जाता है। यह व्यंजन सरल है, लेकिन इसका सांस्कृतिक महत्व है। इसे कुछ दिनों तक आसानी से स्टोर किया जा सकता है। मड़वा रागी से बने व्यंजन, मड़वा रागी झारखंड का एक सुपर फूड अनाज है, जिससे रोटी, लड्डू, इट्टी जैसे व्यंजन बनाए जाते हैं। पौष्टिक गुण, यह फाइबर, कैल्शियम, आयरन से भरपूर होता है। यह मधुमेह, डायबिटीज नियंत्रण, वजन घटाने और हड्डियों को मजबूत बनाने में बेहद फायदेमंद है। महुआ और बांस के अंकुर, आदिवासी क्षेत्रों में बांस के कोमल अंकुरों और जंगलों से मिलने वाले प्राकृतिक उत्पादकों की सब्जी और अचार बनाए जाते हैं। बांस के अंकुर एक एंटीऑक्सीडेंट और फाइबर से भरपूर होते हैं, जो पाचन क्रिया को दुरुस्त रखते हैं और रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ाते हैं। छिलका रोटी झारखंड के घरों में बनने वाला एक सरल और पौष्टिक व्यंजन है। इसे चावल, चने की दाल के घोल से बनाया जाता है, जिन्हें भिंगोकर एक साथ पीस लिया जाता है। इस घोल को गर्म तावे पर फैलाकर मोटी रोटी की तरह पकाया जाता है। इसमें ज्यादा तेल की जरूरत नहीं होती, इसलिए यह हल्का और सेहतमंद विकल्प है। इसकी बनावट नरम होती है और किनारे हल्के कुरकुरे होते हैं। इसे आमतौर पर हरी चटनी या सब्जी की करी के साथ परोसा जाता है। यह व्यंजन आसानी से पच जाता है, अक्सर नाश्ते या रात के खाने में खाया जाता है। इसके पौष्टिक गुणों और सरल तैयारी के कारण यह दैनिक भोजन का एक हिस्सा है। झारखंड का भोजन क्षेत्रीय खाद्य संस्कृतियों में से एक है। यह स्थानीय परिस्थिति की
मौसमी उपज, आदिवासी खाना पकाने की विधियों में निहित, भोजन में मसालों का कम से कम उपयोग होता है, फिर भी यह भरपूर और प्राकृतिक स्वाद प्रदान करता है। भोजन के शौकीन और पाक कला के क्षेत्र में यात्रा करने वालों के लिए यह

0: धारा के भारतीय स्वादों से एक ताजा बदलाव प्रदान कर। श्रोता मित्रों, झारखंड के प्रत्येक व्यंजन मिट्टी के स्वाद को उभारते हैं। इसकी सादगी ही इसकी ताकत है। प्रत्येक व्यंजन परंपरा और संस्कृति पहचान को दर्शाता है। झारखंड एक अनूठा अवसर प्रस्तुत करता है, यह केवल खाने के बारे में नहीं बल्कि इसकी सामग्री, तकनीकों और रोजमर्रा के भोजन के माध्यम से एक क्षेत्र को समझने के बारे में है।
1: देखन हमारे मन धुसका खाली, छिलका खाली, काका मन ढेर चीज खाली है कि नहीं।
2: झारखंड में बने वाला हर व्यंजन के खाली है।
1: सही बात है भाई बहन, देखो हमारे कर झारखंड राज्य में तो कहे के नखे, यहाँ कर संस्कृति, यहाँ कर खान पान कहब नहीं तो एकदम अजगुते है कि नहीं। हाँ। और सब जगह देखो बाहर से कोई भी आवे ना नहीं झारखंड में, तो सबके खाली धुसके और छिलका रोटी मन के गुलगुला मन के सब खोजे ना, कि यहाँ कर पारंपरिक जो खाद्य पदार्थ है वो सब खोजे ना, है ना, और बड़े चाव से खाए ना।
2: नाम सुन रहे हैं मुंह में पानी आ रही है नहीं।
1: और देखो मन बहुत कोई आवे ना नहीं है, बहुत कोई सीखे ना भी कि काले खे
2: बनेला
1: और काले खे एकर में का चीज़ में डालब तो बहुत बढ़िया होगी। तो सही हाँ। बात है भाई, हमरे कर संस्कृति, हमरे कर भाषा है, हमरे कर खान पान है कि हमरे मन के पसराए है और बढ़िया से पसराए है ताकि दूसरा उन भी जानबे है कि नहीं।
2: हाँ, अरे कर स्वाद के ले बहनी।
1: अब भाई देखो जैसन कि हमरे मन तखन बात करत रही सामाजिक एकता के बारे में, तो भाई एक रह से हमरे मन के बहुते फायदा है, तो एक बारे में हमरे कर गीत कर माध्यम से संदेश भी देवत हैं तनिष अख्तर।

0: तो भाई बहन एखन हमारे मन के तनि सख्त और गीत कर माध्यम से संदेश दे रहे हैं कि हमारे की एक रहे के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ईसाई कोई भी हो, हमारे मन के आपस में मिलजुल कर रहे के और मिलजुल के देश के आगे बढ़ाए के, समाज के आगे बढ़ाए के है कि नहीं। तो भाई देखो आज कर कार्यक्रम तो हमके लगा था कि बेरा सिरात है, लेकिन कहे चाहती कि भाई हम बरखा पानी कर दिन मन है, स्वस्थ रहो, बढ़िया बढ़िया के गरम गरम करके पानी मन के डपकाए के पियो,
1: हाँ, काले
0: और
1: कि पानी बहुत एखन,
0: जरूरी है।
1: हाँ पानी आवे के लागल तो पानी गंदा हो जाएला,
0: और
1: कुआ
0: खाए,
1: करी कर
0: सही बात है, और
1: पानी।
0: खाए पिए कर बात है, तो हमरे मन के गर्मा गर्म खाए के है और ठंडा खाए के नहीं है कि नहीं।
1: बासी न खे खाक।
0: जीव स्वांग मन के बेस रखब तो हमने आगे बढ़ब, और हमरे कर देश के आगे बढ़ब, गांव घर तो आगे बढ़बे करे है नहीं। तो
1: हाँ
0: भाई देखो मस्त रहो, स्वच्छ रहो और व्यस्त रहो, इकरे संग आज कर हमारे दिन कर बेरा सिरात है। तो रोर मन का संगी मनोजर
1: संध्या बहन के विदा देव
0: जोहार।
1: जोहार।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: कम प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RKLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
2: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RKLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
3: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं तृप्ति कुमारी। पहले मुख्य समाचार। झारखंड कैबिनेट की बैठक में राज्य में विकसित भारत जी रामजी अधिनियम लागू करने को मिली नीतिगत मंजूरी। कुल 27 प्रस्तावों को मिली स्वीकृति। SIR के तहत राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने स्वयं भरा मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रपत्र। राज्य के पात्र मतदाताओं से समय पर सत्यापन कराने की अपील। हजारीबाग ओपन जेल मामले में हाईकोर्ट सख्त। राज्य सरकार को 20 जुलाई तक विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का दिया निर्देश।

0: रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ बने पीएम सूर्य घर योजना के लाभुक। रांची स्थित आवास पर लगवाया सोलर पैनल। नागरिकों से योजना का लाभ उठाने का किया आह्वान। और ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने प्रखंड विकास पदाधिकारियों को सौंपे 25 नए वाहन। सुदूर क्षेत्रों में योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में आएगी तेजी। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 को राज्य में लागू करने की नीतिगत मंजूरी दे दी गई है। कैबिनेट की बैठक में कुल 27 प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक के बाद कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल ने फैसलों की जानकारी दी।
1: प्रस्ताव संख्या 7 है ग्रामीण विकास विभाग से, झारखंड राज्य में वीबीजी रामजी योजना को लागू करने की नीतिगत स्वीकृति दी गई और साथ ही साथ ग्रामीण विकास विभाग को निर्देश दिया गया कि पीवीटीजी समूह के लिए अतिरिक्त रोजगार का प्रावधान करेंगे।
0: केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 देश में रोजगार सुनिश्चित करने, ग्रामीण आजीविका को मजबूत करने तथा गांवों के विकास में तेजी लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
2: मनरेगा में केवल 100 दिन रोजगार मिलता था, विकसित भारत जी राम जी योजना में पूरे 125 दिन मजदूर को रोजगार मिलेगा। और रोजगार देने की बात प्रधानमंत्री ऐसे नहीं कर रहे हैं, पहले साल ही विकसित भारत जी राम जी योजना में केंद्र ने जो अपना पैसा दिया है वो है 95,600 करोड़ रुपया और राज्यों का 40% शेयर मिलेगा, तो एक साल में ही खर्च होंगे 1,51,282 करोड़ रुपया।
0: राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत अपने अपने प्रपत्र भरकर जमा किए। लोकभवन में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार की मौजूदगी में राज्यपाल ने, जबकि आवासीय कार्यालय में मुख्यमंत्री और विधायक कल्पना सोरेन ने प्रपत्र भरे। दोनों शीर्ष नेताओं ने राज्य के सभी पात्र नागरिकों से समय पर मतदाता सूची का सत्यापन कराने की अपील की। राज्य में जारी मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान को लेकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों यानी FAQ का दूसरा संस्करण जारी किया है। इसमें प्रवासियों और छात्रों के लिए नियम स्पष्ट किए हैं। राज्य से बाहर रहने वाले प्रवासी मजदूर और छात्र अब वोटर्स पोर्टल पर ऑनलाइन अपना गणना प्रपत्र भर सकेंगे। जमशेदपुर हत्याकांड को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन पर बड़ा हमला बोला है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने आज रांची में संवाददाता सम्मेलन आयोजित कर आरोप लगाया कि पुलिस इस मामले की लीपापोती करने के लिए मनगढ़ंत कहानी बना रही है। उन्होंने घटना के वक्त मौजूद पुलिस कर्मियों व असली दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है।
3: सरकार के अनुमति के बाद ही वहां पर बाद में संचालन किया जा रहा है। इस प्रकार से फर्जी मुकदमा करके जनता के बीच में जो दुर्भावी पैदा करना पुलिस प्रशासन की झारखंड मांगों की है। दोनों माँ बेटी तनाव भरी जिंदगी जीने का मजबूर हो गई, इसलिए केस को दबाने के लिए मनगढ़ंत आरोप गठित करने का काम न करें, निर्दोष व्यक्ति को सजा देने का काम प्रशासन न करे।
0: आजसू महिला मोर्चा ने आगामी 4 जुलाई को आयोजित होने वाले अखिल झारखंड महिला अधिवेशन को लेकर आज रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये अधिवेशन खेलगांव स्थित इंडोर स्टेडियम में सुबह 10 बजे से आयोजित होगा, जिसमें राज्य भर से हजारों महिलाएं शामिल होंगी। महिला सशक्तिकरण और संगठन को मजबूत करने के उद्देश्य से होने वाले इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सुदेश महतो होंगे। झारखंड हाईकोर्ट ने आज 3 अलग अलग मामलों पर अहम निर्देश जारी किए हैं। अदालत ने हजारीबाग ओपन जेल मामले में राज्य सरकार को आगामी 20 जुलाई तक स्टेटस रिपोर्ट सौंपने को कहा है। वहीं बोकारो की लापता नाबालिग मामले में त्वरित कार्रवाई के लिए सीबीआई को पक्षकार बनाया गया है। एक अन्य फैसले में कोर्ट ने गढ़वा उपायुक्त को वर्ष 1992 में मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूरों को सभी सरकारी योजनाओं का लाभ जल्द से जल्द देने का कड़ा निर्देश दिया है। आकाशवाणी के

0: ताज़ातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार एक्सेंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्सेंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा YouTube चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। रांची के सांसद और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ आज से प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लाभुक बन गए हैं। उन्होंने रांची स्थित अपने आवास पर 10 किलोवाट का सोलर पैनल लगवाया। इस अवसर पर उन्होंने नागरिकों से इस योजना का लाभ उठाने की अपील की।
1: हम जहां एक तरफ बिजली जनरेट करेंगे, दूसरी ओर हम कितने पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए इतना फायदा दे रहे हैं। मैं झारखंड की जनता से, विशेषकर जितने सरकारी राज्य सरकार के कार्यालय व केंद्र सरकार के कार्यालय जितने हैं और आम लोग, वो लोग हॉस्पिटल हैं, वो सब सोलर पैनल लगवाएं ताकि बिजली की खपत कम हो, पर्यावरण को संरक्षण भी हो और डीजल पेट्रोल और कोयले की बचत।
0: राज्य की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने आज विभाग की ओर से प्रखंड विकास पदाधिकारियों को 25 नए वाहन सौंपे हैं। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि बीडीओ को नए वाहन मिलने से सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में विकास योजनाओं की निगरानी और क्रियान्वयन में तेजी आएगी।
2: ब्लॉक तक जाने में 45 मिनट 1 घंटे का समय और जिला मुख्यालय तक जाना 1.5 से 2 घंटे का रास्ता सड़क खराब होने की वजह से स्थिति होती थी। तो मुझे पूरा भरोसा है इस संसाधन को आप लोगों के काम को, आपके परफॉर्मेंस को सपोर्ट करने के लिए दिया गया है, उसका आप लोग बेहतर इस्तेमाल करेंगे।
0: दुमका सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद कोर्ट परिसर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश को स्पीड पोस्ट से ये धमकी भरी चिट्ठी भेजी गई थी। पुलिस अधीक्षक पीताम्बर सिंह खेरवार ने बताया कि प्रारंभिक जांच के अनुसार ये पत्र पश्चिम बंगाल के पूर्वी वर्धमान से भेजा गया है। पुलिस मामले की गहन जांच में जुटी है। धनबाद में अपराध नियंत्रण के लिए पुलिस ने आज पहली बार दागी अपराधियों की सामूहिक परेड कराई। पुलिस लाइन में आयोजित इस परेड में सैकड़ों अपराधियों की हाजिरी ली गई और उनके वर्तमान रहन सहन की समीक्षा की गई। एसएसपी प्रभात कुमार ने अपराधियों को सुधरने की आखिरी चेतावनी दी। राज्य में 10 जुलाई तक अच्छी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार कल बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र बनने से राज्य के अधिकांश हिस्सों में अगले 10 दिनों तक अच्छी वर्षा होगी, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। हालांकि प्रशांत महासागर में अल नीनो के प्रभाव के कारण पूरे जुलाई महीने में सामान्य से कम बारिश का अनुमान है, जिससे किसानों की चिंता बढ़ सकती है। गुमला में जिला स्तरीय सुब्रतो मुखर्जी फुटबॉल प्रतियोगिता का आज संत इग्नेशियस उच्च विद्यालय के जुबली स्टेडियम में शुभारंभ हुआ। उप विकास आयुक्त अनिमेश रंजन ने इसका उद्घाटन करते हुए खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। प्रतियोगिता के पहले दिन अंडर 17 बालक वर्ग के मुकाबले खेले गए। इस आयोजन में जिले के सभी 12 प्रखंडों की विजेता टीमें हिस्सा ले रही है, जिसका उद्देश्य राज्य और राष्ट्रीय स्तर के लिए खेल प्रतिभाओं का चयन करना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। झारखंड कैबिनेट की बैठक में राज्य में विकसित भारत जी रामजी अधिनियम लागू करने को मिली नीतिगत मंजूरी। कुल 27 प्रस्तावों को स्वीकृति। एसआईआर के तहत राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने स्वयं भरा मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रपत्र। राज्य के पात्र मतदाताओं से समय पर सत्यापन कराने की अपील। हजारीबाग ओपन जेल मामले में हाईकोर्ट सख्त। राज्य सरकार के 20 जुलाई तक विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का दिया निर्देश। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ बने पीएम सूर्य घर योजना के लाभुक। रांची स्थित आवास पर लगवाया सोलर पैनल। नागरिकों से योजना का लाभ उठाने का किया आह्वान। और ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने प्रखंड विकास पदाधिकारियों को सौंपे 25 नए वाहन। सुदूर क्षेत्रों में योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में आएगी तेजी। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन ये सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: प्रस्तुत है जिले में आजकल।

0: चांद मुर्मू, भैरव मुर्मू सहित शिबू सोरेन के चित्र पर माल्यार्पण एवं श्रद्धांजलि देकर किया। इस हुल दिवस के अवसर पर विभिन्न आदिवासी संगठन के लोगों ने रामगढ़ के कई जगहों पर सभाओं के माध्यम से इन अमर शहीदों को नमन किया और हुल क्रांति की अमर गाथा को याद किया। मौके पर रामगढ़ जिले के जिलाध्यक्ष अबुआ दिसोम समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद किस्कू ने बताया कि अंग्रेजों के द्वारा शोषण के खिलाफ इन चारों भाई बहनों ने एक क्रांति लाया था और यह क्रांति भोगनाडी से शुरू हुआ, जिसमें काफी लोग शहीद हुए। इन लोगों ने अपने समाज और देश के लिए एक बड़ी क्रांति लाई, जिसको हम लोग आज हुल दिवस के रूप में मनाते रहे हैं।
1: ये चारों भाई बहन ने एक क्रांति लाया और वो क्रांति भोगनाडी से शुरू हुआ। काफी लोग शहीद हुए अंग्रेजों को भगाने में, पर भी इन लोगों ने अपने समाज के लिए और अपने देश के लिए इन्होंने एक बहुत बड़ा क्रांति लाया और क्रांति का आज हम लोग हुल दिवस के रूप में मनाते हैं और याद करते हैं कि उनका जो बलिदान रहा, उनका जो संघर्ष रहा इन लोगों का, समाज के माध्यम से हम भूल नहीं सकते हैं, उनको हमेशा याद करेंगे।
0: रामगढ़ के राधा गोविंद विश्वविद्यालय में डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी की विचारधारा पर आयोजित एक नेशनल सेमिनार में पिछले दिनों भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास आठवले ने शिरकत किया। अपने संबोधन में मंत्री ने कहा कि भारत सरकार ने यह घोषणा की है कि जल्द ही गांव-गांव और घर घर जाकर जाति आधार पर जनगणना कराई जाएगी। मंत्री ने शिक्षा के क्षेत्र में हो रही बड़ी प्रगति पर जोर दिया और बताया कि आज दुनिया भर के विश्वविद्यालयों में भारतीय छात्र जा रहे हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की छात्रवृत्ति योजना का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि उनके पास इसके लिए 600 से 650 छात्रों के आवेदन आते हैं। इसके माध्यम से छात्र अमेरिका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी जैसे कई देशों में उच्च शिक्षा प्राप्त करते जा रहे हैं।
2: शिक्षा में बहुत बड़ी प्रगति हम कर रहे हैं। दुनिया भर के यूनिवर्सिटीज में अपने अनेक स्टूडेंट जाते हैं। मेरे मंत्रालय का सोशल जस्टिस की स्कीम है, उसमें 600-650 स्टूडेंट से एप्लीकेशन मेरे पास आते हैं और अनेक स्टूडेंट शिक्षा लेने के लिए अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो या जर्मनी हो, अनेक देशों में वो शिक्षा के लिए जा रहे हैं।
0: रामगढ़ जमीन विवाद मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी 7 अपराधियों को 24 घंटे में गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक रामगढ़ के निर्देश पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी पत्रातु के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया था, जिसने इस कार्रवाई को अंजाम तक पहुंचाया है। पूरे मामले में पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मृतक के द्वारा जो 11 डिसमिल जमीन ली गई थी, उसी को लेकर विवाद था और उसी में यह घटना घटी है।
3: घटना का संज्ञान लेते हुए स्थानीय ग्रामीणों की मदद से जो घायल व्यक्ति था उसको अस्पताल भिजवाया गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए FSL की टीम को बुलाते हुए घटनास्थल से पुलिस द्वारा अनुसंधान प्रारंभ वैज्ञानिक तरीके से साक्षी संकलन किया गया और अभी तक की पूछताछ में जमीन की विवाद में हत्या करने की बात सामने आई है।
0: रामगढ़ में आपराधिक गतिविधियों को रोकने के लिए पुलिस अधीक्षक के नए तरकीब कारगर सिद्ध हो रहे हैं। कौशल किशोर तिवारी, आकाशवाणी समाचार, रामगढ़।
4: अभी आप सुन रहे थे रामगढ़ जिले की ताज़ा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।

मीडियम वेव के 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ तथा FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। अगले कार्यक्रम के लिए कृपया थोड़ी प्रतीक्षा कीजिए।

कार्यक्रम का पहला गीत आए सुने किशोर कुमार की आवाज में।

अभी फिल्म खुशबू का गीत सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज़ में। रचना थी गुलजार की, संगीत राहुल देव बर्मन का था। और श्रोताओं आइए अब सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

आवाज मोहम्मद रफ़ी की है, रचना शकील बदायूनी की और संगीत रवि का। फिल्म का नाम उम्मीद।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म उम्मीद का गीत, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, रचना शकील बदायूनी की थी, संगीत रवि का था। और श्रोताओ आइए अब सुनते हैं फिल्म बूंद जो बन गए मोती का गीत मुकेश की आवाज़ में। बोल लिखे हैं बसंत जैव, संगीत है सतीश भाटिया का और शब्द रचना है भरत व्यास की। तो आइए सुनते हैं फिल्म उम्मीद का ये प्यारा सा गीत।

फिल्म बूंद जो बन गए मोती का गीत अभी आप सुन रहे थे मुकेश के स्वर में। रचना थी भरत व्यास की, संगीत था सतीश भाटिया का। और श्रोताओं आइए अब सुनते हैं फिल्म हमराज का गीत महेंद्र कपूर की आवाज में। रचना साहिर लुधियानवी की है, संगीत रवि का।

फिल्म मुकद्दर का सिकंदर का गीत अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले की आवाज़ में। रचना थी अनजान की, संगीत था कल्याण जी आनंद जी का। और श्रोताओं, कार्यक्रम के आखिर में सुनते हैं फिल्म ये रात फिर ना आएगी का गीत महेंद्र कपूर की आवाज़ में। रचना SH बिहारी की है, संगीत OP नैयर का।

इसी साथ आज का ये कार्यक्रम बस यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है।

मीडियम वेव के 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज तथा FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत कार्यक्रम रजनीगंधा। आज के इस कार्यक्रम में श्रोताओं स्वीकार कीजिए अपने दोस्त राजेंद्र का प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनाने जा रहे हैं, फिल्म माया का ये गीत है। आवाजें मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की हैं, रचना मजरू सुल्तानपुरी की और संगीत सलील चौधरी का। तस्वीर नहीं जैसे कोई ख्वाब बसा हो, तस्वीर नहीं जैसे कोई ख्वाब बसा हो, दिल के किसी कोने में गुलाब खिला हो, हर सांस तेरे नाम की खुशबू से भरी है, लगता है कि सीने में तेरा घर बना हो।

जहाँ है कदम तेरे वही मेरा दिल तुमसे नजर जब गई है मिल, जहाँ है कदम तेरे वही मेरा दिल झुके, जहाँ पलके तेरी खुले, जहाँ जुल्फे तेरी।

कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं। फिल्म चाला का यह गीत है किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज में। हसरत जयपुरी की रचना है, गणेश का संगीत। दिल से बढ़कर और भला क्या नजराना होगा, दिल से बढ़कर और भला क्या नजराना होगा, प्यार सच्चा हो तो वही अफसाना होगा, दौलत की चमक चार दिनों में ढल जाएगी, दिल का रिश्ता ही उम्र भर का जाना होगा।

0: अरे छुट्टी लेनी है आज की।
1: अरे क्या मैं बेवकूफ हूं जो उस दिन की छुट्टी लूं जिस दिन खुद अफसर छुट्टी पर हो।
2: अजी वाह, बड़े कर्तव्य परायण हो गए हो, जो अफसर की गैर हाजिरी में दफ्तर जाना और भी खास तौर से जरूरी समझने लगे हो।
1: बिल्कुल।

और आइए अब सुने फिल्म हमराही का गीत मोहम्मद रफ़ी और मुबारक बेगम की आवाज़ों में, रचना हसरत जयपुरी की है, संगीत शंकर जयकिशन का। बाहों का सहारा हो तो दुनिया भी हंसी लगे।

फिल्म संगीत कार्यक्रम रजनीगंधा आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र से। इस कार्यक्रम में आपका हम सफर है राजेंद्र। कार्यक्रम का अगला गीत अब आइए सुने, फिल्म कोहिनूर का ये गीत है मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में, नौशाद का संगीत है। दो दिल मिले तो चांद सितारे भी झुक गए, दो दिल मिले तो चांद सितारे भी झुक गए, किस्मत के लेके कुछ फसाने भी रुक गए। उस रात मोहब्बत ने करिश्मा ये दिखाया, धरती पर उतर आए फलक, अर्थ भी झुक गए।

फिल्म सरस्वती चंद्र का गीत मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज़ों में, संगीत कल्याण जी आनंद जी का है। खत में जो भेजे थे कभी फूल मोहब्बत के, खत में जो भेजे थे कभी फूल मोहब्बत के, आज भी महकते हैं वो लम्हे इबादत के। कागज़ तो पुराना है मगर बात नहीं लगती है, कागज़ तो पुराना है मगर बात नहीं लगती है, अल्फाज नहीं जज्बात थे उस चाहत के।

फिल्म सरस्वती चंद्र का गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज में। संगीत कल्याण जी आनंद जी का था। इसी साथ आज का रजनीगंधा कार्यक्रम बस यहीं संपन्न होता है। अपने दोस्त राजेंद्र को दीजिए इजाजत।

0: मीडियम वेव के 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज तथा FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। प्रस्तुत कार्यक्रम सुर्खियों में
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए भारत जापान की द्विपक्षीय साझेदारी से व्यापार, प्रौद्योगिकी और सुरक्षा के नए अवसरों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व राजदूत स्कंद रंजन तायल, कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं अनुभा रोधकी।
2: अम्बेसडर तायल, आकाशवाणी के सुर्खियों में कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकायची 16th इंडिया जापान एनुअल समिट के लिए 3 दिन के भारत के दौरे पर हैं। वर्तमान में लगातार अनिश्चित और बदलते वैश्विक माहौल में आप दोनों देशों के बीच के आपसी रिश्ते को कितना अहम मानते हैं?
3: पिछले 2-3 साल से जो विश्व देख रहा है कि विश्व में जो भी सामरिक समीकरण थे वो बदल रहे हैं, दो देशों के बीच में तनाव बढ़ रहा है और इस सब बैकग्राउंड में भारत और जापान के जो संबंध हैं वो बहुत स्थिर हैं, बहुत स्टेबल हैं, प्रेडिक्टेबल हैं और एक बहुत ही सशक्त नींव के ऊपर ये रिश्ते खड़े हुए हैं। जो जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकायची जी भारत में हैं और ये 16वीं भारत जापान की एनुअल समिट है, जो ये दिखाती है, ये बतलाती है कि 2001 से समझ लीजिए या उससे पहले भी आज तक जापान में भी प्रधानमंत्री बदले हैं। ये शायद हमारे प्रधानमंत्री के 4थे या 5वें जापानी प्रधानमंत्री से बातचीत है, भारत में भी प्रधानमंत्री बदले, पर भारत और जापान की जो सोच है, जो मित्रता है वो प्रगाढ़ है और उसकी नींव बहुत मजबूत है और इस रीजन का, इंडो पैसिफिक क्षेत्र का और विश्व में शांति और सद्भावना का

0: एक ये बहुत स्ट्रॉन्ग केंद्र बिंदु है।
1: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री तकाइची की मौजूदगी में कई एमओयूज पर हस्ताक्षर हुए। आपके हिसाब से भारत और जापान दोनों के नजरिए से सबसे अहम समझौते कौन से हैं?
0: जिस कगार पर इस समय विश्व खड़ा हुआ है और जिस तरह आगे बढ़ रहा है, मैं समझता हूं कि टेक्नोलॉजी और उसके जो भी क्रिटिकल मिनरल्स हो या इकोनॉमिक सिक्योरिटी हो, वो आगे चलने में बहुत ही अहम मुद्दे भारत और जापान के सामने रहेंगे
1: जी।
0: तो जो तीन एमओयूज तो बहुत कई साइन हुए हैं और उसमें जॉइंट डिक्लेरेशन ऑन इकोनॉमिक सिक्योरिटी एक बहुत अहम है, जॉइंट स्टेटमेंट ऑन कोऑपरेशन इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्योंकि जिस तरह से एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ही अहम मुद्दे के रूप में उभर के सामने आया है और हर देश उससे जूझने का प्रयत्न कर रहा है, एनर्जी रेजिलियंस, ये जो पिछले साल देखा और जो फरवरी के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हुई
1: जी।
0: और उससे पूरे एशिया पर बहुत प्रभाव पड़ा और उसमें भी भारत और जापान आगे मिलजुल कर सहयोग के साथ काम करेंगे।
1: आज की जो ये जॉइंट प्रेस स्टेटमेंट थी, इसमें प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि भारत और जापान आज दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमीज में से एक हैं और एक फ्री, प्रॉस्परस और रूल्स बेस्ड इंडो पैसिफिक हमारी साझी प्राथमिकता है। तो पहले सुनते हैं प्रधानमंत्री ने क्या कहा।
2: प्राइम मिनिस्टर ताकाइची की यात्रा से हम अपनी स्पेशल स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप के नए अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आज भारत और जापान दोनों ही विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमीज में से हैं। एक फ्री, प्रॉस्परस और रूल्स बेस्ड इंडो पैसिफिक हमारी साझा प्राथमिकता है। क्षेत्र की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक और मार्केट इकोनॉमीज के रूप में आज हमने कई महत्वपूर्ण पहल की हैं। इनसे हम मिलकर पूरे क्षेत्र में शांति, स्थिरता और प्रगति का मार्ग प्रशस्त करेंगे।
1: अम्बेसडर ताल, जैसा भी आप बता रहे थे कि टेक्नोलॉजी इस समिट का एक तरह से कह सकते हैं कि सेंटर पीस बनकर उभरा है, तो और भारत और जापान ने आज एआई की फील्ड में एक ज्वाइंट स्टेटमेंट भी जारी किया है। भारत की सॉफ्टवेयर ताकत और जापान की मैन्युफैक्चरिंग एक्सपर्टीज एआई और एडवांस टेक्नोलॉजी में एक दूसरे को कैसे कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं?
0: देखिए, अगर आप पीछे देखें तो जापान ने भारत के ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में एक बहुत ही अच्छा योगदान किया है, चाहे वो हम मेट्रो देखें
1: जी,
0: सुजुकी कार इन्वेस्टमेंट देखें, पूरा जो बॉम्बे अहमदाबाद ट्रेन बन रही है वो देखें, पर अब जो नया भारत बन रहा है और विश्व में जिस तरह से प्रगति हो रही है उसमें टेक्नोलॉजी का स्थान बहुत ऊपर आ रहा है और जो देश टेक्नोलॉजी में सहयोग करेंगे वो विश्व में आगे बढ़ेंगे। यहाँ भारत और जापान में कॉम्प्लीमेंटेरिटीज है। जापान प्रिसीजन इक्विपमेंट में, हार्डवेयर में दुनिया में बहुत आगे, और भारत सॉफ्टवेयर में, टैलेंट में, स्किल्स में बहुत आगे है, और भारत और जापान की ये साझेदारी दोनों देशों के लिए एक बहुत ही अच्छी साझेदारी होगी।
1: अम्बेसडर तायल, जैसे कि प्रधानमंत्री को भी हम सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि एक रूल बेस्ड इंडो पैसिफिक जापान और इंडिया की एक साझी प्राथमिकता है। इसी तरह नई दिल्ली के लिए रवाना होने से पहले जापानीज प्राइम मिनिस्टर ने भी एक फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक फ्रेमवर्क की दिशा में कोशिश करने की बात कही थी। आप दोनों प्रधानमंत्रियों के इन बयानों को कैसे देखते हैं?
0: इस समय जो विश्व में स्थिति है, कोविड से जो शुरू हुआ और उसके बाद युद्ध रशिया यूक्रेन का, उसके बाद ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स का, उससे विश्व की, खासतौर से एशिया की जो भी इकोनॉमीज हैं उन पर बहुत ही खराब प्रभाव पड़ा है, और एक आवश्यक है कि कोई भी देश जो विश्व में इस समय व्यापार हो रहा है और जो फ्री एंड ओपन इंडियन ओशन की बात करते हैं, पैसिफिक की बात करते हैं, सी लाइंस की बात करते हैं, उस पर कोई देश उसमें खलल न डाले, ये बहुत ही आवश्यक है, और हर देश का आर्थिक प्रगति इस प्रिंसिपल के ऊपर निर्भर है। पर जो 28 फरवरी के बाद युद्ध हुआ पश्चिम एशिया में और अमेरिका और ईरान के बीच में, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जिस तरह से बंद की गई, पूरा वहां से जो तेल का निर्यात था उस पे आंच आई,

0: इस संदर्भ में ये बहुत आवश्यक है कि हर देश
1: जी
0: एक मूल्य को समझे, एक वैल्यू को, कि फ्री और ओपन सी लाइंस, कि कुछ भी लड़ाई हो, कुछ भी मतभेद हो, पर विश्व में जो व्यापार है, जो शिप्स का आना जाना है, वो जहां से भी जाते हैं उन पर कोई भी देश खलल न डाले। मैं समझता हूं कि भारत और जापान और सभी देश जो हम एशिया के हैं और विश्व के हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण आयाम मानते हैं अपने ऑब्जेक्टिव्स का, और इसमें भारत और जापान के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, क्योंकि दोनों देश गल्फ कंट्रीज से काफी तेल भी आयात करते हैं, गैस भी आयात करते हैं, और इसलिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा भारत और जापान के लिए है।
1: इससे पहले कि मैं आपसे अपना अगला सवाल करूं, आइए पहले सुनते हैं कि आज की ज्वाइंट प्रेस स्टेटमेंट में जापान की प्रधानमंत्री ने एक बहुत महत्वपूर्ण वक्तव्य दिया, चलिए उसको सुनते हैं।
2: यू कॉल्ड मी अ ब्यूटीफुल यंगर सिस्टर प्राइम मिनिस्टर मोदी। The big meeting, we confirmed that we are on the same page and developed this relationship as brother and sister. The following points at the center of our cooperation. First, to deepen the strategic cooperation between Japan and India. Our two countries share the vision on the profile of international order we should establish under the current international situation. I recently announced the updated FOIP, Free and Open Indo-Pacific, which focuses on self-reliance and resilience to realize FOIP. On the other hand, Prime Minister Modi positions the ocean as a shared space that supports regional stability and growth and is promoting the Mahasagar, the Great Ocean Initiative, for countries across the Indian Ocean.
1: भारत और जापान ने इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए एक ज्वाइंट रोड मैप भी तैयार किया है, जिसके जरिए उनका मकसद सेमीकंडक्टर और एडवांस मटेरियल्स सहित कई स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में सप्लाई चेन रेजिलियंस को मजबूत करना है। ये देखते हुए कि भारत के पास कई क्रिटिकल मिनरल्स का बड़ा रिजर्व है और जापान के पास मेटलर्जी और बैटरी टेक्नोलॉजी जैसे फील्ड्स में वर्ल्ड लीडिंग एक्सपर्टीज है, क्या आप कहेंगे कि दोनों देशों के लिए जो इकोनॉमिक हमने सिक्योरिटी रोडमैप तैयार किया है, दोनों ही देशों के लिए एक विन विन सिचुएशन है, खासकर दूसरे देशों पर निर्भरता कम करने के लिए?
0: जी हाँ, बिल्कुल। जापान का ये अनुभव रहा है पिछले 7-8 साल में कि कई बार जब उनके चाइना से कुछ मतभेद हुआ तो चाइना ने क्रिटिकल मिनरल्स का निर्यात जापान के लिए रोक दिया। जापान ने पहले ही उसमें प्रयास किया है और ऑस्ट्रेलिया से वो क्रिटिकल मिनरल्स मंगा रहे हैं और मलेशिया में उनको रिफाइन कर रहे हैं। और जिस तरह से दुनिया ने देखा पिछले 6 महीने में, 1 साल में, कि एक ही देश चाइना का बहुत ही डोमिनेंस है, बहुत मोनोपोली है क्रिटिकल मिनरल्स पर भी, मैग्नेट्स वगैरह पर, उसलिए ये बहुत आवश्यक हो जाता है कि जो डेमोक्रेसीज हैं दुनिया में और भारत जापान मिलकर काम करें। और इस तरह क्रिटिकल मिनरल्स भारत में हैं बहुत, पर उनको रिफाइन करना ये एक मेटलर्जी का विषय है और उसमें जापान को एक्सपर्टीज है। मैं समझता हूं कि ये बहुत ही मुख्य समझौता भारत और जापान के बीच में, दोनों प्रधानमंत्री के बीच में हुआ है, और कैसे दुनिया में जो सप्लाई चेन्स हैं, चाहे वो क्रिटिकल मिनरल्स की हो, फार्मास्यूटिकल्स की हो, उनको ऐसे बढ़ाया जाए कि किसी एक देश का उस पर बहुत अधिक मोनोपोली ना रहे। मैं समझता हूँ ये एक बहुत ही अच्छा निर्णय अब दोनों प्रधानमंत्रियों ने आज लिया।
1: अम्बेसडर तायल, जैसे भी आप कह रहे थे कि एनर्जी सिक्योरिटी की हम बात कर रहे थे, तो पिछले कुछ महीनों की जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स जो हुई हैं, उन्होंने एनर्जी सिक्योरिटी की अहमियत को एक बार फिर से उजागर किया है। इस संदर्भ में आप आज नई दिल्ली और टोक्यो के बीच साइन किए गए इंडिया जापान बायोगैस इनिशिएटिव को कैसे देखते हैं?
0: देखिए, बायोगैस और जितना भी, चाहे वो तेल हो और रिफाइंड नेचुरल गैस हो, उसको किस तरह एक उनका स्टॉक किया जाए, उनको किस तरह, जिससे कि अगर कोई सप्लाई चेन में कहीं कोई डिसरप्शन हो तो एकदम उसका प्रभाव खरीदारों पर ना पड़े जो उसको इस्तेमाल करते हैं, उन पर ना पड़े। तो इसमें दोनों देशों की कंपनियों को साथ काम करना पड़ेगा, और बायोगैस और लिक्विड लिक्विफाइड नेचुरल गैस
1: जी,
0: इसमें मैं समझता हूँ कि दोनों देशों ने साथ काम करने के लिए अच्छे निर्णय आज लिए हैं।
1: जी, जापान भारत के सबसे बड़े विदेशी निवेशकों में से एक है। आज की जो दोनों मुलाकात हुई दोनों प्रधानमंत्री

0: मित्रों के बीच। उसके बाद जापान द्वारा भारत में $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की एक प्लेज ली गई। इसके साथ ही दोनों ने अगले एक दशक में जापान से भारत में 10 ट्रिलियन येन की इन्वेस्टमेंट और भारत में काम करने वाली जापानीज कंपनीज की संख्या को दुगना करने का एक टारगेट रखा है। ये देखते हुए कि भारत और जापान एशिया की सबसे बड़ी दो अर्थव्यवस्थाएं हैं, ये जो लक्ष्य सेट किया गया है इससे न सिर्फ भारतीय अर्थव्यवस्था बल्कि आपको क्या लगता है कि इस पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को कितना बड़ा फायदा होगा?
1: जी, बहुत फायदा होगा। ये पिछले वर्ष एक जॉइंट विजन स्टेटमेंट साइन हुआ था भारत और जापान का, जब हमारे प्रधानमंत्री 15वीं समिट के लिए जापान गए थे, और उसमें ये निर्णय लिया गया था कि 10 ट्रिलियन येन जापान भारत में निवेश करेगा अगले 10 वर्षों में। और आज करीब 120 MOU साइन हुए हैं, जिसमें उनका अगर पूरी उसका देखा जाए तो शायद $12 बिलियन के करीब वो निवेश जापानीज कंपनियां भारत में करेंगी। एक जापान इंडिया इकोनॉमिक फोरम मीटिंग भी है जिसमें 150 जापानीज कंपनी आके यहाँ पर उसमें भागीदारी करेंगी। तो जिस तरह भारत और जापान को एशिया में आर्थिक प्रगति का इंजन होना चाहिए, एक स्रोत होना चाहिए, और अगर बड़ी इकोनॉमी जापान इंडो पैसिफिक में चाइना के बाद जापान आता है या फिर भारत है, तो दोनों अगर मिलकर काम करेंगे और दोनों की आर्थिक प्रगति होगी तो पूरे रीजन में, क्योंकि देखिए निर्यात आयात आजकल कोई भी इकोनॉमी कोई भी अर्थव्यवस्था केवल अकेले काम नहीं करती,
0: बिल्कुल
1: वो सब देशों से कहीं से आयात होता है कहीं से निर्यात होता है, पूरा ग्लोबलाइजेशन है इकोनॉमीज का, और उसमें भारत और जापान की आर्थिक प्रगति अगर तेजी से होगी तो पूरे रीजन को उससे बहुत आर्थिक लाभ होगा।
0: अम्बेसडर तायल, आप आकाशवाणी के सुर्खियों में कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े और इस महत्वपूर्ण विषय पर अपनी विचार हमारे साथ साझा किए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे भारत जापान की द्विपक्षीय साझेदारी से व्यापार, प्रौद्योगिकी और सुरक्षा के नए अवसरों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व राजदूत स्कंद रंजन तायल, कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं अनुभा रोहतगी।
3: सुर्खियों में

0: सुर्खियों कार्यक्रम में भी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से होगा।
1: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के विकास की गति और जापान की विशेषज्ञता वैश्विक आर्थिक वृद्धि के लिए प्रेरक शक्ति का काम करेगी। श्री मोदी ने नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ वार्ता की। भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की। पश्चिम एशिया संकट के बीच सरकार अगले एक वर्ष में तेल शोधन क्षमता बढ़ाकर सालाना 30 करोड़ मीट्रिक टन करेगी। केंद्र ने देशभर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल शुरू किया। मौसम विभाग ने पश्चिमी लिए मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया और फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 मुकाबले में स्पेन और ऑस्ट्रिया होंगे आमने सामने। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशों की आर्थिक साझेदारी की सफलता के कई शानदार उदाहरण मौजूद हैं। नई दिल्ली में आज भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच में श्री मोदी ने कहा कि जापान की विशेषज्ञता और निवेश तथा भारत की गति और व्यापकता के एक साथ मिलने पर पूरी दुनिया को लाभ होता है।
2: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण हैं। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। आज पूरे विश्व में सुजुकी की 2/3 कार्स भारत में बनती हैं और 100 से

0: अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने
1: पूरी दुनिया को लाभ होता है।
2: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। आज पूरे विश्व में सुजुकी की 2/3 कार्स भारत में बनती हैं और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान ने आर्थिक सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों पर समझौते किए हैं। ये समझौते दोनों देशों की साझेदारी को भविष्य के अनुकूल और असीमित बनाएंगे। श्री मोदी ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है।
2: आज आर्थिक दुनिया सप्लाई चेन में रुकावटें, ट्रेड में अनिश्चितता और ग्लोबल डिमांड में गिरावट से जूझ रही है। लेकिन जैसे कहा जाता है, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग। भारत विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.7% रही। इतना ही नहीं, पिछले 12 वर्षों में हम भारत में काइजन फिलोसॉफी यानी कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट अपनाते हुए अपने इकोनॉमिक डीएनए को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज के समय में सामूहिक विश्वास सबसे बड़ी संपत्ति है और भारत जापान की द्विपक्षीय साझेदारी समय की कसौटी पर खरी उतरी है। श्री मोदी ने कहा कि जापान की सटीक प्रौद्योगिकी और भारत की सॉफ्टवेयर क्षमताओं का संगम वैश्विक एआई विकास को नई गति और शक्ति प्रदान करेगा।
2: प्रधानमंत्री ताकाइची, और मेरा विश्वास है कि टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप हमारे सहयोग का सबसे मजबूत स्तंभ बनेगी। इसी विजन को साकार करने के लिए आज एआई के क्षेत्र में हमने ज्वाइंट स्टेटमेंट भी जारी किया है। भारतीय एआई इकोसिस्टम के कई प्रमुख संस्थानों में भी आज अपने जापानीज पार्टनर के साथ एग्रीमेंट्स किए हैं।
1: भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की है। दोनों देशों ने एशिया में जिम्मेदार शक्तियों और प्रमुख ऊर्जा उपभोक्ता के रूप में ऊर्जा सुगमता को संयुक्त रूप से मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने की साझा इच्छा व्यक्त की। भारत का पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा जापान का अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्रालय विभिन्न पहलों पर सहयोग करेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संवाददाता सम्मेलन में बताया कि वार्षिक शिखर सम्मेलन में आर्थिक सुरक्षा से संबंधित कई निर्णयों को अंतिम रूप दिया गया। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष के वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद से 120 से अधिक बिजनेस टू बिजनेस समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
3: नेताओं ने व्यापार और निवेश, आर्थिक सुरक्षा, रक्षा, सप्लाई चेन की मजबूती, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और लोगों के बीच आपसी आदान प्रदान जैसे कई क्षेत्रों में हमारे द्विपक्षीय संबंधों की मजबूत नींव पर चर्चा की। साथ ही दोनों नेताओं ने हिंद प्रशांत क्षेत्र और उससे अलग शांति, समृद्धि और स्थिरता सुनिश्चित करने में विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी की भूमिका को स्वीकार किया।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि निवेश भारत और जापान की रणनीतिक साझेदारी का एक प्रमुख संचालक बनकर उभरा है। वे आज एक निजी टेलीविजन चैनल द्वारा आयोजित एशियाई सदी को आकार देने संबंधी विषय पर भारत जापान रणनीतिक संवाद को संबोधित कर रहे थे।
4: ट्रेड ऑल्सो इज एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ दिस पार्टनरशिप।
5: भारत के कुशल कार्यबल के लिए अवसर खुल रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार का ध्यान सभी के लिए समान विकास सुनिश्चित करने पर केंद्रित है। निवेश भारत और जापान की रणनीतिक साझेदारी का एक प्रमुख संचालक बनकर उभरा है और इससे द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूती मिलने की उम्मीद है।
4: ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट डायमेंशन।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से

0: निपटने में
1: टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है।
0: आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
2: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभी।
3: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
4: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत अपनी रिफाइनरी क्षमता का तेजी से विस्तार कर रहा है। नई दिल्ली में श्री पुरी ने बताया कि अगले 6 से 12 महीनों में देश की तेल शोधन क्षमता को 30 करोड़ मीट्रिक टन प्रतिवर्ष तक बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया संघर्ष की स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने लंबे समय तक पेट्रोल और डीजल की कीमतों को नियंत्रित किया। श्री पुरी ने कहा कि पिछले 4 वर्षों में पेट्रोल की कीमत में केवल 5.58% और डीजल की कीमतों में 6.23% की ही वृद्धि हुई है। नागर विमानन मंत्रालय ने देशभर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल का शुभारंभ किया। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय और दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड के सहयोग से इस उन्नत डिजिटल प्लेटफॉर्म का उद्देश्य स्वास्थ्य आव्रजन और निगरानी एजेंसियों के बीच समन्वय के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की स्वास्थ्य निगरानी को मजबूत करना है, ताकि जोखिम वाले यात्रियों का शीघ्र पता लगाया जा सके। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कल कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के विधायी और संसदीय प्रणाली से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्य प्रणाली के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। भारतीय रेलवे ने इस वर्ष जून में पिछले वर्ष इसी महीने की तुलना में माल ढुलाई में 4% की वृद्धि दर्ज की है। रेल मंत्रालय ने बताया कि रेलवे ने पिछले महीने 142 करोड़ टन से अधिक माल की ढुलाई की। इस वर्ष जून में यात्री आवागमन में भी लगातार वृद्धि दर्ज की गई है। पंचायती राज मंत्रालय कल नई दिल्ली में विभिन्न राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया जाएगा। कोयला मंत्रालय ने कोयला खंड आवंटियों को अधिक वित्तीय सुविधा प्रदान करने और कोयला क्षेत्र में व्यापार को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण सुधार प्रस्तुत किया है। कोयला खंड आवंटन संशोधन नियम 2026 के अंतर्गत मंत्रालय ने कोयला खंड और खनिज विकास तथा विनियमन अधिनियम 1957 के अंतर्गत आवंटित कोयला खंडों के लिए निष्पादन बैंक गारंटी के स्थान पर बीमा गारंटी बॉन्ड के उपयोग को सक्षम बनाया है। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश मामलों के राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता ग्रैंड आयतुल्ला सैयद अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि समारोह में उच्च स्तरीय उपस्थिति दोनों देशों के बीच सभ्यतागत संबंधों के महत्व को रेखांकित करती है। केरलम में शिक्षण संस्थानों को निशाना बनाने वाले नशीले पदार्थों के गिरोहों पर राज्य पुलिस की कार्रवाई में 30 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की अवैध दवाएं जब्त की गई हैं। केरलम पुलिस के अनुसार अधिकारियों ने राज्य में 5,353 मामले दर्ज किए हैं और 5,736 लोगों को गिरफ्तार किया। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 5 से 18 वर्ष के बच्चों की असाधारण उपलब्धियों के लिए प्रदान किए जाते हैं। मध्य प्रदेश के खंडवा नगर निगम ने स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए एक अनूठा अभियान शुरू किया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2026-27 के अंतर्गत खंडवा नगर निगम ने पॉलीथीन लाओ चाय पाओ नाम की एक पहल शुरू की है। नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य लोगों को एक बार इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूक बनाना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए तीर्थ यात्रियों का पहला जत्था आज कड़ी सुरक्षा के बीच अनंतनाग जिले के पहलगाम क्षेत्र में नुनवान और गांदरबल जिले के बालताल स्थित दोहरे शिविरों में पहुंचा। एक रिपोर्ट।
5: यात्रियों का पहला जत्था आज दोपहर कड़ी सुरक्षा के बीच कश्मीर घाटी पहुंचा। पहले जत्थे में 4,822 यात्री शामिल हैं।

0: जिसमें से 2,510 यात्री पहलगाम के रास्ते से यात्रा करेंगे, जबकि 2,312 यात्री बालतल से होते हुए बाबा बर्फानी की गुफा का रुख करेंगे। नुनवन और बालतल कैंप पहुंचते ही प्रशासन ने यात्रियों का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। यात्रा के मद्देनजर दोनों रास्तों पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। दोनों रास्तों पर पुलिस, अर्धसैनिक बलों और आर्मी जवानों की बड़ी संख्या में तैनाती की गई है। इसके अलावा चिकित्सा सुविधाएं, मौसम की जानकारी के लिए प्रणाली, अहम जगहों पर क्विक रेस्पॉन्स टीमें, बड़े पैमाने पर सीसीटीवी निगरानी और RFID आधारित प्रणाली भी लगाई गई है। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से मैं इश्फाक शाह।
1: अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि राज्य में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जमीनी आकलन जारी है और इसके पूरा होने पर केंद्र सरकार को एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपी जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य आपदा मोचन बल SDRF और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF के मानदंडों के अनुसार राहत सहायता प्रदान की जाएगी। मौसम विभाग ने पश्चिमी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में अगले 2 से 3 दिन के लिए मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है।
2: विभाग ने अगले 2-3 दिनों में गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भारी से बहुत भारी वर्षा का अनुमान लगाया है। इसी दौरान छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, राजस्थान, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, केरल, माहे, उत्तराखंड और विदर्भ में भी मौसम की ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। मौसम विभाग ने बताया कि अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में मौसम गर्म और उमस भरा रहेगा। हालांकि दिल्ली में अगले 24 घंटों के दौरान आसमान में बादल छाए रहने और हल्की बारिश होने की संभावना है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
1: और अब कुछ खेल खबरें। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 के मैच में आज रात इंगलवुड के लॉस एंजल्स स्टेडियम में स्पेन का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। वहीं टोरंटो में पुर्तगाल का मुकाबला क्रोएशिया से होगा। कल सुबह वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और अल्जीरिया आमने सामने होंगे। स्क्वाश में विल्वन सेंथिल कुमार और तन्वी खन्ना ने मुंबई में PSA चैलेंजर टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। सेंथिल कुमार ने मिस्र के अब्दुल्ला हाफिज और को, जबकि तन्वी ने जापान की जोई फू को हराया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के विकास की गति और जापान की विशेषज्ञता वैश्विक आर्थिक वृद्धि के लिए प्रेरक शक्ति का काम करेगी। श्री मोदी ने नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ वार्ता की। भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की। पश्चिम एशिया संकट के बीच सरकार अगले एक वर्ष में तेल शोधन क्षमता बढ़ाकर सालाना 30 करोड़ मीट्रिक टन करेगी। केंद्र ने देश भर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल शुरू किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम अनुजा कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi says India's speed and Japan's expertise will work as driving force for global growth. Holds talks with Japanese counterpart Sanae Takaichi in New Delhi. India and Japan announce energy partnership to strengthen strategic oil reserves and maritime transport resilience. Government to expand oil refining capacity to 300 million metric tons per annum in next 1 year amid West Asia crisis. Center launches Air Suvidha 2.0 portal for Ebola health screening at entry points of international airports across the country. IMD issues red alert for heavy rainfall in parts of western and central India for next 2 to 3 days. And in FIFA World Cup, Spain to take on Austria in round of 32 match in Los Angeles tonight. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has said that India-Japan relations are truly very special and there are many shining examples of the success of the economic partnership. Addressing the India-Japan Joint Economic Forum in New Delhi this evening, Mr. Modi said, when Japan's expertise and investment Combined with India's speed and scale, the entire world benefits.

0: Arrangements have been made across both routes to ensure smooth and safe conduct of the yatra. Additional deployments of police, paramilitary forces and army jawans have been stationed along the entire route. In addition, comprehensive arrangements have been put in place, including the establishment of medical facilities, real-time weather monitoring systems and quick response teams at critical locations. Besides extensive CCTV surveillance, RFID-based tracking systems for pilgrims and their vehicles have also been installed. Ishfaq Shah, Akashvani News, Srinagar.
1: The southwest monsoon has further advanced into the entire Delhi, some more parts of Gujarat, remaining parts of Uttar Pradesh, most parts of Madhya Pradesh, Haryana, Punjab and some parts of Rajasthan. IMD has issued a red alert for heavy rainfall in the parts of western and central India for the next 2 to 3 days. However, in Delhi, the sky is likely to remain cloudy with the possibility of light rain over the next 24 hours. In view of continuous rainfall in Uttarakhand's Pithoragarh district, the administration has suspended the issuance of inner line permits for the Adi Kailash and Om Parvat Yatra to ensure the safety of pilgrims. On to sports. In the FIFA World Cup, Spain will face Austria in a round of 32 match at Los Angeles Stadium in Inglewood tonight. In other round of 32 matches, Portugal will clash with Croatia in Toronto, while Switzerland will take on Algeria in Vancouver tomorrow morning. Earlier, Belgium advanced to the round of 16, beating Senegal 3-2 this morning. Co-hosts US also progressed to the round of 16, beating Bosnia and Herzegovina 2-0. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi says India's speed and Japan's expertise will work as driving force for global growth, holds talks with Japanese counterpart Sanae Takaichi in New Delhi. India and Japan announce energy partnership to strengthen strategic oil reserves and maritime transport resilience. Government to expand oil refining capacity to 300 million metric tons per annum in next 1 year amid West Asia crisis. Center launches Air Suvidha 2.0 portal for Ebola health screening at entry points of international airports across the country. IMD issues red alert for heavy rainfall in parts of western and central India for next 2 to 3 days. And in FIFA World Cup, Spain to take on Austria in round of 32 match in Los Angeles tonight. That is all in the news at 9. Good night.
2: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं आसिया मेमुना। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की रफ्तार और जापान की महारत आलमी तरक्की के लिए कलीदी मुहर्रिक साबित होंगी। उन्होंने नई दिल्ली में जापान की अपनी हममनसब के साथ बातचीत की। भारत और जापान ने स्ट्रेटेजिक तेल ज़खायर और समुद्री नक्लो हमल के निज़ाम को ज्यादा महफूज और मुस्तहकम बनाने के लिए तवानाई साझेदारी का ऐलान किया है। हुकूमत मगरबी एशिया बहरान के तनाजुर में अगले एक साल के दौरान मुल्क में सालाना तेल साफ करने की सलाहियत को 300 मिलियन मैट्रिक टन तक तौसी देगी। मरकज ने मुल्क के तमाम बैन अवी हवाई अड्डों पर इबोला की जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल का आगाज किया है। भारतीय मौसमियात महकमे ने मुल्क के मगरबी और वसी इलाकों में अगले 2 से 3 दिन के दौरान शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। और फीफा वर्ल्ड कप में आज रात लॉस एंजलिस में राउंड ऑफ 32 के मैच में स्पेन का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और जापान के ताल्लुकात हकीकी तौर पर बहुत खास हैं और इक्तिसादी शराकतदारी की कामयाबी की बहुत सी शानदार मिसालें मौजूद हैं। आज शाम नई दिल्ली में भारत जापान मुश्तरका इक्तिसादी फोरम से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि जब जापान की महारत और सरमायाकारी भारत की रफ्तार और पैमाने के साथ यकजा होती है तो पूरी दुनिया को उससे फायदा होता है। उन्होंने कहा कि आज दोनों फरीकों ने शराकतदारी को और ज्यादा गहरा और मजबूत करने का फैसला किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि भारत और जापान ने इक्तिसादी तहफ्फुज, मस्नूई ज़हानत, दिफा और सेहत जैसे बहुत से शोबों में आज समझौते किए हैं जो इस शराकतदारी को मुस्तकबिल के लिए और लामहदूद बनाएंगे।
3: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण हैं।

0: अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। जब जापान की एक्सपर्टीज और इन्वेस्टमेंट भारत के स्पीड और स्केल के साथ जुड़ती है तो पूरी दुनिया को फायदा होता है।
1: जापान की वजीर आजम सनाई तकाईची ने अपने खिताब में कहा कि ताउन के बहुत से शोबों के माबेन तवानाई का तहफ़ इंतहाई अहम शोबों में से एक है। उन्होंने कहा कि हालिया G7 चोटी कॉन्फ्रेंस में उन्होंने तवानाई के तहफ़ को मुस्तहकम करने के लिए 3 तजावीज पेश की थी ताकि पैदावारी और सारिफीन मुल्कों के दरमियान आजाद और शफाफ तवानाई की तिजारत करने, तवानाई के जामे जखीरे का ऐलान करने और ताउन को फरोग देने को यकीनी बनाया जा सके। मोहतरमा तकाईची ने कहा कि पावर एशिया इनिशिएटिव इस नजरिए को ठोस कार्रवाई में बदलने के लिए काम कर रहा है। इस मौके पर दोनों वज़राए आज़म ने हरियाणा के शहर खारखोदा में मारुति सुजुकी की गाड़ी तैयार करने की चौथी फैक्ट्री का मुश्तरका तौर पर इफ्तिताह किया। इससे कबल भारत और जापान ने आज मुख्तलिफ शोबों में समझौतों का तबादला किया। इनमें इक्तिसादी और तवानाई का तहफ्फुज, अदविया और मस्नूई जहानत के शोबे शामिल हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज तीसरे पहर नई दिल्ली में अपनी जापानी हममनसब सनाई तकाईची के साथ सालाना चोटी कॉन्फ्रेंस सतह की बातचीत की। ये चोटी कॉन्फ्रेंस बाहमी ताल्लुकात के मुकम्मल शोबों का इहाता करने और उन्हें दवाम बख्शने की गरज से दोनों मुल्कों के लिए मौका फराहम करने के साथ साथ बाहमी मफाद के इलाकाई और आलमी मामलात पर नजरियात का तबादला करने का मौका भी फराहम करती है। बातचीत के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वजीर आजम मोदी ने कहा कि आज के दौर में भरोसा सबसे बड़ा असासा है और भारत और जापान की बाहमी शराकतदारी वक्त की कसौटी पर खरी उतरी है। उन्होंने उजागर किया कि भारत और जापान आज दुनिया की सबसे बड़ी मईशतों में शामिल हैं और एक आजाद और खुला भारत बहरुल काहिल दोनों ममालिक के लिए एक मुश्तरका तरजीह है।
0: आज भारत और जापान दोनों ही विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमीज में से हैं। एक फ्री, प्रॉस्परस और रूल्स बेस्ड इंडो पैसिफिक हमारी साझा प्राथमिकता है। क्षेत्र की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक और मार्केट इकोनॉमीज के रूप में आज हमने कई महत्वपूर्ण पहल की है। इनसे हम मिलकर पूरे क्षेत्र में शांति, स्थिरता और प्रगति का मार्ग प्रशस्त करेंगे।
1: आज शाम नई दिल्ली में मीडिया को तफसीलात बताते हुए खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिश्री ने कहा कि दोनों लीडरों ने इस बात को तस्लीम किया कि ये ताल्लुक एतमाद पर मबनी है और आज की मसरूफियात के दौरान एतमाद नुमाया तौर पर देखा जा सकता था। उन्होंने कहा कि आज की मसरूफियात में तवानाई के तहफ्फुज़ और इक्तिसादी तहफ्फुज़ समेत शोबों में अच्छे नतायज हासिल हुए हैं। आज भारत और जापान ने खाम तेल की जामे जखीरा अंदोजी, पेट्रोलियम रिजर्व के तरीक़ेकार और समुद्री तवानाई की नकलो हरकत के अख्तदारी सिलसिले से मुतालिक तआवुन को और गहरा करने से इत्तेफाक किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और उनकी जापानी हममनसब सनाई तकाईची के दरमियान आज तीसरे पहर नई दिल्ली में सालाना सरबराह सतह की बातचीत के बाद इस इत्तेफाक का ऐलान किया गया। दौरे के नतायज से मुतालिक तफसीलात फराहम करते हुए खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिश्री ने कहा कि दोनों लीडरों के दरमियान तबादले ख्याल में तवानाई की लचक एक कलीदी मौजू रहा। भारत की पेट्रोलियम और कुदरती गैस की वजारत और जापान की इक्तिसादी तिजारती और तवानाई की लचक से मुतालिक सनद की वजारत के जरिए जारी एक मुश्तरका बयान के मुताबिक फरीकैन ने मौजूदा जुग्राफियाई और सियासी गैर यकीनी की सूरतहाल के माबेन तवानाई की लचक को मुस्तहकम करने की गरज से एशिया में जिम्मेदार मुल्कों और तवानाई इस्तेमाल करने वाले बड़े ममालिक के तौर पर काम करने के मुश्तरका इरादे का इजहार किया। तवानाई की नकलो हमल से मुतालिक दोनों ममालिक ने तेल और गैस के लिए लचकदार समुद्री लॉजिस्टिक्स की अहमियत पर जोर दिया और समुद्री तवानाई की नकलो हमल के जारी सिलसिले में मुश्तरका सरमायाकारी समेत तआवुन के मौके की जस्तजू करने से इत्तेफाक किया। कॉमर्स और सनद के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने आज कहा कि जापान के साथ भारत की जामे शराकतदारी में सरमायाकारी एक कलीदी उनसुर के तौर पर उभरी है और तवक्को है कि बाहमी ताल्लुकात को मजीद इस्तेहकाम मिलेगा। एक निजी टेलीविजन चैनल के जरिए मुनाकिदा शेपिंग द एशियन सेंचुरी से मुतालिक भारत जापान जामे मुजाकिरात से खिताब करते हुए

0: जनाब गोयल ने कहा कि भारत की हुनरमंद अफरादी कुव्वत के लिए मौके खुल रहे हैं, जबकि हुकूमत की तवज्जो वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में सबके लिए यकसां तरक्की को यकीनी बनाने पर मरकूज है। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। पेट्रोलियम और कुदरती गैस के वजीर हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि भारत अपनी रिफाइनरी की सलाहियत में तेजी के साथ तौसी कर रहा है। नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जनाब पुरी ने बताया कि अगले 6 से 12 महीनों में मुल्क की रिफाइनरी की सलाहियत सालाना 300 मिलियन मैट्रिक टन हो जाएगी। उन्होंने कहा कि 10 साल के वक्फे के बाद पहली ग्रीन फील्ड रिफाइनरी कायम की जा रही है। मगरबी एशिया के बहरान के दौरान सूरत हाल से निमटने की भारत की कार्रवाई के बारे में जनाब ने कहा कि तवील अरसे तक हुकूमत ने पेट्रोलियम और डीजल की कीमतों को कंट्रोल किया है, नीज इन पर आयद महसूलात को कम किया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत शहरियों के मफाद को हमेशा तरजीह देती है और उन पर तवज्जो मरकूज रखती है। वजीर मौसूफ ने कहा कि पिछले 4 साल में पेट्रोल की कीमत में सिर्फ 5.58% का इजाफा हुआ, जबकि डीजल की कीमतों में ये इजाफा 6.23% रहा। सारिफिन के लिए तेल की कीमत में कोई इजाफा नहीं हुआ और हुकूमत के मालियाती निजाम ने खाम तेल की कीमतों में इजाफे को बर्दाश्त किया है। शहरी हवाबाजी की वजारत ने आज मुल्क भर के बैन अलाक्वामी हवाई अड्डों पर इबोला की जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल का आगाज किया। ये जदीद डिजिटल प्लेटफॉर्म सेहत खिदमात के डायरेक्टोरेट जनरल DGHS और दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड DIAL के इश्तराक से तैयार किया गया है। इसका मकसद सेहत, इमिग्रेशन और निगरानी करने वाले इदारों के दरमियान बरवक्त राब्ता कायम करके खतरे से दोचार मुसाफिरों की फौरी शिनाख्त करना और बैन अलाक्वामी मुसाफिरों की सेहत की निगरानी को मजीद मौसर बनाना है। एयर सुविधा 2.0 में मुकम्मल तौर पर कागज से मुबर्रा और बगैर जिस्मानी राब्ते के सेहत से मुतालिक खुद ऐलानिया निजाम मुतारिफ कराया गया है। नए निजाम के तहत बैन अलाक्वामी मुसाफिर अपनी आमद से 24 घंटे पहले ऑनलाइन तरीके से सेहत से मुतालिक खुद ऐलानिया फॉर्म जमा करा सकेंगे, जिससे इमिग्रेशन की कार्रवाई तेज होगी और हवाई अड्डों पर सेहत की जाँच भी आसान और मौसर तरीके से अंजाम दी जा सकेगी। अमला, अवामी शिकायत और पेंशन के मरकजी वजीर ममलकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि मसनू जहानत अब सिर्फ एक मुतबादल नहीं रह गई है, बल्कि ये अच्छी हुक्मरानी का एक अहम सुतून है। उन्होंने दानिशमंदी के साथ AI के जिम्मेदाराना इस्तेमाल की अहमियत पर जोर दिया। आज से पहर जयपुर में 29वीं कौमी ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस के इख्तितामी इजलास से खिताब करते हुए जनाब सिंह ने कहा कि विकसित भारत 2047 के विजन को हासिल करने के लिए इंतजामी सोच में बुनियादी तब्दीली की जरूरत है। जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए अकीदतमंदों का पहला जत्था सख्त हिफाजती इंतजामात के साथ जिला अनंतनाग के पहलगाम इलाके में वाके नुनवान और जिला गांदरबल के बालतल बेस कैंप से कैंप पहुंच गया है। जम्मू से पवित्र गुफा के दर्शन के लिए इस 57 रोजा यात्रा को लेफ्टिनेंट मनोज सिन्हा ने सुबह सवेरे झंडी दिखाकर रवाना किया। यात्रा का बाजाब्ता आगाज कल से होगा और ये 28 अगस्त को इख्तिताम पजीर होगी। पेश है एक रिपोर्ट।
1: भगवती नगर जम्मू के यात्री निवास से आज अलग सुबह रवाना हुआ श्री अमरनाथ जी यात्रियों का पहला काफिला सख्त सिक्योरिटी के बीच आज दोपहर वादी पहुंच गया। ये काफिला 4,822 यात्रियों पर मुश्तमिल है। इनमें 2,510 यात्री पहलगाम जबकि 2,312 यात्री बालतल के रास्ते कल सुबह पवित्र गुफा की तरफ रवाना होंगे। बेस कैंप पहुँचते ही इंतजामिया के अफसरान और मकामी लोगों ने यात्रियों का वालिहाना इस्तकबाल किया। यात्रा के ऐसे इनेकाद के लिए दोनों रास्तों पर सिक्योरिटी के माकूल इंतजाम किए गए हैं। यात्रा के पूरे रास्ते पर पुलिस, नीम फौजी दस्तों और फौज के इजाफी एहलकारों को तैनात किया गया है। इसके अलावा तिब्बी खदमात की फराहमी, मौसमी हालात की निगरानी की सहूलियात के अलावा हसास मकाम पर क्विक रेस्पॉन्स टीम्स को भी मामूर किया गया है। अलावा अजी यात्रा के रूट पर CCTV कैमरे और यात्रियों नीज गाड़ियों के लिए RFID ट्रैकिंग निजाम भी नस्ब किया गया है। उर्दू खबरों के लिए श्रीनगर से मैं इश्फाक शाह।
0: उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में लगातार हो रही बारिश के पेश नजर इंतजामिया ने आदि कैलाश ओम पर्वत यात्रा के लिए इनर लाइन परमिट जारी करने मंसूख कर दिए हैं ताकि यात्रियों के तहफुज को यकीनी बनाया जा सके। धारचूला के सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट आशीष जोशी ने कहा कि इंतजामिया मौसम के हालात का जायजा लेकर परमिट फिर से जारी करने पर गौर करेगा। भारतीय महकमा मौसमियात IMD ने कहा है कि जुनूब मगरबी मानसून मजीद आगे बढ़ते हुए पूरी दिल्ली, गुजरात के मजीद इलाकों, उत्तर प्रदेश के बाकी हिस्सों, मध्य प्रदेश के बेशतर इलाकों, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों तक पहुंच गया है। मौसमियात के महकमे ने मुल्क के मगरबी और वसी इलाकों में अगले 2 से 3 दिन के दौरान शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। इसी दौरान आंध्र प्रदेश, मगरबी बंगाल के गंगा के मैदानी इलाके, गुजरात, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, पश्चिम महाराष्ट्र, पंजाब और राजस्थान में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश की पेशगोई की गई है। IMD के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश, आसाम और मेघालय में गर्म और हब्स वाला मौसम बरकरार रहने का इम्कान है। गुजरात में मानसून ने शिद्दत इख्तियार कर ली है जिसकी वजह से 109 तालुका में तेज बारिश हो रही है। खास तौर पर सौराष्ट्र और जुनूबी गुजरात में जूनागढ़ जिले के मंगरौल में आज रियासत भर की सबसे ज्यादा 8 इंच तक की बारिश रिकॉर्ड की गई है। शदीद बारिश की वजह से सौराष्ट्र और जुनूबी गुजरात खित्ते के नशेबी इलाकों में जगह जगह पानी भर गया है। फीफा वर्ल्ड कप में आज रात इंगलवुड के लॉस एंजलिस स्टेडियम में राउंड ऑफ 32 के एक मैच में स्पेन का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। राउंड ऑफ 32 के दीगर मैचों में टोरंटो में पुर्तगाल का सामना क्रोशिया से होगा, जबकि कल सुबह वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और अल्जीरिया आमने सामने होंगे। इससे कबल आज सुबह बेल्जियम सेनेगल को 2 के मुकाबले 3 गोल से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की रफ्तार और जापान की महारत आलमी तरक्की के लिए कलीदी मुहर्रिक साबित होंगी। उन्होंने नई दिल्ली में जापान की अपनी हम मनसब के साथ बातचीत की। भारत और जापान ने स्ट्रेटेजिक तेल जखायर और समुद्री नकलो हमल के निजाम को ज्यादा महफूज और मुस्तहकम बनाने के लिए तवानाई साझेदारी का ऐलान किया है। हुकूमत मगरबी एशिया बहरान के तनाजुर में अगले 1 साल के दौरान मुल्क में सालाना तेल साफ करने की सलाहियत को 300 मिलियन मैट्रिक टन तक तौसी देगी। मरकज ने मुल्क के तमाम बैनुल अक्वामी हवाई अड्डों पर इबोला की जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल का आगाज किया है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

0: इसे हम कह सकते हैं कि यह योजना खेती में सिंचाई प्रेरित परिवर्तन का एक दशक पूरा कर चुकी है। पीएम केएसवाई ने पिछले एक दशक में समूचे भारत में सिंचाई अवसंरचना को मजबूत करने और कुशल जल प्रबंधन को बढ़ावा देने में केंद्रीय भूमिका निभाई है। ये योजना 64,407 करोड़ रुपए से ज्यादा की केंद्रीय सहायता के साथ खेती में सिंचाई प्रेरित परिवर्तन के प्रमुख उत्प्रेरक के तौर पर उभरी है और 2.7 करोड़ अधिक 6 करोड़ हेक्टेयर से ज्यादा भूमि पर सिंचाई क्षमता पैदा की गई है। इसी बारे में आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना ने देश के किसानों का भविष्य उज्जवल किया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कृषि विशेषज्ञ हरवीर सिंह जी मौजूद हैं। हरवीर जी, आकाशवाणी में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद हर्ष जी।
0: आपसे पहला सवाल यही हम जानना चाहेंगे कि दरअसल प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को शुरू करने की आवश्यकता क्यों महसूस हुई और देश की कृषि व्यवस्था में ये योजना पिछले एक दशक में किस तरीके का परिवर्तन लेकर आई है?
1: हर्ष जी देखिये, कृषि के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण एक इनपुट है वो सिंचाई है। अगर आपके पास सिंचाई की सुविधा है तो आप कोई भी फसल उगाने के प्रति आश्वस्त हो सकते हैं और अपनी तैयारी के साथ खेती कर सकते हैं। तो कृषि जो है वो एक तरीके से खेती करने के लिए, अगर हम ये कहें जो सिंचाई है वो सबसे महत्वपूर्ण इनपुट है। और इसीलिए क्योंकि अभी भी जो हमारा टोटल जो जिसे हम कहते हैं कि जिस क्षेत्रफल में खेती होती है उसका लगभग आधे से थोड़ा कम जो है, एक दशक पहले जो करीब 45% के आसपास था उससे भी कम था, वो वर्षा आधारित था। तो यानी कि जो हमारा जो एग्रीकल्चर का जो पोटेंशियल है, जो उसकी हमें एक उम्मीद है कि कितना उसके अंदर संभाव्यता है, उसको हम पूरा उपयोग नहीं कर सकते थे अगर हम सिंचाई की सुविधा ना बढ़ाए। तो पहला फोकस जो रहा, जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना लाने के पीछे जो सरकार का उद्देश्य रहा है, वो देश के किसानों को उनकी खेती के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण इनपुट है वो मुहैया कराने का उद्देश्य इसके पीछे रहा है। क्योंकि उसके बाद ही सारी चीजें आगे शुरू होती हैं और उसमें एक मल्टीप्रॉन्ग अप्रोच जिसे कह सकते हैं हम लोग, एक साथ इसके बहुत सारे घटक हैं इस योजना के
0: जी,
1: उनको सब पर काम किया गया है और उसके नतीजे जो आपने जैसे कहा कि एक दशक में 2016-17 के बजट से लेकर के और अभी तक हमने 64,407 करोड़ रुपए का आवंटन के लिए के करीब जो 24.61 मिलियन जो है वो जमीन हम अतिरिक्त सिंचाई के तहत ला पाए, जिसका फायदा 2.5 करोड़ से ज्यादा देश के किसानों को हुआ।
0: सरकार ने एक लक्ष्य बनाया कि प्रति बूंद अधिक फसल, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में ये चीज सामने आई जिसका फायदा भी किसानों ने और हमारे फार्मिंग सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर ने उठाया। ये प्रति बूंद अधिक फसल, इसे कैसे आम श्रोताओं के लिए आप समझाएंगे?
1: एक तरीके से जो हम कहें कि जो स्लोगन भी बनाया गया पर डोप मोर प्रो, यानी कि हर बूंद से अधिक उपज, का मतलब है कि जो हमारे पास जल उपलब्ध है, जो संसाधन हमारे पास सिंचाई के उपलब्ध है, उनको हम कितना दक्षता के साथ उपयोग कर सकते हैं ताकि हम उसको जब कन्वर्ट करते हैं उत्पादन में फसल के, वो हम आकलन कर सकते बेहतर उत्पादन कैसे हासिल कर सकते हैं। तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होना चाहिए, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होना चाहिए और जो एक्सटेंशन वर्क है जिसमें किसान को बताना है, समझाना है कि जो पानी है एक तरीके से बहुत ही बहुमूल्य रिसोर्स है, उसका आप बेहतर दक्षता के साथ उपयोग करके अधिक उपज कैसे हासिल कर सकते हैं। तो उसके लिए जो जो भी कंपोनेंट है उनको केंद्रित रखते हुए आगे बढ़ा गया। तो इसीलिए जो स्लोगन है पर डॉप मोर प्रो, प्रति बूंद अधिक उपज, हम लोग उस उद्देश्य को हासिल करने के लिए किस तरीके से आगे बढ़ना है वो कदम इस योजना के तहत उठाए गए।
0: हरवीर जी, आपने मानसून आधारित यानी वर्षा आधारित सिंचाई की भी बात की, तो एक हम इसे कैसे समझें आम श्रोताओं के हिसाब से? एक तो जब वर्षा होती है तो हर खेत को पानी पहुंचता है, लेकिन फिर उसके लिए वर्षा पर निर्भर रहना पड़ता है। तो आंकड़े क्या बताते हैं, अभी देश में कितने एरिया ऐसे हैं जहां वर्षा आधारित कृषि है और कितने एरिया हम मान के चले ऐसे हैं जहां के लिए हम सिंचाई की सुविधा देते हैं जो वर्षा पर आधारित नहीं है, वर्षा हो ना हो वहां सिंचाई का पानी पहुंच जाएगा?
1: हमारा सिंचाई का जो ढांचा है जो बहुत वर्षों से है, जिसे कि हम लोग कैनाल सिस्टम है, ट्यूबवेल सिस्टम है और डैम बनाए गए हैं, चेक डैम्स हैं, तो ये एक जो पोन्ड्स हैं, तालाब हैं बड़े, उनका रेस्टोरेशन है, बहुत सारी चीजें उसके साथ में, लेकिन जो कैनाल इरिगेशन और हम जो कहते हैं कि भाई जहाँ ट्यूबवेल सिस्टम है वो सारा जो हम कहते हैं इसको एश्योर्ड इरिगेशन, यानी कि बारिश हो ना हो लेकिन किसान के पास एक वैकल्पिक सुविधा उपलब्ध है जिसका उपयोग करके वो अपने खेतों की सिंचाई करके फसल का उत्पादन कर सकता है। और इसलिए जो बहुफसलीय जो उत्पादन क्षेत्र है वहां पर किसानों की स्थिति भी अच्छी होती है, उत्पादन भी ज्यादा होता है, क्योंकि जो फसल चक्र उसका है वो रबी है, खरीफ है, जायद है, वो सारी चीजें उसमें हासिल कर सकता है क्योंकि उसके पास सिंचाई की सुविधा है। ये इस तरीके का जो हमारा क्षेत्रफल है वो 50% से थोड़ा ज्यादा है। बाकी जो है हमारा जो कृषि है वो वर्षा आधारित है, हालांकि वह काफी बड़े पैमाने पर वहां पर भी किसानों ने अपने स्तर पर और सरकार की जो योजनाएं हैं उनका उपयोग करके सिंचाई की सुविधाएं है। इसको हम रेनफेड एरिया बोलते हैं। रेनफेड एरिया में अक्सर जो है एक फसलीय खेती होती है और वो जब ये हमारा मानसून का सीजन होता है उस वक्त ये खेती होती है, लेकिन वहां पर भी ऐसा नहीं कि हर वक्त बारिश हो। तो सरकार की जो योजना है ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, उसका एक कंपोनेंट है वाटरशेड मैनेजमेंट। तो वाटरशेड मैनेजमेंट में होता क्या है कि उस तरीके के सिंचाई के लिए पानी को इकट्ठा करने के एक ढांचे बनाए जाते हैं, चेक डैम्स बनाए जाते हैं कि जो रेनफेड एरिया है वहां पर एक सिंचाई उस क्षेत्र में हो जाए जब कमी पड़ती है उस वक्त, या जो पानी अगर बच जाएगा तो उससे आप दूसरी फसल के लिए भी पानी उपलब्ध कर सकते हैं। तो ये एक काफी बड़ा काम है और देश भर में इसके ऊपर सरकार ने काफी ज्यादा पैसा खर्च किया है वाटरशेड मैनेजमेंट के ऊपर। और इससे क्या हुआ कि जो इलाके ऐसे हैं जो कृषि में थोड़ा पिछड़े हुए हैं उनको बाकी क्षेत्रों के करीब लाने की कोशिश कामयाब होती है। वहां के में इसके जरिए सुधार किया जाना संभव है और हुआ है, बड़े पैमाने पर हुआ है। ये वहां पर जो पॉन्ड्स है उनका रेस्टोरेशन होता है कि जिससे जब पानी की जरूरत है तो वहां से पानी किसान ले सके, और बहुत जगह यूजर एसोसिएशन बनी हुई है किसानों के, अपने एक तरीके से कलेक्टिव बने हुए हैं जो मिलजुल कर उसका मैनेजमेंट भी करते हैं, आपस में उस पानी का बंटवारा भी करते हैं, जिससे सबके साथ इक्विटेबल जो है रिसोर्सेज का इस्तेमाल हो सके। तो ये इस योजना का एक बड़ा कंपोनेंट।

0: मैं मानता हूँ, और इसको काफी बड़ा बल मिला है। जो एक रेनफील्ड डेवलपमेंट अथॉरिटी है वो बड़े पैमाने पर इसके ऊपर काम भी करती रही है, तो ये तभी संभव हुआ है जब उसके लिए संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
1: हरवीर जी, आप ये भी बताएं कि जो ये अवसंरचना विकास है सिंचाई के लिए, ढांचागत विकास है, उसमें क्या नवीनता आई है समय के साथ साथ? जैसे अब तो हम हर जगह टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, तो सिंचाई में कौन कौन सी टेक्नोलॉजी आई है और ढांचागत जो विकास हुआ है उसमें क्या क्या परिवर्तन आए हैं?
0: इसका एक कंपोनेंट है एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम, AIBP जिसको बोलते हैं।
1: जी
0: वो प्रोग्राम ऐसा है जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं लंबे समय से उनका जो लास्ट माइल कंप्लीशन है, यानी कि जो प्रोजेक्ट 80% पूरा हो गया या 90% पूरा हो गया, उसमें अगर 10% काम बचा तो उसको तेजी से पूरा किया जाए, उसके लिए अलोकेशन किया जाए, और उसके पूरा होते ही उसका जो पोटेंशियल है, जो उसके जरिए जो एक संभावना है या कितना क्षमता हमने उम्मीद रखी है उसके सिंचाई की जो उससे पैदा होगी, उसका उपयोग तुरंत हो जाएगा। तो ये एक बड़ा कंपोनेंट रहा है, और इसके ऊपर जो है करीब 21,000 करोड़ रुपया जो है इसके लिए अलोकेट हुआ, और बड़े पैमाने पर इससे करीब 173 लाख हेक्टेयर जमीन जो है उसको सिंचित सुविधा की तरह हम दे पाए। प्लस जो माइनर इरिगेशन है, जैसे मैंने आपको चेक डैम की बात की थी, या माइनर इरिगेशन है वो सब हुआ, साथ में जो टेक्नोलॉजी है, जैसे आपने कहा कि जब मैं कहूँ कि प्रिसीजन इरिगेशन जो है, कि आपको माइक्रो इरिगेशन की जो स्कीम्स है कि भाई आप स्प्रिंकलर है, आपके ड्रिप इरिगेशन है,
1: जी
0: जिससे आप सिंचाई के साथ आप न्यूट्रिशन भी पौधे तक सीधे पहुंचा सकते हैं, जिससे आपकी उत्पादकता बढ़ती है और आपकी लागत घटती है। और ये जो स्कीम्स हैं जिसमें हम, मैं कह रहा हूँ कि जो टेक्नोलॉजी का जहां इस्तेमाल हुआ है, इस तरीके की इरिगेशन की जो नई चीजें, नई पद्धतियां लागू की गई हैं, उससे बहुत कम पानी में, कई जगह 1/4 पानी इस्तेमाल होता है फ्लड इरिगेशन के मुकाबले इसमें, या उससे भी कम होता है, लेकिन जो उपज है वो बेहतर होती है, उत्पादकता बेहतर होती है। जो ड्राई लैंड एरिया है, जैसे राजस्थान है, गुजरात का कुछ हिस्सा है, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से हैं, महाराष्ट्र का बड़ा हिस्सा है, वहां पर इस तरीके की जो नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करके जो सिंचाई सुविधाओं के ऊपर काम हुआ है, क्योंकि इसके लिए सरकार सब्सिडी भी देती है और उस सरकार किसानों को प्रोत्साहित करती है।
1: जी
0: जैसे आपने कहा कि पहले से जो हमारा कैनाल इरिगेशन था, बड़े पॉन्ड थे या लेक्स थे, जो है वहां से जो पानी का हम इस्तेमाल कर पा रहे थे, सिस्टम भी है, तो वहां पर भी आप जो है बोरवेल में, वहां पर भी ये आप उसको आगे नई टेक्नोलॉजी से बात कर सकते हैं। प्लस जहां पानी का स्तर ऊपर था, वहां पर बड़े पैमाने पर ट्यूबवेल जो है उनके लिए संसाधन उपलब्ध कराए गए, उसका इस्तेमाल हुआ। और जो जो सिंचित, जैसे हम ईस्टर्न इंडिया की जब हम बात करते हैं, वहां जो सिंचित एरिया बढ़ाने की बात है, उसमें ये काफी मददगार हुई है स्कीम्स इस तरह की। इवन राजस्थान में बड़े पैमाने पर लोगों ने प्रिसीजन जो इरिगेशन की हम बात करते हैं, नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, प्लस सोलर पंप्स के जरिए, छोटे पंप्स और सोलर के जो एनर्जी, जहां बिजली की जरूरत नहीं है, ये सारा चीजें तभी हो पाई है जब आपने एक बहुत वृद्ध स्कीम बनाई और उसमें हर कंपोनेंट को रखा। सिर्फ ऐसा नहीं कि आप सिर्फ डैम बनाएंगे और इरिगेशन के लिए चैनल्स बनाएंगे, नहीं, जो भी एक तरीके से विकल्प है उन सबको एक साथ इस्तेमाल करने की कोशिश की।
1: हरवीर जी, आपने बहुत सही बताया कि किस तरीके से तकनीक का इस्तेमाल कर और स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल कर किसानों ने अपनी फसल को बढ़ाया है, अपनी आय बढ़ाई है। यहाँ एक उदाहरण देना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के किसानों ने स्प्रिंकलर सिंचाई अपनाकर पानी, बिजली और श्रम की लागत काफी कम कर दी, अपना उत्पादन बढ़ाया। और आपने राजस्थान की भी बात की कि जहाँ किसानों ने कम पानी के बावजूद अपना उत्पादन बढ़ाया है। साथ ही आपने त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम यानी AIBP के माध्यम से भी लंबित सिंचाई परियोजनाओं को किस तरीके से सरकार ने पूरा किया है, इस पर भी बातचीत की। अब आप हमें ये बताएं कि सरकार खास तौर पर, विशेष रूप से अगर कहें, छोटे और सीमांत किसानों को सूक्ष्म सिंचाई अपनाने के लिए 55% तक की सहायता देती है। आपने अभी थोड़ी देर पहले सब्सिडी की भी बात की, इससे किसानों की आय और खेती पर पिछले कुछ वर्षों में क्या प्रभाव पड़ा है?
0: ये जो छोटे किसान होते हैं उनके पास संसाधनों की कमी होती है, उनके पास जो वित्तीय संसाधन है वो बड़े किसानों की तरह उपलब्ध नहीं होते कि वो इन्वेस्टमेंट करके सिंचाई सुविधाओं पर तुरंत अपने लिए सिंचाई की व्यवस्था कर सकते। और जो आती है उसका बड़ा हिस्सा जो दिया है, और इसमें कोशिश ये हो रही है कि ये जो सुविधाएं विकसित हो रही है उसमें टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल हो, जिससे कि जो वाटर यूज एफिशिएंसी, जो यानी कि पानी के उपयोग की जो दक्षता है, जो हम लोग पीछे कह रहे थे कि पर मोर क्रॉप जो है उसके ऊपर फोकस किया जाए, और जो हमारे रिसोर्सेज हैं।

0: को कैसे अक्वा फर्मों या और पॉन्ड्स को कैसे रिचार्ज रखा जा सकता है।
1: जी
0: मेरा अभी भी मानना है कि अभी इस तरीके के जो किसान है हमारे देश में, अभी भी जो लघु और सीमांत किसान है उनकी हिस्सेदारी करीब करीब 88-89% के बीच में चले गए। जोत का जो आकार है 2 हेक्टेयर कम जमीन के जो लैंड होल्डिंग्स है उनको अभी एक तरीके जो एक्सटेंशन है जो उन तंत्र सूचना का है कि उनको कैसे हम शिक्षित करें, कैसे उनको हम इसके लिए तैयार करें कि वो इस तरह की जो स्कीम्स हैं उनका बेनिफिट लेकर के और जो कृषि जो वो खेती करते हैं उसमें अपने उपज बेहतर कर सके, अपने जो आर्थिक स्थिति को बेहतर कर सके, अपनी ज्यादा फसल करके ज्यादा आय हासिल कर सके, क्योंकि स्कीम्स अवेलेबल है उस पर बड़े पैमाने पर। अभी भी जरूरत यह है कि जो लिंकेज हैं उनको कैसे हम करें, किस राज्य की क्या स्कीम है,
1: जी
0: कहाँ से उनको ये उपकरण लेने हैं, उसके खेत के लिए कौन सा सिस्टम बेहतर है, तो ये उनको अभी और ज्यादा जागरूकता लाने की जरूरत
1: जी और हरवीर जी, यहाँ यह भी बताते चले कि केंद्रीय बजट 2026-27 में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए 6,587 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, और यह दर्शाता है कि सरकार जल सुरक्षा और कृषि उत्पादकता को किस तरीके से सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। हरवीर सिंह जी, आकाशवाणी से बातचीत करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कृषि पद्धति में परिवर्तन के दशक पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे कृषि विशेषज्ञ हरवीर सिंह। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे हर्ष रंजन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
3: Countrywide.

मीडियम वेव के 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज तथा FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। हमारा अगला कार्यक्रम बस चंद ही पलों में।

आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है, मीडियम वेव के 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज तथा FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर प्रस्तुत है फिल्म संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत कुछ फिल्म नगमे।

फिर नसीब का गीत अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, आनंद बख्श की रचना थी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था। और श्रोताओं आइए अब सुनते हैं किशोर कुमार और आशा भोसले को।

इसी साथ आज का ये कार्यक्रम बस यही संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये राज्य केंद्र है। श्रोताओ, हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। श्रोताओ, आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप 2026 के अंतर्गत द ओवल लंदन में इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के बीच खेले जाने वाले दूसरे अंतर्राष्ट्रीय सेमीफाइनल मैच का सीधा प्रसारण।
1: Is Akashwani. We now bring you ball by ball commentary of the second semi final T20 cricket match to be played between England and South Africa of the ICC Women's T20 World Cup 2026. Before that, listen to a special program, First Ball 20.
2: First Ball 20.
3: Unbeaten in the group's

0: हवा मिले नदी का किनारा,
1: चांद तारों का रंगी इशारा,
0: कह रहा है खबर हो सके तो त्याग कर, ये समा मिलेगा फिर न दोबारा, ये हवा ये

सपनों की नर्म आंच सर्द हो चली हो।

0: जाए रात।
1: नसीर तो जाना माना स्मार्ट बंदा, कुछ थोड़ा सा रोबीला, और फारूक तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा शरीफ। तो मैंने स्क्रिप्ट दोनों को पढ़ने दिया। नसीर ने कहा वो ये तो मैं हूँ ना बासु, और फारूक ने कहा वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा ना तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए, वही घिसा पिटा रोल करने में क्या मजा है, हाँ वही करते रहोगे।
0: इस जुलाई विविध भारती पर आ रहा है कौन
2: कौन लाया, कौन लाया।

दिव्य कुमार और अदिति सिंह शर्मा की आवाजों में आपने सुना ये पारंपरिक गीत। आइए रंग तरंग कार्यक्रम का ये अगला गीत सुनते हैं।

0: ये थी ऋचा शर्मा की आवाज और आइए अब आपको सुनवाते हैं सुलक्षणा पंडित और आरती मुखर्जी का गाया हुआ ये गाना। लिखा है माया गोविंद ने, धुन बनाई है राज कमल ने।
1: धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत

0: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: रंग तरंग कार्यक्रम में अब सुनवा रहे हैं राजेंद्र मेहता और नीना मेहता की गाई ये गजल।

जुबिन नौटियाल की आवाज में आपने सुना ये गाना। गुरप्रीत सैनी के बोल थे, रोचक कोहली का संगीत था। और आइए अब आपको सुनवाते हैं दिलराज कौर की आवाज, मोहसिन नकवी का कलाम।

ये थी रंग दरंग कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। अब दीजिए इजाजत, सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती। रंग

अभी आपने सुना यादों की बारात फिल्म का गाना किशोर कुमार और मोहम्मद रफी की आवाजों में, मजरू सुल्तानपुरी के बोल थे और राहुल देव बर्मन का संगीत। और अब सुनते हैं फिल्म उमर कैद का ये गाना, लता मंगेशकर मुकेश का गाया हुआ, गुलशन बावरा का गीत, सोनिक ओमी का संगीत।

0: फिल्म सावन का ये गाना सुन रहे थे, जिसे लिखा था असद भोपाली ने, धुन बनाई थी हंसराज बहल ने, आवाज थी लता मंगेशकर की।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
0: यादों की महफिल कार्यक्रम में आइए अब आपको सुनवाते हैं थोड़ी सी बेवफाई फिल्म का गाना, लता मंगेशकर और किशोर कुमार के युगल स्वरों में। गीत लिखा है गुलजार ने, धुन बनाई है खयाम ने।

किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में आप सुन रहे थे वारिस फिल्म का ये गाना। वर्मा मलिक के बोल, उत्तम जगदीश का संगीत था। और आइए अब सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज में फिल्म सौदागर का ये गाना।

आइए अब सुनते हैं मोहम्मद रफी और सुलक्षणा पंडित की आवाजों में फिल्म फांसी का ये गाना, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

योगेश की शब्द रचना, सचिन देव बर्मन का संगीत, किशोर कुमार की आवाज में आपने सुना फिल्म मिली का ये गाना। और आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म राजपूत का गीत, किशोर कुमार और साथियों के स्वरों में। आनंद बख्शी के बोल हैं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की धुन।

जावेद अख्तर के बोल हृदयनाथ मंगेशकर का संगीत फिल्म मशाल का ये गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में। ये थी आज की यादों के महफिल की अंतिम प्रस्तुति। सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती।

आप सभी को राजुल का प्यार भरा नमस्कार। सुरीला सफर कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में जो इबारत हमने फेसबुक पर पोस्ट की है वो आपने पढ़ी और बहुत सारे संदेश भेजे, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जिन लोगों ने अभी नहीं पढ़ी है उनके लिए हम एक बार यहाँ पढ़ देते हैं। खिलते नगमों की कलियां चुनने वाली दिलकश बहार का मौसम, 100 सालों से बंधन अनजाना बांध के चलने का मौसम। ये कहता है दिल थाम लोगर, रंग साथ अभी खिल जाएंगे, बन सुगंध सुमन मिल जाओ तो सब एक ताल बंध जाएंगे। रजनी गंधा संग खिलता मन, बांधे अनजाना सा बंधन, ये मौसम धीरे धीरे से जीवन में घुल मिल जाता है, पर जाता है तो बीते लम्हों की कसक छोड़ कर जाता है। तो ये है आज की इबारत, और इस इबारत को लेकर बहुत सारे गानों के बारे में भी आपने कहा है। तो बस ये देखना है कि आज जो गाने प्ले होने वाले हैं उनसे आपकी लिस्ट कितनी मैच कर रही है, हमें जरूर बताइएगा। हो सकता है कि आपने अभी अभी जो गाना सोचा हो वो हमारी इस लिस्ट में हो, तो अगर अभी भी कोई दिमाग में गाना आ रहा हो तो जल्दी से हमें बताएं। बहरहाल आज मौसम को लेकर बहुत सारी बातें हो रही हैं और हमारे श्रोताओं ने भी मौसम के बारे में कई संदेश भेजे हैं। एक संदेश में कहा है कि एक हम हैं जो उदास होकर चुपचाप अपने काम कर रहे हैं और आप कितनी प्यारी सी इबारत लेकर आई हैं, जबकि हम जानते हैं कि ऐसा करना ठीक नहीं है। कितना प्यारा मौसम और प्यारा सा विविध भारती का साथ, फिर भी ना जाने क्यों ये दिल बार बार उदास हो जाता है, पर हमने अपने दिल से कह दिया कि हमें मुस्कुराना है और हमें उदासी दूर होती नजर आई और हम हो गए शामिल सुरीला सफर में। वाह वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। आगे लिखती हैं कि आपकी इबारत में हमें फूल और कलियां नजर आई तो हमने अपने गमले में एक बात नोटिस की। 3 दिन से एक हिबिस्कस यानी गुड़हल के एक पौधे में 3 दिन से 3-3 फूल खिल रहे हैं। आज 3रा दिन है और कल 4थे दिन के लिए भी उसमें 3 कलियां हैं। इन छोटी छोटी बातों पर हमारा ध्यान नहीं जाता, पर कभी कभी ये सब देखना भी अच्छा होता है क्योंकि इस बहाने हम प्रकृति से जुड़ते हैं और फिर ये पौधे तो कितनी खुशियां देते हैं हमको। बहुत सुंदर बात कही आपने, और संदेशों में बहुत सारी बातों के साथ साथ ये भी कहा गया है कि इस कार्यक्रम में विविध भारती और उसके श्रोता साथ साथ मिलकर चलते हैं तो मौसम के साथ सजन का लुत्फ ही कुछ और है। न जाने कितनी गीत कविताएं इनके सानिध्य में परवान चढ़ी हैं। कवि और गीतकारों की कलम का जादू जब कोरे कागज पर उतरता है तो सावन भादो बरखा पतझड़ हर मौसम के गीत बन जाते हैं। मौसम जीवन में वो सब अनुभूतियां देता है जिसे हम खुशी का नाम दे सकते हैं। शायर बशीर बद्र के माध्यम से कहें तो अजब मौसम है मेरे हर कदम पर फूल रखता है, मोहब्बत में मोहब्बत का फरिश्ता साथ चलता है। बहुत सुंदर। तो मौसम की इतनी बातें हो गई हैं तो क्यों ना उन सभी गीतों पर एक नजर डालते चलें जो कि आपकी पसंद हैं। एक एक कर उनकी एक झलक सुनते जाते हैं। झूमता माँ

दरअसल मौसम को लेके इतने खूबसूरत गीत हैं कि अगर हम उनको थोड़ा थोड़ा भी प्ले करते चले तो आज के कार्यक्रम का वक्त ही पूरा हो जाएगा, इसलिए कुछ गीतों को हमने छांट कर लिया है, चुनकर लिया है। अब जो गीत हमने चुना है वो तो आपको सुनवाएंगे ही, आपसे पूछेंगे फिल्म का नाम और कलाकारों के नाम, लेकिन एक सवाल और है। आज की इबारत में शुरुआत में एक गीत के अंतरे की कुछ पंक्तियां छिपी हुई हैं, आपको वो गीत पहचानना है, फिल्म का नाम बताना है और साथ ही वो अंतरा भी बताना है कि वो अंतरा असल में क्या है, उसमें से कुछ शब्द लिए हैं अंतरे के। तो अब ये गीत और बताइए फिल्म का नाम और मुख्य कलाकारों के नाम।

बहुत बहुत शुक्रिया हमारे श्रोताओं के उन जवाबों के लिए जो उन्होंने तुरंत भेजे हैं। बताया है कि फिल्म ओपेरा हाउस का ये गाना जिसमें प्रमुख कलाकार रहे अजीत और बी सरोजा देवी। और जो दूसरा सवाल हमने पूछा था, मैं पल दो पल का शायर हूँ गीत की ये कुछ पंक्तियां थी, कुछ शब्द असल में चुने थे उसके एक अंतरे से। और बताया है कि कभी कभी कभी फिल्म में अमित जी स्टेज पर गा रहे हैं। हमने ये भी कहा था कि अगर वो अंतरा आपको याद आ रहा हो तो जरूर लिखें, अभी कोई वैसा जवाब दिख नहीं रहा है। वैसे मौसम का जब भी हम जिक्र करते हैं तो खूबसूरती का और तमाम उन चीजों का जो प्रकृति से जोड़ती हैं हमें, उन सब की बातें करते हैं, लेकिन साथ ही साथ मौसम एक चीज और सिखाता है कि आज जो है वो कल नहीं रहेगा और जो कल है वो परसों नहीं रहेगा। यानी निरंतर बदलाव की ओर भी संकेत करता है मौसम, और ये भी बताता है कि कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले। तो चलिए अब अगले गाने की तरफ बढ़ें, लेकिन उससे पहले ये संदेश है। एक श्रोता ने कहा है कि आज की ये कविता में इबारत जीवन के उस सुखद दौर का उत्सव है जो आते ही चारों तरफ सकारात्मकता बिखेर देता है, लेकिन जाते जाते हमें यादों के साए में छोड़ जाता है। ये पद्य हमें याद दिलाता है कि जीवन में अच्छे दिन या खूबसूरत लम्हे हमेशा नहीं ठहरते। उनका आना जितना सुखद होता है, उनका जाना उतना ही भावुक कर देने वाला होता है। कविता में प्रकृति के मौसम को मानवीय भावनाओं, विशेषकर प्रेम और विरह से बेहद खूबसूरती से जोड़ा गया है। क्या बात है। एक और श्रोता कह रहे हैं कि मौसम अपने साथ बहुत से परिवर्तन लेकर आता है जो हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा देता है। जब चारों तरफ फूलों की सुगंध और हरियाली बिखरी होती है तब हम भी मन से इसमें घुल मिल जाते हैं, पर प्रकृति हमें समय समय पर अपने नए नए रूप से अवगत कराती रहती है और हमें ये संदेश देती है कि हर मौसम कुछ समय के लिए आता है, इसके बाद फिर परिवर्तन है और इसमें हमें अपने आप को ढालना है। हर मौसम हमें कुछ देकर जाता है, इसकी यादें हमारे मन मस्तिष्क पर छा जाती हैं। बहुत सुंदर बात कही आपने। एक और श्रोता ने कहा है कि प्रकृति का सौंदर्य केवल आंखों को नहीं आत्मा को भी स्पर्श करता है। फूलों की मुस्कान, रजनीगंधा की भीनी सुगंध और सुहाने मौसम का यह सम्मिलित स्पर्श जीवन के उन अनमोल क्षणों का स्मरण कराता है जहां सुख किसी बड़े उत्सव में नहीं बल्कि प्रकृति की सहज छटा में छिपा होता है। जब चारों ओर सृष्टि अपने सौंदर्य का संगीत बिखेरती है तब मन भी अनायास ही भावों के सुर छेड़ देता है और जीवन एक मधुर गीत सा प्रतीत होने लगता है। बहुत सुंदर बात कही। तो चलिए इसी बात पर एक सुंदर सा गीत आपको बताना है कि फिल्म का संगीत किन्होंने दिया था और प्रमुख भूमिकाएं किन्होंने निभाई थीं।

देवानंद और आशा पारेख ने जब प्यार किसी से होता है फिल्म में प्रमुख भूमिकाएं निभाई थी। बहुत बहुत धन्यवाद जवाब के लिए। लेकिन हमने संगीतकार का नाम भी पूछा था, शंकर जयकिशन का संगीत था इस फिल्म में। और हमारे एक श्रोता ने कहा है कि मौसम बादलों बयारों और बौछारों का है, भीगने का है, यादों की रिमझिम बूंदों की जुगलबंदी में कुछ गुनगुनाने का है। जिस तरह पावस के बादल धरती का मैल धोकर उसे उजला कर देते हैं, उसी तरह हमारे मन की परतों पर ठहरा आपाधापी अशांति और बेचैनी का गुबार भी बौछारों से धुलकर उज्जवल हो सकता है। हमारे एक और श्रोता ने लिखा है कि भाई मौसम की बहुत बातें हो रही हैं और बारिश डर डर कर आ रही है। तो यकीन मानिए कि बारिश को हम बुला रहे हैं, बल्कि डर नहीं रही है, बल्कि आने के लिए मजबूर होती जा रही है। और बारिश जल्द ही आ जाए, हम तो यही दुआ करेंगे। एक और श्रोता ने बताया है कि वो आज शिमला में मौसम बहुत अच्छा हो गया है और मेलोडियस सॉन्ग सुनते हुए बहुत अच्छा लग रहा है उन्हें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे श्रोताओं के इन संदेशों के साथ ही साथ मौसम की जो बातें चलती जा रही हैं उनमें बहुत सुंदर तरीके से गीतों की इबारत पिरोई है हमारे एक श्रोता ने। लिखते हैं कि हे विविध भारती, तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, सालों पुराना, मैंने नहीं जाना तूने नहीं जाना। 100 साल पहले तो नहीं, 66 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। तो आओ मिल जाएं हम सुगंध और सुमन की तरह, एक हो जाएं चलो हवा के संग, प्रसारण तरंगों की तरह। क्या बात है, पिछले 3 दिनों से मौसम ने भी करवट ली है। भीगा भीगा प्यार का समय है, सुहाना सुहाना बरसात के नशे में जहां है, किसी को किसी की खबर ही कहां है। बीते हुए लम्हों की कसक याद करते हुए तड़प ये दिन रात की, कसक ये जिन बिन बात की। हे विविध भारती, तुझे सुनने का भला ये रोग है कैसा, आप तो बता दे। भाई रोग तो नहीं है, तो आपकी बातों से लगता है कि किसी मर्ज का इलाज है विविध भारती सुनना। हमने सही कहा ना। एक और श्रोता कह रहे हैं कि मौसम का मिजाज समय अनुसार बदलता जाता है और इसके अनुरूप अपने आप को ढाल लेता है। बहारों का मौसम रंग बिरंगे फूल और सुगंध मन मस्तिष्क में घुल जाता है, धीरे धीरे बंधन दूर चला जाता है और उन लम्हों को याद करते रह जाते हैं। तो याद की बात हुई है, अब इस गीत को जरा सुनते हैं। आप हमें ये बताइए कि इस फिल्म में जो प्रमुख कलाकार हैं उनके नाम क्या थे।

जवाब मिला। वासु की भूमिका कमल हासन ने निभाई थी और सपना बनी थी रति अग्निहोत्री। फिल्म एक दूजे के लिए का ये गाना लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। कितनी खूबसूरत पंक्तियां लिखी हैं आनंद बख्शी साहब ने। दुनिया में प्यार की एक ही बोली, तो बताइए कि इस एक ही बोली के साथ साथ कितने सारे गीत बनते चले जाते हैं और वो कौन सा गीत है जो आपको सबसे ज्यादा मन को लुभाता है? बताइए हमें कि इस भाव के साथ लिखा गया वो कौन सा गीत है जो आपको सबसे ज्यादा लुभाता है। हमारे श्रोताओं के कुछ संदेश हैं। मन किसी गीत नगमे की तरह खिल रहा है और किसी खास इंसान, अनजाना रिश्ते की तरफ, अपने भीतर छिपे किसी एहसास की तरफ आकर्षित हो रहा है। ये मौसम की नायत भी हो सकती है और प्यार का एहसास भी। हमारे एक श्रोता ने बताया कि सुरीला सफर शुरू होते ही बनारस में बारिश शुरू हो गई। क्या बात है, बहुत बहुत बधाई बारिश की, ये मौसम की पहली बारिश, बहुत बहुत मुबारक। और एक और श्रोता कह रहे हैं कि आज तो सुरीला सफर में शायद विवाह की बात होगी, एक ऐसा रिश्ता अनजान होते हुए भी।

आप रे जवां, देखो तो जरा क्यों झुकने लगा, ओ हो, और देख के ये क्यों दिल अपना कुछ घटने लगा, कुछ रुकने लगा, मौसम की

हो फूलों से भरे

नजर। इकबाल कुरैशी का संगीत था इस फिल्म में लव इन शिमला का। ये गाना आपने सुना मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाज़ों में, और हमने जो गानों के का जिक्र किया था कि ऐसे दिल के बोल, दिल की प्यार की बोली बोलने वाले कौन से गाने आपको पसंद हैं, तो हमारे श्रोताओं ने कई गाने, बड़े सुंदर सुंदर गाने लिख भेजे हैं। मीठे बोल बोले बोले पायलिया, और पर्वतों के पेड़ों पर शाम का बसेरा है, रफी जी सुमन जी शगुन फिल्म का गाना, और एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है। एक और श्रोता ने लिखा

0: कि आना तो आके कभी अब जाना नहीं। एक श्रोता लिख रही है कि बाहर बरसात हो रही है और रेडियो सेट पर गानों की क्या बात है। एक और श्रोता ने बताया, नजरों से कह दो प्यार में, मिलने का मौसम आ गया। एक श्रोता पूछ रहे हैं कि रुम्बा कहाँ की भाषा है, इसका क्या मतलब है जी। तो अच्छा होगा कि हमारे जो कोई दक्षिण भारतीय साथी इस समय हो फेसबुक पर वो बताएं। एक बड़ा खूबसूरत सा गाना हमारे एक श्रोता ने लिख भेजा है, अरे ओ शोख कलियों मुस्कुरा देना, जो वो जब आए, सुनो फूलों महक अपनी लुटा देना, वो जब आए। फिल्म जब याद किसी की आती है का ये बड़ा ही सुंदर सा गीत इन्होंने हमारे साथ साझा किया है, बहुत बहुत शुक्रिया। एक श्रोता बता रहे हैं कि फिल्म एक दूजे के लिए मैंने 1982 में पहला मैटनी शो देखा था, उस समय मैं फोर्थ ईयर कॉलेज में था। इस फिल्म ने सभी को पागल बना दिया था। और बहुत सारे संदेश और भी हैं। हमारे एक श्रोता ने कहा है कि मौसम अंगड़ाई में गदराई वसुधा के रूप सौंदर्य से बौराए आशिक मिजाजी दीवानगी को और भी दहनशील बनाती इबारत है, सुमन सुगंध व्याप्त कुसुम दल के मधुरस पान कराती और प्रेम रस बिखेरती इबारत में दीवानगी की हदें पार हो जाएं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। एक और श्रोता ने कहा है कि प्रकृति का सौंदर्य, फूलों की मुस्कान एवं भीनी खुशबू और मौसम का मनमोहक मिजाज आपस में मिलकर एक ऐसी जीवंत कविता रचते हैं जो तन और मन को गहराई से भिगो देती है। ये वो त्रिवेणी है जहां हर एक तत्व दूसरे का पूरक बनकर इस धरा को स्वर्ग जैसा अनुभव कराता है। सौंदर्य सुगंध और मौसम के संगम का सीधा असर हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। क्या बात कही है, बदलते मौसम के साथ प्रकृति का मिजाज भी बदलता है। आसमान में तैरते बादलों की लुका छिपी कभी रिमझिम फुहारें और क्षितिज पर बिखरती सूर्य की किरणें ऐसा समा बांधती हैं कि प्रकृति का हर कण जीवंत हो उठता है, जो आसमान के साथ जीवन में भी सतरंगी इंद्रधनुष रच देता है। तो बताइए कि ये जो इंद्रधनुष रचता है सतरंगी आसमान में बारिश के दिनों में, उस इंद्रधनुष के साथ रंगों का प्रयोग इस गाने में तो हो ही रहा है जो हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, और कहां कहां पर होता है, और क्या आज भी आप वैसे ही ललक कर इंद्रधनुष देखने छत पर जाते हैं या बाहर निकलते हैं जैसे बचपन में जाया करते थे?
1: नहीं नहीं,

इंद्रधनुष को लेकर हमने जो सवाल पूछा था उसके जवाब कई देखने को मिले। इंद्रधनुष को देखना अच्छा लगता है बचपन में भी और अब भी, इसकी सुंदरता देखते ही बनती है। और एक और श्रोता ने बताया कि मैं अमेरिका के नियाग्रा फॉल देखने गई थी, वहां मैंने एक ही जगह पर ही छोटे छोटे बहुत से इंद्रधनुष हर थोड़ी थोड़ी दूर पर देखे जो बहुत अजूबे से लगे। वाकई हम तो सोच रहे हैं कि क्या नजारा होगा वो। एक और श्रोता ने कहा है कि असल जिंदगी में मुंबई में इंद्रधनुष नहीं दिखता। आज का प्रोग्राम मुझे प्रोत्साहित कर रहा है कि मुंबई से बाहर जाके इंद्रधनुष देखूं। क्या बात है। एक और श्रोता ने कहा है कि इंद्रधनुष जब भी बादलों से झांकता था हम रंग गिनने लग जाते थे, शहरों में कम दिखाई देता है। मिस यू। सच में इंद्रधनुष जब भी दिखता है तो लगता है वाह वो दिन लौट आए। एक और श्रोता ने कहा है कि हम तो अभी भी इंद्रधनुष उतनी ही ललक के साथ देखते हैं, और एक बार तो दो एक साथ इंद्रधनुष निकले थे तो इच्छा भी मांग ली। हाँ, ये टोटका तो बहुत ही ज्यादा कारगर होता था, और कितना इसको जो सबसे पक्की सहेलियां होती थी वो तुरंत दौड़कर बुला ले जाती थी कि चलो चलो दो इंद्रधनुष निकले हैं, जो मांगना है मांग लो। और बहुत बार मांगा जाता था कि भाई गणित का पर्चा बड़ा खराब होने वाला है, नहीं कुछ समझ में आ रहा है तो वो उसमें अच्छे नंबर आ जाए, या कि हमें ये ड्रेस मिल जाए, कुछ इस तरह की ख्वाहिशें होती थी। आपने क्या कभी ऐसी कोई ख्वाहिश की है हमें जरूर बताइएगा। एक और श्रोता कह रहे हैं कि रुम्बा ये तमिल शब्द है, मतलब बहुत ज्यादा, बहुत या बहुत ज्यादा। एक और श्रोता ने कहा है रंग तो जीवन शैली का अभिन्न अंग है।

शिक्षा हो, सजावट हो, प्रकृति हो, विज्ञान हो या जीवन ही क्यों ना हो, ये सात रंग ही असली हैं, बाकी सब नकली है। बरसातों में दूर पहाड़ पर ये इंद्रधनुष मनमोहक होता है। और ये भी तो बताइए कि इन सात रंगों का, इन सात की ये गिनती जो है वो सुरों में भी इस्तेमाल होती है। सात सतरंगी सपने भी होते हैं और इंद्रधनुष तो होता ही होता है। एक श्रोता ने कहा है कि हमारी सगाई के बाद जब पारिवारिक फंक्शन में होने वाली धर्मपत्नी से मुलाकात हुई थी तो मौका देखकर अकेले में एक गीत गाकर सुनाया था, 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा, ये सुनकर वो मुस्कुराई, ये प्यार आज तक कायम है और अंतिम सांस तक रहेगा। वाह बहुत सुंदर बात। एक और श्रोता कह रहे हैं, वाह बहुत सुंदर, मैंने तेरे लिए सात रंग के सपने, सुरीले सपने चुने, हर अंतरे में कई भावों को बांध कर दिल की बातें करता हुआ प्रतीत होता है, मुकेश जी की आवाज। और ये हमारे श्रोताओं ने कुछ संदेश में कहा है रजनीगंधा की बात, रजनीगंधा संग खिलता मन अक्सर किसी अनजाने से बंधन की महक से सराबोर हो जाता है, जिंदगी की आपाधापी में जब कोई खास करीब आता है तो भावनाएं धीरे धीरे से दिल में अपनी जगह बनाने लगती हैं, शुरुआत भले ही खामोश हो लेकिन जैसे ही दिलों के तार जुड़ते हैं जीवन के सारे सुर सुरमयी हो जाते हैं और बिखरे हुए जज्बात सिमट कर एक मुकम्मल ताल में बन जाते हैं। बड़ी सुंदर बात कही आपने, तो चलिए अब अगला गाना सुनते हैं। इस गाने को सुनकर बताइए कि इस फिल्म में प्रमुख भूमिका में अभिनेत्री कौन थी, और साथ ही आपको यह भी बताना है कि ये जो फूल है रजनीगंधा, ये गुलदानों में बहुत लोकप्रिय होता है या कभी हम जब किसी को बुके गिफ्ट करते हैं, आपको अपने फ्लावर वेज में कौन सा फूल सबसे सुंदर लगेगा, अगर आप किसी को देना चाहें या घर में सजाना चाहें कौन सा फूल सबसे सुंदर लगता है?

0: पिछले गीत के सवाल का जवाब नजर आया। हमारे श्रोताओं ने बताया कि प्रेम गीत फिल्म के का जो गाना हमने सुनवाया था और पूछा था कि प्रमुख कलाकार कौन से हैं, राज बब्बर और अनीता राज पर फिल्माया गया है ये गाना और इनकी लिस्ट का ये पांचवा गीत शामिल हुआ, बहुत बहुत बधाई। और एक और श्रोता ने बताया कि जबलपुर का मौसम बड़ा खुशगवार हो गया है, बरखा रानी आज सुबह से ही बरस रही है, सुबह सुबह छत पर जाकर सूर्य नमस्कार करने की आदत है, आज जब छत पर गए तो रिमझिम फुहारों और फुहारों के साथ फूलों का झूमना, पंछी की मधुर आवाज दिल को अजीब सुकून दे रही थी, ये मंजर हमने वीडियो में कैद कर लिया है। आज की बारिश शायद ये कहना चाह रही है, रजनीगंधा फूल तुम्हारे यूं ही महके जीवन में, ये पल हमें याद आएंगे, मौसम मस्ताना रास्ता अनजाना। अच्छा, इन्होंने कुछ और गीत भी बताए हैं, क्या मौसम है चल कहीं दूर निकल जाएं, हाँ ये भी बहुत सुंदर ही सा गीत है। एक श्रोता ने बताया कि बचपन में जब इंद्रधनुष दिख जाता था तो हम कुछ विश मांगते थे, और एक श्रोता ने कहा है कि वाह क्या सुंदर प्रश्न पूछा आपने, हम तो जब भी वर्षा ऋतु में मेघों का आगमन होता है तो मोबाइल लेकर छत पर चढ़ जाते हैं, रूई जैसे सुंदर सुंदर मेघों की क्लिक्स लेने के लिए खूब सारी क्लिक्स लेते हैं, लेकिन फिर वापस भागना पड़ता है भीगने के डर से, स्वयं नहीं मोबाइल के। सच में मोबाइल बचाना बहुत जरूरी है इस मौसम में। एक और श्रोता कह रहे हैं, जो हमने छोटे छोटे इंद्रधनुषों वाला एक संदेश पढ़ा था उसी से संबंधित है ये संदेश हमारी एक और श्रोता का लिखा है, ये तो हमने भी देखा क्योंकि कनाडा और अमेरिका दोनों के बीच का नजारा ही है नियाग्रा फॉल्स पर, बड़ा ही प्यारा नजारा, हम कभी नहीं भूल सकते, वो इतना प्यारा समा, वो पल मानो हमारे दिल में सदा के लिए बस गया है। एक और श्रोता ने कहा है कि मौसम की बातें हो रही हैं तो आज सभी को गरजते बरसते बादलों का इंतजार है, लेकिन कुदरत भी और इंतजार करा रही है, इंतजार के इस वक्त के लिए इनको गीत याद आया है, कहां से आए बदरा, फिल्म चश्मे बद्दूर का गाना। और एक श्रोता कह रहे हैं कि भाई इंद्रधनुष प्रेमी इंद्रधनुष को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भली भांति देख सकते हैं और अपने अपने दुनिया को मुट्ठी में भरकर खुश हो सकते हैं। भाई ये कुछ मतलब ठीक है देख सकते हैं, लेकिन देखने के साथ जो उसको एक उल्लास जुड़ा रहता है वो कैसे महसूस होगा। ये हमारे एक श्रोता ने मैसेज भेजा है कि आज कालिख वक्त एहसास और यादों के खूबसूरत ताने बाने को बुनता है, ये महज एक कुछ पंक्तियां नहीं बल्कि जिंदगी के सुरीले सफर का एक जीवंत दस्तावेज है, इसमें एक ऐसे रूमानी मौसम का जिक्र है जो अपने साथ सतरंगी ख्वाब लेकर आया है, जहां अनजाने रिश्ते भी सदियों पुराने लगते हैं, जैसे जैसे ही रजनीगंधा की भीनी खुशबू हवाओं में घुलती है जिंदगी का हर बिखरा सुर एक मुकम्मल ताल बन जाता है, ये लम्हा भले ही हमेशा न ठहरे पर जाते जाते दिल में ताउम्र मुस्कुराने वाली एक मीठी कसक छोड़ जाता है। सच में एक और श्रोता ने कहा है कि पुष्प बहार का सुहाना मौसम, सुगंधित फूलों की महक जीवन को खुशियां प्रदान कर रही है, सृष्टि देवता खिलकर प्रसन्नता से हंस रही है, मन भावन गीत तन्मयता से गुनगुना रही है, बिल्कुल बादल बिजली चंदन पानी और सुमन सुगंध की तरह धीरे धीरे यह मस्ताना मौसम एक मीठी मीठी सी चुभन और ठंडी ठंडी सी अगन हमें अर्पित कर रहा है, सुरीले सफर में आज ऐसे ही कुछ मधुर गीत। और इन्होंने कुछ गीतों का भी जिक्र किया है, और बड़ी खुशी की बात है कि शुरुआत में भेजा हुआ संदेश इसमें से कई गाने हमारी लिस्ट से मैच हो गए। एक और श्रोता ने कहा है कि कलियां और बहारों की तो बातें हैं और रजनीगंधा फूल तुम्हारे यूं ही महके जीवन में, आओ मिल जाएं हम सुमन और सुगंध की तरह, ये कुछ इन्होंने गीत लिखे हैं तो चलिए ये गीत भी शामिल हो गए। और एक और श्रोता ने कहा है कि फूल और कलियों की बातों पर इन्होंने अपनी चारों तरफ उन्हें खिलते हुए महसूस किया है। अब ये कार्यक्रम का आखिरी गीत आपके लिए, इस गीत को सुनिए, बताइए फिल्म का नाम और प्रमुख कलाकारों के नाम।
1: अभी अलविदा मत कहो।

रात होगी लेकिन यादों के ये चिराग जलते रहेंगे। हमारे श्रोताओं ने बताया निकाह फिल्म का ये गाना आपने सुना। महेंद्र कपूर की आवाज, हसन कमाल के बोल, रवि का संगीत, राज बब्बर और सलमा आगा की ये फिल्म। और बहुत सारे संदेश भेजे हैं उन फूलों के बारे में। हमारे एक श्रोता ने कहा है, रजनीगंधा तो सच में दिल से दिल की आवाज पहुंचाने का जरिया है। मानो हमारी गुरु स्वरूपा दीदी ने जब इतने प्यार से हमारे सत्संगी सखी के लिए रजनीगंधा फूलों का गुलदस्ता भेजा तो नेत्रहीन हो चुकी और डायलिसिस पर चल रही सखी फूलों को पाकर खुशी से झूम उठी और रजनीगंधा फूल तुम्हारे गीत गुनगुनाने लगी। उनकी खुशी देखकर हम सब भी खुशी से सारे दर्द भूल कर उनके साथ झूमने लगे। ये बदलाव पर व्यंग है जिसकी गिरफ्त में हम सभी प्रकृति से खिलवाड़ कर रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग का दंश झेल रहे हैं, हमारे एक और श्रोता ने कहा है, जो उन्होंने कहा था कि सोशल मीडिया पर देख सकते हैं और कर सकते हैं। और हमारे और श्रोताओं के भी संदेश हैं, लेकिन अब कार्यक्रम का वक्त हो रहा है। एक श्रोता कह रही है कि फ्लावर वास से ज्यादा हमको ये जो पेड़ों पर फूल अच्छे लगते हैं, पेड़ पौधों पर अच्छे लगते हैं, क्योंकि फ्लावर वास में ये जल्दी से मुरझा जाते हैं। हाँ, सच में मुरझा जाते हैं, लेकिन यादों की खुशबू कभी कम नहीं होती और कभी नहीं मुरझाते वो फूल जो मीठी मीठी बातों के साथ हमारे मन में यादों के रूप में सुरक्षित रहते हैं। इन्हीं बातों के साथ अब दीजिए राजुल को इजाजत। सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन, विविध भारती।

देती है मेरी राहें, मैं की बोतल जैसी बाहें, हाय हाय।

तोबा तोबा ये निगाहें मैं की बोतल जैसी बाहें, हाय हाय ये निगाहें, हाय हाय हाय ये निगाहें, अरे कर दे।